0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore cells है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 crore cells, एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore cells आर ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 more cells इन द बॉडी, 10,000 crore cells इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore cells कनेक्टेड टू 10,000 cells, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 cells इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस, क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुश।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम। ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हाल लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8 खुश रहो खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। जब भी हम कुछ खास बात कर रहे हैं अवेकनिंग में, तो हमें लगता है कि जो पिछला हमने किया उस पर काम हमने किया दिन भर में, अब आगे देखें कि क्या वो सही है या नहीं। बहुत बार आपका मन करता है कि हमारे साथ शेयर करें, हमारा भी इसी तरह से मन करता है कि आगे बढ़ते जाएं। आपके ईमेल्स आते हैं, आपके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और पता चल रहा है कि हम रास्ता सही पकड़ कर आगे चल रहे हैं, अनुभव होते जा रहे हैं। अगर आपको याद हो, हम इस वक्त बात कर रहे हैं एंगर की। पिछली बार हमने देखा था कि इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन एंगर के वो छोटे एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें हम नॉर्मल मान के चलते थे, और इरिटेशन तब हो रही थी जब हमारे अनुसार टाइम पर काम नहीं हो रहा था, और फ्रस्ट्रेशन तब जब लोग हमारे अनुसार काम नहीं कर रहे थे। अगर थोड़ा सा रुक कर हमने देखा, एक दिन का अनुभव हमारा ये कहता है कि यस, आई कुड रियलाइज इरिटेशन हुई, फ्रस्ट्रेशन हुई, रोकी जा सकती है। अब थोड़ा और गहरे में जाते हैं, थोड़े वो स्ट्रॉन्ग वर्जन्स गुस्से के जिसमें आती है हमें रिजेंटमेंट या फिर कहें हेट्रेड। क्यों होती है रिजेंटमेंट और हेट्रेड जो तब हमारे हाथ से बाहर होती सिचुएशन होती है, लेकिन इसे भी ला सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ा काम करना है अपना ध्यान रखना। अब इस पर कैसे काम करें, बात करने के लिए हमारे साथ है रामा कुमारी सत्यशिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करें, क्योंकि जिस तरह के हमारे पास लोगों के मेल्स भी आ रहे हैं, हर बार की बातचीत है समवेयर, इतनी छोटी छोटी बातें जिन्हें जीवन का हिस्सा बनाया हुआ था, साथ पकड़ के, जो आप हर बार कहते हैं कि पकड़ के चल रहे होते हैं, तो वो बोझ अनजाने में ही ढोते जा रहे थे। अब अगर उनको छोड़ना, एटलीस्ट यू नो इट्स नॉट दैट आई एम नॉट गेटिंग इरिटेटेड एनी एवरी टाइम, बट आई नो इट कैन गो, यू नो दैट बिलीव एंड दैट रियलाइजेशन मेक्स मी फील वेरी लाइट।
1: इट्स लाइक बीमारी, इलनेस है। एक है बीमारी जो हमने स्वीकार कर ली थी कि पूरा जीवन ही हमारे साथ रहेगी, और एक है कि अब थोड़ा थोड़ा बीमार हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही होते हैं पता होता है कि ये ठीक हो सकती है। तो दैट्स अ वेरी बिग डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एक है कि सारी जीवन इस बीमारी को झेलना, और एक है ये तो छोटी सी चीज है, ये ठीक हो जाएगी,
0: मुझे दवाई मिल गई है, यू नो।
1: हमने इरिटेशन को देखा, और फिर इरिटेशन के लेवल पर अगर नहीं उसको रोका तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन होती जाती है। एंड हम बहुत बार ये अपनी वोकैबुलरी में भी कह देते हैं, आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड मतलब मुझे ये लग रहा है कि मेरी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है। फ्रस्ट्रेशन तभी होती है कि आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग एंड इट्स जस्ट नॉट हैपनिंग। इट कुड बी ट्राइंग टू चेंज पीपल, ट्राइंग टू कंट्रोल पीपल, ट्राइंग टू कंट्रोल सिचुएशंस एंड इट्स नॉट हैपनिंग। मुझे अपने आप को बहुत प्यार से समझाना पड़ेगा कि लोग और सिचुएशंस अपने अनुसार चलेंगे। मेरा रोल है कि मैं उनको राय दूं, गाइड दूं, लेकिन फिर उसके बाद अपने आप को रोक दूं। इस नहीं अगर मेरे अनुसार हुआ तो आई एम नॉट टू गेट फ्रस्ट्रेटेड। कई बार जो हमारा औरों के प्रति गुस्सा होता है वो इतना ज़्यादा हम अपने अंदर उसको भर लेते हैं कि फिर हमें वो गुस्से के अलावा और कोई एनर्जी हमसे क्रिएट ही नहीं होती। एंड दिस इज़ मोस्टली यू नो बिकॉज वी हैव द फीलिंग कि किसी ने मेरे साथ गलत किया है, किसी ने मुझे धोखा दिया है, किसी ने मेरे जीवन को ही पूरा जैसे ऊपर नीचे कर दिया। सो देन आई होल्ड अ ग्रज अगेंस्ट पीपल, दैट स्पेसिफिक पर्सन एटलीस्ट। मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं, और मैंने उसके बारे में एक वो पकड़ लिया है अपने अंदर, एनर्जी को ब्लॉक कर लिया है। या रिजेंटमेंट, क्यों? क्योंकि किसी ने मुझे इंसल्ट किया है, किसी ने ऐसी कोई बात कह दी है मुझे जो मैं अब जीवन भर उस बात को भूलने नहीं वाली हूँ। या तो मुझे कह दी है या फिर मेरे बारे में पीछे कह दी है जो फिर मैं उसको नहीं भूलने वाली।
0: अच्छा, और मैं ये कहती हूँ कि मैं उसे भूलना ही नहीं चाहती, यू नो। कितनी बार वो रिजेंटमेंट जो है वो मेरे जीवन का एक लक्ष्य बन जाती है, वो घाव रिश्ता ही रहे तो अच्छा है, हम ये कहते हैं।
1: हाँ, लेकिन घाव अगर वहीं रहा और हर बार याद आता रहा तो वो घाव की हालत क्या हो जाएगी? नुकसान किसका हो रहा है? सी, हर समय हमें ये चेक करना पड़ेगा कि नुकसान किसका हो रहा है ये पकड़ के रखने से। हमें ये नहीं पता चल रहा कि हम जब पकड़ के रखते हैं तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मेरा नुकसान होता, और अगर मुझे छोड़ना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए छोड़ना है। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनी वन। सम पीपल से लेकिन उन्होंने गलत इतना किया कि क्यों उनको फिर हम भूल जाए उस बात को, अपने लिए, इट्स जस्ट फॉर माई सेल्फ। तो ये जो, और ये कोई ऐसे नहीं कि गैरों के साथ हो रहा है या वर्क प्लेस में हो रहा है, अपने लोगों के साथ जिनके साथ यू आर लिविंग इन द हाउस एवरी डे, डे इन एंड डे आउट, लेकिन इकट्ठे रहते हुए अगर ये इस तरह की चीज़ें अपने अंदर अक्यूमुलेट करके हम रखते, सो इट इज़ अ बिग क्वेश्चन कि घर का पूरा एनवायरनमेंट कैसा है और हम सब की जो उस घर में रह रहे हैं मेंटल स्थिति कैसी है,
0: क्योंकि ये एंगर कहीं ना कहीं जस्टिफाइड मान लेता हूँ मैं.
1: हाँ, बिकॉज आई फील लेट डाउन, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, अगेन मेरी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं की, लेकिन जो हुआ वो भी नो वन इज सेइंग के इट वाज राइट और व्हाटएवर. लेकिन अब जब सारा दिन हमें एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे से इंटरैक्ट करना है, तो किस एनर्जी के साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने अंदर क्या क्या भर के रखा हुआ है. और ऐसे कोई एक आधे के साथ नहीं है, हमारा कईयों के साथ ऐसे छोटी मोटी बातें हैं और हम उसको पकड़ के रखते हैं, एंड वी थिंक वी जस्टिफाइड इन होल्डिंग इट देयर. यू नो, मैनी कपल्स जैसे अब मिलते हैं कि उनका कुछ हुआ है आपस में, कोई एक इशू हो गया, प्रॉब्लम आ गई, सिचुएशन आ गई, खत्म हो गई ये सिचुएशन क्रॉस हो गई. सी, दिस इज अ वेरी वंडरफुल थिंग कि किसी से बहुत बड़ी कोई गलती हो गई थी, या समवन चीटेड ऑन अ रिलेशनशिप, चीटेड इन बिजनेस, चीटेड एट वर्क, वट एवर, सिचुएशन इज गॉन, वो परिस्थिति खत्म, हम वापस आ गए हैं, हम इकट्ठे काम कर रहे हैं या इकट्ठे घर पे रह रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी वो अभी तक पकड़ी हुई है.
0: जी, यहाँ एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ. मैंने ये रियलाइज किया है ओवर द इयर्स, यू नो, लाइक अब ज्ञान को समझते हुए, कि जो हम ये सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं ना, जब हम सामने बैठ के कुछ कोई सिचुएशन आ गई, सपोज कुछ हो गया जिसको हमने क्रॉस कर लिया, उसके बाद जब हम बैठते हैं कि चलो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट हैड क्रिएटेड, व्हाट हैड हैपेंड, That doesn't work.
1: और हम सिर्फ वो एनालिसिस भी क्यों कर रहे हैं कि मैं आपको समझा दूं कि आप फिर से मत करना. यू नो, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. इट्स जो हम कहते हैं ना, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट. तो हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं कि अगर हमने उनसे जो गलती हुई मैं बात करूँ फिर जाकर, शुड आई डिस्कस ऑल दैट, विद व्हाट इंटेंशन, आपकी क्या इंटेंशन है,
0: हम थोड़े ऊपर हो जाएंगे
1: कि उनको बताना कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की, एंड देन सेंडिंग आउट द एनर्जी कि यू नो आप गलत हैं मैं सही हूँ. विद दिस इंटेंशन नो डायलॉग विल टेक प्लेस.
0: बट विल ही एवर, और ही और शी एवर अंडरस्टैंड.
1: सी, दिस इज व्हाट वी ऑलवेज थिंक ऑफ. उनको समझ में आएगा उन्होंने क्या गलती की. दिस इज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क. एंड हम अपना रोल और अपनी जिम्मेवारी बना लेते हैं
0: उनको
1: समझाना कि उन्होंने क्या गलती की, विद द वेरी होप कि अगर उनको समझ में आ जाएगा तो वो मेरे साथ फिर से
0: ऐसा नहीं
1: करेंगे, गलती नहीं करेंगे.
0: नहीं तो फिर क्या करें?
1: तो वो सारी लर्निंग किसके लिए हो रही है, ये पूरा रिविजन पास्ट इंसिडेंट का, ये किसके लिए हो रहा है, उनको समझाने के लिए. आर दे इन माय कंट्रोल?
0: नो नो नो, बट देन इट मींस, सी, आई क्रॉस वन सिचुएशन,
1: लेकिन आई एम हैविंग टू क्रॉस लॉट ऑफ सिचुएशंस. सी, हमारा फोकस,
0: अगेन, बिकॉज ऑफ समबडी एल्स द सिचुएशन हैज कम. सपोज लेट्स टेक अ सिचुएशन, यू नो, लेट्स टेक, ओके, बिजनेस डीलिंग, यू नो, वी वर गोइंग फाइन. आई वॉज टेलिंग माई हस्बैंड ओनली और पार्टनर दैट डोंट गो इन टू दिस थिंग, दिस विल नॉट work very well because I can see it. He didn't understand and he went into this business. Whole of our family things were dependent on them, on the whole thing. Jaise bhi wo karega, jaise jayega. And he went, unhone kiya aur wo major disaster hua. Theek hai? He created that situation without even taking my opinion. Ab agar hum baithte hain samajhne ke liye ki what went wrong. Is it not right?
1: It is very right. लेकिन किस एनर्जी और इंटेंशन के साथ बैठते हैं आप, ये देखो. हम जब भी बैठते हैं ना बात करने के लिए, सबकॉन्शियसली हमारा जो एनर्जी लेवल है वो ये है कि मैं दूसरे को समझा दूं कि तुम गलत है. उन्होंने गलत समझ के नहीं किया था, उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से उस टाइम राइट ही लिया था. हम ऑब्वियसली डिस्कस करते हैं, लेकिन डिस्कशन का पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए कि व्हाट वाज इट दैट वेंट रॉन्ग. यू नो, नॉट दैट यू वर रॉन्ग, यू डिडंट आस्क मी, आई वुड हैव गिवन यू द राइट एडवाइस. एक सिचुएशन है ना, एक डिसीशन गलत हुआ, व्यक्ति गलत नहीं है. हम जो एनर्जी भेजते थे ना, आप गलत थे, ये एनर्जी हम लोगों के, परिस्थिति तो छोटी होती है, वो इन्वेस्टमेंट छोटी चीज थी, लेकिन ये हमारे रिलेशनशिप में एक वो लेकर आता है. जब हम हर ऐसी सिचुएशन के बाद छोटी छोटी बातें, बच्चे ने मार्क्स ज्यादा नहीं मिले, हस्बैंड और वाइफ आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं, यू शुड हैव डन दिस. नाउ इट इज नॉट अ कॉम्पिटिशन. हम क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को कि तुम गलत थे, या मैं सही था, दैट्स नॉट ट्रू. वी शुड नेवर रब इन दैट सिचुएशन. यू नो, हम बार बार घर में बहुत रब इन करते रहते हैं उसको बार बार, और दूसरे का घाव पहले जो जिससे वो गलती होती है वो कितने गिल्ट में होता है, दे नो व्हाट दे हैव डन. वी नीड टू उनको कंफर्टेबल करने के लिए, हमें एक्चुअली हमारा रोल होना चाहिए उनको कंफर्टेबल कर दे, ताकि वो उस गिल्ट से उस पेन से बाहर निकले. लेकिन हम तो और भी ज्यादा उसको रब इन करते
0: क्योंकि
1: हैं,
0: हम भी तो पेन में गए हुए होते हैं ना.
1: फ्रॉम
0: इट मींस समवेयर उनको कुछ भी हील करने से पहले आई हैव टू हील माय
1: सेल्फ, आई हैव टू बी हील्ड. कि एक तो वो परिस्थिति मुझे ना इतना उसको एक परिस्थिति ही रहने दो, उसको एक इन्वेस्टमेंट ही रहने दो, वो एक बिजनेस डील ही थी.
0: यहाँ पे ना वो राइटियस एंगर लगने लगता है कि मैंने कहा था, यू नो, और वो बार बार जो, और वो बहुत लोगों के साथ हो रहा है.
1: पर लेकिन वो एक बहुत पर्सनल एजेंडा बन जाता है घर में, एंड वो कहीं ना कहीं हम उसको यूज करते हैं. और स्पेशली अगर हमसे कोई छोटी सी गलती हो जाए और सामने वाला कुछ बोले, तो हम उसको उसकी सारी गलतियां पहले याद दिलाते रहते हैं. दिस इज वेयर आई सेड इट बिकम्स लाइक अ कंपटीशन, कि किसने ज्यादा गलतियां की हैं, किसकी गलतियां ज्यादा बड़ी. यू नो, इफ आई से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप बोलोगे आप क्या बात कर रहे हो,
0: आपको कहने का क्या हक है, आपको अपने आप को देखा है कि आपने क्या किया.
1: सो दिस इज नॉट अ लर्निंग, ये कोई लर्निंग नहीं हो रही है. ये हम एक दूसरे को आगे नहीं उठा रहे हैं, हम दोनों ही फिर एक दूसरे को और ही पुल डाउन करते हैं. रिजल्ट क्या निकलेगा, व्हाट विल बी द नेट रिजल्ट ऑफ दैट डिस्कशन, कि दोनों ही एक दूसरे से और भी खिंचते जाएंगे. अगर घर में ऐसा कुछ हो जाता है, इमीडिएटली जो स्टेबल रह सकता है अपने ऊपर ध्यान, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे घर के वायुमंडल को, एंड स्पेशली जिनसे वो गलती हुई है, ये बच्चे से भी हो सकती है, मार्क्स उसके कम हो सकते हैं, इतनी सारी सिचुएशंस हैं, तुरंत उसको इट्स ओके, इट्स ओवर, इट्स फाइन, यू कैन कम आउट ऑफ इट. इट हैज टू बी उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, बजाय के उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस
0: लो करना.
1: जो हम कह रहे हैं ना, उनसे बार बार वो गलती होती है. ये जो थॉट है ना, जो हम क्रिएट करते हैं, इनको तो ये सीखते नहीं है एक बार भी. इन्होंने बार बार यही वाली गलती करनी है. हम क्या एम्पावर कर रहे हैं, और वी डूइंग द ऑपोजिट, वी नॉट रियलाइजिंग कि ये एक एक थॉट जो हमारी क्रिएट होती है, यू नो, इवन सिंपल थिंग्स लाइक किसी से गलती हुई है, वो ट्राई कर रहा है, कोई और गलती भी हो सकती है पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी, और वो ट्राई कर रहे हैं उससे बाहर निकलने के लिए, एंड सामने वाला कहता है आई एम सॉरी, मैं फिर से नहीं करूंगा. Am I ready to believe that?
0: No, because my hurt is too strong.
1: My hurt is too strong. सामने वाला कह रहा है आई एम सॉरी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये फिर से नहीं होगा, मैं अंदर ही थॉट क्रिएट कर लेती हूँ, अगर फिर से किया ना तो फिर. सो मैंने, किसी ने एक एनर्जी क्रिएट की है कि मैं फिर से नहीं करूंगा. यहाँ से क्या एनर्जी जानी चाहिए कि यस आई एम श्योर आप फिर से नहीं करोगे. ये बोलने की चीजें नहीं है, हम ऊपर से तो शायद बोल देंगे,
0: एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते. ओह नो, नेवर. आई थिंक या मतलब रिलेशनशिप में या फिर बच्चों के साथ भी, जब बच्चे कहते हैं कि मॉम आई एम सॉरी आई हैव डन दिस सिगरेट पीने के बाद, या कभी, एंड पेरेंट्स कभी भी ये माने नहीं पाते कि ये नहीं करेगा,
1: तो दैट इज द रीजन कि वो नहीं करते हैं. और फिर हम ब्लेम उन पर डालते हैं. हमें ध्यान रखना है, दिस इज ट्रस्ट, एक दूसरे पर ट्रस्ट. लेकिन ये कब होगा, जब खुद अपने वर्ड की वैल्यू होगी तो दूसरों के वर्ड की भी वैल्यू होगी. अगर सामने वाला कहता है मैं नहीं करूंगा, इमीडिएटली क्रिएट अ थॉट कि यस अब ये नहीं करेंगे. यू नो, उनकी थॉट को एम्पावर करो. ये हमें बहुत ध्यान रखना है. हम थॉट क्रिएट कर देते हैं.
0: अच्छा,
1: सी, अब जैसे आपने ये थॉट क्रिएट किया कि ये तो फिर हो जाएगा,
0: चलो देखते हैं. हाँ. ये ना, चल देखेंगे, लेट्स सी, एंड दिस इज व्हाट.
1: Let's see with time क्या होता है, एंड फिर साथ में बोल भी देंगे, अगर फिर किया ना आपने ये,
0: फिर अच्छा
1: नहीं होगा. That itself is a thought के I have a doubt के आप फिर से करने वाले हो. हमें पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम उनको वार्निंग दे रहे हैं शुरू में. यही हमें ध्यान रखना है कि ऐसी एनर्जी सारा दिन क्रिएट करते रहे जो खुद को भी एम्पावर करे और औरों को भी एम्पावर करे. ये हम क्योंकि अटेंशन नहीं रखते, तो हमें ध्यान नहीं है कि हमारा एक एक थॉट कैसे दूसरे को डिस एम्पावर करता है. तो जब इकट्ठे हैं, चाहे ऑफिस में हैं चाहे घर में हैं, ध्यान रखें कि ये जो अपने अंदर भर के रखा हुआ है एक दूसरे के प्रति, इसको ख़त्म करें. और इसीलिए पिछली बार भी हमने देखा था कि फिर जब वो एंगर के रूप में बाहर निकल के आता वो एक्सप्लोजन, तब ऐसी ऐसी बातें निकल कर आ जाती
0: जो हमने कभी सोची नहीं थी. बिल्कुल.
1: और फिर हम तुरंत दूसरे को एक्सप्लेन करते कि आई डिडंट मीन टू से दिस, मेरा तो बिल्कुल कोई भाव नहीं था. लेकिन जो भी हमारे अंदर से निकला है वो इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ क्रिएट होता जाता और निकलने वाला जो क्वांटम है वो बहुत थोड़ा होता है, लेकिन जो क्रिएट हुआ है दैट मस्ट बी सो मच के जो वो
0: उसको इतना निकला ही था, ओवरफ्लो होना था और इस कारण होना
1: था। तो जो निकला बाहर, शब्द जो निकले वो तो उतना नुकसान नहीं करेंगे क्योंकि सामने वाला हो सकता है उसको भूल जाए, लेकिन जो मैंने इतना संभाल के रखा है वो मेरे अंदर कितना नुकसान करता होगा। तो हमेशा जब भी ये आते हैं ना थॉट्स अपने अंदर, उसी टाइम रुक जाना चाहिए, बी नॉट रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी थॉट हम चेंज कर सकते हैं। ये जो हम पकड़ के रख लेते हैं ना, ये हर्ट के मेरे साथ धोखा हुआ या उन्होंने रिलेशनशिप में गलत किया, चलो मैंने माफ तो कर दिया, हम इकट्ठे तो रह रहे हैं, लेकिन क्या एनर्जी क्रिएट करके इकट्ठे रह रहे हैं? ऐसे इकट्ठे रहने का या ऐसे इकट्ठे काम करने का व्हाट वुड बी द पर्पस, जबकि जो ट्रैवल कर रहा है अक्रॉस वो एक नेगेटिव एनर्जी है। हम बच्चों के लिए इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन बच्चों को क्या वायुमंडल दे रहे हैं कि दोनों ने एक दूसरे के प्रति वो दर्द पकड़ कर रखा है। एंड फिर होता क्या है, जैसे ही कोई आर्ग्यूमेंट होती वो सारा हर्ट, वो सारा दर्द जो अक्यूमुलेटेड है वो सारा फिर शब्दों में निकल आता।
0: फिर तब क्योंकि हमने ना एक और बिलीफ सिस्टम ये कि जब तक कि उसको सजा नहीं मिलेगी, जब तक कि उसको रियलाइज नहीं होगा, यू नो द अदर पर्सन ने, वो बार बार रिपीट करेगा।
1: लेकिन ये हम अपने ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी ले लेते हैं औरों को रियलाइज करवाना। अब सामने वाला कह रहा है आई एम सॉरी आई विल नॉट डू इट अगेन, लेकिन हम कहते हैं आपको रियलाइज ही नहीं हुआ है कितनी गलती हुई है। आपको रियलाइज नहीं हुआ है मतलब आई एम ट्राइंग टू से मेरा दर्द

0: अब आपको रियलाइज हुआ है, और फिर मैं उसको हथियार तो बनाया ही होता है मैंने,
1: यस,
0: वो
1: तो दैट वे इफ वी शिफ्ट द फोकस कि हाँ वो आत्मा भी अपनी जर्नी पर है, वो रियलाइज कर रहे हैं, पर क्या मैं रियलाइज कर रही हूँ?
0: कि मैं अपने लिए क्या क्रिएट कर रही
1: या
0: हूँ।
1: जो जो रियलाइजेशन कराने हैं अपने आप को करा लो, खुद अपनी बात मानते जाओ और अपने को इतना दर्द मत दो। ये जो जस्टिफाइड समझ लिया है कि जो दूसरों ने गलत किया, वी आर नॉट सेइंग कि जो उन्होंने किया वो सही था, बट अब हम जो कर रहे हैं वो कितना सही है, वो पास्ट हो गया ना, लेकिन हम तो उसको बार बार क्रिएट करते
0: अच्छा,
1: हैं,
0: वो
1: बार बार
0: दूसरे के लिए
1: सोचते हैं।
0: नहीं, अपने लिए कितना गलत
1: अपने
0: करे।
1: लिए ही है, दूसरे के लिए नहीं है, अपने लिए है, और फिर जो हमारे अंदर क्रिएट होता फिर वो ऑब्वियसली औरों तक पहुंचता, एंड फिर वो पूरे घर का वायुमंडल,
0: घर,
1: इन
0: समाज, आई थिंक
1: एवरीवेयर। बट आई
0: एवरीवेयर।
1: थिंक स्पेसिफिकली दिस वुड बी वेरी एप्लीकेबल इन कपल्स टुडे, हस्बैंड वाइफ, छोटी छोटी बातों की बहुत सारी चीज़ें, यू नो, मदर इन लॉ के साथ हस्बैंड ने कैसा किया, मदर इन लॉ आज हैं भी साथ में या अलग रह रहे हैं या शायद हैं भी नहीं, लेकिन वो बात
0: मेरी मम्मी के
1: जी,
0: साथ है ना,
1: हाँ
0: लाइक एंड इट स्टेज इट्स देयर, यू
1: या
0: नो
1: सो नाउ दिस
0: दैट।
1: इज वेरी डैमेजिंग, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि ये जो रिजेंटमेंट अपने अंदर भर के रखते हैं, ये है, इसको तो हम कचरा ही कहेंगे ना, जो अपने अंदर भर के रखा है, और ये बिटरनेस से मैं अपने आप को कड़वा बनाती जाती हूँ,
0: अपने लिए बहुत, अपनी
1: अपने लिए।
0: नेचर वैसी
1: ये
0: बनती जा रही।
1: टॉक्सिक है, ये टॉक्सिन्स है। आज हम अपने शरीर को तो डिटॉक्सिफाई करते हैं, नेचुरल डाइट लेते, इसको कौन डिटॉक्सिफाई करेगा? इसके लिए कुछ नहीं करना है, 2 मिनट बैठो, पास्ट है, फिनिश हुआ, लेकिन उन्होंने किया, कोई बात नहीं, उन्होंने किया, हर्ट किसने क्रिएट किया और अभी तक क्रिएट कर रही हूँ, उस बात को ख़त्म हुए 8, 10, 15 साल हो गए, मैं अभी तक दर्द क्रिएट कर रही हूँ, कब तक? दिस आई हैव टू स्टॉप एंड चेंज। इट्स नॉट फॉर देम, इट्स नॉट फॉर एनी वन एल्स, इट्स फॉर मी, क्योंकि ये बिटरनेस जब तक मैं नहीं ख़त्म करती, आई कैन नॉट बी हैप्पी, एंड प्रेजेंट मेरा अच्छा नहीं होगा, फ्यूचर भी नहीं होगा, एंड एक व्यक्ति के प्रति पकड़ी हुई बिटरनेस एक के प्रति नहीं रहती, वो और रिश्तों में भी
0: क्योंकि वो,
1: जाती
0: मैं,
1: है।
0: हाँ आई नो, बिकॉज वो अंदर रहा
1: हर्ट
0: ना
1: है,
0: वो।
1: वो
0: कहाँ,
1: बिटरनेस है, तो वो बिटरनेस तो मेरी ऐसे वाइब्रेशन है ना, मैं जहां भी जाऊंगी, जिसके भी संपर्क में आऊंगी, कहीं ना कहीं वो बिटरनेस मेरे अंदर से फ्लो करेगी, तो इसलिए अपनी ये सफाई करते रहना चाहिए, और क्योंकि ये रिजेंटमेंट, अगर रिजेंटमेंट लेवल पर नहीं खत्म हुआ तो नफरत,
0: ओ,
1: ये
0: हेट्रेड इज
1: हेट्रेड
0: समथिंग
1: बन
0: एक्चुअली आई
1: जाएगी।
0: वांटेड टू टॉक
1: यस,
0: अबाउट, कि ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम एक्सेप्ट करते करते जीते जाते हैं, यू नो, पूरा पूरा जीवन निकाल देते हैं ऐसे रिजेंटमेंट्स रखे हुए। लेकिन जो नफरत है वो कई बार तो मतलब इतने घातक लेवल पर भी आती है, और जब हम अपने आप को विक्टिम समझ कर, यू नो, और वो विक्टिम कई बार तो ये है कि हमारे अपनों ने विक्टिम बनाया। जो विक्टिम जब किसी बड़े लेवल पर कोई नेचुरल डिजास्टर या कोई ऐसा क्राइम हो जाता है, तब जो विक्टिम है, तब जो हेट्रेड पूरे समाज के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति और फिर अपने प्रति।
1: यस, लेकिन इसमें भी, यस, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन, क्योंकि हमें कुछ ईमेल्स भी ऐसे आते कि मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा किसी ने इस तरह का पाप किया है, मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? मतलब वो अपनी डेस्टिनी खुद ही लिख देते कि इसके बाद जीवन में खुश रहना ये मेरे लिए संभव नहीं है। तो वी एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि जो हुआ दैट वॉज नॉट राइट फॉर यू, लेकिन अब आगे हाउ लॉन्ग डू यू वॉन्ट टू कैरी दैट बिटरनेस एंड दैट पेन? अब इसमें ये होता कि पहले तो ये जो विक्टिम वाली फीलिंग है कि मैं ही, यू नो, अपने आप से नफरत कई बार हमें हो जाती कि मैं ही गंदी हूँ क्या, मैं ही गलत हूँ, मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया कैसे, किसी ने गलत इतना किया, तो अपनी सेल्फ एस्टीम पहले क्रैश हो जाती, तो वो पहले अपने आप को समझाना पड़ेगा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, यू नो, समवन एल्स हैज़ मेड सम वेरी बिग मिस्टेक, इट वॉज नथिंग टू डू विद मी बींग अ बैड पर्सन, यू नो, हम अपनी इमेज यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, आई एम नॉट ए नाइस पर्सन, अपने आप के लिए नफरत क्रिएट करते, और दूसरों के लिए तो जो जिम्मेवार थे वो तो करते ही हैं, और अंदर ही अंदर अक्यूमुलेट करते जाते। इतनी बड़ी बात के बाद भी एक ही सल्यूशन है, एंड दैट इज टू फॉरगिव एंड टू फॉरगेट। उनको नहीं, उनको नहीं फॉरगिव कर सकते हम, क्योंकि वो उनकी अपनी यात्रा है, लेकिन हमें अपने आप को फॉरगिव करना पड़ेगा, अपने आप को हल्का करना पड़ेगा, उस बात को मुझे फिनिश करना ही पड़े, इट विल टेक टाइम, ऐसा नहीं कि हमने एक बार आज बोला एंड इट्स ओवर, आई हैव फॉरगॉटन, इट विल टेक टाइम, लेकिन जब अपने ऊपर से जिम्मेवारी हटा दी कि मेरी इसमें गलती

0: नहीं थी, किसी और ने किया, लेकिन अब मैं और गलत अपने साथ नहीं होने दूंगी. एक पर्टिकुलर बात के लिए अब मैं अपने ऊपर कितनी, किसी और ने मेरे ऊपर घाव लगाए, लेकिन जो रोज का घाव मैं अपने ऊपर लगा रही हूँ,
1: उसको रीलिव कर करके
0: आई
1: अपने आप को
0: एक्चुअली
1: जीने नहीं देती
0: गो थ्रू द
1: हूँ.
0: एक्सपीरियंस ऑल ओवर अगेन. क्योंकि जब तक वो यहाँ पर है, वो मेरा टेप रिवाइंड
1: एंड
0: होता
1: देन वी
0: जाता है.
1: लैश आउट, यू नो, वी लैश आउट, हर एक उस व्यक्ति को लैश आउट करेंगे जो हमारे साथ सिंपथाइज करेगा, यू नो, बिकॉज समवेयर वो नफरत और रिजेंटमेंट इतनी ज्यादा हो चुकी है. तो वो जो मैंने क्रिएट किया, शिवानी, द अमेजिंग थिंग इज दैट इफ इवन वंस आई एम एबल टू रजिस्टर दिस, कि ये जो अब पेन है ये मैं क्रिएट कर रही हूँ.
0: मैं ही क्रिएट कर रही हूँ. हमें लगता है कि वो सिचुएशन की वजह से हो रहा है, ये पेन मैं क्रिएट कर रही हूँ, एंड पूरी पावर सारी मेरे पास है इसको कब फिनिश करना है, एंड ये मैं अपने लिए कर रही हूँ. यू नो समटाइम्स वी फील कि अगर हमने फगिव कर दिया वो सामने वाले को, फगिव मतलब अंदर से, तो हम गलत कर रहे हैं. ऐसे इंसान को हमें फगिव करना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम उनको नहीं फगिव कर रहे हैं, हम अपने को फगिव कर रहे हैं. ये याद रखना है, डू नॉट, यू नो, वो एक घाव है जो बना हुआ है, उस घाव की हीलिंग भी कर सकते या फिर उस घाव को रोज रोज रोज और गहरा कर सकते हैं. अपने आप से प्यार करना शुरू करो. हो सकता है किसी ने आपके साथ गलत किया है, लेकिन अब नफरत क्रिएट करके हम अपने साथ गलत कर रहे हैं. दूसरों को हम नहीं रोक पाए जिन्होंने गलत किया, खुद को तो रोक सकते हैं.
1: हम खुद के साथ एक्चुअली गलत करते जा रहे
0: हम
1: हैं.
0: अपने से नफरत करके अपने को बहुत बड़े बड़े घाव दे रहे हैं. ये उन घावों से भी बड़ा है जो किसी और ने दिया होगा,
1: और दूसरों से नफरत करके भी हम यही कर रहे हैं, बेसिकली अपने
0: बिकॉज
1: लिए
0: क्रिएट
1: क्रिएट
0: कर
1: कर
0: रहे
1: रहे
0: हैं ना, हेट्रेट क्रिएट कर रहे हैं. तो अपने से प्यार करो, अपने को क्षमा करो और
1: हैं.
0: अपने पर रहम करो. वी डोंट नीड सिंपथी फ्रॉम एवरीवन एल्स, कंपैशन, लेकिन वो भी अपने आप से, खुद के लिए. और उसके लिए हमें इसको अब खत्म करना पड़ेगा. मेक इट स्मॉल है बहुत बड़ी बात, लेकिन अपने मन की शक्ति को उसको लेकर उसको छोटा करो, क्योंकि तब ही आई विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट. आई हैव टू कम आउट ऑफ इट, इंस्टेड ऑफ टेलिंग योर सेल्फ आई विल नेवर कम आउट ऑफ दिस. यू नो, हम ही अपने आप को कहते मैंने इस
1: मैं
0: बात
1: इसको
0: को तो
1: जीवन
0: मैं
1: भर नहीं
0: कभी नहीं भूल
1: भूलूंगा.
0: सकती. अपने आप को कहो मैं भूल गई, आई एम ओवर एंड आउट विद इट नाउ, मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करने वाली हूँ.
1: वेरी ट्रू. यू नो, पहले मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आती थी ये बात कि अपने लिए करना होता है. यू नो, यू शुड फॉरगिव फॉर योर सेल्फ, कि आपको उनको माफ करना है, उनको लेट गो करना है अपने लिए. अपने लिए इन द सेंस कि इट विल मेक यू फील गुड, या आप बड़े महान बन जाओगे. तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता था कि मुझे महान नहीं बनना. लेकिन आई सडनली रियलाइज कि इट इज़ नॉट दैट. जितना जो कुछ भी हो रहा है, मैं चाहे मैं छोटी सी चीज़ के लिए पेन क्रिएट कर रही हूँ, छोटी सी चीज़ के लिए गुस्सा क्रिएट कर रही हूँ, इरिटेशन, रिजेंटमेंट, उसने किसी ने कुछ भी किया, कोई नहीं कुछ कर सकता, कोई कुछ भी कर सकता है, वो उनका अपना है. चाहे वो मेरे लिए बहुत, यू नो, जिंदगी में नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ. इट्स सच एन अमेजिंग रियलाइजेशन. वी नीड टू रियलाइज, समडे वी नीड टू रियलाइज कि हमें अपने आप को कितना प्यार करना है. थैंक यू सो मच शिवानी. आई थिंक आज समवेयर एक बहुत बड़ा वो एक मिथ ब्रेक हुआ है कि किसी के भी प्रति गुस्सा या एंगर बेसिकली अपने प्रति रख रहे हैं हम. तुम श्याम, अगर मन में कोई सवाल, कोई बात उठती है, आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, या तो हमें फ़ोन पर संपर्क करें या फिर ईमेल पर संपर्क करें. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 01242667000, 9999344555, 9999344666, 9873666555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, लेकिन आज एक बहुत बड़ा सूत्र मिला है, इसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करें. बहुत पुरानी बातें भूलेंगे, बहुत कुछ जो पकड़ के बोझ में जी रहे हैं वो छूट जाएगा, एक नई जिंदगी आपके साथ होगी. ओम शांति.

उनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माय कंट्रोल। सो दैट इटसेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। ओम शांति। अगर आपको याद हो, पिछली बार हमने बात की थी एक ऐसे एस्पेक्ट की हमारी ज़िंदगी की जिसे हम सच मान के चलते हैं कि यही सहज है, और वो है स्ट्रेस, यानी कि तनाव। आज हम में से 80% लोग तनाव से घिरे हैं, तनावग्रस्त हैं, और हम ये मान लेते हैं कि उससे हमें छुटकारा नहीं मिल सकता। सिर्फ हम उसे थोड़ी देर के लिए रिलीव हो सकते हैं, और हमने वो तरीके भी देखे थे। लेकिन एक बात सामने आती है कि तनाव को हम पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकते हैं और एक तनाव रहित ज़िंदगी को पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि वो कैसे किया जा सकता है। इसी पर बातचीत करने के लिए आज फिर हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, एक बात तो हमारे दर्शक जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और मैं भी ये समझती हूँ कि जब हम यहाँ आ जाते हैं तो लगता है कि हर प्रॉब्लम का सलूशन है, क्योंकि हर बार बात वही आ जाती है कि ये परमात्मा के महावाक्य हैं, उनका ज्ञान है जो हमें मिल रहा है। हमने जब स्ट्रेस की बात की थी तो कई मिथ्स, कई बिलीफ्स के साथ हम जी रहे थे, तो उसमें से एक बिलीफ अभी भी हम जो बहुत से लोग सोचते हैं कि वो है, वो ये कि स्ट्रेस को जाँचने के लिए क्या हमें डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है? कैसे पता चले कि मैं स्ट्रेस में हूँ, या जब उसका मैनिफेस्टेशन या तो ब्लड प्रेशर में होगा तभी मुझे जाना चाहिए? डू वी रियली नीड अ डॉक्टर?
1: जहाँ तक डॉक्टर के पास जाने की बात आती है, इट्स मोर फॉर द फिजिकल सिम्टम्स, कि अगर तनाव ने हमारे शरीर में किसी बीमारी का रूप ले लिया, देन डेफिनेटली मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर से भी जब हम इलाज करवा रहे हैं उस बीमारी के लिए, तो भी सिर्फ उस बीमारी का इलाज ना करवाएं। अगर हम रियली उससे मुक्त होना चाहते हैं तो हम उसके अंडरलाइंग फैक्टर को देख लें कि इस बीमारी का मूल कारण भी कहीं ना कहीं मेरी मनोस्थिति है। क्योंकि आज डॉक्टर्स भी इस बात को एक्सेप्ट करते कि मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आर साइकोसोमेटिक, सो द रूट लाइज इन द माइंड, इट्स इन द अनहेल्दी माइंड। लेकिन एक डॉक्टर के पास आज उतना समय नहीं है जो वो आपके माइंड के बारे में भी आपसे पूछे कि आपकी मनोस्थिति कैसी है, आपकी लाइफ कैसी है, आपको टेंशन तो नहीं है, आपके रिलेशनशिप्स कैसे, हाउ एम आई फीलिंग टुडे, ये तो मुझे रुक कर अपने आप से पूछना चाहिए। क्या हम सारा दिन में अपने आप से कुछ एक मिनट्स निकाल कर पूछ सकते हैं कि हाउ आर यू फीलिंग टुडे, यू नो, टॉक टू द माइंड कि आज आपका क्या हाल है, आपकी जो हर एक थॉट चल रही है उसकी क्वालिटी क्या है, फील द पल्स ऑफ योर फीलिंग। हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कुछ एक पैरामीटर्स को चेक करके हमारा डायग्नोज निकालता है कि यहाँ बीमारी हो सकती है। तो हमें भी अपने यहाँ के जो पैरामीटर्स हैं, मेरी थॉट्स कैसी चलती हैं आजकल, कहीं मुझे कोई अटैचमेंट तो नहीं ब्लॉक कर रही है, क्या सारा दिन में मेरा चिड़चिड़ापन बढ़ तो नहीं रहा है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे परेशान कर देती हैं, मैं दूसरों के प्रति आजकल कैसा सोचती हूँ। इट्स वेरी इजी टू इवैल्यूएट दैट फॉर माई सेल्फ, लेकिन अगर हम रुक के नहीं करेंगे देन आई विल नॉट नो वेयर आई एम हेडिंग। तो एवरी डे इफ आई डू दैट ओनली फॉर 5 मिनट्स, मुझे अपनी बीमारी का इलाज पड़ जाएगा।
0: एक और जैसे हमने एंगर के बारे में बात किया था, हर्ट के बारे में बात किया था, स्ट्रेस इज बिकॉज ऑफ अदर्स, मेरे बॉस हैं, मेरे बॉस मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं मैं स्ट्रेस में रहता हूँ, टीचर्स मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, पेरेंट्स मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इतना इतना करूँगा, या मेरा पीयर्स जो है उनको देखती हूँ मैं तो मैं स्ट्रेस में आ जाती हूँ,
1: या सिचुएशंस ऐसे हैं, डेडलाइंस ऐसे हैं, टारगेट्स ऐसे हैं। हार्डली एनीबडी अंडरस्टैंड्स कि मेरे तनाव का कारण मेरे अपने अंदर है, मेरे तनाव का कारण बाहर है। हमने पहले भी देखा कि स्ट्रेस का फॉर्मूला ही था, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस, तो रेजिलियंस अर्थात इनर पावर, तो तनाव इज इक्वल टू परिस्थिति, चाहे वो लोग हो, सिचुएशन हो, डिवाइडेड बाय आंतरिक शक्ति। तो अभी तक हमने जो आंतरिक शक्ति वाला डिनोमिनेटर था
0: वो डिप्लीटेड था,
1: उसको तो निग्लेक्ट ही कर दिया था, उसको इग्नोर ही कर दिया, तो हमने कहा स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर, तो जितना जितना प्रेशर बढ़ता जाएगा स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। अब प्रेशर तो बढ़ने वाले हैं, यू कांट डिनाई दैट कि डेडलाइंस और तंग नहीं होंगी, लोग अनरीजनेबल नहीं होंगे, या बॉस डांटेगा नहीं, या वाइफ झगड़ा नहीं करेगी, डोंट एक्सपेक्ट दोज थिंग्स नॉट टू हैपन। तो प्रेशर जो कि न्यूमरेटर है वो तो बढ़ने ही वाला है. अब क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को इग्नोर कर दिया तो न्यूमरेटर बढ़ता गया, तो स्ट्रेस फैक्टर
2: वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन गया ना,
1: डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन गया. तो प्रेशर यस, सिचुएशन एक ट्रिगर है. जब तक सिचुएशन नहीं आएगी तब तक तो स्ट्रेस नहीं क्रिएट होगा. लेकिन स्ट्रेस जो प्रेशर का फैक्टर है वो 10% शायद रिस्पॉन्सिबल होगा, बाकी 90% मेरे हाथ में है. क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो मेरे हाथ में नहीं है. आई कैन नॉट कंट्रोल द सिचुएशन, आई कैन नॉट चेंज द बॉस, आई कैन नॉट चेंज माई वाइफ, दो वी कीप चेंजिंग ऑल दीज थिंग्स नाउ, बट वी डोंट रियली चेंज, वी विल जस्ट लुक फॉर न्यू पीपल. लेकिन नए लोगों के साथ फिर नए प्रेशर्स, तो वी रियली कांट चेंज द पर्सन. तो मैं न्यूमरेटर को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन मेरे हाथ में डिनोमिनेटर है, आंतरिक शक्ति, इनर पावर, एंड वो टोटली मेरे कंट्रोल में. So why not I increase?
2: In fact, why should, I think we are not even aware of it.
1: Yeah.
2: You know, वो जो आंतरिक शक्ति है, जो resilience होना चाहिए, जो है हमारे पास already, हमें उसके बारे में तो एहसास ही नहीं.
1: एहसास ही नहीं. आप किसी भी परिस्थिति में देख लो कि दो या तीन लोग एक ही परिस्थिति में, एक ही सिचुएशन में है, तो उनके लिए न्यूमरेटर कॉमन है, लेकिन उनका स्ट्रेस फैक्टर सेम नहीं होगा. ऑफिस में अगर हम कहते हैं कि बॉस बहुत गुस्से वाला है, तो वो आज सपोज ऑफिस के सभी लोगों को बुला के डांट देता, लेकिन जब वो सभी को डांटता है तो हर एक का डांट सुनने के बाद का रिस्पॉन्स एक जैसा नहीं होगा. व्हाई? अगर स्टिमुलस एक ही है तो रिस्पॉन्स भी एक ही होना चाहिए. स्टिमुलस बाहर से आता, रिस्पॉन्स मेरे अंदर से आता, लेकिन दोनों के बीच में है फ्रीडम टू चूज माई रिस्पॉन्स, कि मुझे कैसे रिस्पोंड करना है. हमने वो फ्रीडम टू चूज माय रिस्पांस को निकाल दिया, हमने कहा ये स्टिमुलस तो ये रिस्पांस.
2: बिकॉज आई थिंक हमारे पास वो ऑप्शंस हमें याद ही नहीं रह गई, हमें पता ही नहीं है कि हम और भी तरीकों से रिएक्ट कर सकते हैं.
1: तो हमने ये कहा कि उन्होंने गुस्सा किया तो मुझे बुरा लगना ही नहीं,
2: परेशान होना ही था,
1: मुझे बुरा लगना ही था. अब 10 लोगों को उन्होंने डांटा, सभी को उतना ही तो बुरा नहीं लगा. तो अगर आपको वो बुरा जो लगने की परसेंटेज थी वो 10 मिनट रही, यू फेल्ट बैड, यू वर अ लिटिल अपसेट, बट फॉर 10 मिनट्स, बट आई वाज अपसेट फॉर 1 आवर. बॉस तो एक ही था, तो आपके पास ऐसी क्या चीज है जो आप 10 मिनट में ठीक हो गए और मुझे एक घंटा लगा, और शायद किसी और को 10 दिन लग जाए. तो व्हाट डू यू हैव? यू हैव दैट पावर इनसाइड टू अकोमोडेट, टू अंडरस्टैंड and finish. That is inner power.
2: In fact, this is an example ki hum kar sakte hain, possible hai. This actually makes lot of difference ki
1: ye wo raj yoga se kya hota hai, hum denominator ko
2: increase karte,
1: badhana shuru karte hain. Numerator ko hum kuch nahi kar sakte. That's not in my control. And vartaman samay, jaise kaliyug ke samay mein hum chal rahe hain, to numerator jo hai wo to badhta hi jayega, lekin usne hi teevra gati se hame denominator ko bhi
2: इंक्रीज
1: कराना पड़ेगा. अगर डिनोमिनेटर बढ़ता गया फास्ट तो स्ट्रेस लेवल कम होता जाएगा. सो आई जस्ट नीड टू फोकस राइट नाउ, माय फोकस इज ऑन द सिचुएशन, परिस्थिति परिस्थिति परिस्थिति को कैसे ठीक करना है, लोगों को कैसे ठीक करना है. फॉरगेट द सिचुएशन, पूरा फोकस अपना कर दे डिनोमिनेटर पे, कि आंतरिक शक्ति को कैसे बढ़ाना है. हमारा फोकस परिस्थिति के ऊपर इतना ज्यादा हो जाता है जिससे हमारी आंतरिक शक्ति एक्चुअली उतनी कम होती जाती है, और इसीलिए स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है. फिर कहीं ना कहीं वो बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया कि जैसी सिचुएशन वैसा मुझे तनाव. तो फिर ये तो कहीं चॉइस रही नहीं कि तनाव क्रिएट करना, ये कहीं मेरे हाथ में था. आई थॉट इट इज ऑलवेज आउटसाइड, एंड दिस इज द बिगेस्ट इल्यूजन. जब तक मेरे टेंशन का रीजन बाहर है, आई कैन नॉट लीड अ टेंशन फ्री लाइफ. एंड इफ आई थिंक द कॉज ऑफ माई टेंशन इज आउटसाइड, देन आई एम जस्टिफाइड इन बिलीविंग दैट आई कैन नॉट बी फ्री ऑफ स्ट्रेस. एंड इसीलिए मेजोरिटी पीपल टूडे, आज इंडस्ट्री में स्ट्रेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं. हमारे पास बहुत सारी बुक्स आज मार्केट में हैं जो स्ट्रेस मैनेजमेंट पर बात करते हैं. अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ देम हैव टू से a little bit of stress is normal. तो क्या होता है, हर एक के अंदर वापस, क्योंकि वो ऑलरेडी बिलीफ तो है कि स्ट्रेस तो नेचुरल है, और जब कोई इस तरह का हमें कह देता कि ये तो नेचुरल है, तो हम उसको फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये तो नेचुरल है, और वो नेचुरल करते करते करते हमारा स्ट्रेस लेवल
2: बिल्कुल भाई थोड़ा जो है वो हमेशा हर एक के लिए अलग अलग होगा। आपके लिए एक अलग क्वांटिटी होगी उस थोड़े की कि थोड़ा स्ट्रेस होना, मेरे लिए चाहे जितना भी बड़ा स्ट्रेस हो जाए मैं उसे मान लूंगी यही थोड़ा है।
1: लेकिन एक होता है कि बीमारी थोड़ी है और एक है बीमारी नहीं है। तो ब्रह्मा कुमारीज में वी नेवर टॉक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, बिकॉज हम समझते स्ट्रेस मैनेजमेंट तो हर एक ऑलरेडी कर रहा। हम कहते हैं स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल, तनाव मुक्त जीवन, तनाव प्रबंधन नहीं, वो तो आप ऑलरेडी करते हैं। और बीमार रहना और बीमारी को मैनेज करना, ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो सभी कर रहे हैं। बीमारी को जड़ से खत्म कर देना, देन इट इज अ गुड क्वालिटी लाइफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नीड टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे तनाव का कारण मेरे अपने पास है। और कई बार क्योंकि ये भी समझते कि अगर आप स्ट्रेस फ्री हो गए तो आप फिर बहुत कंप्लेसेंट हो जाएंगे, आप तो कुछ करेंगे ही नहीं, आपके जीवन में कोई एम्बिशन ही नहीं रह जाएगा, आप तो बस आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रह जाएगा। क्योंकि अगेन बिकॉज वी यूज्ड स्ट्रेस एज अ मोटिवेटर, तो हमने सोचा स्ट्रेस हमें आगे बढ़ाता है, स्ट्रेस हमें पुश देता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस हमारी बॉडी के अंदर वो एड्रेनालिन सिक्रेट करता है, और वो जब एड्रेनालिन सिक्रेट होता है तो हम ज्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं। और इसीलिए हम समझते थे कि स्ट्रेस होने से काम इफेक्टिव हो जाता है। डेफिनेटली जब स्ट्रेस होता है तो थोड़े समय के लिए वो काम बहुत इफेक्टिव होने लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इट रिजल्ट्स इन अ बर्नआउट। इट्स लाइक वॉकिंग एंड रनिंग, आप थोड़े समय के लिए भाग सकते हैं। अगर हम कहें कि हम हर रोज भागें तो हमारा सारा काम जल्दी हो जाएगा, तो क्यों नहीं हम चलने की बजाय भागते रहें सारा दिन? Why don't we do it? हम ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ टाइम है, तो चलना बंद कर दो, भागना शुरू कर दो सारा दिन, सारा काम ऐसे ऐसे हो जाएगा। कितनी देर भागेगा? थोड़े टाइम भी लगेगा, बस आई एम टायर्ड नाउ। सेम विद स्ट्रेस, जब स्ट्रेस को यूज हम करते हैं तो थोड़े समय के लिए काम जल्दी होता है, लेकिन थकावट, ड्रेनेज, बर्नआउट वो भी होता है। और उसके बाद मुझे जितनी देर आराम करना पड़ता
2: तो
1: तो उससे रिजल्ट क्या निकला? और उसका जो डैमेज मेरे ऊपर हुआ, मन पर, शरीर पर, संबंधों पर, इट्स नॉट रियली वर्थ इट।
2: और वो कई बार परमानेंट हो जाती है वो डैमेजेस, वो देखे गए हैं। स्ट्रेस के जो इफेक्ट्स हैं, चाहे वो रिश्तों की हम बात करें, चाहे अपने मन की बात करें, मानसिक स्थिति की बात करें, या फिर फिजिकली बात करें, वो परमानेंट डैमेजेस हैं।
1: आज एक बीमारी हो जाए उसको कितना टाइम लग जाता है। इनफैक्ट सम पीपल लिव विद दैट इलनेस फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, एंड एक बार वो बीमारी हो जाए वो अपने आप में उनके लिए तनाव का एक और कारण बन जाती है। तो तनाव कम तो नहीं होता, और उल्टा वो बीमारी लगने से मेरी टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगेन इट बिकम्स अ साइकिल, सो आई विल हैव टू स्टॉप इट वेरी अर्ली।
2: सुषमा शिवानी, यही बात फिर आती है कि अगर मैं इसको जड़ से मिटा सकती हूँ, स्ट्रेस फ्री लाइफ मेरे लिए पॉसिबल है, और जैसा कि हम हर बार कह रहे हैं कि वो हमारे ही हाथ में है, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, हाउ टू टेक दैट स्टेप?
1: फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिलीव, टू बिलीव कि स्ट्रेस अननेचुरल है, स्ट्रेस हार्मफुल है, स्ट्रेस मुझे अंदर से खत्म करता जा रहा है। यू नो, ये एक बीमारी है जो अंदर से हमें
2: खा रही है
1: और ये एकदम हमें खोखला करते जा रही है। और तनाव के बिना जीना सिर्फ संभव ही नहीं है, बट इट्स अ ब्यूटिफुल लाइफ। व्हाई डोंट आई ट्राई इट आउट? यू नो, व्हाई एम आई चूजिंग टू लिव इन पेन? व्हाई डोंट आई ट्राई इट आउट कि व्हाट वुड इट बी लाइक टू लिव विदाउट स्ट्रेस? लेकिन तनाव क्योंकि एक आंतरिक डिस्टर्बेंस है, तो उसको ओवरकम करने के लिए मुझे अपने बारे में कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल आई ड्राइव द कार, आई हैव बीन ड्राइविंग द कार फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, लेट्स से 15-20 साल मैं गाड़ी चला रही हूँ, लेकिन मुझे गाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे बिल्कुल ज़ीरो आइडिया है कि गाड़ी के अंदर कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है उसका। अगर आज गाड़ी चलाते चलाते गाड़ी बीच में बंद हो जाए, I am helpless. I will have to stop there and get out एंड कॉल somebody
2: के
1: यहाँ आकर जो करना है कर लो, क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी तो आती है लेकिन मुझे गाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता. अब अगर मेरे साथ कभी ये हो जाए, अभी तक नहीं हुआ, राइट, तो आई डोंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस. मुझे लगता है गाड़ी तो चलानी है, चला तो रहे इतने साल से, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं. कल अगर कहीं हो जाता है, माय इमीडिएट रिग्रेट विल बी कि मुझे थोड़ा सा आना चाहिए था. अगर मुझे थोड़ा भी आता होता, मैं अपने लिए इस टाइम अपने आप को हेल्प कर पाती, आई वुड नॉट बी डिपेंडेंट. सो आई से ओ गॉड, इफ आई जस्ट न्यू व्हाट टू डू विद द कार एट दैट टाइम. सिमिलरली हम जीवन चल रहे हैं बहुत समय से चल रहे हैं, एंड मोर और लेस हमारे लिए ऊपर नीचे को भी हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमें लगता है ये नेचुरल है, ये स्मूथ है. लेकिन अगर हम कहीं अटक गए और उस समय हमें ये नहीं पता कि अंदर का मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, तब हम हेल्पलेस हो जाएंगे, हम रुक जाएंगे, हम अटक जाएंगे, हमें ये नहीं पता चलेगा कि अपनी जीवन की गाड़ी को आगे कैसे बढ़ाना है. और कहीं ना कहीं इस यात्रा में तो हमें और कोई बहुत ज्यादा मदद भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो गाड़ी का मैकेनिज्म तो फिर भी सबको पता होता है, लेकिन मेरे अंदर का मैकेनिज्म मुझसे अच्छा किसी को नहीं पता, लेकिन मैंने उसके बारे में सीखा ही नहीं. आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट. सो इन ऑर्डर टू नो हाउ इट वर्क्स इनसाइड, आई नीड टू नो अबाउट माई सेल्फ. मुझे अंदर का प्रोसीजर बहुत क्लैरिटी से पता होना चाहिए. जैसे मुझे बाहर का सब पता है कि ये बॉडी कैसे वर्क करती है, मुझे अंदर का प्रोसेस पता होना चाहिए कि यहाँ अंदर क्या क्या चलता है सारा दिन, क्या किस पर प्रभाव डाल रहा है, क्या किस चीज का रिजल्ट है, और अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो कहाँ पर चेंज करना है. तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू नो अ फ्यू थिंग्स अबाउट माई सेल्फ, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट. और उसमें अगर हम सबसे पहली बात अगर वो देखें तो वो है अपने परिचय के. अपने बारे में भी तभी तो जानेंगे जब पहली बात अपने को जानेंगे कि मैं कौन हूँ. अपने अस्तित्व के बारे में जानना, हु एम आई. आज दिन तक हम अपने आप को जैसे ही मैं कहा, दिस बॉडी वॉज इन फ्रंट ऑफ मी, सो हु एम आई वॉज माई नेम, माई प्रोफेशन, माई डेजिग्नेशन, माई नेशनैलिटी, माई कास्ट, माई फैमिली नेम, ऑल दोज थिंग्स एंड माई बॉडी. एंड मैं इन सारी चीज़ों से बहुत अटैच थी. अब धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये सब कुछ तो मेरा है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा है. यहाँ तक कि शरीर के लिए भी हम कहते हैं कि ये मेरा शरीर है, तो मैं कौन हूँ. आज दिन तक सवेरे जब खड़े होकर शीशे में देखा, तो इस शरीर को देखा तो समझा ये ही मैं हूँ. जैसे ही इस शरीर को मैं समझा तो ये भी बिलीफ सिस्टम क्रिएट हुआ कि आज ये यंग है, कल ये ओल्ड हो जाएगा और परसों फिनिश हो जाएगा. और ये जब बिलीफ सिस्टम आया तो फियर ऑटोमेटिकली आ गया कि ये तो थोड़े दिन में पुराना होने वाला है, ये तो एक दिन फिनिश भी हो जाएगा. यू सी इफ पीपल स्टार्ट नोटिसिंग दे हैव वाइट हेयर और दे हैव रिंकल्स ऑन देयर फेस, या उनकी स्किन थोड़ी सी यू नो वो ग्लो जा रही है बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, क्रिएट्स लॉट ऑफ फियर, क्योंकि हमने समझना शुरू किया कि यही मैं हूँ. तो अगर यही मैं हूँ तो ये मुझे क्या हो रहा है. और जहाँ ये फियर आया तो फियर ऑफ डेथ भी, एंड फियर ऑफ डेथ इज द डीपेस्ट रूटेड फियर. और जहाँ फियर ऑफ डेथ है तो वहाँ हैप्पीनेस. स्ट्रेस इज फियर, एंड ये फियर हम लाइफ लॉन्ग अपने साथ कैरी करते, तो हैप्पीनेस और पीस ये तो पॉसिबल ही नहीं है. जहाँ वो बिलीफ सिस्टम में थोड़ा सा चेंज आया कि ये मेरा है, ये मैं नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, इसको चलाने वाली चैतन्य शक्ति, आई एम कॉन्शियसनेस, आई एम एनर्जी, आई एम पावर, एंड इफ आई एम एनर्जी देन आई कैन नॉट गेट डिस्ट्रॉयड. ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया जिसकी वजह से फियर खत्म हो गया. क्योंकि जहाँ मैं पेरिशेबल हूँ, डिस्ट्रक्टेबल हूँ, तो मैं फिनिश हो जाऊंगी. लेकिन जहाँ मैं एनर्जी हूँ ये समझ में आया, तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो हु डाइज, मृत्यु किसकी होगी? इस शरीर की, मेरी नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, एंटिटी हूँ। अब ये भी शुरू में जब हम सुनते हैं तो ये एक बिलीफ है, पहले बिलीफ था मैं शरीर, अब परमात्मा ने जब ये ज्ञान दिया तो एक बिलीफ बना कि नहीं मैं शरीर नहीं, मैं शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ। अब मुझे इस बिलीफ के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो ये भी एक बिलीफ ही हो जाएगा, मैं नाम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ, इट्स वन ऑफ द लेबल्स दैट आई हैव, बट आई विल हैव टू एक्सपीरियंस कि मैं ये नहीं, मैं इटर्नल, अजर, अमर, अविनाशी, मैं वो शक्ति, वो आत्मा हूँ। और जहाँ वो आत्मा का अनुभव होना शुरू हो गया तब भय फिनिश्ड, बिकॉज देन I don't fear the loss of anything.
2: Because there's no loss. There is continues. Life continues. Actually.
1: जब समझ में आया कि मेरा जीवन सिर्फ इतना ही है, जब शरीर समझा अपने आप को, तो जब से पैदा हुए जब तक ये शरीर खत्म होता है, ये इतना ही जीवन है मेरा, इतने में ही मुझे सब कुछ accumulate करना है, लेकिन इतने में ही कितना कुछ मेरे से चला भी जाता है, तो सारी जीवन उस भय में चलती है कि कहीं ये ना हो जाए, इसको कुछ ना हो जाए, मेरा पैसा ना चला जाए, मकान ना चले, कितना डर। तो जहां डर है वहां टेंशन है। Wherever there is a fear of loss of anything, there will be tension. Even if it is fear of loss of a person, कि कहीं मेरे परिवार के किसी सदस्य को कुछ ना हो जाए, वो भी फियर है, तो वो टेंशन।
2: और कहीं ना कहीं वो फियर ये भी है कि जब ये लॉस होगा तो जो सिचुएशन होगी उसे फेस कैसे करूंगा, यू नो, वो फियर कि उसको फेस करने की क्षमता नहीं है मुझ में,
1: क्योंकि मैं डिपेंडेंट हूँ उन पे, क्यों? क्योंकि मुझे उनसे खुशी मिलती है, ये बहुत डीप रूटेड है ना, जैसे मुझे टेंशन आपसे मिलती है, गुस्सा मुझे आपके कारण मिलता है, तो खुशी भी
2: आप ही से मिलती है।
1: तो अगर आपको कुछ हो गया तो फिर मेरी खुशी चली जाएगी। सी, मेरे आंतरिक फीलिंग्स की सारी जिम्मेवारी मैंने बाहर ठहराई हुई है, तो मेरी खुशी के जो कारण है वो भी सारे बाहर है। Happiness is because of family.
2: Love is also because.
1: Love is because of people. Happiness is because of possession. Happiness is because of position, because of status. तो अगर मेरी happiness इन सब पे dependent है, तो इनमें से अगर कुछ भी गया तो मेरी happiness चली जाएगी। तो I don't want to lose my happiness. तो मैं डरती रहती हूँ कि कहीं इनमें से कोई चला ना जाए, और डर मतलब स्ट्रेस। तो सबसे ब्यूटीफुल रियलाइजेशन जो परमात्मा ने आकर हमें अपने बारे में ही याद दिलाया कि आप ही भूल गए हो कि आप कौन हो, आप ये सब नहीं हो, आप ये सब को यूज करने वाले, इस सब को चलाने वाले, आप एक ब्यूटीफुल कॉन्शंट एनर्जी हो, यू आर अ प्योर बीइंग एंड योर एनर्जी विच नेवर एवर गेट्स डिस्ट्रॉयड। और इसको जब हम सिर्फ समझ नहीं लेते, एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तो मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। और जिस आत्मा के अंदर से मृत्यु का भय खत्म हो जाए, उसको फिर
2: बाकी सारे फियर
1: और कोई डर नहीं होता, और फिर उसको ये पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि मुझे टेंशन नहीं होने चाहिए। क्योंकि डर नहीं है ना, डर नहीं है तो टेंशन किस बात के? डर वॉज पैकेज्ड विद टेंशन। तो मैं आत्मा शक्ति हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ। हर रोज कुछ क्षणों के लिए अपने आप से समय निकाल कर अपने आप से ये बात करें और अपने आप को याद दिलाएं, क्योंकि भले ये सत्यता है लेकिन हम भूल चुके हैं। तो सत्यता को ही मुझे फिर से अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा। तो हर रोज थोड़ा समय निकाल कर, वी कैन डू इट राइट नाउ, थोड़ा समय निकाल कर अपने आप को ये याद दिलाएं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। आस्क माई सेल्फ कि ये शरीर तो एक कॉस्ट्यूम है, मैं शरीर को यूज करती हूँ, इस शरीर के द्वारा बोलती हूँ, कर्म करती हूँ, देखती हूँ, लेकिन करने वाला कौन? ये करने वाला मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ। I am power. It's like a point of light shining here in the center of the forehead. I am energy. I choose ki mujhe kya sochna hai, kya क्या फील करना है, क्या महसूस करना है। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, तो डर किसी बात का नहीं, क्योंकि मैं अमर हूँ तो मेरी मृत्यु
2: नहीं
1: हो नहीं सकती। आई एम इटर्नल। तो ये अगर हम हर रोज बार बार साइलेंस में अपने साथ समय निकाल कर ये बात अपने आप को बार बार दिलाएंगे याद, तो थोड़े दिन के बाद हमें एक्चुअली उसका अनुभव
2: हो जाएगा। डेफिनेटली सिस्टर शिवानी, दैट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, कि अनुभव होने के बाद ही, जब सिचुएशन, एक बार जब अपने आप को पहचान लिया तो फिर जब सिचुएशंस आएंगी जहाँ तनाव हम क्रिएट करते हैं, उन्हें भी जो आंतरिक शक्ति वाली बात है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है उसे हम हैंडल कर
1: सकते हैं। क्योंकि वो आप सुबह जो प्रैक्टिस करेंगे, फिर सारा दिन में जब आप कॉन्टैक्ट में आएंगे सिचुएशंस और लोगों के, आप बार बार अपने आप को ये याद दिलाएंगे, मैं आत्मा हूँ, इसको मैं यूज कर रही हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा है, ये मैं नहीं हूँ, ये डेजिग्नेशन ये मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा है। तो जितना बार बार ये रिमेम्बरेंस, वी कैन डू इट प्रोबेबली 100 times इन अ डे, क्योंकि जितनी ज्यादा बार हम अपने आप को ये याद दिलाएंगे वो स्मृति पक्की होती जाएगी। तो बार बार मैं आत्मा हूँ, ये मेरा है, तो उससे मेरी डिटैचमेंट अपने आप होती जाएगी और उसको खोने का डर वो खत्म।
2: चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वो इवन आपका लव्ड वन हो, जैसे सपोजिटली हम बहुत ये कहते हैं कि उनके बिना, उनके ऊपर हैप्पीनेस डिपेंड कर रही है मेरी। सिस्टर शिवानी, तनाव मुक्त पूरी तरह से हो सकते हैं हम, स्ट्रेस फ्री लाइफ को हम बिल्कुल अपना सकते हैं, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपने कहा कि खुद को पहचानना, खुद की पहचान। खुद की पहचान करके किस तरह से जब सिचुएशन सामने आती है जहाँ स्ट्रेस है, वो हमें हेल्प करेगा, हम उन सिचुएशंस के बारे में भी जानेंगे अपनी आने वाली कड़ियों में। लेकिन आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999 3445 9999 3446 9873 6655 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी का ये सफर यूं ही चलता रहेगा। अब दीजिए इजाजत। ओम शांति।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जो पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

बढ़ा दैया, ताय उठाय लियो गिर नक पर बंस बजावत देन चलैया, जग के मोहन मन में माए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

0: गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग
1: बेटा।
2: यस पापा।
1: बरखोरदार।
0: यस डैडी।
1: अपनी भाषा में बोलो।
0: अरे हाँ हाँ I'm

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है। कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
3: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए है हमारे साथ।
4: दोस्तों, अगर किसी भारतीय युवा से, युवा छोड़िए किसी को भी, अगर आप पूछें कि इंडिया किन चीजों के लिए जाना जाता है, व्हाट इज स्पेशल इन इंडिया, लोग या तो बॉलीवुड का नाम सबसे पहले लेते हैं या क्रिकेट का नाम लेते हैं। और जब क्रिकेट की बात होती है तो अक्सर हमारे कानों में वो आवाज़ गूंजने लगता है, सचिन सचिन, या धोनी की बात हो जाती है या कोहली की बात हो जाती है। लेकिन आज हम हमारे यशस्वी भारत कार्यक्रम के एपिसोड में एक ऐसे किरदार से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने क्रिकेट के द्वारा भारत का नाम पूरे विश्व में उजागर किया है। लेकिन ये एक बहुत खास मेहमान है। हम आज मिलने जा रहे हैं रेडियो मधुबन के स्टूडियो में भारत के ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कप्तान श्री शेखर नायक जी के साथ। आइए शुरू करते हैं उनसे बातचीत का दौरा। शेखर नायक जी को भारत सरकार ने वर्ष 2017 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। इनका जीवन अपने आप में इतना उदाहरणीय है कि इसको सुनते सुनते आपको लगेगा कि इसके ऊपर तो एक फिल्म बनना चाहिए। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि आज उन्होंने हमें समय दिया है। आइए शुरुआत करते हैं बातचीत के सिलसिले को। सबसे पहले तो हम करते हैं उनका स्वागत, वेलकम करते हैं शेखर जी आपका हम हमारे रेडियो मधुबन के स्टूडियो में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और स्वागत भी है आपका।
5: धन्यवाद सर, धन्यवाद। मुझे भी बहुत खुशी लग रहा है कि आपसे बात कर रहा हूँ और मेरा बात को आप पूरा दुनिया को सुनाने के लिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
4: जी। एक तो आप स्पोर्ट्समैन है, आपके जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व है, सबके जीवन में है लेकिन आपके जीवन में खास तौर पे है, लेकिन उसमें से भी आपने समय हमें और हमारे श्रोताओं के लिए निकाला, उसके लिए तो आपको बहुत तहे दिल से पहले पहले धन्यवाद है।
5: धन्यवाद जी।
4: शेखर जी, आपने भारत के नाम को कई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, चाहे वो खेल जगत में क्रिकेट के माध्यम से हो, लेकिन एक व्यक्तिगत जीवन के रूप में भी आपने भारत के नाम को बहुत उजागर किया है। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के पहले आपका सफर कैसा था, आपका जीवन कैसा था, ये हम सुनना चाहेंगे, आपकी कहानी आपकी जुबानी।
5: धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। मुझे आज जो मेरा लाइफ के बारे में बताने का एक मौका मिला है आप सभी लोगों से। सर, मेरा जन्म हुआ एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट में, गाँव का नाम है शिवमोगा। मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ, सो शिवमोगा इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो यहाँ पे मैंने पैदा हुआ, बाई बर्थ मैंने टोटली ब्लाइंड था, कुछ भी नहीं नजर आता था मुझे। बाद में 16 लोग से भी ज्यादा मेरा फैमिली में जो ये प्रॉब्लम था, ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम था, मेरा मम्मी को भी नहीं दिखाई देता था और मेरा मौसी लोगों को भी नहीं दिखाई देता था और उनके बेटे लोगों को भी, बेटी बेटा लोगों को भी नहीं दिखाई। सो इट्स अ हेरिडिटरी अगेंस्ट है। तो ये मेरा नानी के तरफ से, मेरा मम्मी का तरफ से, नानी का तरफ से ये हेरिडिटरी आया था। तो मैंने मैंने फुल्ली ब्लाइंड था 8 साल तक। तो और जब 8 साल के अंदर मैंने जो मुश्किलें उठाई तो उसको तो मैं वो सोच भी नहीं सकता अभी, इतना मुझे लाइफ में रिस्क हुआ और कुछ भी समझ में नहीं आता था। टोटली ब्लैंक, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता था। मीन्स अभी हम लोग आंख से देख के सीखने का जिंदगी में 80% रहता है चीज, और दूसरे अंगों से सीखने का चीज 20% रहता है। विदाउट आईज यू कांट डू एनीथिंग। सो आंख है तो ये सब कुछ है। तो तब मैंने जब 4-5 साल का था, तो तब हमारा गांव में जब बारिश गिरता था, मैंने सोचता था कि कोई मेरे ऊपर बारिश आई मीन पानी था, पानी घर के ऊपर चढ़ के मेरे ऊपर कोई पानी डाल रहा है। और कभी कभी जो पक्षियां और चिड़िया जो आवाज करते थे, मैंने सोचता था कि मेरे जैसे कोई दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा क्यों नहीं करने के लिए आ रहा है। बाद में गांव में कुत्ता वगैरह सब जैसे साउंड करता था, मैं उसको बिल्कुल टोटली कंफ्यूज होता था। और हमेशा मेरा मम्मी डैडी को मैं पूछता था कि ये क्या है, ये क्या चीज है, ऐसा तो आवाज निकाल रही है, मैं क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ। मैंने हमेशा मेरा मम्मी डैडी का जो मुंह उनका फेस टच करके, अच्छा आपको भी मुझे फर्क नहीं है, ऐसा ही है सब कुछ, मैं टच करके देख के मैं सीखता था। तो मेरा जैसे मैंने बोला, मेरा मम्मी भी ब्लाइंड थी, तो हमारा पास कोई खेत वाड़ी कुछ नहीं था। डैडी ने दूसरों का खेत में जाके लेबर का वर्क काम करके उन्होंने तो दिन का गुजारा निकालने के लिए वहां से कमाते थे, और दिन का पैसा वो लोग डैडी ने लेके आके, ऐसे तो भी ऐसे ही रोज जिंदगी चल रहा था, और बेड आते आते दिन ये भी बड़ा हो रहा था। तो हमारा गांव में बहुत सारे मेरे लड़के लोग थे, तो वो लड़के लोग उनको सब दिखता है, इसीलिए वो लोग सब जाके स्कूल ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे, हॉकी खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, और जो पेड़ के ऊपर चढ़ के वो लोग जैसे दूसरा दूसरा गेम खेलते थे। और मेरा गांव के बाजू में ही एक नदी है, नदी का नाम है तुंगा। तो तुंगा नदी में वो लोग पत्थर के ऊपर जाके ऊपर से पानी में कूदते थे, जंप करते थे। तो इसके लिए सब मुझे वो लोग खेलने के लिए नहीं लेते थे, क्योंकि मैं नहीं देख सकता हूँ और उनके साथ मैं नहीं खेल सकता हूँ। तो मम्मी को हमेशा हमेशा के लिए ये एक बात बहुत बहुत हर्ट होता था, और वो हमेशा मुझे बोलती थी कि आप जिंदगी में कुछ बन के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, ये जो लोग तुझे खेलने के लिए नहीं ले रहे ना, तू एक ऐसा दिन क्रिएट करना है कि वो लोग आके तुझे शेखर मैं भी आपके साथ खेलूं क्या करके पूछना है। तो आज तक ऐसा आप ग्रो करना है, आप हमेशा यू हैव टू अचीव समथिंग, यू हैव टू बिकम समथिंग। बाद में आपका जो जो ब्लाइंडनेस है, आप उसी को बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम समझ के आप एक कमरे में मत रहो, आप मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं सर सब सभी लोगों के जैसा ही हूं करके आप अगर जिंदगी गुजारोगे तो एक दिन बड़ा महान व्यक्ति बनोगे। तो ऐसा मुझे मेरा माँ ने हमेशा मुझे मोटिवेट करती थी, और मैं भी बहुत खुश था, और मेरे डैडी ने भी मुझे, मैं अकेला बेटा हूँ, नो सिबलिंग्स फॉर मी, नो भाई बहन कोई नहीं, मैं अकेला, तो मेरा डैडी ने भी मैं अकेला बेटा हूँ करके मुझे बहुत बहुत प्यार देते थे। और एक दिन क्या हो गया, गांव का बाजू में एक 1.5-2 किलोमीटर दूर में डैडी ने वो शुगर केन गन्ना वो कट करने का काम के लिए गए थे, और मेरा मम्मी भी उनको हेल्प करते थे। एक्चुअली गांव में होता है ना, एक कोई एक दिन मेला निकलता है, तो उस दिन उनको पेमेंट होता है, तो वो लोग सब जाके सब्जी वगैरह सब खरीद के और गांव को पहुंचते हैं। तो ऐसा होने वाला था उस दिन मंगलवार था, और हमारा गांव में, गांव से 2-3 किलोमीटर दूर वो मेला होने वाला था। हम हाट बोलते हैं ना, तो बाजार बाजार होते हैं ना, तो वहां पे जाके सब सब्जी वगैरह ग्रोसरीज वगैरह खरीद के आना करके सोचा था। तब मेरा मम्मी और मेरा नानी दोनों वो नदी पार करके आ रहे थे, मैंने बहुत उधर हल्ला मचा दिया कि मैं भी मम्मी के साथ जाऊंगा, मैं पूरा बाजार घूम के आऊंगा, मुझे इधर खेत में रह रह के बस हो गया है। तो डैडी और दूसरे लोगों ने मना किया कि आप मत जाओ, उनको वो बैग्स वगैरह सब उठा के लेके आना आप, और आपको भी पकड़ के लेके आना, मुश्किल होगा करके बताया। तो भी मैं नहीं माना, मैं बच्चा हूं ना, तो मम्मी के साथ में रहना बहुत पसंद लगता था, वो भी नानी के साथ में रहना बहुत पसंद लगता था, तो मैंने बहुत जिद किया और उनके साथ निकल पड़ा। ऐसे ही जाते जाते समय नदी का पार करते समय मैंने मेरा पैर किड होके मैंने एक 25 से 30 फीट नीचे गिर गया। के नीचे गिरने के बाद मेरा मम्मी और नानी ने जोर से चिल्लाने लगे कि शेखर नीचे गिर गया नदी में, कोई आओ बचाओ, कोई आओ बचाओ करके। तो बस वहीं पे थे मेरा डैडी डैडी और मासा मामा लोग, तो वो लोग सब आके मुझे उधर नीचे उतर के सब उठाया, उठा के लेके आके घर पे सुलाया। तो घर पे सुलाने के बाद मेरा राइट आई पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी भी मार्क है, 1994 का, ये तो 2024 है, एग्जैक्टली 30 इयर्स बैक दिस मैडनेस हैपेंड। तो तब मुझे लेके आए और घर पे सुलाया, और उनके पास, उनको हमारा फैमिली में कोई एजुकेटेड नहीं थे, उनको ये भी नहीं पता था कि उन लोगों को 16 लोगों को आंख नहीं दिखता, हॉस्पिटल जाना है, ट्रीटमेंट लेना है, नहीं उनको पता था। वो लोग स्कूल को नहीं गए थे, थोड़ा तो भी वो लोग सोचे भी नहीं लगता है, सही सही जिंदगी गुजार रहे थे। तो उस दिन मुझे खून रुकाने के लिए, इट वॉज माई राइट आई वॉज ब्लीडिंग, मैं कहनी थी तो ब्लीडिंग हो रहा था, तो उन्होंने वो ब्लीडिंग रुकने के लिए जैसे टर्मरिक, हल्दी का पाउडर और कॉफी का पाउडर हल्के मेरा मम्मी का साड़ी फाड़ के मुझे बैंडेज करके बना के इसे ही सुलाया, और बहुत बहुत खून बह रहा था। मेरा मासी लोग अभी भी मुझे बोलता है कि तू यहीं पे गिरा था, तुझे बहुत खून आया था करके। तो अभी मैं गांव जाता हूँ तो उसको याद करके बहुत मुझे नाराज होता हूँ। और कुछ लोग बोलते हैं ना, अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो तो आप बुरा सोचो कि बुरा होने के लिए हुआ है, कुछ लोगों का जिंदगी में कुछ बुरा हुआ तो उन्हें सोचना है कि वो अच्छा होने के लिए है। सो ऑलवेज हम लोग पॉजिटिव से रहना है, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है। हम लोग जिंदगी में कितना कितना मुश्किलें उठाएंगे सब हम लोग पार करके जाएंगे, बिकॉज ऑफ इंस्पिरेशन और हिम्मत, नहीं हारना। अगर हमें हिम्मत है तो हम कुछ भी बन सकते हैं। तो गॉड ब्लेस आई कैन से, मैं उस दिन गिर गया, और अगले दिन ही हमारा गांव को कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, जैसे छोटे मोटे गांव में आई चेकअप कैंप के लिए करके करने के लिए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आते हैं, तो भगवान ही भेजा लगता है उनको, शिव जी ने ही भेजा लगता है हमारा गाँव पे, वहाँ पे एक बच्चा पड़ा है, जाके उनको ट्रीटमेंट करो करके शायद। मैं शिव जी को बहुत मानता हूँ। तो अगले दिन वो लोग आए और उनसे जाके कोई एक आदमी बोला कि सर वहाँ पर एक लड़का पड़ा है, उसका राइट है कि मतलब उस पर बहुत बहुत खून बह रहा है, उसको थोड़ा फॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट कीजिए ना करके। तो तुरंत डॉक्टर ने दौड़ के मेरा घर पे आए, तो उन्होंने मेरा खून वगैरह सब साफ करके, डिटाइल टिंचर जो बोलते हैं उसको क्लीन करके, उन्होंने बोला अभी इसको ठीक हो जाएगा, मैंने बैंडेज किया। तो बाद में डॉक्टर अचानक मेरा मम्मी लोग भी नहीं, उनको नहीं बताया कि इसको नहीं दिखता है। तो डॉक्टर ने पूछा कि क्यों, मैं शेखर को देख रहा हूँ तो शेखर मेरे तरफ वो नजर नहीं दे पा रहा है, वो उस तरफ इस तरफ दिख रहा है, क्यों इसको नहीं दिखता है क्या करके पूछा। तो मेरा मम्मी ने बोला कि नहीं सर इनको नहीं दिखता है, तो इसलिए ये गिर गया। तो हमारा फैमिली में 16-17 लोग ब्लाइंड है। तो डॉक्टर ने तुरंत बोला कि ठीक है, शेखर को ऑपरेशन करने से थोड़ा बहुत नजर आएगा, लेकिन आपको बैंगलोर आना पड़ेगा। बैंगलोर तो मेरा गांव से करीबन 350 से 400 किलोमीटर है, तो 1994 में, और मेरा मम्मी भी ब्लाइंड है और मेरा डैडी भी अनएजुकेटेड है, वो लोग उधर से बैंगलोर को आना, बैंगलोर में हॉस्पिटल ढूंढना, अब तो वगैरह सब फोन वगैरह है सब कुछ, कैसा तो भी हो जाएगा। अब तो लैंडलाइन भी नहीं था, लैंडलाइन भी बहुत कम थे, अगर एक गांव में एक भी फोन नहीं था लगता है मेरा ख्याल से। हाँ, तो उन्होंने बोला कि बैंगलोर आओ। तो मेरा मम्मी डैडी के पास बिल्कुल पैसा नहीं था कि मुझे बैंगलोर लेके आए और ऑपरेशन कराए। तो उसमें से हमारा गांव के कुछ लोग मेरा मम्मी को कुछ 210 रुपये या 220 रुपये दिया करके, मेरा तो पैसा लेके मम्मी ने मुझे बैंगलोर लेके आए। तो बैंगलोर लेके आने के बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, मम्मी का भी ऑपरेशन हुआ, तब मुझे थोड़ा बहुत नज़र आया। तो बैंगलोर से और मेरा गाँव शिमोगा आने के बाद मेरा डैडी ने मुझे सभी जगह पे लेके आके, आप यहाँ पे गिरा था, ये नदी है, यहाँ पे खेलता था आप, और तुझे यहाँ पे मुर्गी काट लिया था, आपको यहाँ पे कुत्ता काट लिया था, सब कुछ मुझे बताया। तो तब उसके मुझे गाँव में सब देखने के बाद, अच्छा ये लोग चिड़िया जो आवाज करती है वो ऐसे रहती है क्या, वो अच्छा कुत्ता ऐसा रहता है क्या। बाद में मेरा डैडी का फेस और मम्मी का फेस ऐसा है क्या, कुछ मुझे बहुत बहुत आई वाज सो एक्साइटेड।
4: एक सवाल मेरे को यहाँ पर पूछना है कि वो जो ऑपरेशन था वो सरकारी अस्पताल में हुआ ऑपरेशन, और वो सक्सेसफुल रहा?
5: हाँ सर, ये तो सरकारी हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ
4: जी।
5: तो ऑपरेशन तब 90s में, एक्चुअली जो अभी जो ऑपरेशन करके लेंस डालते हैं वो 90s में जस्ट लेंस वगैरह सब इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रहा था, तो प्रॉपर क्वालिटी लेंस वगैरह नहीं थे। तो मुझे 1994 में ऑपरेशन करके वो लोग दोनों आंख में लेंस डाला, लेकिन मैं मेरा राइट आई से खाली 30% तक देख सकता और लेफ्ट आई जीरो है, इसमें मैं इसे कुछ नहीं देख सकता हूँ।
4: तो ये जो 30% देखने की क्षमता है वो आज है या उस समय भी 30% ही थी?
5: हाँ सर, उस समय से भी ऑपरेशन होने के बाद में से ही मुझे 30% का एक विजन आया। तो
4: तो उस 30% में आपने क्या क्या देखा? सबसे पहले आपने क्या देखा?
5: सर, सबसे पहले ये तो बहुत बहुत एक मेरा लाइफ का मोमेंट है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन किया हॉस्पिटल में, करने के बाद उन्होंने शेखर में आपका बैंडेज निकालना चाहता हूँ, तो आप
4: जी
5: उन्होंने पूछा कि आप क्या चीज देखोगे। तो मुझे पता नहीं सर मैं ऐसा क्यों बोला। सर मुझे पहला मेरा मम्मी का फेस देखना है, मेरा मम्मी का मुंह देखना
4: वेरी
5: है। माय
4: स्वीट, वेरी
5: गुडनेस। हाँ
4: स्वीट।
5: सर, तो बाद में उन्होंने मेरा मम्मी को भी ऑपरेशन हुआ है, तो उनको भी व्हील चेयर में लेके आए और मुझे भी व्हील चेयर में लेके आए। तो मेरा धीरे धीरे बैंडेज निकालते
4: तो
5: जाने
4: आपकी
5: के
4: मम्मी
5: बाद,
4: को भी थोड़ा सा दिखता था
5: हाँ उनको भी
4: ऑपरेशन के
5: थोड़ा बहुत
4: बाद?
5: एक 10% उनको नजर
4: वेरी
5: आया।
4: नाइस
5: हाँ,
4: जी।
5: तो बाद में मेरा जो बैंडेज निकालते ही मेरा मम्मी का मैं फेस देखा ना, ओ माय गॉड, आई एम अनबिलीवेबल सर, अनबिलीवेबल। मैं उसको अभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जैसे भूख से जो मर रहा हो उसको एक घूंट पानी मिल गया तो उसको सोचेगा कि मैं बच गया। तो मेरा मम्मी के फेस देखने के बाद उसे मुझे ऐसा लगा कि मुझे धरती पे लेके आने वाली माँ यही है, मेरी माँ। उनका फेस इतना तेजस था ना सर, उनका फेस, हर फेस वाज शाइनिंग लाइक एनीथिंग सर, सूरज जैसा उसका वो एक्सप्लेनेशन में आई डोंट नो सर हाउ टू एक्सप्लेन हर फेस।
4: नहीं, आपके शब्दों
5: लेकिन
4: में से तो जो आपकी भावनाएं हैं वो मेरे तक तो क्या हमारे तमाम श्रोताओं तक पहुंच रहा है। और आज वो भी याद कर रहे होंगे कि उनकी मम्मी को वो याद कर रहे होंगे जब आपकी आवाज सुन रहे हैं। मैं भी मेरी मम्मी को याद कर रहा हूँ कि आपने इतना एक पावरफुल मेमोरी हम सबको वापस दिलाया कि माँ का फेस जो होता है वो बिल्कुल एक सूर्य की तरह होता है, जो एक जीवन जो कि अंधेरे में होता है उसमें रोशनी लाने वाला शक्ल होता है। वाकई में बहुत सुंदर। और उसके
5: माय
4: बाद फिर क्या
5: गुडनेस।
4: हुआ
5: हाँ सर, उसके
4: जी?
5: बाद मैंने मम्मी को हग किया, मम्मी को पप्पी दिया, माय गॉड।
4: जी
5: बाद में उधर से गांव आने के बाद वही मेरा डैडी ने सब कुछ बताया मुझे कि पेड़ है, आपको हवा आता था ना, तो हवा ऐसा ऐसा आता है, तो धूप आता था ना, तो तब अब सोचता था कि मेरे सामने कोई आग लगा है, वो आग नहीं है, सूरज है। तो सबने
4: जी
5: मुझे सब कुछ मुझे मेरा डैडी ने सिखाए। और ऑपरेशन होके 2-3 महीना हुआ था सर, मैंने होते जा रहा था, तो अनफॉर्चुनेटली मेरा डैडी को, फादर को तबीयत खराब हो गया और सडन डेथ हो गया।
4: जी
5: सो सडन डेथ होने के बाद उनका सब अंतिम संस्कार सब किए। बाद में मेरा मम्मी टोटली शी वाज टोटली कोलैप्स्ड, क्योंकि वो भी उसको भी दिखाई नहीं देता, वो काम नहीं कर सकती, कमा नहीं सकती, और उसका जिंदगी, मैंने मम्मी ने सोचा कि जिंदगी चले गया। और
4: जी
5: मैं और मेरा बेटा, हम लोग अभी हम बिना खाना बिना पानी से मर जाएंगे। तो
4: जी
5: ऐसा सोच के
4: लेकिन
5: कि
4: एक चीज
5: मम्मी,
4: इसमें यहाँ पर मैं आपको रोक कर ये जानना चाहूंगा कि आपके पिताजी जब उन्होंने आपकी माताजी से विवाह किया तब उनको पहले से पता था कि आपकी माताजी दृष्टि बाधित हैं?
5: हाँ सर, वो ये तो एक्चुअली मेरा फादर ने, ही इज ए नॉर्मल पर्सन, क्योंकि उन्होंने दूसरा फैमिली से आके मेरा मम्मी को शादी किया सर। मेरा डैडी का भी बड़ा स्टोरी है सर, उनका उनका मम्मी मेरा डैडी का मम्मी डैडी ने कुछ वो गाँव का पटेल, जो बड़े लोग रहते ना पटेल लोग, तो
4: जी जी
5: उनसे कुछ उधार में पैसा लिया था, वो पैसा नहीं चुका पाए, इसलिए मेरा डैडी को वो लोग ये किराए पे रख दिया था सर, जो इतना
4: जी
5: पैसा खत्म होने तक इसको आप 3-4 साल इनके फ्री में काम करवा लीजिए। तो ऐसा ऐसा रख दिया था। तो तब मेरा मासी है ना, मेरा मामी का दीदी, तो उन्होंने वही गांव से आके मेरा मासी को शादी किए थे। तो उन्होंने बोला कि मेरा मासी का बहन यानी कि मेरा माँ को वो लोग जाके एक लड़का को लेके आएंगे और उनसे शादी कर रहे हैं। तो रातों रात जाके वो पटेल का घर से मेरा डैडी को लेके भगा के लेके आके अगले दिन ही वो लोग मम्मी से शादी करवा दिया। और वो
4: जी
5: शादी होने के दिन ही वो लोग, वो गांव का पटेल लोग आ गए हमारा गांव को कि ये लोग हमसे कर्जा लेना है, कर्जा देना है, कर्जा देगा तो हम तुझको छोड़ेंगे, नहीं तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को लेके जाके हम लोग गाय चराने के लिए छोड़ेंगे। तो गांव वालों ने सब झगड़ा करके उनको मार पीट के भगा दिया। तो तब से ये मेरे डैडी ने जो मेरा नानी नाना का गाँव, यानी कि मेरा मम्मी का गाँव में ही शादी करके उधर ही घर बना के उधर ही वो लोग
4: आपके
5: रहते।
4: पिताजी ने वाकई में बहुत बड़ा काम किया। एक तो क्योंकि जनरली लोगों को ऐसा लगता है जो किसी भी प्रकार की विकलांगता का शिकार है, लोग उनसे किनारा करने का प्रयास करते हैं, लोग उनसे दूर जाने का कोशिश करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि भाई ये तो एक एक्स्ट्रा जिम्मेवारी है, इनको कैसे संभालेंगे। लेकिन उस समय जब तकनीक या टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, उस समय में भी एक कम उम्र के युवा पुरुष ने सोचा कि कोई बात नहीं, यही मेरे जीवन का आधार है और इनके साथ ही मैं एक सुंदर जीवन की कल्पना कर सकता हूँ। आपके पिता के लिए वाकई में हमारे दिल से बहुत सम्मान निकलता
5: अरे
4: है और
5: सही में सर,
4: उन्होंने
5: सही में
4: बहुत अच्छा एक सुपुत्र दिया भारत को, जो कि भारत का नाम रोशन कर रहा है। तो आप हमारे श्रोताओं को अपने पिताजी का नाम भी बता दे तो बहुत अच्छा होगा।
5: सर, मेरा मम्मी का नाम, माँ का नाम जमुना बाई है, जमुना बाई, और मेरा डैडी का नाम, एक्चुअली मेरा डैडी का नाम लक्ष्मण है। तो जब लोग में गांव में लोगों को बुलाने के लिए नहीं आता था ना, तो वो लोग लक्ष्मण के जगह पे लक्ष्मा करके बुला दिया। तो
4: लक्ष्मण जी,
5: हाँ लक्ष्मा, तो मैं लक्ष्मा को ही, मैंने अभी शेखर नायक लक्ष्मा करके ही मैंने वो नाम से ही फॉलो करके आ रहा हूँ सर। सर
4: जी
5: उस
4: जी
5: दिन
4: जी
5: मेरा डैडी ने बहुत बड़ा फैसला लिया, जैसे आपने बताया वो एक ब्लाइंड से शादी करके कैसा जिंदगी गुजारेंगे वो कुछ भी नहीं सोचा मेरा डैडी ने, और आके तुरंत शादी करके वो लोग एक अच्छा जिंदगी चालू किया। तो उसके
4: जी
5: बाद उनका जो गुजरने के बाद मम्मी को
4: जी
5: तो भी बहुत बहुत नाराज हुआ होगा। बाद में मेरा मासी मासा लोग, मामी मामा लोग और नानी नाना लोग मेरा मम्मी को कभी कभी खाना देते थे, एक दिन में एक बार या दो बार। तो मम्मी को सेटिस्फेक्शन नहीं होता था कि मुझे भी देखना है, और उनके पास कपड़ा नहीं है और तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल को जाना है, कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैं एक्चुअली जब मैं संपूर्ण जो टोटल टोटली ब्लाइंड था, तो तब मेरा मम्मी ने मुझे नॉर्मल स्कूल में लेके जाके बिठाती थी और शाम को वापस लेके आती थी। तो ऐसा करती थी मेरा मम्मी ने। तो तब मेरा डैडी का गुजरने के बाद और मेरे मम्मी ने स्कूल लेके गई ना, तो उधर एक गीता टीचर करके थी, गीता टीचर ने बताया कि अभी देखो तुम्हारा जिंदगी थोड़ा मुश्किल होगा, और क्योंकि आपको, आप भी तो जाते जाके खेत में काम नहीं कर सकते और कमा नहीं सकते, तो इसलिए एक इसी गांव में एक जो विकलांगता आई मीन ब्लाइंड स्कूल है, अनाथाश्रम जैसा है, तो वहां पे जाके इनको ज्वाइन कीजिए, तो तब वहां पे इनको सब सुविधाएं मिलेगी। तो तुरंत मेरा मम्मी ने, सर मैं बहुत प्राउड से बोलता हूँ, मेरा मम्मी ने तुरंत डिसाइड किया कि मैं शेखर को लेके जाके वो हॉस्टल में ज्वाइन करूंगी और उसका अच्छा देखभाल होगा। सर मैं यहाँ पे और एक बात बोलना चाहता हूँ कि मेरा मम्मी ने मुझे हॉस्टल ज्वाइन करवाया क्योंकि मुझे पूरा IAS बनाने के लिए नहीं, नहीं तो IPS बनाने के लिए नहीं, डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए नहीं, मुझे मेरा मम्मी ने एक ही चीज के लिए हॉस्टल में डाला कि वहां पे फ्री खाना और रहने के लिए और कपड़ा मिलेगा। सो दिस वाज द हर मेन इंटेंशन, सो दैट आई विल गेट एवरीथिंग बाय फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल। तो हॉस्टल ज्वाइन किया मैंने, वहां पे जाके देखा तो मेरे जैसे लोग 100 के ऊपर है, तो वो तो ब्लाइंड स्कूल था ना, मैंने सोचा था कि मुझे मेरा मम्मी को और मेरा खानदान को नहीं दिखना। तो वहां पे जाके देखने के बाद वहां से तो 100 से भी ज्यादा ब्लाइंड लड़के लोग हैं, और इंडिपेंडेंटली दे आर वॉकिंग, दे आर प्लेइंग, और खाना खाते हैं, सबसे मिलते हैं, सब कुछ, सब काम खुद कर लेते हैं। सो ऐसा सब चल रहा है। तो मैंने सोचा कि यार मेरा तो बड़ा प्रॉब्लम करके मैं सोचा था, इधर देखा तो मुझसे ज्यादा प्रॉब्लम वाले लोग हैं। मैंने वहां पे भी मेरा मैं हिम्मत नहीं हारा, और बाद में आई मोटिवेटेड माई सेल्फ, तो मैंने उनके साथ रहना स्टार्ट किया। सर मैंने जब 9 साल का लड़का था, मैंने तब फर्स्ट स्टैंडर्ड को ज्वाइन किया, क्योंकि 86 में मैंने पैदा हुआ और 95 में मैंने स्कूल ज्वाइन किया। वहां पे ब्लाइंड स्कूल में ब्रेल वगैरह सब सीखना पड़ता है, आपको पता है शायद ब्रेल, और जो हमारे यहाँ पे जो जो, जो छोटे लोग जो सुन रहे हैं उनको भी सबको पता है कि ब्रेल आजकल तो सभी जगह पे, ट्रेन में, लिफ्ट में, सभी जगह पे ब्रेल छाया हुआ है, और विजुअली इम्पेक्ट्स को एक हेल्प होना है करके। तो तब मैंने ब्रेल सीखना चालू किया, और 96-97 तक मैं ऐसे ही फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड में आया, और 97 में जब मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में आया तब जो स्कूल में कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो मैंने सोचा उनके साथ मैं भी थोड़ा खेल लूँ, लेकिन मुझे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं था, उसका नाम क्रिकेट है करके ही मुझे नहीं पता था। तो एक बार एक हाई स्कूल और मिडिल स्कूल का मैच था, तो वहाँ पे मिडिल स्कूल का टीम ने मुझे वो लोग लिया कि क्योंकि वहाँ पे खाली 8-9 लोग थे, तो उनको 11 प्लेयर चाहिए था, तो प्लेयर नहीं था करके मुझे लिया। मैंने उसको लड़का को बताया कि अरे यार मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता, तो उन्होंने ये उसने एक ही चीज बताया मुझे कि अरे यार वो बॉल फेंकेगा ना उसको मारना है और दौड़ना है बस और कुछ नहीं। तो मैंने अच्छा बस मार के दौड़ना है क्या करके गया, तो बाद में वो लोग वो 10 ओवर का मैच था, तो वो लोग 2-3 ओवर तक खेलने का मैंने ऑब्जर्व किया। बाद में उधर देखा तो 4-5 विकेट गिर गए, तो लड़का वो कैप्टन बोला कि शेखर तू जाके मारना अभी। तो मैं गया, वो हाई स्कूल के साथ मैच था, वो लोग बहुत अच्छे खेल रहे थे फील्डिंग वगैरह सब। हमने 10 ओवर में कम से कम 60-70 रन बना लिए, तो उसमें से मेरा कुछ 28-30 रन बना लिया मैं खुद ने, और आउट भी नहीं हुआ। और फाइनली मैंने अच्छा बॉलिंग भी देखा, वो लोग बॉलिंग देख रहे थे ना उसको भी देखा, और ऐसे ही बॉलिंग करके मैं भी 2-3 विकेट ले लिया और हाई स्कूल को मिडिल स्कूल टीम ने हरा दिया। तो वही टर्निंग पॉइंट था सर मेरा। अगले दिन जो क्लास का प्रेयर होता है, क्लास प्रेयर होने के बाद हमारा पीटी टीचर को कोई लड़के लोग जाके सर शेखर बल बहुत मारा सर, हम लोग हाई स्कूल के साथ जीत गए करके बताया। तो सर ने तुरंत मेरा क्लास पे भाग के आए, और वो कोई टीचर पढ़ा रहे थे उनको बोल के मैं 2 मिनट शेखर के साथ बाहर लेके जाके बात करता हूँ कर सकता हूँ क्या करके पूछ के। वो लोग बस हमारा पी सर उनका नाम है सुरेश, सुरेश सर ने मुझे बाहर लेके आके बोला मैं सुन रहा हूँ कि आप अच्छा खेला कल, आपको कौन सिखाया कैसा दिखा कैसा लगा सब कुछ। सर मुझे कोई नहीं सिखाया सर, मैं वो लोग खेल रहे थे ना उसको देख के खेला सर मैं, हम लोग जीत गए सर कल बोला। तो सर ने क्रिकेट खेलना पसंद है करके बोला, तो मुझे इतना पसंद नहीं है सर क्योंकि उसमें बहुत बॉडी पेन होता है, दौड़ना पड़ता है ना, मुझे पसंद नहीं है करके बोला मैं। तो इसलिए नहीं कोई बात नहीं आज शाम से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे करके। उसी दिन शाम से सर मुझे अच्छा ट्रेनिंग देना चालू किए, अच्छा प्रैक्टिस कर रहे थे। और 1997 में बैंगलोर में एक टूर्नामेंट है करके स्कूल को एक लेटर आया, तो लेटर आया कब 10 दिन था, तो 10 दिन पहले लेटर आया। अब तो आजकल तो मेल वगैरह व्हाट्सएप वगैरह मैसेज जल्दी मिल जाएगा, तो तब वो लोग बैंगलोर से शायद एक 3-4 दिन पहले वो लोग लेटर पोस्ट किया होगा, हमको पहुंचने में 10 दिन 2-3 दिन होगा, और एक 10-12 दिन का टाइम था। और उसमें से हमारा कोच सर ने हमको सब रूल्स रेगुलेशन वगैरह सब सिखाया, और मुझे कीपर होके आप अच्छा बॉल पकड़ता है कीपर बनो करके मुझे कीपर बनाया। तो हम लोग पहली बार बेंगलुरु में आए, बेंगलुरु में मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट था, तो शिमोगा टू बैंगलोर हम लोग आए और पहला मैच ही हम लोग हार गए, बैंगलोर के साथ में ही था। बैंगलोर का टीम बहुत पावरफुल बहुत स्ट्रांग था और हमको भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैं पहला मैच में 12 रन बनाया, तो वो तो मुझे बहुत एक खुशी का बात है। तो वो टूर्नामेंट के बाद जो समर वेकेशन आया मैंने गाँव को गया, गाँव जाने के बाद मम्मी को बोला, एक्चुअली मम्मी का तबीयत बिगड़ना चालू हो गया था तब तक, बिकॉज ऑफ नो फूड शेल्टर, उसका हॉस्पिटलिटी कोई उसका टेक केयर करने वाले नहीं थे ना, तो उसका तबीयत बिगड़ना चालू हुआ था, खाना ठीक से नहीं मिलता था। तो मैंने गांव गया, गांव जाने के बाद मेरा मम्मी को बताया कि मम्मी खेलना चालू किया है और मेरा स्कूल टीम में मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। तो मम्मी ने एक ही चीज बताया सर मुझे कि आप इसी में कुछ बन के दिखाना है, आप क्रिकेट में ही कुछ बन के दिखाना है। जैसे मेरा मम्मी ने एक्चुअली मुझे जब मैं संपूर्ण अंध था ब्लाइंड था तब मुझे बताया था कि आप ये लोग आपको आके शेखर आप शेखर ऐसा दिन क्रिएट करना है कि ये लोग आके आपको खेलने के लिए आप परमिशन लेना है, वहां तक आप पहुंचना है करके मम्मी ने मुझे बचपन में मैं बोला था, क्योंकि वो लोग मुझे खेलने के लिए नहीं लेते था ना, तो ऐसा मोटिवेट करती थी मुझे। तो उस दिन मुझे पता चला, मैं मम्मी ऐसा बोलने के बाद मेरा मन नहीं आ गया कि खाली मेरा गांव के लोग नहीं पूरा दुनिया का लोग मुझे देखना चाहिए, ऐसा मैं वहां तक क्रिकेट में आगे बढ़ूंगा वहां तक बोल के मैं जब समर ओकेशन खत्म करके स्कूल चला गया। तो 1998 में थर्ड स्टैंडर्ड में था, जनवरी 2nd 1998 में जनवरी 2nd को मेरा मम्मी को मैंने खो दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि बस मेरे लिए भी दुनिया खत्म, और मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, मुझे कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं है। आई लॉस्ट ऑल माई होप्स बट स्टिल वट एवर हर सेइंग्स आर देयर, मैं उसको याद करके उसको मेरा लाइफ का एक एम्बिशन एक गोल बना लिया। तो
4: जी,
5: गोल
4: आपकी
5: बना
4: माँ
5: के।
4: ने जो आपको अपने शब्दों के द्वारा जो बल भरा था कि जो बच्चे आपके साथ खेलना नहीं चाहते, आने वाले टाइम पे वही बच्चे आपके साथ खेलने के लिए तरसेंगे या वो सोचेंगे कि कैसे हम खेलें, इन शब्दों में ही आपकी माता जी ने, आपकी माँ एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनी, मैं कहूँगा एक माध्यम बनी, कि परमात्मा ने आपकी माता जी को चुन करके उनके शब्दों से आपके भाग्य का निर्माण कर दिया। अगर आप सोचे कि कैसे खेलना है, क्योंकि जनरली खेल को तो लोग एसोसिएट ही नहीं कर पाते कि भाई कोई व्यक्ति जो देख ही नहीं सकता वो कैसे खेलेगा, लेकिन आज वही व्यक्ति पूरे देश भर में न केवल अपना लेकिन अपने माता पिता का नाम गर्व से ऊंचा कर रहा है। तो ये तो आपके माँ के आशीर्वाद का ही कमाल है, और आपकी माता जी का जो प्यार है, जो आशीर्वाद है, वो हमेशा आपके साथ रहने वाला है, वो तो बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाला, आपके साथ आपके साये की तरह वो जाएगा।
5: सही बात बोला सर आपने, सही बात बोला सर। उनको जो उनका जो एक एक बात बोला हुआ मैं अभी भी मेरा दिल में छुपा के रखा हूँ सर। उसको मैं हर रोज याद करता हूँ और रोज मैं आगे बढ़ने का और दूसरों को इंस्पिरेशन करने का, उनका इंस्पिरेशन से
4: जी
5: मैं दूसरों को इंस्पिरेशन करने का मैं हर रोज एक एक स्टेप्स बनाता, जब बनाते चढ़ते चढ़ते जा रहा हूँ सर।
4: जी
5: तो तब
4: बिल्कुल
5: उनका गुजरने के बाद मैंने जो ब्लाइंड स्कूल में था वहाँ पे समर ओकेशन वगैरह सब नेक्स्ट आते थे, तो तब सभी लोग लड़की लड़का लोगों का डैडी मम्मी माँ बाप सब आते थे और उनको गाँव लेके जाते थे। 2 महीने वो लोग खूब प्रोजेक्ट करके आते थे और मुझे लेके जाने के लिए कोई भी नहीं आता था सर, कोई भी नहीं आता था। मैं हॉस्टल पे ही रहता था तो मुझे उधर भी एक माँ मिल गई, उधर एक टीचर थी अंबिका मिस करके, उन्होंने भी वो भी शादी नहीं किया सर, उन्होंने भी दीक्षा लिया था, तो उन्होंने मेरा मुझे माता का जगह दे दिया सर। जब मैं 2 महीने पूरा, हमारा स्कूल में वो एक आश्रम है सर, इट इज बिलोंग्स टू रामकृष्णा मठ। हाँ सर, रामकृष्णा मठ। तो रामकृष्णा मठ में जैसे आपको सब पता है जैसे आश्रम में एक गाय वगैरह और जैसे छोटा मोटा खेत वगैरह, हमारा स्कूल को 15 एकड़ का था। वो स्कूल हम स्कूल के लिए बाहर से कुछ भी नहीं खरीदते थे, वहीं पे सब्जी वगैरह उगाते थे, गाय 60-70 गाय थे, वो गोबर गैस से हम लोग स्कूल में खाना बनाते थे और जैसे फूल पौधे वो सब सब कुछ स्कूल पे ही था सर, कुछ बाहर से कुछ नहीं खरीदते थे। वो स्कूल पब्लिक डोनेशन से चलता था। जब 2 महीना में रोज पर
4: और
5: दूध
4: मैंने आपके
5: निकालना,
4: बायोडाटा मैंने आपके बायोडाटा में यही पढ़ा कि अगर क्रिकेट में आप कुछ नहीं करते तो आप किसान बनते, और मुझे ये चीज का बड़ा रोचक लगता कि नेचर के साथ या किसानी के साथ आपने खुद को कैसे जोड़ लिया। तो अभी समझ में आता है कि क्यों आपको कृषि या किसान बनने का इतना मन था। सो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और मैं समझता हूँ वो लोग जो जानते हैं कि कैसे भोजन को उगाया जाता है वो कभी भूखे नहीं रह सकते, और आज के जमाने में हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि कैसे भोजन उगाया जाता है, ताकि वो अच्छा भोजन खाए, केमिकल और रसायनों से मुक्त भोजन कर सके, उनको पता हो कि मेरा भोजन कहाँ से आ रहा है। तो ये कृषि जो है, एक मैं समझता हूँ एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही आवश्यक जीवन कला है, ये हर एक को सीखना चाहिए। और वाकई में आपका जो स्कूल था या जो आपका हॉस्टल था वो बहुत ही दूर का सोचता था, उसने हर एक को ये सिखाया है स्वावलंबी कैसे बने। मैं समझता हूँ आज के जमाने में अगर सभी स्कूलों में, सभी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में अगर इस परंपरा को शुरू किया जाए तो हर व्यक्ति समझ पाएगा एक कृषक के जीवन में कितना मुश्किल होता है, किसी चीज को उगाना, उगाने के बाद दूसरे तक तो पहुंचाना, लेकिन उसको उगाने में कितना श्रम, परिश्रम, कितना मेहनत होता है, ये जब तक व्यक्ति नहीं समझेगा तब तक वो भोजन का कदर नहीं कर सकता।
5: तो सर
4: इसलिए
5: आजकल के
4: आपके
5: लोग, आजकल के
4: हॉस्टल
5: लोग
4: ने, आपके हॉस्टल ने तो आप में वो चीज कूट कूट के भरा है।
5: सर आजकल के लोग कितना खाना वेस्ट करते हैं, उनको वो ठीक से नहीं सोचते कि ये खाना जो हम लोग अभी खा रहे हैं इसका पीछे कितना लोगों का एक श्रम है, कितना लोगों का एक दान है। तो
4: जी
5: सब
4: जी
5: हमेशा सोच के हम लोग जिंदगी गुजारना है सर। तो मुझे बचपन से ही वही सिखाया गया और वहाँ पे मैंने जो 2 महीना स्कूल में काम करता था, तो उसके बाद अंबिका मिस ने मुझे मुझे कोई कपड़ा कपड़ा वगैरह, मेरा जो शर्ट पैंट टॉवल पेस्ट सोप वगैरह कोई भी नहीं लेके के देते थे ना, तो अंबिका मिस उनका सैलरी में, उनका सैलरी का पैसा में मुझे टॉवल सोप और कपड़े पैसे पैसे, यानी कि हमको पैसा का जरूरत ही नहीं था, इसे हम मुझे कुछ कोई भी एक चीज का कमजोरी नहीं होना चाहिए ऐसे। और वहाँ पे सोने के लिए जैसे मस्किटो का नेट वगैरह सब मुझे दिलाया गया। बाद में मैं जब हमारा स्कूल का एक रूल्स रेगुलेशन वगैरह सब बहुत कठिन था सर। हम लोग 5 बजे उठना है, 5 से 6 स्नान करना है, 6 से 7 योगा प्रेयर है, 7 से 7:30 योगा है, बाद में स्टडी टाइमिंग, ब्रेकफास्ट में क्लासेस, आफ्टरनून डांस क्लासेस, इवनिंग भरतनाट्यम क्लासेस, तो बाद में तबला और सब बाद में और प्रेयर, स्टडी, लंच और 9 बजे सो जाओ। तो पूरा दिन हमको इतना बिजी रखते थे कि हम लोगों को कोई दूसरा चीज सोचने का नहीं, खाली हम लोगों को आध्यात्मिक तरफ से हम लोगों को सोचना है और उस तरफ बढ़ना है। तो ऐसा हम लोगों को सिखाया जाता था। तो उसी एक स्टेप मेरा लाइफ में डिसिप्लिन, कोई अगर इंसान एक आगे बढ़ना है और उसको कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, तो डिसिप्लिन इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी लाइफ। तो डिसिप्लिन नहीं, आप पहले से ही आपके साथ नहीं लेके आएंगे तो जिंदगी बिगड़ जाएगा। डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, जो सब चीजें है आपको बहुत बड़ा एक आदमी बनाएगा। तो मैंने पहले से ही बहुत डिसिप्लिन से आया और मेरा जिंदगी मैंने बांध ली। तो जैसे स्कूल में मुझे सिखाया गया, जो कोई एक अकाउचेट का यानी कि अकाउचेट का काम हो, खेत का काम हो, पढ़ने का, मुझे एक्चुअली सर पढ़ने के लिए इतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे वो एक क्रिकेट खेलना, और मैं कभी कभी क्लास में नहीं रहता तो वो टीचर थोड़ा 5-10 मिनट लेट आएंगी तो मैं बाकी जाके क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में चला जाता, और क्लास में वो लोग अटेंडेंस डालते समय शेकर करके बुलाएगा तो मैं यस मैम करके नहीं बोलता था ना, हाँ, तो तुरंत वो समझते थे कि शेकर ग्राउंड पर भाग गया। तो वो लोग मुझे आके कान पकड़ के खींच के लेके आके पढ़ना इम्पोर्टेंट है, खेलना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है करके बताते थे। तो ऐसे भी मुझे एक बार अंबिका मिस ने बताया, तब मैं 6th स्टैंडर्ड था लगता है, उन्होंने मुझे बताया कि शेखर अगर आप पढ़ोगे लिखोगे तो आप एक अच्छा आदमी बनोगे। सो यही एक जिंदगी का सीक्रेट है, वट एवर द नॉलेज यू विल गेट इन योर लाइफ, दैट काइंड ऑफ ग्रोथनेस यू विल हैव करके मुझे बताते थे। तो क्रिकेट वगैरह, क्रिकेट, म्यूजिक, वो ये तो जो साइड एक्टिविटीज है वो जैसे सब्जी जैसे है, अगर आपको जिंदगी में बन के दिखाना है तो, और चावल सब्जी रोटी खाना है तो यही आपको, ये है एजुकेशन है, चावल रोटी सब्जी, इसको खाएगा तो आपका पेट भरेगा। थोड़ी वो साइड डिशेस लाइक सब्जी, खाली सब्जी नहीं तो अचार, ये सब अचार से आप पेट भर सकते हैं क्या? क्रिकेट अचार जैसा है, क्रिकेट में लक नहीं है, क्रिकेट में ग्रोथ नहीं है, आपको सब्जी चावल खाएंगे तो आप अच्छा आदमी बनोगे, तंदुरुस्त रहोगे। तो सर उसी दिन मैं डिसाइड कर लिया कि से मिस ने साइड डिश को जैसे अचार वगैरह और दूसरे दूसरे चीजें रहते हैं ना, पापड़ की पेड़ वगैरह, तो क्यों ना मैं वो अचार या पापड़ को मैं मेन कोर्स में लेके आके मेरा जिंदगी उसमें नहीं लेके जाऊं। तो मैंने वो साइड डिशेस को मेन कोर्स में लेके आके, जैसे क्रिकेट को मेरा लाइफ का मेन कोर्स में लेके आके, मैंने एक अच्छा क्रिकेट खेलना चालू किया और क्रिकेट मुझे बहुत प्रेरित किया और मैं भी क्रिकेट को बहुत प्यार किया और क्रिकेट मुझे यहाँ तक हाथ पकड़ के लेके आया। तो
4: और यहाँ तक आपको हाथ पकड़ के लेकर के आया, आगे भी लेकर के जाएगा, और आपके द्वारा कितनों का कल्याण कराने वाला है ये तो हम जानते ही हैं। वर्ष 2017 में भारत सरकार ने आपको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। ये सम्मान अपने आप में ये बता देता है कि आपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा पूरे देश को एक ऐसा रुतबा दिया है जो कि अतुलनीय है। इसलिए आपका तो जीवन अपने आप में बहुत बड़ा एक, मैं कहूँगा, फिल्म की तरह है जिसको जितना देखे उतना देखने का मन करता है। लेकिन आप शुरू करते कुछ सवालों से, जैसे आपके अंबिका मैम ने कहा कि जो वो क्रिकेट है या जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है या खेल कूद है, ये साइड डिश है, और जो पढ़ाई लिखाई है वो मेन है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि विद्या जो है वो बहुत आवश्यक होता है। किसी भी फील्ड में अगर व्यक्ति थोड़ा पढ़ लिख ले तो वो आगे बढ़ने में उसको मदद जरूर करता है। लेकिन आज आप इस चीज को कितना मानते हैं, क्योंकि आज तो साइड डिश ने ही आपको मेन कोर्स बना दिया है।
5: सर आजकल के लड़के लड़की लड़का लोगों का मैं थोड़ा माइंडसेट बताता हूँ। आजकल कैसा हो गया कि मोबाइल जैसे इंटरनेट लैपटॉप सब आके सुबह उठेंगे, माँ मम्मी डैडी ने उनको डांट डांट के उठाएंगी और मार के बाथरूम में भेजेंगी, फ्रेशअप आएंगे और जबरदस्ती से खाना खिलाएंगे और जबरदस्ती से उनको धकेल के स्कूल का बस में चढ़ाएंगे। वो लोग उधर जाके थोड़ा बहुत मस्ती करेंगे, पढ़ेंगे, दोपहर को खाना खाएंगे और थोड़ा दोपहर मस्ती करके और वैन उतरते ही मैं थक गया करके घर आएंगे और मोबाइल टीवी लैपटॉप भी किया तो थोड़ा बहुत इंटरनेट वेस्ट करेंगे। तो सभी लोग वेस्ट नहीं करते हैं, कुछ लोग इसका फायदा भी उठाते हैं, इससे सीखते हैं। ज्यादा से ज्यादा 70% लोग जैसे दूसरे दूसरे वीडियोस, कॉमेडीज, रील्स वगैरह सब देख के उसको मजे करके बाद में कुछ खा के थोड़ा देर पढ़ेंगे, पढ़ने के टाइम पे भी वो ये मोबाइल देखते रहेंगे, वो ये करेंगे, बाद में खाना खाएंगे, सो जाएंगे। तो आजकल का जिंदगी ऐसा हो गया सर, क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्रोइंग टेक्नोलॉजी। एक्चुअली सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अब हम लोग मेहनत करके पहाड़ चढ़ेंगे तो 40 साल तक हम लोग पहाड़ चलेंगे तो पहाड़ चढ़ेंगे तो चढ़ने के बाद क्या मिलता है सर? टॉप ऑफ द हिल यू विल गो, आफ्टर द रॉड यू विल फाइंड, वहां पे बस आपको बैठना है। आप खाली खुद बैठेंगे तो आप जर करके नीचे आप चुपचाप आते रहेंगे।
4: जी
5: यहाँ पे लोग कैसा उन लोग का लाइफ को फंसा लिया है पता ना, पहले ही वो लोग जर करके नीचे चले जाएंगे 40 साल के पहले, और ऊपर चढ़ने के लिए तब तक एज हो जाएगा, ऊपर चढ़ने के लिए नहीं हो
4: मतलब जो जीवन का जो ऐसा समय है जब पुरुषार्थ किया जा सकता है, मेहनत किया जा सकता है और एक मुकाम को हासिल किया जा सकता है, उस समय अगर हमने खुद को वो राह नहीं दिया तो फिर ऑलरेडी हमारा जीवन का जो राह है वो नीचे की ओर जा रहा है। ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने, बहुत
5: हाँ
4: अच्छा
5: सर
4: उदाहरण
5: नीचे चले
4: दिया।
5: जाएगा, बाद में ऊपर चढ़ने के लिए नहीं होगा। इसलिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आज का जो यूथ है, स्टूडेंट्स है, जो जो लोग अचीव किया है या नहीं अचीव किया है, जिंदगी तो आज आया है, ये तो नश्वर है, पता नहीं कल क्या होगा। तो हमेशा हम लोग ये सोचना है पॉजिटिवली कि हम लोग आज जितना मेहनत करेंगे पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और अपना फैमिली चलाने के लिए, पैसा बचाने के लिए और ऑफिस में काम करने के लिए, हम लोग कितना डेडिकेशन, कितना हार्ड वर्क से हम लोग एक यूनिटी से काम करते जाएंगे, उतना हम लोग पहाड़ चढ़ते चढ़ते चढ़ते चढ़ते ऊपर जाना है। आपका रिटायरमेंट या 50 साल के बाद आप ऊपर पहुंचोगे, तब आपका जिंदगी धीरे से आराम से आप नीचे आते रहेंगे, झूला झूला खेलते रहेंगे। तो पहले ही
4: जी
5: आप लोग मजे करने लग गए तो पहले ही जो जो कर सर जो जो टाइम पे जो जो चीजें करना है वही चीज करना है,
4: जी
5: जो
4: समय
5: हमको
4: अनुरूप
5: अभी
4: जो काम है,
5: यस
4: जो
5: यस
4: समय
5: जो
4: अनुरूप जो कर्म है वो
5: हाँ
4: समय
5: जी
4: के अनुसार किया जाए तो समय का बहुत मदद मिलेगा।
5: या वो
4: जी
5: आने से पहले, वो हमको सुख संतोष आने से पहले हम उसका एंजॉयमेंट कर लिया तो अब वो आने का सही समय पे वो दुख लेके आएगा।
4: ये जो
5: तो
4: आपने
5: हम
4: बात कही कि समय की अनुकूलता के अनुसार अपने जीवन के लक्ष्य को बांधा जाए तो जीवन न केवल सरल हो जाता है लेकिन बहुत स्वादिष्ट भी हो जाता है, सुख मिलता है उसमें। दोस्तों, शेखर जी से बात करते हुए समय का पता ही नहीं चलता है क्योंकि इनकी कहानी में वो जज्बात है जो कि हमें हमारे जीवन पे गौर करने पे मजबूर कर देता है। कैसे एक ऐसा जीवन जिसकी शुरुआत ही थोड़े अंधकार में हुई हो, जहाँ थोड़ी सी रोशनी जब आ जाती है तो क्या कुछ नहीं करने का मन करता है, लेकिन जब एकाग्रचित होकर के व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है तो वो अपने निश्चित किए हुए ध्येय पर खरा उतरता है। शेखर नायक जी की कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, सुनते रहिएगा रेडियो मधुबन और यशस्वी भारत को। जय हिंद, जय भारत।
6: मित्रांशिवाय आयुष्य अपूर्ण, हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर करायचं।
7: तेरे जैसा यार कहां, ऐसा यार आला।
6: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं।
8: लकडी की काठी, काठी पे घोडा।
6: मनात पीठ वाजल्या की शरीर अपोआप फिरकतं। त्याच सोबत
9: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध।
8: दिसा मेले की चला रे बटुरिया,
6: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा.
10: पहला नशा, पहला खुमार.
6: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंदी रहा, आनंद लुटा.

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा. कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत.
1: अश्विनी ये ना, ये ना.
0: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं.
2: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे.
0: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत.
3: दादी भोळी माझी आई, सुखाची कुसावली.
0: या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
4: नमस्कार प्रिय श्रोताओ, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन. मित्रों, हमेशा की तरह मैं आज फिर एक नया विषय लेकर आया हूं और आज का विषय है भय, चिंता और शांति गीता के दृष्टिकोण से. हम सब कभी न कभी डरते हैं. भविष्य का डर, असफलता का डर, बीमारी का डर, रिश्तों के टूटने का डर. चिंता तो मानो हमारे मन की स्थायी मेहमान बन गई है. ऐसे में प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में शांति संभव है? महाभारत के युद्ध क्षेत्र में खड़ा अर्जुन भी भय और चिंता से घिरा था. अपने ही सगे संबंधियों को सामने देखकर उसका मन कांप रहा था. धनुष हाथ से गिर पड़ा. वह कहता है, हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है. यानी अर्जुन की स्थिति भी आज के आधुनिक मनुष्य जैसी ही थी. भगवद गीता हमें सबसे पहले यह समझाती है कि भय का मूल कारण है आसक्ति और अज्ञान. श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित है. अर्थात परिवर्तन जीवन का नियम है, लेकिन हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, इसलिए डरते हैं. गीता का पहला सूत्र है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो. हमारी चिंता का सबसे बड़ा कारण है परिणाम. मैं सफल होऊंगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे, भविष्य कैसा होगा. गीता कहती है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं. यह बात सुनने में आसान लगती है, पर जीवन में उतारना कठिन है. आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं. एक किसान ने बीज बोए, रोज खेत जाकर देखता अंकुर निकला या नहीं. कभी बारिश की चिंता, कभी धूप की चिंता. एक दिन उसने एक बुजुर्ग किसान से पूछा, भाई मैं इतना परेशान रहता हूं फिर भी फसल की कोई गारंटी नहीं है. बुजुर्ग किसान बोला, बेटे तू बीज बो, पानी दे, मेहनत कर, फसल भगवान की जिम्मेदारी है. यही गीता का संदेश है, मेहनत तुम्हारी, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो. अब प्रश्न आता है, शांति कैसे मिले? गीता कहती है, शांति बाहर नहीं भीतर है. जब इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती हैं तब चिंता जन्म लेती है. श्लोक का भाव है, जो व्यक्ति इच्छाओं को त्याग कर अहंकार और ममता से मुक्त होकर जीवन जीता है वही शांति पाता है. आज हम कहते हैं, बस यह मिल जाए तो शांति मिल जाएगी, लेकिन मिलता कुछ और है. फिर एक नई चिंता, एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है. गीता हमें सिखाती है, कम इच्छाएं अधिक संतोष. श्री कृष्ण अर्जुन से रणभूमि में कहते हैं, मन चंचल है लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है. मतलब रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास. जैसे शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही मन के लिए ध्यान, जप, प्रार्थना और सकारात्मक सोच जरूरी है. एक वास्तविक जीवन का उदाहरण देता हूं. एक व्यक्ति नौकरी खो बैठा. पहले दिन घबराया, दूसरे दिन उदास रहा, तीसरे दिन उसने खुद से कहा, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, परिणाम ईश्वर पर छोड़ूंगा. उसने रोज नियमित समय पर प्रार्थना शुरू की और साथ ही साथ अपने कौशल पर भी काम किया. कुछ महीनों में उसे नई नौकरी मिली जो कि पहले से भी बेहतर थी. वह कहता है, नौकरी नहीं, गीता ने मुझे शांति दी. तो फिर गीता का दृष्टिकोण क्या है? गीता का दृष्टिकोण है भय का कारण आसक्ति और अनिश्चितता है। समाधान कैसे मिले? कर्तव्य करो, फल की चिंता छोड़ो। शांति का मार्ग क्या है? शांति का मार्ग है संयम, संतोष और अभ्यास। मित्रों, चिंता भविष्य की कल्पना है और भय अतीत की परछाई, लेकिन जीवन तो वर्तमान में जिया जाता है। गीता हमें वर्तमान में टिकना सिखाती है। अंत में मैं एक पंक्ति के साथ विदा लेना चाहूंगा, जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार को भी जीत लिया। मित्रों, इसी के साथ आज हम विराम लेते हैं। आप सुन रहे थे ज्ञान चिंतन। आज का विषय था भय, चिंता, शांति, गीता के दृष्टिकोण से। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए विचार और एक नई ऊर्जा के साथ। बने रहिए हमारे साथ रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। नमस्कार, खुश रहें, खुशियां बांटें।

0: ऐकलत का हो आमचा रेडिओ पुणेरी
1: नमस्कार. वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज. वेलकम सिस्टर.
2: ओम शांति.
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति.
2: थैंक यू सो मच.
1: तो एक लाइन पढ़ रहा था जो मेरी समझ में नहीं आ रही है. विद इन योर सेल्फ इज अ स्टिलनेस अ सैंक्चुरी टू विच यू कैन रिट्रीट एट एनी टाइम एंड बी योर सेल्फ. क्या ये योर सेल्फ आत्मा है? हाँ, तो उसके अंदर सैंक्चुरी अगर होती, रिट्रीट में कर सकता है, कर सकता हूँ, तो कभी का कर लिया होता.
2: हम बाहर रिट्रीट्स पे जाते हैं. आप देखो, पूरे साल में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें, चैलेंजेस फेस करते करते उतार चढ़ाव बाहर, उतार चढ़ाव अंदर, और सब कुछ होते हुए फिर हम कुछ महीनों के बाद कहते हैं आई जस्ट नीड टू गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ऑल दिस फॉर 5 days. मुझे इन सब चीजों से अपने आप को थोड़ा सा किनारा करके, अपने आप को रिचार्ज करके, मुझे सब चीजों से थोड़ा दूर एक रिट्रीट के लिए जाना है 4-5 दिनों के लिए. ऐसा करते हैं हम, और हर एक अलग अलग जगह पे जाता है उसके लिए. लेकिन हम जाते हैं एंड वो 5 दिन में हम क्या करते हैं? हम बाह्य सब चीजों से विड्रॉ करके, अपनी जिम्मेवारियों से, अपने जीवन के चैलेंजेस से विड्रॉ करके, हम अपने आप के साथ 5 दिन स्पेंड करते हैं. राइट? हम 5 दिन 10 दिन की मेडिटेशन रिट्रीट पे जाते हैं. उसमें हम अपने थॉट्स को देखते, फीलिंग्स को देखते, कहाँ कहाँ हमने क्या क्या क्रिएट किया उसको चेक करते, किस चीज को चेंज करना, किस चीज को क्लीन करना है वो देखते हैं. हायर सुप्रीम सोर्स से कनेक्ट होते हैं, अपने आप को पावरफुल बनाते हैं. वो सब हम करते हैं उस 5-10 दिन की रिट्रीट के अंदर. वो सब करके हम बहुत एनर्जाइज्ड, रिचार्ज्ड फील करते हैं, और ये सब करके हम फिर वापस आते हैं दुनिया के अंदर. जो आपने कहा, उस जिम्मेवारियों की दुनिया के अंदर, उस चैलेंजेस की दुनिया के अंदर, राइट,
1: वर्ल्ड में
2: कुछ दिनों तक उस रिट्रीट का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है. है ना, कि हम थोड़ा सा सॉफ्ट रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, रिएक्ट ज्यादा नहीं करते, जिसको हम कहेंगे हम थोड़ा सा शांत वाली स्थिति में रहते हैं. क्योंकि हम अभी अभी वो चीज का अनुभव करके, वो स्थिति क्रिएट करके अब परिस्थिति में आए हैं. ठीक? तो कुछ दिनों के लिए हमारा व्यवहार थोड़ा सा बदला हुआ रहता है.
1: कुछ दिनों होता है किसी के लिए, कुछ घंटे होता है किसी के लिए, और किसी के लिए तो रिट्रीट का बिल देते समय झगड़ा हो जाता है कि मैंने ये नहीं यूज किया था, ये किया था, आपने कितने पैसे ले लिए, ये किया वहां से, फिर गाड़ी नहीं मिली, वो टैक्सी वाले को दिया था, आपको सो ये ब्रेकफास्ट फ्री था, आपने चार्ज कर दिया, कितने झगड़े देखता हूँ मैं रिट्रीट सेंटर्स पे.
2: विच मीन्स किसी के लिए पावर कुछ मिनट्स के लिए रहती है ना, किसी के लिए पावर कुछ घंटों की रहती है, और किसी के लिए पावर कुछ दिनों की रहती है.
1: ये घंटे और दिनों भी नहीं है, ये कनेक्टेड टू मनी है. जैसे इसका पैसे का मामला आया देने के टाइम पे,
2: हाँ,
1: ये आदमी को डिस्टर्बेंस शुरू हो गया.
2: कनेक्टेड टू मनी, कनेक्टेड टू मनी इज फाइन. लेकिन हम वही, इट डजंट मीन के हम अपना पैसों में नुकसान कर देंगे, लेकिन इट जस्ट मीन्स कि हम अगर ग्राउंडेड हैं, पावरफुल हैं, हम उस परिस्थिति को थोड़ा सा एक डिफरेंट तरह से क्रॉस करेंगे. इट डजंट मीन कि कोई मुझे चीट कर रहा है एंड आई से आई एम जस्ट कम बैक फ्रॉम अ रिट्रीट, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरा मन नहीं है इसमें सॉर्ट आउट करने का.
1: स्टेबिलिटी की बात करूँ कि मैंने कहा वहीं हिल जाते हैं लोग.
2: हाँ, वहीं हिल जाते हैं ना,
1: रिसेप्शन पे हिल जाते हैं.
2: राइट, किसी का डिस्टर्बेंस तुरंत, आपने कहा पेमेंट करते ही हो गया, किसी का डिस्टर्बेंस कुछ घंटों के बाद एयरपोर्ट तक पहुंचते हुए या घर पहुंचने के बाद कुछ पता चले ये 10 दिन में क्या क्या हुआ था, और हम डिस्टर्ब हो गए, वी जस्ट लॉस्ट इट दैट टाइम. तो कोई कुछ मिनट्स बाद हार जाता है परिस्थिति से, कोई कुछ घंटों बाद, और कोई कुछ दिनों बाद, और किसी का इफेक्ट काफी लंबा चलता है. लेकिन जो ये आपने अभी पढ़कर सुनाया कि यू हैव अ सैंक्चुरी वे यू कैन रिट्रीट इन टू एनी टाइम दैट यू वॉन्ट, क्योंकि ये जो हम रिट्रीट कर रहे हैं विच इज वेरी यूजफुल, लेकिन ये हम हर बार हर रोज नहीं कर सकते ना. हमें अगर हर बार हर रोज पावरफुल रहना है, अभी क्या हो रहा है, हम कुछ दिनों में वो करते हैं, लेकिन आकर परिस्थिति से फिर हार जाते हैं, क्योंकि हमारी रिट्रीट उतने ही दिन की थी। लेकिन अगर हम एक ऐसा मेथड क्रिएट करें जिससे जो हम वो रिट्रीट में करते थे कि चेक करना, क्लीन करना, साइलेंस में हो जाना, अगर हम कुछ ऐसी मेथडोलॉजी क्रिएट करें कि वो रिट्रीट हम कभी भी कहीं भी बैठे हुए हर रोज कर सकते हैं, तो जो उस रिट्रीट का इफेक्ट हम पर पड़ रहा था वही इफेक्ट हम पर रोज पड़ना शुरू हो जाएगा। और अगर वो रिट्रीट हम रोज करने लग जाएं, तो डोंट यू थिंक द सोल विल बी मोर पावरफुल? इट्स गेटिंग अ चांस टू रिट्रीट एवरी डे। ये हर रोज हम कर सकते ना,
1: लेकिन उसका रास्ता मालूम है, रिट्रीट का इसका नहीं मालूम।
2: हम जब मेडिटेशन रिट्रीट पे जाते हैं, करते क्या है हम वहां जाके? हम सारी चीजों से विड्रॉ करते हैं, हम सिर्फ अपने पर फोकस करते हैं। यही करेंगे रिट्रीट में जाके, यही तो करेंगे ना। अपने थॉट्स को चेक करते हैं, कहां क्या मुझे कौन सी इमोशनल ब्लॉकेज है, कौन सी बात मैंने पकड़ के रखी हुई है, कौन सी चीज को मुझे अब छोड़ना पड़ेगा अंदर।
1: एक हार्ट स्पेशलिस्ट है, वो साल में एक बार कहीं चला जाता है जिसका एड्रेस भी किसी को नहीं मालूम है और फोन घर पे छोड़ के जाता है। ऑफिस पूरा बोलता है वी डोंट नो सर। मैंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता है। बोला मुझे इतने ऑपरेशन करने पड़ते, इतना मुझे वो है, आई नीड दैट।
2: यस आई नीड दैट, सो आई नीड दैट टाइम फॉर माई सेल्फ, जहाँ एकदम सब चीजों से हम डिस्कनेक्ट हो जाएं। लेकिन जैसे आपने कहा, ये साल में एक बार कर सकते हैं, साल में दो बार कर सकते हैं, और कितनी बार करेगा कोई जो बहुत जीवन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ऑक्यूपाइड है। लेकिन फिर उसका रिजल्ट क्या होगा कि वो कुछ दिनों के लिए बहुत काम, पीसफुल और रिलैक्स्ड हो जाएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर 365 डेज हम स्ट्रेस्ड सिचुएशन में रहेंगे तो डेफिनेटली इट विल टेक अ टोल ऑन आवर सेल्फ। लेकिन अगर कुछ दिनों के लिए भी हम इस तरह से विड्रॉ कर लेते हैं, वो हमें एट ईज ले आता है, माइंड को भी, बॉडी को भी। लेकिन जब हम वापस जाएंगे तो हम वापस उसी सिचुएशन में फिर वही डिस्टर्बेंस क्रिएट करना शुरू कर देंगे। मेडिटेशन मींस कि हर रोज थोड़ी देर के लिए अपनी रिट्रीट पर चले, विच मींस थोड़ी देर के लिए सब जिम्मेवारियों से, फोन से भी आपने कहा तो फोन से भी, सारी बातों से कुछ मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, जितना जो निकाल सके, रोज 15-20 मिनट के लिए भी अपने फोन, अपनी जिम्मेवारियां, अपने लोग, अपनी सब सिचुएशन से विड्रॉ करके अंदर रिट्रीट पर चलें। अगर एक साल का 365 डेज के लिए हमें 10 डेज जाना पड़ता है, 5-10 दिन, हम 365 दिन की चार्जिंग के लिए 5-10 दिन जाते हैं, और हम ये देखते हैं कि 5-10 दिन की चार्जिंग 365 दिन पर इफेक्ट नहीं करती है, इट डजंट स्टे दैट लॉन्ग, तो क्यों ना हम 24 घंटे की चार्जिंग के लिए आधा घंटा निकालना शुरू कर दें, 15 मिनट निकालना शुरू कर दें। दैट इज मेडिटेशन, कि सब चीजों से विड्रॉ। उस केस में हम फिजिकली विड्रॉ हो जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं। इस केस में हम जिस घर में रह रहे हैं, हम जहां हैं वहीं अपनी एक जगह पर बैठकर, लेकिन सारी बाहर की चीजों से कुछ मिनट्स के लिए विड्रॉ कर यहां बैठ जाते हैं। चेकिंग, क्लीनिंग, कई बार क्या होता है, सारा दिन में इतना कुछ हो रहा है, माइंड इतना कुछ क्रिएट कर देता है कि हम बाहर की सिचुएशन से तो फिर भी डिटैच हो जाते हैं। जैसे रात को सोए तो हम सिचुएशन से डिटैच हो जाते हैं, लोगों से भी डिटैच हो जाते हैं, लेकिन हम अपनी इमोशंस, अपने यहाँ जो चल रहा है उससे डिटैच नहीं होते, उसी में उलझे रहते हैं, इसलिए रात को नींद भी अच्छी नहीं आती है। अगर हम कुछ मिनट्स के लिए सिर्फ लोगों से और सिचुएशन से नहीं, अपनी इमोशन से भी डिटैच होने का प्रयास करें कि ये जो मुझे इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये जो मुझे इतना हर्ट क्रिएट हो रहा है, ये मुझे जो बात इतनी बुरी लग रही है, ये जो बात मुझे इस पर इतना गुस्सा आ रहा है, 2 मिनट इससे भी अलग होके इसको भी ठीक से देखने की कोशिश करें, ये क्यों क्रिएट हो रहा है, इसके पीछे की क्या थॉट है, व्हाट डू आई वांट, व्हाट बिलीफ सिस्टम इज गेटिंग डिस्टर्ब।
1: ये करने के लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है। जब माइंड डिस्टर्ब्ड है तो ये आप जो बातें कर रहे हैं वो थॉट आएगी कैसे कि इसके पीछे क्या है। जब आप उसी के अंदर ही हैं, जो सपने में आदमी देख रहा है सपना और रो रहा है कि देखो मेरा बाप मर गया, तो जागा हुआ है वो ही उठा सकता है, भाई तू क्यों परेशान हो रहा है।
2: आपने कभी एक्सपीरियंस किया कि आपने सपने को साक्षी होकर देखा है?
1: हाँ,
2: आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया?
1: बहुत बार।
2: कि सपना भी चल रहा है?
1: हाँ।
2: मतलब वो एक सीन भी चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में
1: और मैं देख भी रहा हूँ और आपको बोल भी रहा हूँ ये सपना है
2: ना। ये क्या है? ये है साक्षी होना अपने ही थॉट से।
1: ये अभी अभी शुरू हुआ है साल भर से।
2: तो साक्षी किस चीज से हुए? घुसे भी उसी के अंदर है, सपना भी अपना ही है
1: और अपने आप को बोल भी रहा हूँ,
2: अपने आप को देख भी रहे हैं। अच्छा, उस सपने के अंदर भी हो सकता है हम ही है।
1: हाँ।
2: ये भी तो हो सकता है ना। कभी कभी सपने में जो कैरेक्टर्स हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं, कभी कभी वो सपने के कैरेक्टर्स में हम खुद भी हो सकते हैं
1: जी,
2: राइट? फिर भी हम उस कैरेक्टर को रोल प्ले करते हुए भी खुद अपने आप को देख सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, अपने ही थॉट से खुद डिटैच होकर अपने आप को ही देखा
1: और अपने आप को बोला भी।
2: हाँ, ये सपना
1: ही है।
2: हाँ, मतलब अगर उस सपने में कुछ फियर क्रिएट हो रहा था। हाँ, या कुछ क्रिएट हो रहा था,
1: सडनली जाग के बोला ये सपना है, डोंट
2: वरी। अपने नहीं, कई बार बिना जागे भी हो सकता है, है ना?
1: हो सकता
2: है ना,
1: वो भी हो सकता है।
2: हाँ, कि दिस इज हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस कि दिख रहा है सपना है, सपने की इमोशन भी दिख रही है, सपने के अंदर की सीन की इमोशन भी दिख रही है कि सपोज फियर है, कोई ऐसा सीन क्रिएट हुआ और इतने प्यार से अपने आप को कह रहे हैं सुखी, ये सपना है।
1: परिस्थिति को, रिलेशनशिप को
2: इसको सपना नहीं कह सकते,
1: नहीं सपना कह सकता,
2: ये सपना
1: ना
2: है भी नहीं ना।
1: तो वहाँ तो सच्चाई में हो जाता है। तो उस डिस्टर्ब्ड में,
2: यस,
1: आप कह रही हैं कि उस डिस्टर्ब्ड माइंड में भी अपने आप को समझाओ।
2: बट करना ये वाला है, अब इसको अवेक स्थिति में देखेंगे, करनी ये वाली प्रैक्टिस है, ये जो
1: हो रही है ऑटोमेटिकली।
2: हाँ, हो रही है ना, बट हमने अनुभव कर लिया ना कि कैसे होती है। सो वी नो हाउ इट फील्स,
1: बट उसका ना स्किल आया आपको ना आपने किया। इट हैपेंड,
2: इट डिडंट हैपन। पहले क्यों नहीं था, एक साल पहले?
1: वो नहीं मालूम है मुझे।
2: आपने कहा ना एक साल से होने
1: मैंने
2: लगा,
1: कोशिश तो नहीं की। दिस इज अ गिफ्ट ऑफ मेडिटेशन मे बी।
2: आपने कहा ना पहले नहीं था अभी होने लगा। हाँ। एक साल से मीन्स सारा दिन में धीरे धीरे जितना हमने यहाँ के क्लटर को, नॉइज को, अपने रिएक्शंस को, अपनी सोच दृष्टि वृत्ति को ज्ञान से और मेडिटेशन से धीरे धीरे जैसे जैसे हमने क्लीन करना शुरू किया, हमें ये गिफ्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, विच मीन्स हमारा अवेयरनेस लेवल बढ़ता जाएगा। अब जिस आत्मा का सपने में अवेयरनेस लेवल इतना अच्छा होगा, तो जागृत अवस्था में अवेयरनेस लेवल नहीं होगा, ये तो सपने में है। जब हम
1: तो
2: डीप
1: है।
2: स्लीप में है नहीं, अब उसको करके देखना है। ये गिफ्ट हमें मिलेंगे, मतलब रिजल्ट हमें मिल रही है ये, कि जो हम सारा दिन में साइलेंट कर रहे हैं ना माइंड को, इवन 10% अगर हम अपने मन को पहले से साइलेंट कर पाए हैं, 10% भी, पहले कितना सोचते थे किसी बात के बारे में, अब ओके चलो ठीक है, फॉरगिव, अच्छा छोड़ दिया, अच्छा कोई बात नहीं, चलो पुरानी बात हुई। अब जितना ये थोड़ा थोड़ा हम करते जाते हैं तो मन की क्लटर, ये इनर जो नॉइज है, ये कम होने लगती है। जितनी ये कम होने लगती है, अवेयरनेस लेवल बढ़ जाता है। अब यही सीन को जागृत अवस्था में देखते हैं, व्हेन वी आर अवेक। राइट नाउ बट व्हेन वी आर डूइंग, सिचुएशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं है, चैलेंज नहीं है, हम सिर्फ सुबह उठे हैं ये करने के लिए, ठीक है, नॉट इन द मिडल ऑफ अ सिचुएशन। हम सुबह उठकर हम अगर अपने लिए एक टाइम फिक्स करें कि रोज 15 मिनट सुबह मुझे अपने लिए वो रिट्रीट का टाइम निकालना है, ठीक है, अब हम बैठे, साइलेंट हो गए, मतलब सारी बाकी टेक्नोलॉजी और चीजों से तो पहले अपने आप को दूर कर लिया, लोगों से भी अपने आप को दूर कर लिया, अब साक्षी होकर अपने इमोशंस को देखते हैं, जो हम सारा दिन में भी देखते हैं, ये जो मुझे फील हो रहा है इसके पीछे की क्या डिजायर है, इसके पीछे का क्या बिलीफ सिस्टम है, इसके पीछे की कौन सी अटैचमेंट है, इससे इसके पीछे की मेरी कौन सी रॉन्ग थिंकिंग है जो मुझे, मेरे अंदर ये डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रही है, यही तो रिट्रीट है, ये रिट्रीट है, और ये सब चीज से धीरे धीरे जब हम साइलेंट हो रहे होंगे तो फिर हम वो प्योर पावरफुल थॉट जो मेडिटेशन में क्रिएट करते हैं. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग, माई ओरिजिनलिटी इज आई एम अ प्योर पावरफुल पीसफुल सोल. तो हमने अपने आप को अपने ही इमोशन से भी, अपने ही अंदर के टर्मोइल से भी थोड़ा सा अपने आप को डिटैच किया. ये डिटैच करके हम अपनी सिचुएशन को और अपने ही इमोशन को एक बेटर पर्सपेक्टिव में देख पाएंगे. जब हम डिटैच करे बिना देखते हैं तो हम अपने ईगो के थ्रू ही सब कुछ देख रहे होते हैं. लेकिन ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा हुआ, लेकिन उसने ऐसा किया, लेकिन मुझे ऐसा क्यों हुआ, ये आई एम सीइंग एवरीथिंग थ्रू माय ईगो, सब कुछ. जब हम 5 मिनट भी ऐसे हो जाते हैं, थोड़ा सा साइलेंट हो जाते हैं, तो हम ईगो से नहीं, इन सारी चीजों से भी डिटैच होकर अपने ही इमोशंस को भी देखते हैं. जब हम उसको देखते हैं तो धीरे धीरे फिर हम अपने आप से पूछते हैं, बट फाइनली इन द मिडल ऑफ ऑल दिस मुझे इनेटली क्या चाहिए जीवन में, यहाँ व्हाट इज माय प्रायोरिटी,
1: क्या चाहिए प्रायोरिटी लाइफ में,
2: वो हमें पूछना होगा ना उस टाइम अपने आप को. उस साइलेंस
1: चाहिए ना, सुख शांति हैप्पीनेस,
2: ये सबको भी छोड़ो, मुझे क्या चाहिए, सबको अलग अलग चाहिए होगा, मुझे क्या चाहिए. अगर मैं डिटैच नहीं होती और उस समय मैं अपने आप से पूछूं मुझे क्या चाहिए, तो मैं कहती हूँ मुझे चाहिए कि ये मुझे समझे, मुझे चाहिए कि ये मेरा कहना माने, मुझे चाहिए कि जो मैंने इतनी मेहनत की है उसकी अप्रिसिएशन मुझे मिले, मुझे चाहिए कि अप्रिसिएशन नहीं मिले कम से कम क्रिटिसिज्म तो नहीं मिले, ये मेरी चाहिए की लिस्ट थी. लेकिन जब ये इमोशन से भी 2 मिनट के लिए पीछे हटते हैं एंड फिर अपने आप से पूछते हैं, लेकिन फाइनली मुझे क्या चाहिए, व्हाट डू आई वांट.
1: कई बार मन कहता है गुस्से में आके मुझे कुछ नहीं चाहिए, लीव मी अलोन,
2: व्हिच मींस दैट टाइम आई एम डिस्टर्ब्ड बाय माय ओन थॉट्स, मुझे मेरा मन ही सबसे ज्यादा तंग कर रहा है.
1: लीव मी अलोन, आई वॉन्ट टू बी क्वाइट, आई वॉन्ट टू लॉक द रूम, ऑल ऑफ यू गेट आउट,
2: ऑल ऑफ यू, लेकिन
1: माई सेल्फ ऑल्सो, भाई बहन भी, रिश्तेदार भी, सब.
2: Yes. तो उनसे तो हो सकते हैं ना, लेकिन इससे करना पड़ता है प्यार से. ये इसको डांट के तो ये छोड़ के नहीं जाएगा. दूसरों को डांटेंगे अगर, सपोज हम किसी में गुस्सा के कहें रूम से बाहर जाओ, वो चला जाएगा फटाफट रूम से बाहर, कहेंगे मुझे छोड़ दो आधा घंटा, कोई मेरे से बात मत करना, सब लोग चले जाएंगे बाहर, आधा घंटा कोई बात नहीं करेगा. लेकिन मन के साथ ये वाला तरीका काम नहीं करता ना. अपने मन को हम इस तरह से नहीं कह सकते कीप क्वाइट फॉर हाफ एन आवर, मुझे बात नहीं करनी, वो नहीं मानने वाला है, वो और जोर से बात करेगा.
1: मैं उसी डिस्टर्ब सिचुएशन में गुस्से में और रोना चाहता हूँ.
2: तो अगर हम अभी और डिस्टर्ब्ड और उसी सिचुएशन में रहना चाहते हैं तो हमारी ताकत कम हो रही है ना अभी, और विच मीन्स आई वॉन्ट टू लिव इन दैट पेन मोर.
1: यस,
2: राइट,
1: ओके. सो देन मेरे को होने दो, दर्द होने दो, शक्ति कम होने दो,
2: लेकिन फाइनली कभी तो ठीक करना ही पड़ेगा उसको.
1: अपने आप होगा,
2: अपने आप नहीं होगा. एक दो दिन क्यों चाहिए, और एक दो दिन बाद भी वो अपने आप ठीक नहीं होता है. ठीक करने के लिए उस थिंकिंग के ऊपर वर्क तो करना ही पड़ेगा. अपने आप जो एक दो दिन में होगा वो सिर्फ ये होगा कि वो बोलना रोना थोड़ा सा बंद कर देगा.
1: क्या वो अपने आप को विड्रॉ नहीं कर रहा है आपसे, आपके लेक्चर से?
2: कौन विड्रॉ नहीं कर रहा?
1: मन मेरा
2: विड्रॉ कर रहा है ना. वो अपने ऊपर इस टाइम वर्क नहीं करना चाहता, ये कर रहा है. वो कहता मैं मेहनत करने का मन नहीं है. इट्स लाइक आई एम वीक फिजिकली, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, चलना चाहिए. कोई मुझे आके कहता है प्यार से वॉक करो, बोलो मुझे मन नहीं है वॉक करने का, बीमार तो बीमार, कोई बात नहीं. हम ऐसा करते हैं ना कई बार, दुखता है तो दुखता है, जाने दो, मेरा मन नहीं है करने का. अभी सामने वाला बहुत समझाएगा, बहुत कुछ कहेगा, मतलब मेरे को छोड़ दो, कमजोर तो कमजोर, देखा जाएगा बाद में क्या होता है. मैंने नहीं अभी वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी. लेकिन वो करने से हम भले कर सकते हैं, वो कुछ साल भी कर सकते हैं, कुछ दिन, कुछ घंटे भी कर सकते हैं, लेकिन फाइनली तो हमें अगर उस वीकनेस से निकल के आना है तो हमें वॉक तो करनी ही पड़ेगी. नहीं तो वीक एंड वीक एंड वीक, जो आपने कहा छोड़ दो अपने आप हो जाएगा, ये छोड़ दो अपने आप तो होगा नहीं.
1: एक ना एक दिन समझ जाता है ना.
2: एक ना एक दिन क्या समझ जाता है? एक दिन समझ नहीं जाता, एक ना एक दिन उसको मेमोरी में चुप करा के रख देता है और उस हर्ट को वहां रजिस्टर करके रोक देता है. समझ नहीं जाता, समझने के लिए तो उसको समझाना पड़ेगा।
1: तो उसके ऊपर दूसरे थॉट नई नई चीजें आती
2: जाती, नई नई चीजें आती जाएंगी और लेकिन फाइनली वो फिर उठेगा और अंदर तो चोट है ही, उसके ऊपर और कोई बात और कोई बात, फिर जितनी बातें और आएंगी क्योंकि चोट के ऊपर आई हुई बात है, दर्द ज्यादा होगा ना। इट्स लाइक एक्सरसाइज नहीं की, फिर कुछ गिरे, फिर कुछ हुए, फिर कुछ बीमारी हुई, तो इफेक्ट तो ज्यादा होता जाएगा ना। एंड फिर कुछ भी बात आई तो वो वाली चोट फिर उठ जाएगी,
1: इम्यूनिटी की जैसी कमी हो जाती है, लो हो जाती है।
2: तो टालने से हीलिंग नहीं होगी। बहुत बार दुनिया में कहते हैं टाइम विल हील, टाइम विल नॉट
1: हील। टालने से हीलिंग नहीं होगी, ये भी उस वक्त मन को कौन समझाए जब इतना डिस्टर्ब्ड है मन। तो
2: टालने से हीलिंग नहीं होगी, उसको बोलना पड़ेगा। फाइनली जब वो रो ले जितना उसने रोना था, सपोज उस टाइम नहीं भी मन कर रहा, वो रो रो के जब थक जाए, अब बोला अब तो बैठो, अब तो कर ले, हो गया तुम्हारा रोना, जितना रोना था तुमने बोल लिया, अपने आप को जितना बोलना था, जितना गलत सोचना
1: था, किसी को टाइम लगता है।
2: लेकिन फिर भी बैठना तो पड़ेगा ही, अपने आप नहीं हो जाएगा, दिस इज द थिंग। फिर भी उसको रिजोल्व करने के लिए उसके साथ बैठना तो पड़ेगा ही, एक दो दिन तीन दिन में वो अपने आप जाएगा नहीं। इट्स गेटिंग अक्यूमुलेटेड एंड अक्यूमुलेटेड एंड अक्यूमुलेटेड इनसाइड। अगर हम उसकी हीलिंग को पोस्टपोन करते हैं, या हम पोस्टपोन भी नहीं करते, हम कहते हैं अपने आप हील हो जाएगा, पेन द वुंड इज ओनली गेटिंग अक्यूमुलेटेड। अगर उस तरह से उसको सिर्फ दबा देंगे, और फिर ऐसी एक बात नहीं ना, कई बातें आती हैं, तो बहुत सारी बातें अनरिजॉल्व्ड इश्यूज दबते जाते हैं, दबते जाते हैं, और वो घाव कई बार क्रॉनिक बन जाएगा। इसलिए अगर हम ये रोज करें, मेडिटेशन में बैठे, रोज बैठे, मन परेशान है, डिस्टर्ब्ड है, उदास है, रो रहा है, नेवर माइंड, फिर भी बैठे। जैसे कभी मन नहीं है, थकावट है, फिर भी कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उसका उनको बेनिफिट होता है।
1: कई बार मुझे बुखार बुखार जैसा लगता है, बॉडी एक बार मन नहीं कर रहा है, तो मैं धूप में जाके गोल्फ खेलता हूँ, दबा के खूब पसीना आता है, खूब बॉडी हिलती है, एकदम फ्रेश होके वापस आ जाता है।
2: राइट, अब कोई कहेगा नहीं नहीं, कोई कहेगा बुखार है, थकावट है, तो खेलना नहीं चाहिए। और आपने कहा थकावट लग रही है, एक ऑप्शन है,
1: फीवरिश लग रहा है,
2: हाँ, लेकिन उसी में जाके खेल लिए तो वो सारे टॉक्सिन्स निकल गए ना, मीन्स अंदर का कचरा सारा निकल गया, वो खेलने से निकला, क्लेंजिंग ना, क्लेंजिंग एंड एनर्जाइजिंग। अब यही अगर हम कहें मेरा मन उदास है, मेरे से होती भी नहीं मेडिटेशन, मैंने कुछ नहीं करना, मुझे कोई चीज को रिजोल्व नहीं करना है, जो है रहने दो अभी यहाँ पर, इट्स एनी वे इट्स नॉट गेटिंग सॉल्व्ड, ये दर्द तो जस्टिफाइड है मेरा, तो वो टॉक्सिन फिर अंदर ही अक्यूमुलेट हो जाएगा, फिर किसी और बात का टॉक्सिन, फिर किसी और बात का टॉक्सिन, एंड देन वी हैव लॉट ऑफ टॉक्सिन्स देन इनसाइड। और यही अगर हमने कहा नहीं मुझे फिर भी बैठना है, मुझे फिर भी अपने ये 15 मिनट निकाल के बैठना है, धीरे धीरे धीरे वो मन करने लगेगा जो हम उसको करने के लिए कह रहे हैं। पहले दिन नहीं करेगा, दूसरे दिन नहीं करेगा, तीसरे दिन नहीं करेगा, लेकिन फाइनली करेगा।
1: छोटे से बच्चे से 2 साल के बेटे को मैंने उसको बोला, बच्चे को, कि भाई अभी रो के मांगना छोड़ दो, अब हंस के मांगो, प्यार से मांगो, रोते क्यों ये चीज। मैंने बोला अच्छा रोने लगता है, फिर उसको एक्टिंग करके दिखाई तुम ऐसे लगते हो, तो मैंने अब आपका रोना हो गया, वो बोलता है मुझे अभी और रोना है, मुझे रोने दो।
2: भाई हमारा मन जैसा है ना, मुझे और रोना है, मुझे
1: ग्रैंड चाइल्ड की बात कर रहा हूँ, 3 महीने पुरानी बात।
2: अब फिर वो कैसा लगा होगा आंसर उस टाइम की, और रोना क्योंकि वो इनोसेंस है ना, लेकिन एक्चुअली वो क्या कर रहा है, वो बच्चा कहते नहीं मेरे को अभी थोड़ी देर और रोना है, फिर मैं थोड़ी देर बाद ठीक हो जाऊंगा। ठीक भी किसने ही करना है अपने आपको, मैंने ही करना है अपने आपको, और कुछ नहीं होने
1: तो
2: वाला।
1: फिर अभी मन अगर ऐसे बोले नहीं मेरे को और अभी उदास रहना, रहने तो बाद में ठीक हो जाऊंगा,
2: लेकिन बाद में भी ठीक करना पड़ेगा, हो नहीं जाएगा अपने आप।
1: इस उस पोजीशन में तो आ जाएगा, जैसे मुझे बीमारी है, हाँ। मैं बोलता हूँ आज मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा,
2: उस पोजीशन में
1: मुझे सफर करने दो,
2: उस 3 दिन के अंदर 4 सिचुएशंस और आएंगे,
1: क्या
2: बातें नहीं आएंगी, और
1: आने दो
2: कहीं कुछ, तो हम वल्नरेबल स्थिति में ना, तो वल्नरेबल स्थिति में दूसरी बातों का असर, हमारी एक बात एक नहीं रहती ना, फिर हमें और किसी से इरिटेट हो जाते हैं, और किसी पे गुस्सा करता
1: है, वो भी होगा,
2: तो वो होते होते मतलब चोट तो और बढ़ती जा रही है।
1: तो उस टाइम पे जिद करते हैं, होने दो, ठीक है मैं अकेला रह जाऊंगा,
2: अच्छा,
1: छोड़ जाएंगे।
2: बच्चा अगर जिद करता ही जाएगा तो आप गिव अप तो नहीं करेंगे उसके ऊपर, आप उसको प्यार से बिठा के मना के समझा के फाइनली तो चुप कराएंगे, हंसाएंगे ना, खुश कराएंगे ना उसको।
1: वो बच्चा थोड़ा ही है,
2: मन बच्चा है ना, उसके साथ भी ऐसे ही करना है अब। और ये अगर हम रोज करें, जब कोई सिचुएशन भी नहीं है, जब कोई प्रॉब्लम, वी आर डूइंग मेडिटेशन जब कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, पहले तो वो करना है कि डेली मॉर्निंग अगर हम वो करने लगे तो डेली मॉर्निंग की प्रैक्टिस जो आपको सपने में दिखने लगा है ना डिटैचमेंट, डेली मॉर्निंग बैठने से धीरे धीरे हम अपने इमोशन से डिटैच होकर अपनी इमोशन को देख पाएंगे। आई एम हर्ट बिकॉज ऑफ दिस एंड बिकॉज ऑफ दिस विल नॉट बी समवन आउटसाइड। पहले हमारा आंसर होता था आई एम हर्ट बिकॉज ऑफ दिस फिल इन द ब्लैंक, तो फिल इन द ब्लैंक में कोई व्यक्ति या सिचुएशन थी। जब हम उस पर वर्क करते हैं आई एम हर्ट बिकॉज ऑफ दिस, उस फिल इन द ब्लैंक में अपनी थिंकिंग की लाइन आएगी कि कौन सी थिंकिंग की वजह से आई एम हर्ट, कौन सी अटैचमेंट की वजह से आई एम हर्ट, कौन से बिलीफ सिस्टम की वजह से आई एम हर्ट, अपने पे फोकस आ जाएगा।
1: सिस्टर आपकी ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अब रियल लाइफ में जैसे मैं आपसे कह रहा था कि मेरा ग्रैंड चाइल्ड बोलता है कि अभी मुझे और रोना है, मैं वहां हंसता भी हूं, उसके ऊपर मेहनत करता हूं, कोशिश करता हूं, उसको कोई गेम दिखाता हूं या टीवी लगा के दिखाता हूं या उसके साथ खेलना शुरू करता हूं, बॉल देता हूं, ये मुझे मालूम है कि वो बच्चा है और वो मैं चाहता हूं। लेकिन कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि मैं इस दर्द में दुख में रहना चाहता हूं और ना मुझे गेम चाहिए, ना मुझे कोई बॉल चाहिए, ना मुझे डिस्ट्रैक्ट करो, और उसके बाद मैं उसको घंटों घंटों घंटों घंटों घंटों उसके अंदर रहता हूँ और सडनली फिर कोई चीज आ गया, कोई मेहमान आ गया, कोई चीज, कोई लोग मिल गए या गोल्फ में पहुंच गए, खेलने लग गए, तो वो निकल जाता है।
2: निकल नहीं जाता, उस थॉट से हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम किसी और चीज की तरफ चले गए। खत्म नहीं हुई बात, चोट खत्म नहीं हुई, दर्द खत्म नहीं हुआ, उससे हमें कोई और चीज आ गई, जैसे गेम आ गई, लोग आ गए, टीवी आ गए, तो हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए। यस
1: हाँ, लेकिन एक चीज आपसे बहुत जरूरी पूछनी थी जो कि इन एपिसोड्स के दौरान मुझे, कि एक पावर ऑफ विड्रॉ जो आपने कहा था उसकी क्लैरिटी मुझे नहीं आ रही है कि मैं विड्रॉ को समझता हूँ कि एक कमजोरी, उसके बारे में आप अगर अगले एपिसोड में बताए तो।
2: डेफिनेटली,
1: थैंक यू सो मच।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति। थैंक यू।
3: To recharge ourselves, we go for retreats. Depending on the dedication with which we go for the retreat and the desire to bring about a transformation, we see our results. For some, the stability remains for a few hours, for some, a few days, and for some, it stays longer. At the retreat, we withdraw from the external situations and people, check our emotional blockages and resolve them. Let go of the past and forgive people. Within ourselves is a stillness, a sanctuary we can retreat at any time and be ourselves. Raj Yoga meditation is a way to retreat anytime, anywhere for a few minutes. Pause, withdraw from the situation and emotion, focus on our thoughts and feelings, connect to the supreme power, emerge our original sanskar and come back into the situation with power and stability. Power to withdraw me.

0: सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश से निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी। मारो नाम शेष्ठ करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया। लेकिन ऐसे कैसे बने हम?
1: बोल दूं बापू?
0: बोल दे बेटा।
1: बाप

0: बापू।
1: अरे की है बरखुरदार।
0: कहना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करूँ लाचार।
2: की है बोल भी।
0: ओ खेतों के उस पार, ओ खेतों के उस पार रहती है गोरी गोरी गरीब किसान की छोरी। मुझे है इससे प्यार बापू, मुझे है इससे प्यार।
2: हाय
1: की कहे की कहे, प्यार की होए आए प्यार की होए, हम तो एक ही बात जाने।
3: बोल दो बापू।
1: बोल दे बेटा।

0: मैं जाता हूँ, आप तो जाने मैं बेकसूर हूँ लेकिन मजबूर हूँ।
1: अरे कठे जाए कठे जाए, मेरी बात भी तो सुने। तेरी खातिर देखी है एक राजकुमारी, है एक राजकुमारी, जा घोड़ा ले आ।

0: लेकिन बदले में राजा से एक एक के हजार लोगो।
1: क्या शादी भी है व्यापार?
0: हाँ बेटा, एक एक के बड़े हजार। ये कल मुही को सोड़, तू प्यार से मुंह मोड़, अरे पैसे से नाता जोड़।
1: ठीक है बापू, मानता हूँ मैं आपकी बात, लाइए वो जेवरात।
0: ले ले,
1: बढ़ा दो हाथ।
0: ए घोड़ा लाओ घोड़ा।

0: ठीक है, अरे ठीक है, मारे सारी उम्र के कमाई गई डॉलर है। हाय भैया।
1: बोल दो बापू।
2: हाँ बोल दे बेटा।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सेपरेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर Each cell is connected to at least 10,000 more cells in the body. 10,000 crore cells in the brain into 10,000. This is the human network. So many switches connected to so many switches. अब जब इतने switches से connected होते हैं, तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा, तो उसका effect कितना लंबा जाएगा? तो जब brain में 10,000 crore cells connected to 10,000 cells, each cell connected to 10,000 cells in the body, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सीक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले।
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
2: अजी सुनते हो?
3: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
2: क्या सुन रहे हो?
3: रेडियो पुणेरी आवाज।
2: ओ रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
4: नमस्कार, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना MP छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं दान की ईश्वरीय विधि। दान का अर्थ क्या होता है उस पर आज हम चर्चा करते हैं। दान अर्थात क्या होता है? देना। इससे सारी सृष्टि चल रही है। अगर सृष्टि का नियम देने की जगह लेना अगर कर दिया जाए तो सृष्टि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। परमात्मा पिता ज्ञान गुण और शक्तियों के सागर हैं, परंतु जब वे इनका दान विश्व को देते हैं तभी वे रघुपाल पालनहार और भगवान कहलाते हैं। उन्हें ही क्या कहते हैं? भगवान नाम से हम गाए जाते हैं। वो देने का अर्थ है सफल करना। देने का अर्थ क्या होता है? सफल करना। कोई भी वस्तु शक्ति सफल करने पर ही प्रतिफल देती है। हाँ, किसान एक दाना बीज बोकर सफल करता है तो बदले में कई दाने पाता है। जो बीज सफल ना की जाए वह विफल ही सड़ जाती है। यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति सोचकर काम ना करे कि इससे उसके पास ताकत जमा होकर वह हाथी जैसा बलशाली हो जाएगा तो यह भ्रम है। वास्तविकता यह है कि उसका शरीर और ही निष्क्रिय एवं आलसी हो जाएगा। यदि कोई बुद्धि को चिंतन और सीखने में प्रयोग ना करे तो यह कुंद हो जाएगी। संबंधों को परस्पर प्रेम व्यवहार से सफल न किया जाए तो उनमें मनमुटाव और निरस्ता पैदा हो जाएगी। धन को भी उपयोग प्रयोग और सहयोग करके सफल न किया जाए तो वह भी क्या होता है? अभिशप्त हो जाता है। वह संपन्नता की अनुभूति की जगह लोभ और तृष्णा का बोझ बन जाता है। उपयोग में निज काम में आता है, प्रयोग में कार्यों को सिद्ध करता है और सहयोग में क्या होता है? जगहित द्वारा पुण्य जमा करने का साधन बन जाता है। नहीं तो लोभी के प्राण उसके धन में बस जाते हैं, वहीं लोभ उससे अन्याय और शोषण कराता है। हाँ, किसी जमाने में लोभ के कारण लोग क्या करते थे? ना धन कहीं गाड़ कर छुपा देते थे। पुराने लोगों की ऐसी क्या होती थी? मान्यताएं रहती थी कि ऐसे गाड़े हुए धन पर नाग बैठे रहते हैं, तो उस धन को पाने वाले व्यक्ति को चैन से जीने नहीं देते। अब समझा जा सकता है कि गड़े हुए धन के ऊपर जमीन के अंदर, अगर जमीन के अंदर तो कोई नाग नहीं रह सकते। उसे लोभी की लोभ वृत्ति ही नकारात्मक ऊर्जा के रूप में नाग की तरह धन में बसी रहती थी। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और हमारा आज का विषय है दान की ईश्वरीय विधि। तो बिना सोचे समझे किया गया दान कई बार बुराई के खाते में आ जाता है। विवेकशील जो व्यक्ति होते हैं अपना समय, संपत्ति और शक्ति सूझबूझ से शुभ कार्यों में सफल करता है। सरकार भी आज क्या जोर देती है कि अनावश्यक इच्छावृत्ति को बढ़ावा न दिया जाए। अपराधिक तत्वों द्वारा बलपूर्वक बच्चों या कमजोर लोगों द्वारा इच्छावृत्ति कराना, सक्षम होते हुए भी कुछ न करने की प्रवृत्ति के कारण निम्न बुद्धि वाले लोगों द्वारा अपने ही बच्चों को इच्छावृत्ति में लगा देने की प्रवृत्तियां आज क्या हो रही है समाज में बहुत बढ़ चुकी है। अच्छी भावना रखने के बाद भी बिना सोचे समझे किया गया दान कई बार पुण्य की जगह बुराई के खाते में ही चला जाता है। हालांकि कई बार समाज सेवी संगठन ऐसे पिछड़े और बेसहारा लोगों को शिक्षित करने, उन्हें भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसी सेवाएं भी कर रही है, जिससे स्थितियों में काफी सुधार भी हो रहा है। बुद्धिजीवी वर्ग ऐसे प्रयास क्या करते हैं, उनके जो ऐसे प्रयास होते हैं बुद्धिजीवी लोगों के, ये सराहनीय भी हैं। लेकिन ऐसा तब संभव है जब सभी अपनी इच्छा से और सोच समझकर कार्य करें। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर आपसे आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को

नमस्कार, तो मैं ज्योत्सना फिर से आपका स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। और हमारा आज का विषय है दान की ईश्वरीय विधि। एक सफल करने की भी विधि होती है। हाँ, सफल करने की सर्वश्रेष्ठ और अनोखी विधि है। समय की मांग देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, परमात्मा पिता हमें क्या करते हैं, सफल करने की सर्वश्रेष्ठ और अनोखी विधि सिखाते हैं, जिससे परिणाम भी सर्वश्रेष्ठ आते हैं और जीवन ही क्या होता है, जीवन ही पुण्यशील बन जाता है, आत्मा महान सौभाग्यशाली बन जाती है। हाँ, आत्मा क्या होते है, सौभाग्यशाली बन जाती है। इसे एक उदाहरण के द्वारा हम गहराई से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने जीवन काल भी 10,000 लोगों को भोजन कराता है। इसके लिए उसने काफी परिश्रम किया और लोगों की दुआएं भी ली। कोई भी व्यक्ति खुशी से भोजन के लिए हाथ नहीं फैलाता। दुर्भाग्यवश उसे भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। आत्मा अपने बुरे संस्कार और कर्मों के कारण अपनी पुण्य और शक्तियों की पूंजी गवाकर भाग्यहीन और लाचार होकर दूसरों पर निर्भर हो जाती है। परमात्मा हमें ऐसी सेवा करना सिखाते हैं जिससे मनुष्य का दुर्भाग्य, बुरे संस्कार व बुरे कर्म समाप्त हो जाए। वे गुणों की धारणा कराकर जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाते हैं। व्यसन, जुए, दुश्चरित्र आदि बुराइयों से में जो फंसा हुआ व्यक्ति है, परमात्मा का सत्य परिचय पाकर परमात्मा से संबंध जोड़कर अपनी सारी बुराइयों को त्यागने में सक्षम हो जाता है, एक अच्छे जीवन की शुरुआत कर लेता है। उसके साथ उसका परिवार भी है। जीवन बदलने के बाद अब वो क्या होता है, मोहताज होकर उसे दो रोटियां नहीं जुटानी, बल्कि वह मेहनत से अपना और सारे परिवार का पेट भरता है। ऐसा जो होता है, ऐसी सेवा का पुण्य कितने भूखे लोगों को भोजन कराने के बराबर हो गया। पूरे परिवार को ही भूखे रहने और मांगने की दुर्गति से बचा लिया। साथ ही उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गया। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर आपसे आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मैं ज्योत्सना, एमपी छत्तीसगढ़ से, और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए, हाँ, आज का हमारा विषय है दान की ईश्वरीय विधि। कम समय में बिना स्थूल धन खर्च किए भी ज्ञान धन का दान देकर सहज ही कितना पुण्य अर्जित किया जा सकता है, इसका हिसाब लगाना भी मुश्किल है। हाँ, जो मनुष्य आत्माएं पुण्य की यह श्रृंखला शुरू करके अपनी सेवाओं द्वारा इसका विस्तार करती जाती है, वे पदम पदम भाग्यशाली बनती जाती है। इससे दीप से दीप जलाते चलो की पंक्ति साकार हो रही है। हमारा सभी मनुष्य आत्माओं से निवेदन है कि वे इस अनोखे भाग्य के खजाने को जमा करने की विधि सीख ले, जिसका एक ही विधि है राजयोग। राजयोग विधि सीखने के लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर अवश्य जाएं और वहां जाकर जरूर राजयोग की विधि सीखें। जो भी पुण्य कर्म और सामाजिक सेवाएं आप कर रहे हैं, उनके साथ साथ परमात्मा द्वारा दी गई श्रीमद् प्रमाण आध्यात्मिक सेवा से भी अपना जीवन सफल करें। बस याद रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि पुरुषोत्तम संगम योग की अनमोल जो ये घड़ियां हैं, अब अपनी पूर्णता के चरण तक आ पहुंची है और समय बहुत थोड़ा है। तो इसी के साथ मैं अपना आज का कार्यक्रम यही समाप्त करती हूँ और हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या। यहां नहीं कर सकते। क्यों? स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई? क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: का सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर खाबों का सफर। मैं हूं आपका हम सफर और आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ फिर से एक बार विभा जी हमारे साथ हैं। आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है।

0: नमस्कार सनी, आपको और हमारे बहुत ही प्यारे लिसनर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप प्यारे प्यारे कलेक्शंस लेके आते हैं 50s एंड 60s के, तो हमारे श्रोता भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि पुराने इतने प्यारे गाने कितने सुंदर है। तो आइए कहते हैं, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किल में अकेला इंसान डगमगाता है, कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है।
0: जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने।
1: जी,
0: और ये दोस्ती के ऊपर ही मैं ये पहला गाना लेके आई हूँ। ये इसमें है, लव स्टोरी है, ट्रायंगल है, और बहुत ही प्यारा गाना है। ना आदमी का कोई भरोसा, ना दोस्ती का कोई ठिकाना, दो प्यार करने वालों के बीच में एक दोस्त आ जाता है, और कैसे वो कुर्बानी देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही प्यारे लिरिक्स हैं इसके, और फिल्माया गया, बड़ा सुंदर ढंग से फिल्माया गया है। इसमें वहीदा रहमान जी की एक्टिंग बड़ी सुंदर है, और दिलीप कुमार की एक्टिंग तो चार चांद लगा रही है। बहुत ही प्यारा गाना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही अच्छा गीत आपने याद कराया। ये आदमी इस एल्बम से है जो 1968 में रिलीज हुई थी, और इस फिल्म में दिलीप कुमार, मनोज कुमार, वहीदा रहमान, प्राण ने काम किया था। और मनोज कुमार, दिलीप कुमार की जो है एक दोस्ती जो है बहुत ही अच्छी बताई है इसमें। और यहाँ पर एक जुनूनी युवक की कहानी इसमें बताया गया है, और बीच में एक दुर्घटना हो जाती है जो एक क्लाइमेक्स का रोल प्ले करता है इस फिल्म में। भीमसेन जी के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी। नौशाद साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत इस फिल्म को मिला है, और जो गाना आपने याद किया है, ना आदमी का कोई भरोसा ना दोस्ती का कोई ठिकाना, शकील बदाई साहब ने इसे लिखा है और मोहम्मद रफी साहब ने गाया है आदमी इस एल्बम का। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में आपके लिए आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ख्वाबों के सफर में। और बहुत ही प्यारा सा सफर शुरू हो चुका है आदमी इस एल्बम का। ये बहुत ही खूबसूरत गाना मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आपने सुना। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक गीत की तरफ। तो मैं चाहूंगा विभा जी, आपके पास अगला गाना कौन सा है?
1: ये गाना भी बहुत प्यारा गाना है। जो पिछला गाना सुनते हुए मुझे लग रहा था, इसमें कैसे कि इसमें दुख भी है, तंज भी था। वो आदमी फिल्म के गाने में इसके बोल बीच में थे, जैसे मेरे ही घर के चिराग ने खुद जला दिया मेरा आशियाना। कभी कभी गलत फहमियां और कहां इंसान को ले जाती हैं। पर उसको पीछे छोड़ते हुए मैं एक सुंदर सा मीना कुमारी पे फिल्माया गया गाना लेके आई हूँ। ना बोले ना बोले ना बोले रे, घूंघट के बट ना खोले रे। इसमें मीना कुमारी बहुत ही अटकेलियां करती हुई, नाचती गाती हुई इस गाने को गा रही हैं, जैसे अपने आप को राधा और महबूब को कृष्ण का नाम देते हुए कैसे वो घूंघट के साथ खेलती हुई इस गाने को गा रही हैं। कुल मिला के बहुत सुंदर गाना है ये भी।
0: चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। और ये आज़ाद 1955 में फिल्म आई थी। और इस गाने को भी राजेंद्र कृष्ण साहब ने लिखा है, लता मंगेशकर ने गाया है। सी रामचंद्रन का बहुत ही खूबसूरत संगीत इस फिल्म को, इस गाने को मिला है। तो कहते हैं संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। और ऐसा भी कहा गया, जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास भी रचा है। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया आजाद इस एल्बम का, और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मस्ती और चुलबुल भरा गाना था। एक अमीर आदमी की कहानी यहाँ पर बताया गया है, और आजाद नाम का व्यक्ति जो है कुछ डाकुओं के साथ भिड़ जाता है और वहां पर एक मुश्किल सिचुएशन क्रिएट होता है, और पूरी फिल्म इसी पे बनी थी। ये श्री रामलू नायडू का निर्देशन में ये फिल्म बनी थी, सी रामचंद्रन का संगीत से सजा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और कौन सा खूबसूरत गाना आपके पास है?
1: पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी सनी, आपकी शायरी बहुत इम्प्रूव होती जा रही है, बड़ी अच्छी अच्छी शायरी आप इन बिटवीन बोल रहे हो, मैं बड़ा एंजॉय कर रही हूं।
0: थैंक यू सो मच जी।
1: अगला गाना है ना छेड़ो कल के अफसानों को, करो इस रात की बातें। ये भी मोहब्बत भरा गीत है, और इसमें पुराने बीते हुए टाइम को पीछे छोड़ते हुए आज की खुशियां मनाने।
0: जी विभा जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। रात और दिन एक एल्बम आई थी, फिल्म आई थी 1967 में, और ये जो फिल्म है नरगिस, फिरोज खान, प्रदीप कुमार, के एस सिंह पर पिक्चराइज किया गया था। उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट है ये फिल्म रही होगी, और मुझे लगता है कि सत्यन बोस का ये निर्देशन में फिल्म बनी थी। अख्तर हुसैन इसके कहानी को लिखा था, और ये कहानी जो है थोड़ा सा अलग हटके हैं, रात और दिन आप समझ सकते हैं। और शंकर जयकिशन साहब ने इस फिल्म को संगीत दिया था। तो इस फिल्म का जो गाना आपने याद किया है, जिसे शैलेंद्र साहब ने लिखा है, लता मंगेशकर जी ने गाया है, और शंकर जयकिशन साहब ने संगीत से सजाया है। तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ख्वाबों के सफर में। और हमारे साथ विभा जी हैं और बहुत ही प्यारे कलेक्शन वो सुना रही हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कहते हैं, जो खैरात में मिलती कामयाबी, तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर न होती किसी उनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। इसीलिए कामयाबी पाने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और सबको नहीं मिलती, क्योंकि सबके पास वो हुनर नहीं होता। आइए आगे बढ़ते हैं विभा जी, अब अगला गाना कौन सा आप हमारे श्रोताओं को सुना रहे हैं?
1: सनी, आपने ठीक कहा कि कामयाबी पाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, और यहाँ आशा पारिक मशक्कत कर रही है अपने महबूब को मनाने के लिए और कह रही है ना जाओ मेरे हमदम सुनो वफा की पुकार। तो ये पूरे कड़कपन से पहले अपने महबूब को नाराज कर देती हैं और फिर उनको पाते हुए गा रही हैं, साथ ही अपने महबूब को प्यार का वास्ता दे रही हैं और तो अब आसाने को कह रही हैं। तो कुल मिला के बहुत सुंदर गाना है और अच्छी तरह फिल्माया गया, बहुत ही खेतों में नेचर में दिखाया गया ये गाना है। उदासी के जुल्फों को महका दूंगी, तेरी सुनी सुनी बाहों में घुखड़ा सजा दूंगी, अब आएंगे तो लौटेंगे तेरे ना लौटेंगे तेरे कदम। बहुत अच्छे लिरिक्स है ये।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया, विद लिरिक्स याद कराया है। तो आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता इस गाने को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और आपने जिस गाने का याद कराया है, ये एक फिल्म आई थी प्यार का मौसम 1969 में, और ये फिल्म जो है राहुल देव बर्मन, शशि कपूर, आशा पारेख और निरुपमा रॉय पर पिक्चराइज किया गया है। और इसमें ये गाना है, आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर खाबों का सफर। जी हाँ, बहुत ही प्यारे प्यारे गाने आप सुनाए हैं। और भी जो अभी जो गाना आपने सुना प्यार का मौसम, इसमें भी एक प्रेम कहानी है और ये बड़ी अलग टाइप की कहानी बताई गई है। एक लड़का को एक लड़की से प्यार होता है, कॉमन बात है, लेकिन जब लड़की को पता चलता है कि लड़के का असली नाम कुछ और है, तब उसे जो है वो मुश्किल फील करती है। ये चीजें जब पता चल जाता है कि कोई और लड़का का नाम इसने रख के मेरे से प्यार किया, तो उसे धोखा ऐसा फील होता है। तो यहाँ पर एक क्लाइमेक्स बताया गया है। तो नासिर हुसैन साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, प्यार का मौसम का, जो गीत अभी आपने सुना। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत गीत की तरफ हम लोग चलेंगे अभी। और विभा जी, कौन सा है अगला गाना आपके पास?
1: अगला गाना भी रोमांटिक है और रजिंद्र कुमार पे फिल्म आया गया गाना है, न जाने कहां तुम थे न जाने कहां हम थे, या जादू ये देखो हम तुम मिले हैं। और इसमें यही कि कहां दो इंसान जो दूरियों में रहते हुए भी कैसे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, इसका जिक्र है यहाँ। और इसमें रोमांस है, अपनापन है और शर्म है। रोमांटिक गाना होते हुए भी इसमें हर पहलू को दिखाया गया है, एक नेचर को भी दिखाया गया है। और बहुत ही प्यार भरा गाना, दोनों महबूब और महबूबा दोनों ही प्यार में कैसे एक दूसरे को दूर होते हुए भी पास हो जाने का एहसास दिला रहे हैं।
0: जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। जिंदगी और ख्वाब 1961 में ये फिल्म आई थी, जो राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी, जयंत आगा इन पर पिक्चराइज किया गया था। ये फिल्म कमल अमरोही साहब की लिखी हुई है और इसे एस बैनर्जी साहब ने डायरेक्ट किया था। ये उस समय की सुपरहिट फिल्म, क्लासिकल फिल्म है और दत्ताराम वाडकर ने इस फिल्म को म्यूजिक से सजाया था। तो आइए इस फिल्म का ये गाना अभी आपके लिए, और जिसे खास प्रदीप कुमार जी ने लिखा था और सुमन कल्याणपुरी मन्नाडे इस गीत को गाए थे, दत्ताराम जी का खूबसूरत संगीत से सजा ये अगला गाना आपके लिए खास। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जाने कहां तू।
1: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ख्वाबों के सफर में। कहते हैं चले हैं जिस सफर पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा, जो दिल में ठान ही ली है कामयाबी को अपना बनाने की, तो कोई ना कोई इंतजाम तो होगा। जी विभा जी, अगला गाना कौन सा है हमारे श्रोताओं के लिए आपके पास?
2: ये गाना है ना जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा, ये शीशा तोड़ डाला प्यार के काबिल नहीं समझा। ये गाना शिकायत भरा एक गाना है जो धर्मेंद्र अपनी महबूबा को गाते हुए ये अपने भाव प्रकट कर रहे हैं और मीठी से शिकायत कर रहे हैं। तड़प दी भी तो ऐसे दी कि मुश्किल हो गया जीना।
1: जी जी जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है, मोहब्बत जिंदगी है इस एल्बम से ये गाना है। ये गाना जो है एचएस बिहारी साहब ने लिखा था, मोहम्मद रफी साहब ने गाया है, ओपी नैयर साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना अभी आप सबके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, जिंदगी मोहब्बत जिंदगी है। जी हाँ, ये जो फिल्म थी इसमें कहानी जो है थोड़ा सा अलग था। एक व्यक्ति है जिसको खास जेल की सजा हो जाती है और फिर आश्चर्य ये होता है कि जब उसे सजा मिलती है तब उसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा होता है और बाद में जब पूरी जांच पड़ताल होती है फिर से रिवर्व किया जाता है तो वो व्यक्ति जो है बेकसूर निकलता है। तो इस तरह की कुछ अलग कहानी इसमें बताने की कोशिश की है। जगदीश निरोला ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया था, ओपी नैयर साहब ने संगीत से सजा था, इस फिल्म के म्यूजिक को सजाया था और मुस्तक जलीली ने इस कहानी को लिखा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारी बातें, प्यारे प्यारे गाने आप सुन रहे हैं 50s एंड 60s के। अब विभा जी, अगला कौन सा गाना है आपके पास?
2: अगला गाना भी प्यार करने वालों की क्या अजीब सी मांग होती है कि मीना कुमारी, बहुत ही प्यारा गाना है और ये मीना कुमारी की सुपरहिट गानों में से एक गाना है, उनकी एक्टिंग कमाल की है। ये गाना है, ना जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। वो दुल्हन की तरह सजी हुई है, एटमोसफेयर बहुत ही रोमांटिक है और अपने पति को और अपने जिनको वो प्रीतम भी मानती हैं, नशे में धुत होते हुए भी उनको पकड़कर अपने पास ही रहने की बात कर रही हैं। बहुत ही नशीला गाना है।
1: जी जी जी, सही पहचाना आपने। और साहेब बीबी और गुलाम जो 1962 में आई थी, ये सुपरहिट फिल्म बनी उस समय की और इसमें जो कलाकार थे जैसे कि आपने बताया मीना कुमारी, गुरुदत्त, वहीदा रहमान और रहमान साहब ने काम किया था और इनकी जो है बहुत ही अच्छी ये फिल्म बनी। और उस समय एक थोड़ी सी इसमें जो अलग चीज बताई गई, एक अयाश आदमी की पत्नी की कहानी जिसको बयां कर रहे हैं इसमें। और ये सारी चीजें जो है घर के अंदर जो माहौल बनता है और अमीर आदमी होने के नाते वो बहुत समय तक बाहर रहता है तो चीजें कुछ अलग बन जाती हैं। आबरा अलवी साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, विमला मित्रा ने इसकी कहानी लिखी थी और हेमंत कुमार मुखोपाध्याय इस फिल्म को संगीत से सजाया था। तो आइए इस फिल्म का ये गीत जो बहुत ही खूबसूरत गाना है, टची गाना है, सभी को अच्छा लगता है, तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को। शकील बदायूं का लिखा, गीता दत्त का गाया, हेमंत कुमार का संगीत से सजा ये गाना अभी आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया विभा जी। मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोता खुश हो गए होंगे। आइए, अब आखिरी मोड पे हम लोग पहुँचे हैं, तो अगला गाना कौन सा है आपके पास?
2: अगला गाना है ना झटको जुल्फ से पानी ये मोती फूट जाए। ये बारिश की रात में फिल्माया गया गाना है। इसके बोल बड़े प्यारे हैं। इसको कैसे महबूब अपनी महबूबा के लिए, उनके इवन पानी की बूंदें टपक भी रही हैं तो उसको भी कैसे मोतियों का नाम देते हुए अपनी शायरी अपने लफ्जों को प्यार में लपेट के महबूबा तक पहुंचा रहे हैं। और महबूबा बड़े प्यार से उसको सुन के शर्माती हुई इस गाने का लुत्फ ले रही है। और इसके बोल, हाँ, हमारी जान ले लेगा ये नीची आंख का जादू, चलो अच्छा हुआ मरकर जहाँ से छूट जाएगा।
1: जी जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा, मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ, रवि साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना है। ये शहनाई इस एल्बम का गाना है जो 1964 में रिलीज हुई थी। और ये एक फिल्म है जिसमें वायुसेना के अधिकारी का एक प्रेम कहानी दिखाया गया है और अपने कर्तव्य को निभाने के लिए वो किस तरह से फिर अपने परिवार को छोड़कर अपना कर्तव्य करने के लिए जाता है, अपना कर्तव्य पालन करता है देश के प्रति। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई है और देश सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देता है। तो चलिए, ये SD नारंग साहब का निर्देशन में बना फिल्म बहुत ही पॉपुलर फिल्म रही है। इसके कलाकार थे विश्वजीत राय, राजश्री, जॉनी वॉकर, निरुपमा रॉय इस फिल्म के कलाकार थे। चलिए, अब वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत चाहने का। और जाते जाते विभा जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही प्यारे कलेक्शन आज के इस एपिसोड में हमारे सभी श्रोताओं को सुनाया, एंड बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी धन्यवाद सनी, आपका और हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं का जिन्होंने बड़े प्यार के साथ हमें सुना और अपना कीमती टाइम देके हमारे साथ ये वक्त गुजारा, मैं उनके आभारी हूँ। और आपको भी शुक्रिया करती हूँ, आपने मुझे मौका दिया इस शो में आने का।
1: जी जी, शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छा लगा, आपने बहुत ही अच्छे कलेक्शन को सुनाए। और जाते जाते दो लाइनें हमारे सभी श्रोताओं के लिए और इसी के साथ मैं चाहूंगा इजाजत। कहते हैं, आज बादलों ने फिर साजिश की, आज बादलों ने फिर साजिश की, मेरा घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड। उस दिन के बाद बंद हो गया।

0: तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरनमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, व्हेरेवर एंड फॉर हाउएवर लॉन्ग आई वांट, सो देन इट्स माय चॉइस, सो नाउ इट्स योर चॉइस। आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन। आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: रेडियो मधुबन 90.4 FM पर आप सुन रहे कार्यक्रम यशस्वी भारत। भारत का जो गौरव है वो देश और दुनिया तक फैला है, लेकिन दोस्तों भारत का गौरव फैलाने वाले कौन है? कुछ ऐसे भारतीय जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी कलाओं को ऐसा निखारा, ऐसा उन्होंने उभारा कि भारत ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में उन्होंने अपना साथ साथ देश का नाम रोशन किया।
4: एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने अपने जीवन को खुद संवारा, जिन्होंने अपने ही नहीं बल्कि कई जीवन को संवारा, जिन्हों की आप अगर लाइफ स्टोरी सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक व्यक्ति अगर ठान ले तो वो क्या नहीं कर सकता, अपना क्या लाखों जीवन को परिवर्तित कर सकता है। और उनकी इंस्पायरिंग बेहद बहुत मुझे लगता है महिलाओं को जरूर सुननी चाहिए ये कहानी। हमारे साथ, जी हाँ, पद्मश्री उषा चौमर जी हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की, जो अपनी कहानी हम उनके मुंह से सुनेंगे, तो बेहद लकी हैं हम। उषा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: ओम शांति जी, बहुत खुशी हो रही है और बहुत मुझे अच्छा भी लग रहा यहाँ पर, जहाँ पर आई मैं ब्रह्मचारी कन्याकुमारी की धरती पर, तो मुझे इतना सुकून मिला और इतनी खुशी हो रही है कि मेरी जिंदगी में शायद मुझे कभी ऐसी खुशी नहीं मिली होगी। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, 7 साल की थी, मेला ढोने के लिए जाती थी मम्मी के साथ, तो बस मेला ढो रही थी। फिर मेरी 10 साल की थी, तो मेरी 10 साल की उम्र मेरी शादी हुई बड़े वाली दीदी के साथ, तो 4 साल के बाद मेरा गौना किया, तो वहाँ पर तो मम्मी के साथ मुझे मेला ढूंढने का काम करने को मिला। जो ससुराल में आई अलवर में, तो वहाँ मेरी सासू माँ के साथ काम करने को मिला मेला ढूंढने, तो मेरी जिंदगी में तो कोई बदला भी नहीं, सिर्फ हम लोगों को क्या था, घर बदला, काम तो वही था, तो वही काम मैं कर रही थी। जैसे कि उनके घर काम करती थी तो वो लोग ऊपर से पानी पिलाना, ऊपर से खाना देना, बासा हुआ खाना देते थे वो लोग, ऊपर से पैसे फेंक के देना, ऐसा उन लोगों का व्यवहार था। लेकिन बस उसी जिंदगी में जी रहे थे हम, तो पता नहीं हम लोगों को किस तरह से भाग्य बदला। और डॉक्टर पाठक जी हमारे अलवर में आए
4: जी,
5: तो उन्होंने हम लोगों से पूछा कि आप ये काम क्यों करते हो। अब देखिए हम लोगों को तो पीढ़ी दर पीढ़ी काम चला रहा था मेला ढूंढने का, तो वही काम हम कर रहे थे
4: जी।
5: तो फिर उन्होंने कहा कोई अच्छा काम करने के लिए दूं तो क्या करोगे तुम। अब देखिए मैम, इतना गंदा काम कोई करना नहीं चाहता, जिससे सबको नफरत होती है और घिनौना होती
4: जी।
5: तो हम लोगों ने वो काम छोड़ा, तो वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ना लिखना सीखा, अचार पापड़ जवे कोटन की बत्तियाँ जूट बैग पार्लर का काम सिलाई कढ़ाई सब सीखा। तो जिससे कि हम लोग सामान बनाने लगे, तो हमने डॉक्टर पाठक जी से कहा कि सर सामान तो हम बनाएंगे लेकिन इसको खरीदेगा कौन
4: जी।
5: क्योंकि हमारे वहाँ पर बहुत छोटे छोटे अलवर में राजस्थान में, तो उन्होंने कहा सामान मैं खरीदूंगा आप बनाओ तो सही। देखिए आज वही सामान जो हम बना रहे हैं वो तो आज तक खरीद रहे हैं सुलभ, तो लेकिन जिन्हों के घर में शौचालय कभी साफ करती थी 2003 से पहले, आज वही लोग हैं जो मेरा सामान बना होया खरीद के खा रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, उसी गिलास से मुझे वो पानी पिलाते, उसी चेयर पर वो मुझे बिठाते जब से स्वयं बैठते हैं। लेकिन आज मुझे उन्होंने डॉक्टर पाठक जी के ऊपर हम लोगों ने विश्वास किया। देखिए हमारे गांधी जी हैं, मैंने गांधी जी नहीं देखे, मैंने सिर्फ उनमें देखा गांधी जी, और मैं ये कहती हूँ वही हमारे भगवान है, वही हमारे बाबा हैं जिन्होंने हम लोगों की जिंदगी बदली। तो मुझे यहाँ पर आके बड़ी खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लगा
4: जी।
5: क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने देखा ना तो कोई ऊंच नीच, यहाँ पर बिल्कुल इतना बड़ा मतलब एक संस्था है, यहाँ पर कोई छोटा बड़ा, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, बिल्कुल एक साथ रहे। लेडीजों का सबसे ज्यादा मुझे खुशी होती है क्योंकि लेडीज सबसे आगे हैं, मतलब लेडीजों के हाथ में सारा पावर है यहाँ पर
4: जी।
5: तो बिल्कुल सारी जगह में ये कहती हूँ कि ये नहीं कि भाई हम लोग यहीं पर अपना पावर जमा सकते हैं, हम कहती हूँ लेडीज हर जगह अपना पावर जमा सकती हैं।
4: बिल्कुल।
5: तो मुझे यहाँ पर इतना अच्छा लगा और इतनी खुशी हो रही है मुझे कि मैंने देखो कल की आई हूँ यहाँ पर, मैंने अभी तक मेरे बच्चों से बात नहीं की कि मुझे यहाँ पर आके इतनी शांति मिल रही है, क्या क्या बताऊँ, इतनी खुशी हो रही है मुझे। तो यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही इज्जत और सम्मान दिया इन्होंने मुझे, इज्जत सम्मान हर जगह से मिला है
4: जी।
5: लेकिन जो मुझे आज यहाँ पर मिला है
4: जी,
5: यहाँ ब्रह्म कुमारी में, तो मुझे यहाँ का जैसा सम्मान शायद मुझे नहीं मिला होगा और मुझे बड़ी खुशी हो रही है।
4: हमें बहुत खुशी है उषा जी आज आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आप एक एग्जांपल हैं
5: जी।
4: कि कैसे बदलाव,
5: हाँ रोल मॉडल हूँ मैं यहाँ के लिए भी और यहाँ के लिए भी, क्योंकि हम लोगों से पहले जब मैं काम करती थी तो आपको पता लोग अच्छी तरह से नहीं बात करते थे, भंगे क्या के बोलना उनका, जमादारनी मेहतरानी इस तरह से कहेगा। अब देखिए मैं, हम भी तो इंसान थे
4: बिल्कुल,
5: लेकिन आज की डॉक्टर पाठक की वजह से, सुलभ इंटरनेशनल की वजह से हम लोगों को इस काम से मुक्ति मिली
4: जी।
5: और आज आपके सामने है कि हर जगह से हम लोगों को सम्मान मिल रहा है
4: जी।
5: तो बड़ी खुशी हुई मुझे, लेकिन मुझे यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुकून मिला मुझे। वो मुझे थोड़ा बोलने के स्टेज में मौका नहीं मिला, कभी फिर कभी आऊंगी, बाबा की कृपा बनी रहेगी तो फिर कभी आऊंगी यहाँ पर और तब स्टेज पे चढ़ तब बताऊंगी कि मुझे कितना अच्छा और कितनी खुशी हो रही थी मुझे यहाँ पर।
4: बिल्कुल, और मुझे लगता है ये रेडियो के माध्यम से भी बहुत लोग जान पाएंगे उषा जी।
5: जी मैम।
4: वैसे तो आपका नाम सभी जानते हैं
5: जी,
4: आपके बारे में पढ़ा है जाना है, लेकिन आपके जीवन से बहुत सारे गांव में लोग हैं जो अभी आपको सुनेंगे या सुन रहे हैं इस वक्त, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे खास तौर से मैं?
5: देखिए महिलाओं को मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, हम लोग क्या समझते कि बस अपना घर का ही काम करना, हमको अपने बच्चों की पालन पोषण करना, पति की सेवा करनी बस। अब वो नहीं ये समझते कि बाहर जब निकलते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वो पति के भरोसे रहती है कि पति मुझे ला के देगा और उसमें मैं खुश हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, लेडीज पति के बराबर है, बल्कि पति से दो कदम आगे हैं
4: जी।
5: तो हम क्यों ना, मतलब ये थोड़ा ना पति के पीछे रहेंगे, पति के आगे एक रुपये दो रुपये के आगे हाथ पसारेंगे, हमें खुद ना इतना हुनर है लेडीजों में कि खूब कुछ भी काम कर सकती हैं
4: जी,
5: बहुत अच्छे से। तो मैं सभी लेडीजों से कहना चाहूंगी कि प्लीज जो बाहर निकले वो कुछ देखे, जब तक हम लोग बाहर नहीं निकलते तो कुछ हम लोगों को समझ नहीं आता, हम लोग बाहर निकलते बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए विदेशों में देखिए लेडीज कंपनी चला रही हैं, एरोप्लेन चलाती हैं, गाड़ी चलाती है, तो अपने यहाँ क्यों नहीं, अपने राजस्थान अपने इंडिया में क्यों नहीं, वहां पर इतनी साफ सफाई रहती है। अब मैंने यहाँ पर देखा कन्याकुमारी यहाँ पर काफी साफ सफाई
4: जी,
5: और ऐसी जैसे कि हम लोग पहले इस शौचालय काम करते थे तो डॉक्टर पाठक जी ने हर जगह पर शौचालय बनवा दिए वहाँ पर, क्योंकि हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता था जेंट्स, तो आपको पता है कहीं भी मतलब
4: जी जी
5: बैठ जा सकते हैं, लेकिन लेडीज को तो बहुत प्रॉब्लम होती है
4: जी।
5: उन्होंने हर जगह पर पक्के शौचालय बनवाए, तो लेडीज अच्छे से अपने इज्जत से इस्तेमाल करती है, जैसे कि आपको पता शाम को अगर उन्हें परेशानी हो जाए तो जैसे सोचती है कि सूरज छुपे तब हम जाएं
4: जी,
5: अगर दोपहर में पेट खराब हो जाए तो झाड़ियों के नीचे बैठना पड़ता है, गड्ढों में बैठना पड़ता है उनको, और शाम को वो कहते हैं शाम को भगवान, सुबह सुबह 4 बजे से पहले उनको उठना पड़ता है या 5 बजे 6 बजे से पहले, मतलब पिता के आदमी हमें कोई नहीं देखे
4: जी।
5: तो डॉक्टर पाठक जी ने हम लोगों की इतनी अच्छी सी जिंदगी बदली है कि हम लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और सभी लेडीज अपने घर में, अब तो शौचालय सबके घर में, तो देखिए हाँ, तो मैं तो यही चाहती हूँ हर जगह पर शौचालय बनने चाहिए। जो अपने देश के पहले प्रधानमंत्री जी हैं गांधी जी के बाद, जिन्होंने शौच और सफाई की बात की है, और हमारे डॉक्टर पाठक तो कम से कम 50-60 वर्षों से इस कार्य में लगे, कि हर जगह पर साफ सफाई रहनी चाहिए, हर जगह पर शौचालय बनने चाहिए,
4: उषा जी
5: लेडीजों के आगे रहने चाहिए।
4: बिल्कुल, और जैसा आपने कहा कि महिलाओं को दिक्कत ज्यादा होती है पुरुषों से, तो जरूरी है कि महिलाएं भी एकजुट हों, वो भी कई बदलाव ला सकती हैं, जैसे आप लेकर आ रही हैं।
5: बिल्कुल मैम।
4: तो उषा जी आप क्या कर रहे हैं, जब ये बदलाव आपके जीवन में आया तो आपने कैसे सोचा कि आपको दूसरों के जीवन के लिए भी कुछ करना है?
5: मैम मैंने बस यही सोचा कि मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगी, चाहे मुझे और काम करने को मिले लेकिन ये काम बिल्कुल नहीं करूंगी। जैसे मुझे भी वहां पर विरोध किया गया अलवर में, ये नहीं करूँ तो और क्या करोगे, क्या महारानी बनोगे तुम?
4: अच्छा,
5: तो मैंने कहा चाहे महारानी ना बनूं पर ये काम नहीं करूंगी मैं, मुझे बहुत ही गंदा लगता है ये काम, क्योंकि ये काम से मुझे बहुत अपमान मिला। एक तो देखिए उनके शौचालय साफ कर रही हूँ और उस ऊपर से उनका उठपटांग बोलना, तो मैम किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम लोगों को तो क्या पहले मजबूरी थी
4: जी।
5: लेकिन बस मैंने यही ठाना मन में कि बिल्कुल नहीं करूंगी और अब ना ही किसी को करने दूंगी ये काम।
4: ये आपने ठान लिया?
5: बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर दूंगी। और खासतौर से लड़कियों को ये कहना चाहूँ कि पढ़े वो, क्योंकि जब तक हम लोग पढ़ते लिखते नहीं है जब तक कुछ नहीं जानते, लेकिन पढ़ना लिखना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर तो सभी लड़कियां लेडी से पढ़ी हुई हैं, लेकिन खासतौर से गांवों की बात बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि गांवों में नहीं पढ़ती, थोड़ी सी लड़की सियानी होती है तो उसे घर बैठा लेते हैं। तो मैं चाहूंगा वो लड़कियां भी अच्छे से पढ़े लिखे, क्योंकि लड़कियां तो दो दो घर संभालते हैं
4: जी,
5: उनकी शादी हो जाती है तो दूसरा घर भी संभालती है वो
4: जी।
5: तो मैं चाहती हूँ कि अच्छे से लड़कियां पढ़े लिखे और लेडी से आगे बढ़े, क्योंकि लेडीजों में बहुत ताकत है, अगर एक साथ रहें
4: जी
5: तो बिल्कुल जैसे कहते हैं बंद मुट्ठी
4: जी,
5: तो उनमें बहुत ताकत है, बहुत आगे जा सकते हैं। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मुझे पद्मश्री मिलेगा, मैं सुलभ इंटरनेशनल की प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मुझे पद्मश्री से सम्मानित करा जाएगा भारत सरकार
4: जी।
5: लेकिन भारत सरकार को भी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे एक महिला ढूंढने वाले के लिए इतना उन्होंने सोचा और इस लायक समझा मुझे कि मुझे पद्मश्री से सम्मान कराया उन्होंने, उनकी वजह से देख मुझे हर जगह पर सम्मान मिल रहा
4: जी। तो मैं तो आपकी मेहनत है उषा जी, आपका डेडिकेशन
5: जी मैम, तो मैं तो उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे राष्ट्रपति जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे बुलाया और इतना बड़ा सम्मान दिया। तो आज मैं यहाँ पर भी आई हूँ तो कन्याकुमारी में आकर मुझे बहुत ही ब्रह्मचारी कन्याकुमारी में बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे बड़ा सुकून मिला और यहाँ पे मुझे सम्मान मिला। और यहाँ पर तो मैंने ऐसा बिल्कुल देखा कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई मतलब भेदभाव हो, कोई छू अछू, तो उसी गिलास में पानी पी रहे वहाँ पर और उसी गिलास हम लोग पी रहे, यहाँ पर कुछ ऐसा है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर।
4: तब एक ईश्वर की संतान है, कैसा भेदभाव?
5: बिल्कुल, तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि शायद मैंने एक कर्म करा होगा लेकिन मैंने कभी फल की इच्छा नहीं की, लेकिन मैंने जो कर्म किया ईश्वर जाने। तो मैं यही कहती हूँ कि भगवान सबके ऊपर अपना हाथ बनाए रखे, उस सब में शक्ति दे।
4: उषा जी आप जो आपने बताया कि सुलभ इंटरनेशनल की प्रेसिडेंट हैं, तो ये आपने सफर कैसे तय किया, कैसे बस आपने काम छोड़ा फिर आपको, आपने शुरुआत की, आपने बताया कि बहुत कुछ सिखाया गया, तो ये प्रेसिडेंट के पद तक आप कैसे पहुंचे, वो कैसा सफर था आपका?
5: ये मैम ये कैसा था कि हम तो वही काम कर रहे थे मेला ढोने का
4: जी।
5: तो जैसे कि हमने वो काम छोड़ा तो उन्होंने कहा कि हम एक लेडीज को प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं सुलभ का, क्योंकि हम भारत का राष्ट्रपति तो बनाना नहीं चाहेंगे क्योंकि इतना पावर नहीं है हमारे हाथ में। उनने कहा गांधी जी का सपना है कि एक स्केवेंजर महिलाएं भारत की राष्ट्रपति होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा डॉक्टर पाठक जी ने कि मेरे हाथ में इतना पावर तो नहीं है कि तुम राष्ट्रपति बना सको, लेकिन इतना तो कर सकता हूँ कि मेरे सुलभ का प्रेसिडेंट तो तुम्हें बना ही सकता हूँ। तो बहुत सारी लेडीज थी, हम 115 तो हमारे अलवर में लेडीज हैं जो मेरे नीचे काम कर रही हैं वो, और 250 से 300 लेडीज है और एक जगह से हैं टॉक से, तो सब मेरे नीचे। तो उन सबसे पूछा था कि हम एक लेडीज को प्रेसिडेंट बनाना चाह रहे हैं, तो सबने कहा मुझे तो पता भी नहीं था मैम, तो उन्होंने मेरा नाम लिया कि उषा जी को बनाना चाहते हैं। तो मुझे कहने लगे अरे मैम कांग्रेचुलेशन, मैंने किस बात की, अरे आपको प्रेसिडेंट बनाया जा रहा। मैंने कहा मुझे क्या पता भाई प्रेसिडेंट का मतलब, क्योंकि पहले मैं तो मेला ढोती थी, 2003 से मैंने काम छोड़ा। तो फिर उन्होंने कहा अरे तुम बहुत बड़े पद पे जा रही हो। मैं कोई बात नहीं, तो पत्रकार वगैरह मुझे पूछने लगे कि मैम अब क्या करोगे, इस समझती हो इस चीज के लिए
4: जी।
5: कि भाई तुम्हें जो बनाया गया प्रेसिडेंट इस चीज को मानती हो समझती हो? मैंने कहा भाई उनके साथ चलाऊंगी देखूंगी बैठूंगी तो मुझे सब समझ में आ जाएगा। तो मेरे प्रेसिडेंट का मतलब मैम यही है कि कोई भी लेडीज है
4: जी,
5: हमारे समाज की मैं कह रही हूँ इस टाइम, तो वैसे मैं सभी लेडीज को कहना चाहती हूँ ना कि मेरी समाज के लिए, क्योंकि खासतौर से हम लोगों के समाज की लेडीज मेला ढूंढने का काम करती है, तो मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि जब से मुझे प्रेसिडेंट सोलह ने बनाया है तो बस मैं यही मैं कहती हूँ कि बिल्कुल ये काम नहीं करना हूँ मेला ढूंढने का
4: जी।
5: मुझे बहुत ही गंदा लगता है ये काम। अरे वो बहुत कुछ सीखना चाहती हैं और जानती भी हैं, अचार बनाती हैं, देख लीजिए वहां पर पापड़ बनाती हैं, चाय बनाती हैं, सब लोग खरीद के खा रहे हैं।
4: कितने टैलेंट है,
5: अपने पैरों पे खड़ी हैं, उन्हें एक रोजगार मिल गया
4: जी।
5: क्योंकि सुलभ में हम लोगों को दो जिंदगी जी ली है हम लोगों ने
4: जी।
5: जैसे कि मेला ढो रहे थे तो मैं यही कहती हूँ बिल्कुल नरक ऐसा ही होगा, और जब से सुलभ में आए हम लोग तो ये कहती हूँ बिल्कुल मैं स्वर्ग बिल्कुल ऐसा ही हो। तो मैं कहती हूँ मुझे तो स्वर्ग भी जाने की जरूरत नहीं, बस भगवान भोलेनाथ कृष्ण जी, क्योंकि मैंने यहीं पर देख लिया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हम लोगों को वहाँ यहाँ पर ऐसा कहा गया कि भाई तुम कौन सी बिरादरी में जाना चाहते हो, तो मैं बोली कि हम लोगों को पंडित ही बनाया उन्होंने, तो उन्होंने कहा तुम तो मातृ पंडित तो मंत्री बोलते हो उच्चारण करते, मैंने कहा बिल्कुल, तो थोड़ा समय तो मैं बोल देती हूँ।

0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। हम बिल्कुल एक अलग ही मूड में चले गए थे और मैं खुद ईश्वर को याद कर रहे हैं और जो शब्द हैं उनके मतलब भी समझे तो हमें बराबरी समझ में आ जाती है क्योंकि हम सब ईश्वर के
0: संतान।
1: उषा जी, मैं बस लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूंगी क्योंकि हम भारत की उन्नति की बात करते हैं और जब तक भेदभाव है तब तक उन्नति नहीं।
0: बिल्कुल सही।
1: तो आप और कोई ऐसी बात कहना चाहें क्योंकि आप हैं जो आप में बदलाव आया, जो आप लेके आए हैं, बदलाव बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, हम सभी के लिए। तो आप भारत के लिए क्या सपना देखते हैं, अपने देश के लिए क्या सपना देखते हैं?
0: बस भारत के लिए मैं यही सपना देखती हूँ कि भारत हमारा बहुत आगे जा सकता है, ऐसा नहीं है और जा भी रहा है। क्योंकि हम लोग पहले ये जानते थे कि हमारा मतलब विदेशी आगे जा सकता है, विदेश के लोग, क्योंकि हम लोगों में क्या करता भारत में, क्योंकि हमारे भारत बहुत सी चीज है, ऐसे नहीं कि नहीं है, बहुत सी चीज है, तो उसको हम लोग यूज करते हैं तो हम बिल्कुल अपने भारत को आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि पहले हम लोग क्या करते थे कि कितनी आप देखिए अपने इंडिया में कितना मतलब माहौल ऐसा था कि कोई भी चीज खा के और डाल दिया
1: जी,
0: कोई मतलब लेडीजों की इज्जत नहीं थी
1: जी।
0: जैसे कि अपने यहाँ पर विदेशों में देखिए सब कुछ लेडीजें करती हैं और वहाँ पर साफ सफाई बहुत है, लेकिन अपने यहाँ पर देखिए अब जब से नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए अपने देश में खूब अच्छे से साफ सफाई यहाँ पर भी हो रही है और अपना भारत भी बहुत आगे जा रहा है और लेडीजों को भी खासतौर से वो भी सम्मान दिला रहे हैं। जब लेडीजों को सम्मान मिलता तो लेडीजों का हौसला बढ़ जाता है, तो वो सोचती है कि आज मुझे मिला है तो दूसरी बहन को मैं दिलाऊं। तो जब एक लेडीज निकल के आती है, मैं मेरी बस्ती में सजे से निकल के आई अलवर में, तो देखिए कभी मेरे समाज को कभी नहीं मिला था पद्मश्री, तो आज वो है, मेरा इतना इज्जत और सम्मान करते हर जगह पर, मुझे बुलाते, जो भी कुछ भी वहां पर होता पहले मुझे याद करते
1: जी।
0: तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इतनी खुशी मिलती है कि मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं, मुझे इतनी खुशी मिलती है। तो मैं डॉक्टर पाठक जी को धन्यवाद देती हूँ, वही हमारे बाबा, वही हमारे गांधी जी और वही हमारे भगवान। क्योंकि मैंने तो गांधी जी इतनी उम्र मेरी नहीं है कि मैंने देखे, लेकिन डॉक्टर पाठक जी मैंने देखा जो भी देखा।
1: लेकिन उषा जी मुश्किल तो हुआ होगा, चैलेंज तो आया होगा, इतना आसान तो चेंज नहीं होता।
0: मैं बहुत मुश्किल से चेंज आ रहा है, जैसे कि 2003 से मैंने छोड़ा तो जो शौचालय कच्चे थे दूसरी लेडीज ने पकड़ लिए, फिर दूसरे ने छोड़े तो तीसरे ने पकड़े, फिर मैं डॉक्टर पाटिल जी से कहा कि सर हम लोगों की जिंदगी में तो कोई बदलाव कभी आएगा ही नहीं, नहीं हम बदलेंगे, क्योंकि मैंने छोड़ा तो दूसरे ने पकड़ लिए वो। तो डॉक्टर पाटिल जी ने क्या करा, जिस जड़ फैली हुई थी वही उन्होंने काट दी, हर जगह पर उन्होंने शौचालय बनवा दिए पक्के, तो ना तो कच्चे शौचालय है ना ही उन्हें साफ करते हैं उन्होंने। और हम वहां पर अब संस्था में जुड़े हुए हैं सुलभ इंटरनेशनल में
1: जी।
0: तो 2003 से मैंने छोड़ा, फिर 2006 में दूसरी लेडीज ने छोड़ा, फिर 2009 में तीसरी ने छोड़ा। तो हम लोगों ने काम छोड़ दिया, आप इज्जत और सम्मान की जिंदगी जी रहे और आपके सामने यहाँ पर भी आए हम लोग, हर जगह पर सम्मान पा रहे, तो बहुत खुशी होती है कि हम लोगों को, मुझे कि मैं एक मेला ढोने वाले के लिए कल तक कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आज कि मुझे सब इज्जत और सम्मान की नजर से देखते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं उनके लिए यही कहती हूँ डॉक्टर पाठक जी के लिए कि देखिए उनके जिन्होंने उनको जन्म दिया है, मैं उनको भी सत सत नमन करती हूँ, उनको जन्म दिया इतने मतलब महान एक सपुत्र है उनके जिन्होंने हम लोगों की जिंदगी बदली।
1: हम भी उन्हें इस मंच के द्वारा बहुत प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं जिन्होंने इतने जीवन परिवर्तन।
0: क्योंकि मैम देखिए ना तो वो हमारे अलवर के रहने वाले थे ना ही हमारे समाज के थे, वो दूसरी बिरादरी के है, पंडित है वो, आज तो मैं पंडित खुद ही हूँ क्योंकि हम लोगों ने उन्हें कहा कौन सी बिरादरी में जाना चाहते हो, लेकिन आज मैंने यहाँ पर आके देखा
1: जी
0: ब्रह्मचारी कन्या में, कन्या तो यहाँ पर मुझे कन्याकुमारी में तो बहुत अच्छा लगा मुझे, यहाँ पर बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि इतना अच्छा लगा कि मैम आप, मैं कह नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लगा है।
1: हमें भी बहुत अच्छा लगा है क्योंकि हम सभी परिवार हैं एक, और जब मिलते हैं सीखने को मिलता है। एंड आपको हम स्पेशली बहुत धन्यवाद देते हैं उषा जी, क्योंकि जो आपने बातें कही यहाँ गांव-गांव तक जाएंगी
0: जी।
1: बहुत सी महिलाएं हैं जो लगता है कि हमारे जीवन में शायद कभी बदलाव नहीं आएगा, हमारी किस्मत में यही लिखा है, लेकिन वो जब ये सुनेंगी तो उन्हें समझ में जरूर आएगा कि किस्मत में ये नहीं लिखा।
0: हमारी किस्मत खुद बदलने वाले हैं,
1: खुद बदल सकते हैं, बस एक कदम बढ़ाना।
0: हाँ, बस लेडीजों को थोड़ा सा घर में से बाहर निकलना, उसके बाद बहुत सी कुछ जान सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी, एंड आपको आगे का भी कार्यक्रम है तो मैं आपका बहुत समय नहीं लूंगी, लेकिन आपका बहुत हृदय से आभार, आप यहाँ आई हमारे साथ अपने अपनी कहानी शेयर की, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।
1: नमस्कार दोस्तों, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और उषा जी की कहानी आप आगे भी एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, एक दूसरे को हिम्मत दीजिए और आगे बढ़िए। रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: मित्रांशिवाय आयुष्य पूर्ण हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर करायचं।
3: तेरे जैसा यार कहां,
2: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं।
4: लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा,
2: मनात बीट्स वाजल्या की शरीर आपोआप थिरकतं।
5: I am a disco dancer।
2: त्याच सोबत
6: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध,
7: कोण दिसा मेले की चलावी पटुनिया,
2: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा,
8: पहला नशा पहला खुमार,
2: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM। आनंदी रहा, आनंद लुटा।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किसके पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं।

0: हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: संत कबीरदास का जन्म संवत 1456 और निर्वाण संवत 1575 माना जाता है। उनका पालन पोषण नीमा और नीरू नामक जुलाहे दंपत्ति ने किया था। वे पंडित रामानंद के शिष्य थे और वीतरागी जीवन जीते थे। उनका चित्त राम में रमा था, मगर उनके राम दशरथ नंदन नहीं, शून्य स्वरूप परम तत्व थे। सारा जीवन काशी में बिताने के बाद अंतिम समय वे मगहर चले गए। यही था उनके आचार और विचार से एक होने का परिचायक। कबीर काव्यगत रूढ़ियों के न तो कायल थे और न ही जानकार। उन्होंने कहीं काव्य लिखने की प्रतिज्ञा भी नहीं की। वे पंडित, शेख, अवधू और योगी सब पर आक्रमण करते, लेकिन बदनीयत से नहीं। भाषा उनकी चेरी थी, लेकिन वे शब्दों का आडंबर नहीं रचते। उनके लिए प्रेम ही परम पुरुषार्थ था। आपादमस्तक प्रेम में भीगे कबीर आडंबर से कोसों दूर थे। वे न पूजा करते, न नमाज पढ़ते, न हज जाते और न तीरथ। उनका ऐसे लोगों से कोई सरोकार न था जो पढ़ पढ़कर पत्थर हो जाएं, लेकिन जिन्हें प्रेम की एक छींट भी न लगे। कबीर ने अगर कुछ पढ़ा था तो वो थे प्रेम के ढाई अक्षर, और यही ढाई अक्षर उन्हें विलक्षण बांकपन देते थे। कबीर औरों से अलग थे, भाषा में अलग, विचार में अलग, सलीके में अलग, सलूक में अलग। उनका प्रभामंडल सौम्य नहीं, प्रखर था। न वे किसी खांचे में अटते, न उनके लिए खांचा बनाना संभव। उनके साथ चलने के लिए घर फूंकना पड़ता। वे अपूर्व और इकलौती शख्सियत बनकर एक ऐसे मैदान में खड़े थे जिसकी कोई हद नहीं थी। चीजों को पकड़कर या ढोते हुए कबीर के मार्ग पर नहीं चला जा सकता। उनका मार्ग न तो हिंदू का मार्ग है और न ही मुसलमान का। कबीर नाम है ढाई अक्षर के बांकपन का।

0: क्या भजन आया रेडियो पे, सुन के दिल एकदम खुश हो गया। अच्छा काका, कबीर जी की भजन तो बड़े अच्छे होते हैं, इतना क्यों मानते हैं कबीर जी को, कुछ बताओ ना काका।
1: अरे काका बता दो, नहीं तो दिन भर जान खा जाएगा आपकी, अभी तो वैसे भी ढाबे पे कम लोग हैं।
0: तू चुपचाप रह। हाँ तो काका, कबीर दास जी बहुत पुराने समय से हैं ना।
2: हाँ।
1: अरे काका आज तो सुनाई डालो, आज का दिन अच्छा जाएगा और वैसे भी सल्लू तो मानने वाला है नहीं।
0: हाँ हाँ काका, सुना दो कबीर दास जी के बारे में।
2: अरे बेटा सल्लू, समय था आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1456, शहर बनारस गंगा किनारे बसा हुआ। अरे वहाँ पैदा हुआ कबीर।
1: कबीर?
2: हाँ।
0: मतलब कि कबीर दास काका?
2: हाँ सल्लू, कबीर दास।
1: अरे हाँ काका, उनका तो हमने पढ़ा भी है।
2: हाँ, एक मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा को बनारस के लहर तारा तालाब किनारे पड़ा मिला था।
0: तालाब किनारे?
2: हाँ तालाब किनारे।
0: अरे ये सब तो नहीं मालूम था काका।
1: हाँ ये तो बिल्कुल नहीं मालूम था काका।
3: बहुत थक गई मैं तो चलते चलते।
4: मेरी थकान तो तालाब किनारे की ठंडी हवा ने दूर कर दी।
3: मेरा तो प्यास के मारे गला सूख रहा है।
4: तालाब से दो घूंट पानी पी लो।

0: सुनो, कुछ सुना तुमने?
1: हाँ, जैसे कोई नन्हा बच्चा रो रहा है, पर यहाँ तो कुछ नजर नहीं आता।
0: चलो चलो उधर चलकर देखते हैं, आवाज वहीं से आ रही है।
1: ये रहा, बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ है।
0: या अल्लाह, कौन जालिम बच्चे को इस तरह छोड़ गया? देखो देखो ना, मेरी गोद में आने के बाद कैसा चुप हो गया।
1: समझ नहीं आ रहा इस बच्चे का क्या करें।
0: अरे चलो इसे अपन घर ले चलते हैं।
1: पागल हो गई हो?
0: हाँ मैं पागल हो गई हूँ। अरे अल्लाह ने हमें कोई औलाद नहीं दी, हम इसी को पालेंगे।
1: अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं किस मजहब या जाति का है, हम कल किसी झंझट में न पड़ जाएं।
0: इस डर से इस मासूम को मरने के लिए यहाँ पर छोड़ दें क्या?
1: ये तो इंसानियत के खिलाफ होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। मगर
0: अगर मगर कुछ नहीं, हम इसे पालेंगे। अरे मालिक की भी शायद यही मर्जी है।
1: हम बे औलाद हैं, लोगों को क्या जवाब देंगे?
0: लोगों से क्या मतलब है हमें, कोई चोरी या बुरा काम तो नहीं कर रहे ना हम।
1: तू क्या समझती है कि बच्चे के मिलने से तू अकेली खुश है? मैं भी खुश हूँ।
0: बेशकीमती औलाद मिल गई है हमें, मन की साथ पूरी हुई।
1: तेरा लाख लाख शुक्र है परवरदिगार। चल उठा, बच्चे को घर ले चलते हैं।
0: हाँ, चलो जल्दी घर चलो।
2: ये तो बहुत अच्छा हुआ काका कि नीरू और नीमा ने कबीरदास जी को तालाब के पास से उठा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। हाँ काका।
3: हाँ बेटा, कबीर के आने से नीरू और नीवा के जीवन में बहार आ गई थी। नन्ना बाला कबीर दोनों की आंख का तारा था। लाड़ प्यार से पलता कबीर अब 6 वर्ष का हो गया था। था नन्ना, पर सवाल बड़े बड़े करता था। अपड़ नीरू और नीमा उसके सवालों को सुनकर हैरान रह जाते थे।
4: अब्बा एक बात पूछनी है। पूछूं क्या?
1: साथ आते हुए तूने वादा किया था कि सवाल पूछकर मेरी खोपड़ी नहीं चाटेगा।
4: बस एक सवाल।
1: तू मानेगा नहीं, पूछ।
4: अब्बा वो जो आदमी खड़ा है उसने माथे पर तिलक क्यों लगा रखा है?
1: क्योंकि वो ब्राह्मण है बेटा।
4: ब्राह्मण क्या होता है?
1: हिंदुओं में सबसे बड़ी जाति है बेटा।
4: हिंदू कौन होते हैं?
1: जैसे हम मुसलमान हैं वैसे ही वो हिंदू हैं।
4: पर वो तो बिल्कुल हमारे जैसे दिख रहे हैं, फिर हिंदू कैसे हुए?
1: दोनों मनुष्य ही हैं, बस अलग पहचान के लिए हिंदू और मुसलमान हुए।
5: अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर।
4: अब्बा ये इतनी जोर से किसकी आवाज आ रही है?
1: चुप चुप, बिल्कुल चुप। ऐसा नहीं कहते, मौलवी साहब मस्जिद में अजान दे रहे हैं, खुदा के बंदों को इबादत के लिए बुला रहे हैं।
4: पर मैंने तो मस्जिद में किसी खुदा को नहीं देखा, वहाँ तो मौलवी साहब रहते हैं ना।
1: खुदा तो हम सबके दिल में रहता है।
4: फिर हम मस्जिद क्यों जाते हैं?
1: या अल्लाह, अच्छा अब तू चुप कर।
4: अब्बा बताओ ना, ये अल्लाह कौन है?
1: अल्लाह और खुदा एक ही हैं, जिसने हम सबको बनाया है, इसीलिए हम उसकी इबादत करते हैं।
4: इबादत माने?
1: खुदा को खुश करने का तरीका।
4: इबादत से खुश हो जाते हैं वो?
1: लोग तो ऐसा ही कहते हैं।
4: इबादत तो आप भी करते हैं, फिर उसने हमें गरीब क्यों बनाया? और लोग तो अमीर हैं।
1: अपना नसीब है बेटा, खुदा ही हमें बनाता है और हमारा नसीब भी।
4: इसका मतलब खुदा भेदभाव करता है।
1: अल्लाह चुप कर, बीच बाजार पता नहीं क्या क्या बके चला जा रहा है, खुदा के लिए ऐसा नहीं कहते बच्चे।
4: पर अब्बा ये तो
1: अब बता। और सवाल नहीं, तेरे सवालों से मेरा माथा दुखने लगता है।

0: हो आई? दिन भर से काम कर रहे हो, अब बस भी करो।
1: महाजन को कल ही थान देना है। सुनो, जब से कबीर घर में आया है तब से हमारी हालत सुधर गई है।
0: मैं भी वही देख रही हूँ।
1: कबीर घर में नहीं दिख रहा है, कहाँ गया?
0: बाहर खेलने गया होगा बच्चों के संग। बुलाती हूँ अभी मैं। कबीर, ओ कबीर।
1: वो बच्चों के संग नहीं होगा।
0: हाय अल्लाह, फिर कहाँ गया होगा मेरा लाल?
1: पास वाले चबूतरे पर कुछ साधु बैठे हैं, उन्हें अटपटे सवालों से परेशान ना कर रहा हो।
0: अरे मुझसे भी पूछता है, खुदा कौन है, भगवान क्या है, अब मैं भला क्या जानूं?
1: बड़ा डर लगता है उसके सवालों से, कहीं किसी दिन बड़ी मुसीबत ना खड़ी हो जाए। हम ठहरे छोटे लोग।
0: मौलवी साहब से कहें क्या कि इसे तालीम दे दे?
1: पगला गई हो, एक बार बात की थी तो? दुत्कार दिया मौलवी साहब ने, कहने लगे जुलाहे की औलाद दीनी तालीम हासिल करेगी तो कपड़े के हमारी औलादें बुनेंगी।
0: अरे वो लो अम्मा, लो आ गया तुम्हारा लाडला।
2: क्या बात है अम्मा, क्यों परेशान हो? अब्बा भी परेशान दिख रहे हैं।
0: तेरी तालीम को लेकर परेशान है बेटा, मौलवी साहब मना करते हैं तालीम देने से।
2: मना करते तो करने दो, मैं साधु संतों से हासिल कर लूंगा।
0: ना मेरे लाल, सुना है वो बच्चों को भगा ले जावे हैं।
2: अरे अम्मा, मुझे कोई नहीं भगा सकता।
0: उनके फुसलाए से कहीं तू साधु बनकर अपनी अम्मा को तो ना छोड़ेगा बिटवा?
2: अरे मैं अपनी अब्बा और अम्मा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे तो बस ज्ञान पाना है, साधु से मिले या मौलवी से।
0: सुनो जी, मुझे तो बस यही चिंता खाए जाती है कि कहीं मेरा लाल मेरी नजरों से दूर ना हो जाए।
1: और मुझे तो फिलहाल यही चिंता सता रही है कि आज खाना कब मिलेगा।
0: अच्छा।

0: कहते हैं ना बेटा कि पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं, कबीर के भी दिखने लगे थे। दुनिया, खुदा, धर्म, पाप, पुण्य, मुक्ति और ऐसी तमाम बातों को लेकर उसकी जिज्ञासाएं बतलाती थीं कि वो एक साधारण बालक नहीं है। कबीर अब किशोर अवस्था में आ गया था, ज्ञान देने वाला कोई गुरु तो मिला नहीं, इसीलिए साधु संतों और मौलवियों के पीछे घूमता, ज्ञान की तलाश में भटकता फिरता था वो।
1: मतलब कि बचपन से ही ज्ञान पाने की ललक थी उनमें काका।
2: अरे नहीं तो कोई ऐसे ही थोड़ी भटकता।
3: क्या बात है बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा?
4: मेरा नाम कबीर है, आप लोगों से कुछ सुनने आया था।
2: इतनी छोटी उम्र में साधु से क्या सुनोगे बच्चा, सिवाय भजन के सो गा रहे हैं, बैठो और सुनो।
4: अब भजन क्यों गाते हैं?
2: ईश्वर की महिमा है, सब अपने अपने ढंग से गाते हैं बच्चा।
4: ईश्वर? ईश्वर कौन है?
3: हम सबका मालिक।
4: अब्बा तो कहते हैं हम सबका मालिक तो खुदा है।
3: एक ही बात है बेटा, जो खुदा है वही ईश्वर है, एक ही मालिक के दो नाम।
4: क्या आपने उस मालिक को देखा है?
2: देखा तो उसे किसी ने नहीं।
4: फिर आप कैसे कहते हैं कि ईश्वर है?
3: क्योंकि हम हैं, ये दुनिया है, हमको इस दुनिया को उसी ने बनाया है और ये दिखती भी है।
4: ये दुनिया उसने बनाई तो उसे किसने बनाया?
2: उसे कौन बनाएगा, वो सर्वशक्ति संपन्न ही इस दुनिया को बनाने वाला है।
4: अच्छा बाबा, फिर उसने भेदभाव क्यों किया? किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को ऊंची जाति का और किसी को नीची जाति का क्यों बनाया?
3: अपने कर्मों के फल भोगते हैं हम सब।
4: पर जिस दिन पैदा होते हैं उस दिन तो किसी का कोई कर्म नहीं होता, सभी जीव बराबर होते हैं। जब सबको बराबर मिला तो बाद में भेदभाव और छोटा बड़ा कैसे हो गया?
2: क्योंकि हर आदमी बाद में अपनी बुद्धि से ही कर्म करता है।
4: पर बुद्धि तो एक सिपाही, फिर सोच अलग क्यों?
3: ताज्जुब है बच्चा, बहुत बड़ी बात कह दी तुमने।
4: बाबा ये दुनिया उसने क्यों बनाई, यहाँ तो सभी दुखी हैं।
2: उसकी लीला वो ही जाने, हम तो बस उसके हाथ के खिलौने हैं, नचाता रहता है वो हमें।
4: कब तक?
3: जब तक हम उसको प्रसन्न कर इस माया मोह से मुक्त नहीं हो जाते।
4: मुक्त होकर कहाँ जाते हैं?
2: दूर तारों के पार, वहाँ आसमान में जहाँ स्वर्ग है।
4: किसी ने उस स्वर्ग को देखा है?
3: उसी को देखने की कामना में तो घर बार छोड़ आए हैं बच्चा।
4: फिर भी वो नहीं दिखा तो?
5: कबीर, अरे ओ कबीर, कब लो तू यहाँ बैठा है और मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ आई।
4: तू नाहक परेशान ना हुआ कर अम्मा।
3: बहन अद्भुत बालक है तुम्हारा।
5: सब उसकी कृपा है और आपका आशीर्वाद है।
6: मुझे तो ये किसी जन्म का अवधूत जान पड़ता है।
3: ऐसे सवाल खड़े कर दिए इसने हमारे सामने कि अब तक की सारी साधना बेकार जान पड़ रही है।
6: अरे बच्चा हमारे साथ चलेगा क्या?
4: नहीं, मैं अपनी अम्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा बाबा मुझे आज्ञा दीजिए।
3: कल्याण मस्तु।
7: बालक तो चला गया पर हमें झिंझोड़ गया।
3: लगता है हम क्या अब तक अंधेरे में ही भटक रहे हैं।
6: यहाँ से चलो किसी और ठोर। अरे
8: क्या बात है, बहुत उदास बैठी हो।
9: और क्या करूं, गरीब को औलाद भी दी तो निर्मोही।
8: बात क्या है, कुछ खुलासा तो करो।
9: अरे उसके दोस्त अनवर की शादी हो गई और एक ये है कि साधु संतों के बीच ही भटकता फिरता है।
8: उसके यही लक्षण देखकर तो मुझे उससे शादी करने के लिए कहने की हिम्मत ही नहीं होती। कौन भी आएगा अपनी लड़की इससे?
9: क्यों, क्या कोई चोर उचक्का है मेरा बेटा? कौन सी बुराई है मेरे बेटे में?
8: अरे ये सत्संग बत्संग।
9: अरे सत्संग करना तो ज्ञानी का काम है।
8: कौन है भाई वहाँ?
2: नीरू भाई मैं हूँ।
8: आओ आओ और सुनाओ क्या हाल है।
2: हमारा तो ठीक है, अपनी सुनाओ। कबीर नहीं दिख रहा?
8: हाँ उसी को लेकर फिक्रमंद हूँ, रोज नया बखेड़ा खड़ा कर देता है। आज किसी पंडित से उलझ लिए तो कल किसी मुल्ला को छेड़ दिया।
2: अरे यही बताने तो मैं आया हूँ, पकड़ो उसे वरना फुर्र हो जाएगा।
9: मैं भी तो यही कह रही थी कि उसकी शादी कर देते हैं।
8: बावली हुई हो, वो कभी नहीं मानेगा।
2: कल मैंने भी सुना कबीर को खुलेआम पंडो पुजारियों और मुल्ला मौलियों को चुनौती देता है।
8: कैसे समझाऊं, मेरी तो वो बिल्कुल नहीं सुनता।
9: अरे बड़े बड़े कर्म कांडी पंडित रहे हैं यहाँ काशी में, वो क्या कर रहा है?
2: पंडित और मौलवी दोनों नाराज हैं, कुछ करना बैठे ये दोनों।
9: यही तो डर है मुझे।
8: अब रोने से कुछ ना होगा, कुछ उपाय करना होगा। आने दो आज उसे, जुलाहा है जुलाहे से रहे अपने ओहदे में, चले हैं दुनिया को ठीक करने।
2: कह रहा था जाति वाति कुछ नहीं होती, सब इंसान बराबर हैं, हिंदू और मुसलमान भी केवल भरम है इंसानों का बनाया हुआ।
8: या मेरे मौला, मेरे बच्चे की हिफाजत करना, वो नादान है, मूर्ख को ये सब कहने की क्या जरूरत है।
2: अरे यही नहीं, कहता था गंगा में डुबकी भर लगाने से न पाप कटता है और न ही राम का नाम जपने से मुक्ति मिलती है, और सुनो देवी देवता सब झूठे कहता है, बलि के नाम पर पशु मारने वाले पंडित कसाई हैं, ऐसा कह रहा था।
8: तुम ही कुछ उपाय बताओ भैया।
2: अब मैं क्या बताऊं, वो तो बहुत खरा खरा बोलने लगा है, कहता है ईश्वर तो कुछ भी कर सकता है, तो हमसे क्यों जानवर कटवाता है, खुद ही खेत जंगल से उठाकर उन्हें क्यों नहीं खा जाता।
9: अरे लगता है ये हमें चैन से नहीं रहने देगा।
2: कुछ भी कहो भाभी जान, पर अच्छे अच्छे पंडितों और मौलियों की जबान पर लकवा मार जाता है उसकी बातें सुनकर, अब पता नहीं इतनी बुद्धि कहाँ से आई उसमें।
9: अरे साधु संतों की संगत में सीख गया लगता है।
8: अब तक घर नहीं लौटा, फिक्र हो रही है।
2: कहीं भटक रहा होगा ज्ञान की खोज में। अच्छा भाई मैं चलता हूँ।
9: सुनो मैं भी जाती हूँ उसे खोजने के लिए।
8: अब तुम ना जाओ कहीं।
9: क्यों?
8: आ जाएगा खुद ही, बच्चा थोड़ी है।

0: वाह वाह कबीर वाह, क्या खूब बात कही।
1: अरे तुम कब आए?
0: अरे कुछ देर हुई।
1: चुपके चुपके मेरा भजन सुन रहे थे।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: अरे रेदास, गंगा पार कुछ नागपंथी योगी ठहरे हैं, 2 दिन से वहीं था, कुछ दिन और उनकी संगत में रहने का मन है।
0: सुना है उनकी साधना बड़ी निराली और रहस्यमय होती है।
1: वे ज्योति निरंजन के उपासक होते हैं।
0: तुम्हें ठीक लगा इनकी संगत में?
1: आडंबर तो है इनकी साधना में, पर कुछ बातें अच्छी हैं। जैसे घोर तांत्रिक क्रियाओं के सहारे सहज अवस्था में पहुंचने की बात करते हैं। सहज अवस्था में जो पहुंच गया वो अवधूत हो जाता है। अवधूत के एक हाथ में त्याग और दूसरे में भोग होता है, इसके बावजूद निर्लिप्त बना रहता है वो।
0: अजीब बात है।
1: मुझे तो ये योग और त्याग की आड़ में भोग भोगने की चालाकी जान पड़ती है।
0: फिर तुम क्यों उनकी संगत में?
1: क्योंकि उनका परम पुरुषार्थ मुक्ति है। इनका निरंजन ना सृष्टि करता है ना उनका सहारक।
0: इधर सराय के पास कुछ पंडित लोग जमे हैं, खूब किस्से कहानियां सुनाते हैं। चलो आज वहीं चलें कबीर।
1: चलो।

0: सर्वशक्तिमान परमपिता भगवान के चाहे बिना जगत में एक पत्ता भी नहीं हिलता।
1: पंडित जी, तो क्या ये चोरी चकारी व्यभिचार और सारे दुराचार भी क्या उसकी मर्जी से ही होते हैं?
0: नास्तिक लगते हो तभी कुतर्क करते हो।
1: मंदिर मस्जिद में तो आपका सर्वशक्तिमान परमपिता खुद रहता है, फिर हमारे मंदिर मस्जिदों की ऐसी दशा क्यों?
0: ईश्वर की निंदा करने वाले तुम हो कौन?
1: मेरा नाम कबीर है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए।
2: 100% की बात कहते हैं कबीर, इनके आगे आपका झूठ ठहर ना पाएगा।
3: कोई नहीं मिट सकता।
0: हम वही कहते हैं जो शास्त्रों और वेदों में लिखा है।
1: पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अच्छा बताइए, आपका वो ईश्वर कहाँ रहता है?
0: अरे हर जगह हर प्राणी में रहता है।
1: ईश्वर पत्थर की मूर्ति में रहता है क्या, जिसके सामने आप भैंसा और बकरा काटते हो? उनमें भी तो वही ईश्वर रहता होगा, ठीक कहा ना मैंने?
0: हमारे धर्म का अपमान करने आए हो।
1: संतों देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। संतों देखत जग बौराना, संतों देखत जग बौराना।

0: मतलब कबीर दास जी की चर्चा हर जगह होने लगी थी काका?
1: हाँ सल्लू, काशी में कबीर की चर्चा होने लगी थी। पंडितों और मुल्लाओं पर उनके द्वारा किए जा रहे प्रहारों से वे जन सामान्य में लोकप्रिय होते जा रहे थे।
2: वो तो होंगे ही काका।
1: बिल्कुल ठीक कहा। अरे ये धर्म के ठेकेदार उनकी खरी बातों से भय खाने लगे थे। और उधर उधर अम्मा अपने लाल की चिंता में मरी जाती थी।
3: अम्मा कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है।
4: देती हूँ बेटा, पर मेरी एक बात मानेगा, मेरे लिए एक बहू ला दे बेटा।
3: अम्मा मैं शादी ब्याह के झंझट में नहीं पड़ूंगा।
4: तेरे दोस्त अनवर ने भी तो कर लिया ना ब्याह।
3: वो भी मुझसे शादी कर लेने को कह रहा था।
4: ठीक तो है।
3: मुझे माया मोह के बंधन में मत बांध अम्मा, मैं तो परम आनंद पाना चाहता हूँ।
4: तू छोटा था ना, तब से मैं आस लगाए बैठी हूँ बेटा कि एक दिन मेरी भी चांद से बहू आएगी, घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी।
3: तू रो मत अम्मा, नहीं तो मैं सच्ची में शादी कर लूंगा।
4: हाँ, सच्ची।
3: अम्मा अपने आप को पहचान अम्मा, छोड़ दे मोह माया के बंधन, दुनिया को मेरी नजरों से देखने की कोशिश कर।
4: माँ होकर तुझसे मोह ना पालू, ये नहीं हो सकता बेटा।
3: आखिर कितने दिनों का साथ है हमारा, जो उगता है वो डूबता भी है, आया है तो जाना भी है, वियोग तो होकर रहता है, इस कटु सत्य को जान अम्मा।
4: कल की सोच कर आज का सुख छोड़ दो बेटा। मैं
3: पल भर के सुख में मत पड़, इसमें पड़कर हम दुखी ही होते हैं।
4: अपनी अम्मा को भरमाने की कोशिश मत कर, शादी कर ले।
3: फिर वही बात अम्मा, सारे रिश्ते नाते पलक झपकते मिट जाते हैं, कौन कब साथ छोड़ दे नहीं कहा जा सकता। जोगी का जीवन ही मेरी नियति है अम्मा।
4: जोगी बनना चाहता है, पर मैं जाऊंगी तेरे ही कंधों पर बेटा।
3: दुआ कर कि मैं कामयाब हूं।
4: तेरी ज्ञान की बातें तो मुझे समझ में आती नहीं, पर माँ हूं ना, इसलिए मेरी दुआ तो हमेशा तेरे साथ ही रहेगी बेटा।
3: इस माया ठगनी की गति आज मैं तुझे सुनाता हूँ अम्मा।
4: अच्छा।

0: हमें और इस संसार को किसी ईश्वर या खुदा ने नहीं बनाया।
1: फिर ये मुल्ला, मौलवी और पंडित किसकी इबादत या पूजा करते हैं?
0: ये सब मन के भरमा, उन्हें कुछ भी नहीं पता।
2: अरे भाई, पता तो तब चले जब कुछ हो।
0: वो मानते हैं कि कोई सर्वशक्तिमान है इस संसार को चलाने वाला।
2: और वो वहां ऊपर आसमान में रहता है। क्यों कबीर?
0: रैदास, सब कोरी कल्पनाएं जिनके प्रति विश्वास पैदा किया गया है।
1: पूजा पाठ के पाखंड के फंदे में फंसते जाते हैं, है ना साहेब?
2: जानते हैं सब, पर कोई आवाज क्यों नहीं उठाता?
0: रैदास, अव्वल तो सब जानते नहीं और विरोध की आवाज को कुचल दिया जाता है।
1: साहेब, निराकार और निर्गुण जैसा कुछ होता है क्या?
0: ऐसे नहीं मानोगे तो निराकार और निर्गुण ईश्वर कहकर मनवाएंगे।
2: परंतु साहेब, फिर उपासना किसकी करें?
0: मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास।

0: आत्मा ही परमात्मा है, तुम स्वयं परमात्मा हो।
1: क्या कबीर, ये कैसी बात कही?
0: रैदास, बिल्कुल सच्ची बात है। ईश्वर को पाना है तो वो तुम्हारे भीतर ही है। तेरा साहिब है घटमाही, बाहर नैना क्यों खोले।
1: कबीर, तो क्या मैं मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ?
0: अवश्य अवश्य रैदास, सब कर्मों के बंधन में बंधे हैं और जन्म मरण की भूल भुलैया में भटक रहे हैं।
1: तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी कबीर?
0: अच्छे कर्मों से, तुम्हारा कर्म ही असली पूजा है।
1: अच्छा, समझ लो, अपने आप को पहचान लिया, अब फिर उसके आगे?
0: तो सब कुछ समेट कर अपने आप में मस्त रहो, ना कुछ कहना और ना कुछ सुनना।
2: भाइयों शांत हो जाइए सब, अब आज का सत्संग शुरू होता है।

0: भाई हूं। किसी आदमी को उसके कर्म ही छोटा और बड़ा बनाते हैं।
1: किंतु कबीर, कुछ लोग अपने आप को ऊंचा और श्रेष्ठ बताते हैं।
0: ये उनका झूठा अहंकार है।
2: कबीर झूठ फैलाकर आप लोगों को बरगला रहे हैं।
3: वर्ण व्यवस्था का जन्म स्वयं वेद से हुआ। कबीर धर्म विरुद्ध बात करते हैं। अरे जिसे कहना है और सुनना दोनों ही पाप हैं।
4: शांत हो जाइए आप दोनों। आप दोनों कौन हैं भाई?
5: हम गुरु रामानंद के शिष्य हैं।
0: पंडित जी, क्या आप ब्राह्मण हैं?
3: हाँ हाँ।
0: कैसे कह सकते हैं आप ऐसा?
5: क्योंकि हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं।
0: जो तू बामण बमणी का जाया, आन राह से क्यों ना आया? आप ही लोगों ने ऊंच नीच के भेद स्वार्थवश पैदा किए हैं।
3: नहीं कबीर, आपकी वजह से ही लोगों का विश्वास धर्म कर्म से उड़ता जा रहा है।

0: आप ईश्वर के खिल्ली उड़ाते हैं, वो आपको दंडित करेगा।
1: पत्थर की बेजान मूर्तियाँ तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए हमारी मोहताज हैं।
2: अरे चलो भाई, बिना गुरु वाले से ज्ञानी से बहस बेकार है।
0: चलो चलो,
2: फालतू की बातें करता है। चलो
3: साहेब, ये दोनों रामानंद के शिष्य हैं। रामानंद हाल जानकर आग बबूला होंगे।
1: रैदास, स्वामी रामानंद ज्ञानी हैं, हम उनका दर्शन अवश्य करेंगे।
3: लेकिन साहेब, स्वामी रामानंद तो पूजा आराधना वाले हैं।
1: हाँ रैदास, वो मूर्ति पूजक हैं, वो भी मानते हैं कि परमेश्वर कहीं है।
3: साहेब, फिर तो आपकी और उनकी राह भिन्न हुई।
1: फिर भी रैदास, वो ज्ञानी हैं और ज्ञानियों के दर्शन तो करना ही चाहिए।
3: साहेब, फिर तो आपकी और उनकी राह भिन्न हुई।
1: स्वामी जी प्रणाम।
4: कल्याण हो, कहो कैसे आना हुआ?
1: आपके दर्शनों का मोह खींच लाया। ये दोनों मित्र हैं, रैदास और सेना नाई।
5: स्वामी जी प्रणाम।
4: कल्याण हो, सुना है तुमने मेरे शिष्यों को निरुत्तर कर दिया?
1: मैं तो केवल सच कहता हूँ।
4: गुरु के बिना भी तुम ज्ञान के भंडार हो कबीर।
1: बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई।
4: वाह कबीर वाह। खैर, भगवान को भोग लगाने का समय हो गया है, जाओ कहीं से गाय का दूध ले आओ।
1: जी बहुत अच्छा।
0: देखा गुरुजी, कितनी देर हो गई, हम न कहते थे कि ये बहुत विचित्र हैं।
4: अब कौन सी विचित्र बात देखी तुमने इसमें?
0: अरे ये अपने शिष्यों के साथ गाय के कंकाल के पास बैठे कंकाल से दूध देने की प्रार्थना कर रहे थे।
4: कंकाल से दूध? अरे भाई कबीर, क्या बोरा गए हो, कंकाल भला दूध कैसे देगा?
1: गुरुजी, जब आपका पत्थर का भगवान दूध पी सकता है तो कंकाल दूध क्यों नहीं दे सकता?
4: वाह कबीर वाह, तुम धन्य हो कबीर, यूं ही ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहो, धन्य हो।
1: स्वामी जी, मेरा कोई गुरु नहीं है।
4: उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान तुम्हारे भीतर है, ज्ञान की गंगा बहाते रहो।
1: लेकिन मैं जाति से जुलाहा हूँ।
4: अरे पगले, साधु की कोई जाति नहीं होती।
1: मैंने अपना घर भी नहीं त्यागा है, फिर साधु कैसे हुआ?
4: जिसे छोड़ना था, जैसे मोह, लोभ, अभिमान, वो सब तो छोड़ दिया ना आपने।
1: गुरुजी, आज्ञा दीजिए, फिर आऊंगा आपके दर्शन करने।
4: कल्याण हो।
1: कौन?
6: अरे साहेब, मैं और रैदास।
1: आओ भाई।
3: साहेब, आपके सत्संगों ने काशी के पंडितों और मुल्लाओं दोनों के बीच कोहराम मचा रखा है।
6: अरे वो दोनों मिलकर लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहे हैं।
3: और तो और कबीर, सत्संग में आने से रोकने के लिए लोगों को धमका भी रहे हैं।
6: अरे कबीर, सुना है कोतवाल के साथ लेकर कोई साजिश रची जा रही है।
1: जितनी उनकी समझ है वो उतना ही तो करेंगे।
3: लेकिन कबीर, काशी में वो बहुत ताकतवर हैं और किसी भी साजिश को अंजाम दे सकते हैं।
6: हाँ, हुकूमत भी उनके साथ ही रहेगी।
1: तो उनका मुकाबला हम लोगों को जगा कर करेंगे।

0: मियां कोतवाल साहब आदाब अर्ज है।
1: अरे आदाब अर्ज है मौलवी साहब, कहिए कैसे तकलीफ की?
0: अरे मियां तकलीफ में तो हम खुद हैं, कबीर ने जीना हराम कर रखा।
1: अरे तो आप उसका जीना हराम कर दें।
0: अरे तो उसी के लिए तो आपके पास आए हैं।
1: अरे मैं भला इस मामले में क्या कर सकता हूँ?
0: आप ही इसमें कुछ कर सकते हैं कोतवाल साहब।
1: अरे देखिए मौलवी साहब, ये मजहब का मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ।
0: लाहौल बिला कुवत एक सिरफिरा मजहब के खिलाफ बातें फैलाकर फसाद करने पे आमादा है, और शहर कोतवाल कान में तेल डालकर बैठे देंगे क्या?
1: मौलवी साहब अदब कायदा ना भूले।
0: बेअदबी के लिए माफी चाहता हूँ। पर आप उसका मुंह बंद करें।
1: हाँ ठीक है, सोचेंगे हम इस पर।
0: बेहतर होगा। अच्छा, खुदा हाफिज।

0: शिव शिव शिव शिव। कोतवाल साहब नमस्कार।
1: नमस्कार पंडित जी। अरे कहिए, क्या आपको भी कबीर से तकलीफ है? पर पंडित जी, हमको तो पता चला है कि उसके साथ हिंदू और मुसलमान दोनों खासी तादाद में।
0: अरे बरगला दिया है साहब उसने, और अपने आम आदमी को अकल ही कितनी होती है।
1: अरे इसी बात का फायदा तो आप लोग उठाते हो।
0: देखिए कोतवाल साहब।
1: अरे छोड़ो पंडित जी, खैर हमने सुना है कुछ दोहा मोहा कहता फिरता है, मजमा भी लगाता है। वो
0: दोहा नहीं है, वो बरछी है। बरछी?
1: बरछी
0: जो सीधे कलेजे में उतरती है हमारे।
1: अच्छा, अब फिर आप ही बताइए कि हम क्या करें।
0: अरे उसे जेल में डाल दो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी।
1: तो समझिए पंडित जी, आपका काम हो गया।
0: तो हम चले।
1: अरे कोड़े पड़ेंगे तो सारी गर्मी निकल जाएगी तेरी, समझा? अबे बोल, अरे बहुत गर्मी चढ़ गई है।
2: छोड़ दो इस गरीब को, शर्म आनी चाहिए आपको एक लाचार पर हाथ उठाते हुए।
3: साहब साहब मुझे बचाइए साहब, साहब दे।
2: इस गरीब का अपराध क्या है?
1: अरे महसूल देने में आनाकानी करता है ये बदमाश।
2: तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसे सरे राह पीटेंगे?
1: देखो भाई, मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ, इसे थाने ले जाकर ही रहूंगा। हाँ चल, क्या बात है? आप हैं कौन?
2: मेरा नाम कबीर है। किस गुनाह के लिए इस गरीब को सताया जा रहा है?
1: सुनो, हम तो हुकूमत का काम कर रहे हैं।
2: गरीबों पर अत्याचार?
1: अरे देखो भाई, हम सिर्फ हुक्म की तामील कर रहे हैं।
2: गरीब को सताने का हुक्म मिला है क्या आपको?
1: अरे लगता है आप ऐसे नहीं मानोगे। सिपाही जरा कबीर को भी गिरफ्तार तो कर लो।
4: कोतवाल साहब, ऐसा गजब न कर बैठिएगा। कबीर को गिरफ्तार करने के पहले एक पल सोचिएगा जरूर।
5: अरे जरा अक्ल से भी काम लीजिए कोतवाल साहब।
1: अरे हाँ भाई, समझ रहे हैं समझ रहे हैं। चलो ठीक है सिपाही, छोड़ दो इसको, छोड़ो।
3: साहब आपने मेरी जान बचा ली साहब, बहुत मारा साहब।
2: जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक यूं ही जुल्म सहोगे, कुचले जाओगे।
3: पर अब हम जुल्म ना सहेंगे साहब, हम में हिम्मत भी नहीं है।
2: ऐसा ना कहो भाई, तुम्हारे पास हिम्मत है, बस एकजुट होने की जरूरत है।

0: अम्मा, अरे अब तू भी कबीर के कवित्त गाती है?
1: अरे आप भी गाया करें हुजूर, बहुत अच्छे कवित्त हैं।
0: अरे चुप, बंद करवा दूंगा, समझे कि नहीं?
1: अरे मगर कोतवाल साहब, किस जुर्म में? मैं तो गरीब बुढ़िया हूँ।
0: अरे कबीर के कवित्त गाने के जुर्म में, और क्या?
1: अरे हम तो पेट भरने के लिए गाते हैं, ये तो जुलम है ना कोतवाल साहब।
0: अरे अम्मा तो कुछ और गाओ ना।
1: पर हमें तो कबीर साहब के कवित्त ही अच्छे लगते हैं। अरे माटी का है कुमार से माटी
0: अरे,
1: का
0: अरे अरे अरे अम्मा सुन, तो पैर भुगतने के लिए भी तैयार हो जा।
1: अरे अब आप कबीर साहब से ही कहिए, वो देखिए इधर ही आ रहे हैं। अरे माटी का है कुमार से माटी का है कुमार।
2: क्यों भाई कोतवाल जी, अब क्या भिखारियों को भी पकड़ने का विचार है?
0: अरे नहीं नहीं कबीर जी जी जी जी, वो मेरा मतलब है कि
1: आपके कवित्त के गाने के जुर्म में ये हमें गिरफ्तार करने वाले थे।
2: कोतवाल जी, भजन गाना तो कोई जुर्म नहीं।
3: साहेब हम सब इसका विरोध करेंगे।
4: लगता है रेदास, हुकूमत भी हमारे सत्संग से दहशत में आ गई है।
3: हुकूमत से डरकर सत्संग ना करें, ये हो नहीं सकता।
2: ठीक कहा रैदास, हम मिलकर इसका विरोध करेंगे।
0: अरे या कबीर, अरे हम कहाँ गिरफ्तार कर रहे हैं।

0: घर कहते हैं वो यहीं छूट जाता है।
1: मरने पर तो ये शरीर यहीं छूट जाता है, फिर इसे हम अपना क्यों कहते हैं?
0: यही तो हमारा अज्ञान है।
2: इसका मतलब ये कि इस संसार में हमारा अपना कुछ भी नहीं?
0: हाँ रैदास, यही सच है। किंतु एक चीज हमसे कभी अलग नहीं होती।
1: वो कौन सी चीज है कबीर?
0: हमारी आत्मा, वो ही परमात्मा है।
2: फिर ऋषि मुनि किसकी खोज में कठोर तपस्या करते रहते हैं?
0: जो पहले से उनके भीतर है रैदास, पर उन्हें कुछ भी नहीं पता। अज्ञानवश उसे ही पाने के लिए कर्मकांड करते हैं।

0: भैया, अपने कबीर की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है।
1: हाँ अम्मा हाँ, हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के बीच में वो तो समान रूप से लोकप्रिय हैं।
2: अरे अम्मा, उन्होंने अपना अधिकांश समय काशी में बिताया, पर जीवन में यात्राएं भी काफी की। काशी में अपनी मंडली के साथ सत्संग के माध्यम से ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहे वे।
0: अरे भैया, अपने कबीर ने जीवन भर धार्मिक अंधविश्वासों, कर्मकांडों और पाखंड के खिलाफ जन चेतना जगाने का कार्य किया है। और भैया, सुनो।
3: हाँ भैया,
0: और सुना है कि कबीर काशी छोड़कर मगहर जा रहे हैं।
2: क्या? अम्मा, मैंने भी सुना है। इस बात से पंडितों में सनसनी फैल गई है।
0: लेकिन जानते हो कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं?
2: नहीं अम्मा।
0: लेकिन भैया, काशी में छोटे तबके के लोग और शोषित जन इस समाचार से बहुत दुखी हैं।
2: हाँ अम्मा, हम सबका मसीहा जा रहा है।
0: सच कहा भैया।
2: हाँ अम्मा, इसका मतलब क्या होता है?
0: अरे मगहर यानी इस नाम का गांव नहीं, बल्कि ज्ञान का मार्ग।
2: अच्छा।
0: अपने कबीर कहते हैं,
2: हाँ,
0: मग यानी रास्ता और हर यानी ज्ञान।
2: वाह, सही कहा अम्मा, सही कहा।
4: अरे अम्मा, अम्मा, अम्मा, अपने कबीर नहीं रहे, कबीर का देहांत हो गया।
0: अरे बेटा, क्या कह रहे हो?

शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए भाइयों, अब कबीर को अच्छी तरह प्रहलाद भगत

निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, दिस आर बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो। चल, चल।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। अगर पिछली कड़ी को देखें, हमने बात की थी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं जो हमारी हैप्पीनेस हमारे साथ नहीं रहने देते हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आया था स्ट्रेस, जो आज जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसे हम मानने लगे हैं कि वो नॉर्मल है। लेकिन क्या वो नॉर्मल है? और जब हमने बहुत सी बातें देखी तो हमें समझ में आया कि यही बिलीफ सिस्टम है जिसके चलते हम खुश नहीं रह पाते हैं। तो आज थोड़ा सा और देखते हैं कि स्ट्रेस से जुड़े कैसे कितने बिलीफ सिस्टम्स हैं जिन पर चलते हुए हमने अपनी हैप्पीनेस को खो दिया है। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जो कल हमारी बातचीत हो रही थी उसमें अगर पिछली कड़ी को देखें तो एक बहुत बड़ा मुद्दा आया, इसीलिए बहुत से कॉल्स भी कल हमारे पास आए कि ये जो स्टूडेंट लाइफ को लेके ही या बच्चों के एजुकेशन को लेके हमने कहा था कि एग्जाम्स के दौरान जो होता है वहीं सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि अपनी नॉर्मल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है, यू नो नॉर्मल अपने रिलेशनशिप्स में मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन बच्चों का जब फैक्टर आता है एग्जाम्स का, उसमें इतना क्लियरली विजिबल हो जाता है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स कई बार बहुत घातक जब हो रहे हैं।
1: जैसे मेरी प्रोफेशनल लाइफ में अगर कोई स्ट्रेस है, मैं उसको अपने तक ही रखते, यू नो, मेरी पर्सनल में कुछ अंदर कॉम्प्लेक्स चल रहा, मैं उसको अपने तक ही रखती हूँ। लेकिन जब घर में बच्चे का एग्जाम है, वो एक घर में, वो एक माहौल में आ जाता है, इसलिए वो शायद ज़्यादा ऑब्वियस दिखता है कि, क्योंकि इट्स समथिंग जो हर एक फैमिली मेम्बर, पेरेंट भी, बच्चा भी, छोटे भाई बहन के ऊपर भी, क्योंकि यू सी अगर बड़े का टेंथ है तो छोटे के ऊपर ऑटोमेटिकली बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, एंड प्लस सारे पेरेंट्स की अटेंशन भी एक पर ज़्यादा चली जाती है। बहुत सारे सी अ चाइल्ड, अ यंगर चाइल्ड विल ऑल्सो गो थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ निग्लेक्ट कि मेरी तरफ तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो तब इसलिए कहते कि लगता कि सबका एग्जाम है घर के अंदर। इसलिए भी एग्जाम एक ऐसा वो है कि यू नो पूरा घर, पूरा परिवार उसको एक्सपीरियंस करता, तो वो एक बहुत बड़ी फिर फीलिंग आती है कि दिस इज स्ट्रेस। बाकी सब में देर इज लॉट ऑफ स्ट्रेस इंटरनली दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग, but we probably you know don't realize it because it doesn't hit everyone in the family equally.
0: और इनफैक्ट वो हिट तो कर रहा होगा, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट यू नो डायरेक्ट नहीं कर रहा है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इसमें जो कल बात जो पिछली कड़ी में निकल के आई थी वो था वो फॉर्मूला, यू नो अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन माई इनर स्ट्रेंथ, यू नो। सो मेरी इनर स्ट्रेंथ इसमें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है।
1: इनर स्ट्रेंथ ही इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज दिन तक हम प्रेशर्स को ब्लेम करते आए कि कंपटीशन बढ़ रहा है, सिलेबस बहुत बढ़ रहा है, सिलेबस को चेंज कर दो ताकि बच्चों का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा।
0: अच्छा, और पिछले
1: ग्रेडिंग सिस्टम को, या ग्रेडिंग सिस्टम
0: में हुआ भी है चेंज।
1: सो यू सी फोकस सारा किस पर है, विच इज ओके, डू लेट्स डू व्हाटएवर फॉर द एजुकेशन सिस्टम, लेकिन फोकस सारा किस पर है कि ये प्रेशर, ये न्यूमरेटर अगर कम होगा तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। डेफिनेटली न्यूमरेटर कम होगा तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, एंड अगर जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है उसी के ऊपर मैं सारा अटेंशन दूँ तो मेरा स्ट्रेस और भी बढ़ता है, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं और मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूँ। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है, 10% न्यूमरेटर प्रेशर, 90% डिनोमिनेटर इनर स्ट्रेंथ। तो 10% यस मेरे कंट्रोल में नहीं, लेकिन 90% मेरे कंट्रोल में है, लेकिन हम वो 90% को इग्नोर करके उस 10% के ऊपर ही सारा देते। तो राजयोग जब हम सीखते तो वी वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड प्रेशर है, रहेगा, बढ़ता भी जाएगा जैसे जैसे परिस्थितियां चेंज होंगी। न्यूमरेटर को हमें बढ़ाना है और बहुत तीव्र गति से बढ़ाना है। सी अगर सिचुएशंस बहुत फास्ट चेंज हो रही है तो डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, उससे भी ज्यादा फास्ट स्पीड से हमें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना।
0: इनफैक्ट वी शुड स्टार्ट एंटीसिपेटिंग, यू नो, कि क्या क्या हो सकता है।
1: नो नो, आप और फियर क्रिएट करोगे वो
0: अपने अंदर, यू नो, लाइक अपने अंदर।
1: नो, सी अगेन, ये कैसे वर्क नहीं करेगा। जैसे अर्थक्वेक आया, ठीक है, तो अर्थक्वेक जो गुजरात में हिट हुआ तो बहुत नुकसान हुआ, तो उसके बाद सारा फोकस गया कि अर्थक्वेक की प्रिपरेशन होनी चाहिए, बिल्डिंग्स को क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सब, विच इज ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके बाद फिर सुनामी आ गया, and we were not prepared for the tsunami, we had prepared for the अर्थक्वेक. सो हम सिचुएशन स्पेसिफिक अपनी प्रेपरेशन नहीं कर सकते हैं कि ये सिचुएशन आएगी तो मुझे कैसे फेस करना है. मुझे सिर्फ स्ट्रांग रहना है और बहुत स्ट्रांग बनना है ताकि कोई भी सिचुएशन आ जाए, फिर वो चाहे
0: तभी वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया.
1: एग्जैक्टली, इट्स नॉट अर्थक्वेक मैनेजमेंट, इट्स नॉट, इट इज डिजास्टर. एनी डिजास्टर इट हिट्स यू, यू शुड बी एबल टू फेस इट. तो उसमें भी डिजास्टर मैनेजमेंट ना करके हम सेल्फ मैनेजमेंट करते, कि सेल्फ मैनेजमेंट हो जाए तो कोई भी डिजास्टर आ जाए यू आर एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि आपको ही तो क्रॉस करना है. तो इसलिए डिनोमिनेटर इनर स्ट्रेंथ पर फोकस करेंगे, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, परिस्थितियाँ वही हैं, कंपटीशन वही है, लेकिन आपका स्ट्रेस फैक्टर कम होता जा रहा
0: है. तो शिवानी, यहाँ एक मेल में हमारे पास आया है जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ इसी को लेकर, कि एक पेरेंट का मेल है कि हमने पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो कंफर्टेबल रखा हुआ है और सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वो की हुई हैं, लेकिन मुझे अपना फियर है, तो क्या वो मेरा फियर भी पहुंच रहा है? उस फियर को मैं कैसे ना पहुंचने दूं, यू नो, बच्चे तक? दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि हम अपनी तरफ से, क्योंकि इतना इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है, हर चैनल, हर अखबार जो है, हर हेल्पलाइन इसी पर बात करती है कि क्या किया जाए, तो उसको करने के लिए हम बच्चे को रिलैक्स करने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन वो जो एबनॉर्मलिटी है, एंड देयर वाज दिस मेल इट सेड कि मेरे को रियलाइज हो गया कि मैं इतना कुछ उसे रिलैक्स करने के लिए कर रही थी लेकिन मैं एबनॉर्मल थी.
1: हम रिलैक्स करने के लिए, इट्स वेरी गुड कि हम रियलाइज कर रहे हैं कि हमें रिलैक्स करना है, लेकिन हम बाहर तो सब कुछ कर रहे हैं कि एक बहुत अच्छा वातावरण बना रहे हैं जिसमें बच्चा बहुत कंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर फियर क्रिएट हो रहा है तो वो वाइब्रेशन है. तो फिजिकल रिलैक्सेशन एक छोटा सा पार्ट प्ले करते, लेकिन मेंटल रिलैक्सेशन वो बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड मेंटली रिलैक्स होना मीन्स नो फियर. सी, हम फियर कैसे नहीं क्रिएट करें, हम किस चीज़ का फियर क्रिएट कर रहे हैं कि सपोज नहीं सक्सेसफुल हुए ये, फिर हमने उसके पीछे पीछे अपनी थॉट्स को देखते जाएं कि हमने सक्सेस के डेफिनेशन किस पर रखे थे, 95% मार्क्स, तो देन वी आर ट्राइंग टू से अगर 95 नहीं आए तो ही इज़ अ फेलियर. एंड ये हम एंटिसिपेट कर करके हम फियर क्रिएट कर रहे हैं, और जो हम फियर क्रिएट करेंगे वो मुझे इमोशनली ड्रेन आउट करता, मेरे बच्चे को बहुत इमोशनली वीक करता है. व्हाट वी नॉट रियलाइजिंग, बच्चा अभी बड़ा हो रहा है, यू नो, राइट फ्रॉम वो जो स्कूल एडमिशन एज टू वट एवर 10th स्टैंडर्ड. जैसे एक बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट होती है, बच्चे की एक इमोशनल डेवलपमेंट भी तो हो रही है. अब इस इमोशनल डेवलपमेंट की स्टेज में हम कौन सी एनर्जी सारा दिन देते हैं? अगर उस बच्चे को नेगेटिव एनर्जी, फियर की, इनसिक्योरिटी की मिलेगी, विल दैट चाइल्ड ग्रो अप टू बी अ स्ट्रॉन्ग चाइल्ड? हमें आज अगर हम देख रहे हैं कि आज के कॉर्पोरेट सेक्टर में इमोशनल इंटेलिजेंस इज समथिंग विच इज़ लुक्ड फॉर. गो 20 years back एंड वो था इंटेलिजेंस क्वेश्चन देखा जाता था, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट होता था. आज हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इमोशनल स्टेबिलिटी का टेस्ट लिया जाता है. क्यों? देर इज़ अ शिफ्ट ना, कि ठीक है, अब तो बहुत सारे लोग हैं जो IIT से आ रहे हैं, IIM से आ रहे हैं, बट वी वॉन्ट वो लोग जो स्टेबल हैं. तो अब अगर कॉर्पोरेट सेक्टर का, जिसके लिए आप अपने बच्चे की तैयारी कर रहे हैं, जब उनका फोकस इमोशनल स्टेबिलिटी पर आ गया है, तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी कौन क्रिएट करेगा बच्चे के अंदर? हमें क्रिएट करना पड़ेगा. हमारा बच्चा सक्सेसफुल जीवन में तभी हो पाएगा अगर वो इमोशनली स्टेबल है. हम इतना फियर, इतनी एक्सपेक्टेशंस का भी प्रेशर क्रिएट कर देते कि बच्चे उस एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर के कारण भी परफॉर्म नहीं कर पाते. यू नो, अगर हम अपने बच्चे को कह पाते कि यू स्टडी हार्ड एंड देन वट एवर हैपन्स आई एम फाइन विद इट, जितने भी आपके मार्क्स आए आई एम फाइन विद इट, बट प्रोवाइडेड आप अपना बेस्ट एप्टीट्यूड उसके अंदर लगा दो.
0: I don't think there is any parent जो ये नहीं कहता होगा.
1: नहीं, हम ये सोचते हैं कि अगर हम ये कहेंगे कि आपके जितने भी मार्क्स आएंगे I'll be fine with it, तो हमें लगता है कि फिर बच्चे के ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं डेवलप हो रहा.
0: सिस्टर शिवानी, मैं इसी पे आना चाहती थी. मैक्सिमम पेरेंट्स यही कहते हैं कि आप जो भी आएगा, यू आर माई चाइल्ड, आई एक्सेप्ट यू, आपके हम मुझे कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप अपना काम करते रहो. और मैक्सिमम पेरेंट्स से जब बात करें,
1: सिर्फ बोलने के लिए या सोच में भी, सी बोलने, वन थिंग इज कि आप ये बोल रहे हैं, लेकिन इंटरनली तो आपकी सोच और आपकी आपस में जो कॉन्वर्सेशन है, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर है, तो आप चाहते हो कि उसको यू नो रिलैक्स करो, तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं तुम पढ़ो, लेकिन क्या हमारी सोच वही है? हमारी सोच में क्या है? आई मेट वन गर्ल हु इज इन द 12th स्टैंडर्ड, तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में बहुत मेरे ऊपर प्रेशर है कि आपको IIT से क्लियर करना है एंट्रेंस एग्जाम। तो कहती जैसे ही घर पहुंचती हूँ ना तो मेरे फादर शुरू हो जाते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एंड शी सेइंग अब मैं एक्चुअली एक डिप्रेशन की स्टेज एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि अब मैं जितना पढ़ती थी ना मेरे से उतना भी नहीं पढ़ा जा रहा है, क्यों मैं एकदम वो हो गई हूँ सुन सुन के। हाँ, एंड शी सेज पता है मेरा स्कूल के बाद घर जाने को दिल नहीं करता, कि जैसे ही घर जाएंगे ना तो वो शुरू हो जाएंगे। तो आई जस्ट थॉट के वी विल मीट हर फादर, तो उनके फादर से मिले, तो आई जस्ट सेड कि आई सेड भाई साहब वी अंडरस्टैंड कि आपकी बहुत यू नो अच्छी भावना है बच्चे के प्रति, लेकिन कई बार थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सो ही जस्ट रिएक्टेड लाइक दैट, ही से तो आपका क्या मतलब है, नहीं बोलो नहीं बोलो उसको पढ़ने के लिए, 6 महीने में फिनिश हो जाएगा, ये 6 महीना है मेरे को सिर्फ
0: आपकी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट,
1: ये मेरे पास सिर्फ 6 महीना है उसके ऊपर वो प्रेशर बिल्ड करके उससे वो क्लियर करवाने का, अगर ये 6 महीना मैंने नहीं बोला नहीं करवाया एंड इफ शी डजंट क्लियर देन व्हाट, बट वी आर नॉट रेडी टू सी कि वो जो मैं बोल रहा हूँ वो जो मैं एनर्जी दे रहा हूँ उसका उस बच्चे पे क्या इम्पैक्ट, बिकॉज वो गर्ल के तो फेस पे विजिबल था, आई डोंट नो व्हाई द पेरेंट कांट सी इट, कि उसके फेस पे विजिबल है कि वो एकदम ऐसी स्थिति में चले गए।
0: प्रेशर, यू नो, अनदर थिंग व्हिच आई वांट टू टॉक अबाउट, इफ वी आर रियली टॉकिंग अबाउट दिस इशू, इज कि डू द पेरेंट्स और टीचर्स रियलाइज कि हो क्या गया है इन सिर्फ 2 सालों में, हम उन्हें मशीन बना देते हैं। आई मेट अ मदर, वो कहती है मैं नहीं चाहती हूँ, उनका बेटा आता है 3 बजे स्कूल से वापस, अभी 11th में है, 3:30 बजे वो चला जाता है इतनी दूर, आई थिंक 15 किलोमीटर गाड़ी उनके साथ जाती है कि वो कुछ क्लासेस ज्वाइन की हुई हैं IIT में एडमिशन के लिए, अभी 12th में तो वो बाद में आएगा, वहाँ पे वो 3:30 बजे निकल के 4:30 पहुँचता है, 7:30-8 बजे वापस आता है, हर रोज़ का उसका स्केड्यूल है। उसके बाद स्कूल में भी उसका एक कोचिंग का पैटर्न है जिसको वो अटेंड नहीं कर पा रहा, सैटरडे संडे वहाँ जाना होता है, तो शी ओनली सेड कि मैं परेशान, क्योंकि मदर को उसके साथ ही सारा काम छोड़ के पूरे 2 साल उन्होंने इस पे लगाया है। आई डोंट अंडरस्टैंड, शी सेड बिकॉज दिस इज व्हाट माय यू नो सन वांटेड, बट डू वी रियलाइज हम कई बार बच्चे के साथ भी तो काउंसलिंग नहीं कर पा रहे, उसको हम समझा नहीं सकते क्या?
1: अब बच्चा क्या करियर चूज करना चाहता है या फैमिली ने क्या डिसाइड किया आपस में, दैट ऑफकोर्स ईच वन विल डिसाइड फॉर themselves, उसके लिए क्या एफर्ट करना है वो भी शायद नीड ऑफ द आवर है कि एफर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन उस चीज़ के साथ साथ सिर्फ इधर ध्यान रख लें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको एफर्ट करना पड़ रहा है, जैसे आपने कहा वीकडे भी सुबह से रात तक, सैटरडे संडे भी सुबह से रात तक,
0: बट यू थिंक सिस्टर शिवानी एक्चुअली, और ये बहुत बच्चे गुजर रहे हैं, आई थिंक टुडे वी रियली नीड टू टेक अ पॉज। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ उसके उस बच्चे पे जो ऐसे इससे जा रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमें इतना मेंटल परसिवरेंस है हम कर लेंगे, और वो सिर्फ 17-18 साल के जो बच्चा है, जो जिसपे खाने का भी उनका जो हालत हो चुकी होती है और जिस तरह से वो पूरा उनका लाइफस्टाइल हो चुका होता है, आई जस्ट वॉन्ट टू नो वॉट इज गोइंग टू हैपन टू दीज चिल्ड्रन जब ये आगे बड़े भी होंगे, और इनका फिजिकल क्या बर्नआउट नहीं होगा?
1: No, see what happens, इस एज ग्रुप में हमारे अंदर स्टैमिना बहुत है, फिजिकल भी बहुत स्टैमिना है, मेंटल भी बहुत स्टैमिना है, लेकिन आप इसलिए हमें लगता है कि 1 साल की तो बात है ना, लेट मी जस्ट गिव इट, क्योंकि अगेन ये एक यू नो जो वर्डिंग्स हैं वो है इस 1 साल पर तुम्हारी पूरी जीवन
0: की
1: यू नो निर्भर करती है, हमने ये नहीं सोचा हमारी जिंदगी बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करती है, बट चलो कोई बात नहीं, इवन देन इफ दिस 1 ईयर हैज एवरीथिंग, put in your best, whatever you want to do, but then equally take care. See, अगर आप इस शरीर से और इस मन से इतनी मेहनत करवा रहे हो तो साथ साथ उतना ही ज़्यादा आपको उसका ध्यान देना पड़ेगा, कि फिजिकली तो फिर भी आई थिंक वी मस्ट बी लुकिंग आफ्टर ourselves, लेकिन मेंटली आई डोंट थिंक वी लुकिंग आफ्टर ourselves, क्योंकि जितना ज़्यादा हम ये एफर्ट कर रहे होते हैं उतना ज़्यादा हम उसके फ्यूचर के साथ अटैच्ड भी हो गए हैं, कि जहाँ मैंने इतना एफर्ट किया है तो उसका रिजल्ट तो
0: आना है,
1: अच्छा होना ही होना है, रिजल्ट अच्छा ही होता है, लेकिन फिर कुछ एक केसेस में जहाँ रिजल्ट नहीं उतना फेवरेबल होता तो हम उसके लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि वो हर दिन, दिन और रात मेहनत करना बहुत अच्छी बात, लेकिन मेहनत के साथ साथ उस रिजल्ट के साथ पहले ही अटैच हो जाना कि ये होना ही है, आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होना ही, मतलब देयर इज जस्ट नो पॉसिबिलिटी कि आप कुछ और करने वाले हैं, वो अटैचमेंट, वो पूरा जो घर के अंदर क्रिएट हो जाता, फिर बाय चांस अगर वो नहीं होता है तो फिर बच्चे के अंदर वो ताकत नहीं, तब पता चलता कि ताकत एक्चुअली नहीं थी.
0: नहीं, यू नो वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि आप इतने ऑलरेडी इन दो सालों में ड्रेन्ड आउट हो चुके.
1: ड्रेन्ड आउट पढ़ने से नहीं होते हो, ड्रेन्ड आउट मेहनत करने से नहीं होते हो, ड्रेन्ड आउट इस प्रेशर को फेस करने का राइट तरीका नहीं है उसे. एंड अगेन वी वुड से बी इन द प्रेजेंट, रोज मेहनत करनी है, रोज पढ़ो विदाउट क्रिएटिंग ऑल दीज फेयरफुल थॉट्स, क्या होगा, होगा नहीं होगा, उसका तो हो गया, मेरा क्या होगा, यू नो इसमें कंपैरिजन आता, कंपटीशन आता, ये वाली थॉट्स को अगर आप सारा डिलीट कर सकते हो, इसलिए मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है एक स्टूडेंट लाइफ में. अगर एक स्टूडेंट रोज सुबह अपना दिन ये चार्जिंग से, पॉजिटिविटी से और राइट काइंड ऑफ थॉट्स से शुरू करे, मेहनत इज नॉट डैमेजिंग, मेहनत कर सकते हैं हम, बहुत मेहनत, इनफैक्ट हम जितना करते हैं उससे कई गुना ज्यादा कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड हमारी लीकेज नहीं कहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ एनर्जी तो उतनी ही है, उस एनर्जी को आप किस पर्पस के लिए फोकस
0: पकड़ के आप चल रहे हो, यू नो वो बहुत डैमेजिंग हो सकता है.
1: तो कई बच्चों का फिर ऐसे मालूम पड़ता कि अगर उनको वो रिजल्ट नहीं मिला जो जो एक्सपेक्टेड था, जरूरी नहीं होता कि फेलियर है, लेकिन जो रिजल्ट मैंने एक्सपेक्ट किया था वो रिजल्ट नहीं हुआ. दिल्ली में ये पिछले साल की बात है, देयर वाज दिस गर्ल हु केम सेकंड इन क्लास, वांटेड और एक्सपेक्टेड टू कम फर्स्ट इन क्लास, शी कमिटेड सुसाइड. How can someone commit suicide for coming second in class? I mean, second in class, you're one of the toppers of the class. Aap class mein second aane ke liye suicide commit jis bacche ne kiya hai, uski mental state ka hum imagine kar sakte ki wo first aane ke idea se itna zyada attached the ki wo second ko face karne ki unke andar ताकत ही नहीं थी,
0: और वो पूरा जो एनर्जी वो ऑलरेडी उतने टाइम में हो चुकी
1: हो, इट वाज जस्ट ओवर. तो हियर द चाइल्ड प्लस द पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वर्क हार्ड, स्टडी, फोकस, एवरीथिंग, लेकिन रिजल्ट इट्स ओके, इट्स ओके, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट तो अच्छा आना ही आना है, लेकिन वो फियर वाली थॉट्स अभी क्रिएट करके अपने आप को ड्रेन आउट नहीं करो. क्योंकि क्या होता है, जब पेरेंट्स भी बहुत मेहनत कर रहे होते हैं बच्चे के साथ, बच्चा देखता है कि मेरा रिजल्ट पेरेंट्स के लिए बहुत मैटर करता है, यू नो फॉर ए चाइल्ड पेरेंट्स आर एवरीथिंग, और जब मुझे दिखाई देता कि मेरा ये मार्क्स जो आने वाले हैं ये मेरे पेरेंट्स के लिए, यू नो इट्स बिकम लाइक लाइफ एंड डेथ, यू कैन सी द पेरेंट्स की सारी खुशी, अगेन वो खुशी वो मार्क्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है, वो भी एक प्रेशर बच्चे के ऊपर क्रिएट हो जाता कि मुझे परफॉर्म करना है तो किसके लिए, अपने पेरेंट्स की हैप्पीनेस के लिए, मेरी हैप्पीनेस से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स की हैप्पीनेस मेरे मार्क्स पर जुड़ी है. ये सारे जो प्रेशर्स है ना, ये अननेसेसरी प्रेशर है. पढ़ाई का प्रेशर है वो इतना सही है, वो फेस कर लेंगे, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर, मेरी हैप्पीनेस इस पर डिपेंडेंट है, आपकी पूरी लाइफ इस पर, ये जो प्रेशर्स हैं ये फिर वो न्यूमरेटर को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं, एंड देन आई रियली डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू फेस अप विद इट, एंड देन वी कम अक्रॉस डिप्रेशन, स्टूडेंट्स गोइंग टू डिप्रेशन, नहीं तो स्टूडेंट लाइफ में डिप्रेशन अनहर्ड ऑफ, स्टूडेंट लाइफ में डायबिटीज, हाइपरटेंशन अनहर्ड ऑफ, लेकिन आज क्यों, क्योंकि प्रेशर्स बहुत बढ़ते जा रहे एंड कोपिंग स्किल कोई सिखा नहीं रहा, कोई भी नहीं सिखा रहा कि राइट थिंकिंग क्या है इसमें, कोई भी नहीं सिखा रहा कि कंपटीशन हेल्दी नहीं है, कंपैरिजन है, सभी यही सिखा रहे हैं कि कंपैरिजन करना है, कंपटीशन करना,
0: जब तक नहीं, अगेन एंड अनदर थिंग व्हिच आई रियलाइज इज, जब उनके फादर ने कहा कि अगर मैं स्ट्रेस क्रिएट नहीं करूंगा तो वो पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, सो दिस इज अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव सिस्टम हमारा कि जब तक स्ट्रेस नहीं होगा, इवन ऑफिस में, मतलब अगर मल्टीनेशनल में देखते हैं तो बॉस बोलता है अगर मैं नहीं क्रिएट करूंगा, कंपटीशन नहीं क्रिएट करूंगा, प्रेशर नहीं क्रिएट करूंगा, स्ट्रेस नहीं दूंगा,
1: परफॉर्मेंस. अब ये भी एक हमें सोचने की बात है कि स्ट्रेस मतलब फियर, फियर, और हम फियर को यूज कर रहे हैं मोटिवेशन क्रिएट करने के लिए, यू नो फियर इज अ मोटिवेटर, तो फियर एक नेगेटिव एनर्जी, मोटिवेशन एक पॉजिटिव एनर्जी, तो एक नेगेटिव एनर्जी से आप एक पॉजिटिव एनर्जी कैसे क्रिएट कर सकते हो? गिव लव, गिव कंपैशन, गिव सपोर्ट, लेकिन गिविंग फियर, ताकि फियर से वो मोटिवेट हो जाए. इट विल नेवर हैपन. कभी भी ऑफिस में अगर हम देखें कि सब लोग काम कर रहे हैं तो अपना बहुत अच्छा काम करते हैं अपने आप, जैसे ही अगर कोई ऐसा सीनियर आकर खड़ा हो जाए जो हमेशा ऐसे वाला है, यू नो, बहुत ऐसे, आप देखेंगे कि सब की, यू नो, जस्ट थिंग्स टू, बिकॉज वी हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, वो कहेंगे गलतियां तो निकालनी चाहिए. क्रिटिसाइज करते रहोगे ना तो ये अपने आप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे. अगर इनको अप्रिशिएट ही करते रहे ना सारा दिन, तो अप्रिशिएट करेंगे तो इनकी परफॉर्मेंस, आई मीन दिस इज थॉट पैटर्न, कि अगर अप्रिशिएट करेंगे तो ये तो फिर अपना बेस्ट एफर्ट नहीं देंगे, ये सोचेंगे वी हैव रीच्ड आवर बेस्ट.
0: दैट्स व्हाट वी डू विद किड्स आल्सो. You know, we've stopped appreciating them because अगर हमने किया तो इनको फिर आगे पढ़ना बंद कर देंगे या ये कर नहीं पाएंगे आगे.
1: What we have to understand is energy का खेल है सर. Appreciate करोगे वो पॉजिटिव एनर्जी है. पॉजिटिव एनर्जी कभी भी किसी को ऐसे नहीं कर सकती है. पॉजिटिव एनर्जी हमेशा empower करेगी. And critical हो जाएंगे बात बात में, और वो भी इस इंटेंशन से. क्रिटिसाइज करेंगे ना तो अपने आप वो और ज़्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि हम अपने बॉस की या अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को बीट करना चाहते हैं. तो अगर वो हमारे काम में गलतियाँ निकालेंगे तो हम मोटिवेट हो जाते हैं, ये बिलीफ सिस्टम है, कि ये फिर मोटिवेट होंगे और मेहनत करने के लिए. अगर बॉस ने आके जूनियर्स को प्रेस कर दिया, फिर तो वो बहुत अच्छा, बॉस खुश हो गया तो चलो, व्हाट एफर्ट डू आई हैव टू पुट. वेरी वेरी, I want to say, call it wrong or what, this belief system
0: doesn't
1: needs to
0: work.
1: Be checked.
0: Actually, it is not working.
1: It doesn't work. क्योंकि जहाँ कोई मेहनत कर रहा है और आप जाकर उस पर critical हो जाते हैं, आप तुरंत उसकी energy को, फिर या तो वो सामने वाले के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो आपकी क्रिटिसिज्म के साथ, यू नो, इन्फ्लुएंस्ड ना हो जाए. लेकिन क्योंकि आज हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं एक दूसरे की एनर्जी से,
0: पर हम चाहते भी हैं कि वो हमारे क्रिटिसिज्म से इन्फ्लुएंस हो.
1: हाँ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो हमारी क्रिटिसिज्म से और अच्छा करे, बट दैट्स नॉट व्हाट इज गोइंग टू हैपन. क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज डिसएम्पावरमेंट. आपको फीडबैक देना है, यस, इट इज़ नॉट कि आप काम ठीक नहीं है फिर भी आप कहेंगे कि योर वर्क इज़ परफेक्ट. लेकिन एक है काम पर फीडबैक देना और एक है क्रिटिकल एनर्जी देना. दोनों में बहुत फ़र्क है. इसलिए वर्ड्स मैटर नहीं करते, वर्ड्स के पीछे का इंटेंशन मैटर करता है. आप फीडबैक देते हुए भी किसी को एम्पावर कर सकते हो, और कई बार ये बोलते हुए भी कि हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन यू नो, आप उसको डिसएम्पावर कर सकते हो. तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा फोकस है काम पर, कि ये काम और अच्छा करे, ये काम और अच्छा करे. हमें ये याद रखना पड़ेगा काम करने वाला कौन है. जो काम करने वाला है, ये शक्ति, उसको जब तक हम एम्पावर नहीं करेंगे तो काम और अच्छा नहीं होगा. हमारा रोल एज अ बॉस और एज अ पेरेंट इज टू फैसिलिटेट, टू गाइड एंड टू एम्पावर. काम वो लोग करेंगे, काम तो अपने आप हो जाएगा. जब एक सीनियर आकर खड़े होते हैं जो थोड़ा इस तरह की एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं, तो अगर मैं सही भी काम कर रही होती हूँ ना, तो वो एनर्जी के इन्फ्लुएंस के अंदर मेरे से गलतियाँ होने लगती हैं. एंड फिर वो गलतियाँ ढूंढ लेते हैं क्योंकि उसके अंदर अब गलती आ गई. लेकिन वो गलती इसलिए हो जाती क्योंकि वो फियर मेरे अंदर क्रिएट हो जाता, क्योंकि माई पास्ट एक्सपीरियंसेस ये आए हैं, अब ये उस तरह की एनर्जी देते हैं. और उनका आना ही, खड़े होना ही, और उस, यू नो, इंटेंशन के साथ खड़े होना, इट क्रिएट्स अ वाइब्रेशन इन द रूम. एंड यू नो, मतलब आप देखेंगे कि विद द एम्प्लॉयज जो अभी तक अच्छा काम कर रहे थे, अब सडनली उनसे गलतियां हो जाती, क्योंकि स्ट्रेस मेरी परफॉर्मेंस को इन्हेंस नहीं करता, वो हमेशा मेरी परफॉर्मेंस को नीचे ही लेकर आएगा.
0: लेकिन एक बात, बहुत लोग बहुत बार सोचते हैं कि जैसे ही मैं इनको प्रेज करता हूँ या अप्रिशिएट करता हूँ, किसी के साथ भी अगर हम ले, तो यू नो, इनका सर चढ़ जाता है. हमसे ये शब्द बहुत बार यूज़ किया जाता है, एंड दिस इज समथिंग अ वेरी दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज, लेकिन ये बात कही जाती है मैक्सिमम लोग, चाहे वो घर पे हों, चाहे वो बाहर हों, या यू नो लाइक, और डिसरिस्पेक्ट शुरू कर देंगे. ज़रा सा मैंने इनको ढील दी ना, ये मेरे सर पर चढ़ के बैठेंगे.
1: चलो उनके बारे में नहीं बात करते, अपने बारे में सोचते हैं. क्योंकि अगर मैं सीनियर हूँ तो मेरे से ऊपर कोई और सीनियर है, नहीं भी है तो आई कैन इमेजिन तो ना, कि कोई अगर मेरे से सीनियर हो तो मुझे क्या अच्छा लगेगा. कि वो मेरे से कैसे काम करवाए, वो मेरे से कैसे बात करे. अच्छा मैं सीनियर हूँ, बच्चा तो कभी था ना, तो जब मैं बच्चा था तो मैं क्या चाहता था कि मेरे पेरेंट्स कैसे बात करें मुझसे. क्या मेरी पर्सनालिटी ये थी कि अगर मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार से बात करते तो मैं उसका अनड्यू एडवांटेज ले लेता?
0: नहीं,
1: कभी भी नहीं. एंड
0: भले मैं तो अच्छा था,
1: सारे ही अच्छे होते हैं ना. नहीं, सारे ही वैसा करते. वी थिंक दैट हम ऐसा करते, बट एक्चुअली सारे ही ऐसे हैं. एवरी वन लाइक्स लव, एवरी वन लाइक्स सपोर्ट, एवरी वन लाइक्स कंपैशन. कोई मिला आज तक जो कहे मुझे क्रिटिसाइज करो तो मैं ज़्यादा अच्छा काम करूँगा? तो ये कई बार, हाँ ये होता है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें आदत पड़ी है डांट से काम करवाने की. इसी तरह सामने वाले को भी आदत पड़ी है कि डांट तो पढ़नी ही है, तो हम दोनों के संस्कार थोड़े वैसे वाले हुए हुए. लेकिन आप एक बार ट्राई करके देखो कि डांट से नहीं, प्यार से ही काम करना है. भले वो काम करें, हो सकता है 2 दिन 4 दिन 1 महीना 4 महीना लग जाए कि वो पूरा जो वर्क कल्चर है उसमें एक चेंज आए, लेकिन चेंज ज़रूर आएगा. एंड अब जो काम होगा ना पूरा, एक तो सब लोग बहुत आपस में नज़दीक हो जाएंगे, क्योंकि देन यू नो देयर इज़ द राइट एनर्जी फ्लोइंग. अभी देयर वॉज नेगेटिव एनर्जी फ्लोइंग. आप किसी को क्रिटिसाइज करो, फिर वो आपसे नफरत करे, तो यू नो बिटवीन द बॉस एंड द जूनियर नॉट वेरी गुड एनर्जी. लेकिन जब ये प्यार और सपोर्ट, एक्सेप्टेंस की एनर्जी फ्लो करती, वी ऑल कम लाइक दिस, एंड देन हमें कोई कहेगा नहीं कि काम करो. हमारा खुद मन करेगा कि हम काम करें इनके लिए, इनकी कंपनी के लिए, क्योंकि इनकी कंपनी हम हमें अपनी लगती है. यू नो देयर इज अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द वर्क. आज कॉर्पोरेट सेक्टर में कहते हैं यू शुड फील, यू नो ब्रिंग योर हार्ट टू वर्क. आप अपना दिमाग तो लेकर आ रहे हैं ऑफिस में, लेकिन अपना दिल घर पर छोड़कर आते हैं. योर बिलोंगिंगनेस इज एट होम, बिलोंगिंगनेस इज नॉट एट वर्क. व्हाई? बिकॉज दिस एनर्जी इज नॉट देयर. फिर आपको काम करवाना नहीं पड़ेगा, काम होता जाएगा. और इतनी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, किसी से कोई गलती होगी वो खुद से आकर सच बताएंगे आपको, क्योंकि उनको पता है कि आप डांटने वाले नहीं हैं. सो दैट ट्रस्ट एंड दैट बॉन्डिंग विच विल गेट क्रिएटेड, इट जस्ट हैज टू बी सीन, एक्सपेरिमेंट एंड करके देखें.
0: एंड फिर गलतियां भी कम होंगी, क्योंकि डर नहीं होगा ना. ऑफ कोर्स डर के कारण बहुत कुछ गलत होता जाता है.
1: डर के कारण एक विशेष साइकिल बनता. गलती हो जाती, फिर गलती को छिपाते हैं डर के कारण, फिर छिपाकर उसका ब्लेम किसी और पर डालते हैं. अगर बॉस ने मुझसे पकड़ लिया कि मेरी गलती हुई, मैं तुरंत बोलूंगी मेरी वजह से नहीं, उनकी वजह से. ब्लेम डाला, जैसे ही ब्लेम डाला, मेरा और उस सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप भी अफेक्ट हुआ. होल एनर्जी फ्लो गेट्स अफेक्टेड. एंड अगर ट्रांसपेरेंसी है, आई कैन से यस आई एम सॉरी, मेरे से गलती हुई. And it's finished.
0: और समवेयर यू नो मेरी कभी इंटेंशन थी नहीं ना, तो वो कॉन्फिडेंस रहेगा मुझे कि हाँ ठीक है, मैंने इंटेंशनली नहीं किया. अगेन अमेजिंग, हमने बच्चों से शुरू करके आज बात जो है, और स्ट्रेस को हमने जब ये देखा कि जब जितनी मेरी इनर स्टेबिलिटी, मेरा इनर रेजिस्टेंस बार बढ़ता जा रहा था, वो जो स्ट्रेस जो था वो और कम होता जाता. इनफैक्ट जिसको हमने नॉर्मल मान के, जब हमने कहा कि जितना स्ट्रेस होगा उतनी मेरी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, तो यहाँ ये समझ में आया है कि स्ट्रेस जो था वो मेरी परफॉर्मेंस को इनफैक्ट और वीक कर रहा था, और उसके लिए मुझे स्ट्रेस को निगेट करना या निल पर लेकर आना बहुत ज़रूरी हो जाता है. सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच.
1: ओम
0: शांति. अगर आपके पास कोई सवाल मन में उठ रहा है, कोई बात है, आपका हम स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल पर या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 01246 7000 99993445 99993446 9873 666 555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही. आने वाली कड़ियों में कुछ और बातें आपके साथ शेयर करेंगे. अभी आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक, पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: एक ख्वाब था और उस ख्वाब की एक आवाज थी। आरती उस आवाज की उंगली पकड़े एक लंबे, बहुत लंबे ख्वाब में सफर कर रही थी। एक ही ख्वाब कई बार देखा है मैंने।

नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इन दिनों हम ये बात कर रहे हैं कि जिंदगी जीते जीते कितनी बार ऐसा होता है कि हम हर्ट हो जाते हैं और फिर हमें लगता है कि जैसे किसी ने कोई गलती की है तो न्याय होना चाहिए, उसे पनिशमेंट ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन पनिशमेंट कौन देगा? क्या हम पनिशमेंट दे सकते हैं और पनिशमेंट क्या होनी चाहिए? ऐसे ही कई एस्पेक्ट्स हैं जिंदगी की, वो बातें जिन्हें आज तक

0: बड़े से बड़ा क्राइम, सज़ा बहुत ज़रूरी है। लेकिन सज़ा का एक बिल्कुल डिफरेंट आस्पेक्ट हमने पिछली बार बात की थी। जहाँ तक क्राइम की बात है, बहुत से लोग हैं जिनके पास अब ये सवाल ये है कि अगर क्राइम घटता है, अगर क्रिमिनल जिसे कहते हैं अपराधी ने अपराध किया है, तो फिर क्या करना चाहिए उसके साथ?
1: क्रिमिनल शब्द ही जैसे हमने देखा कि वो हम किसको देते हैं। हम सब कहीं ना कहीं उस तरह से सोचते हैं, लेकिन किसी ने उसको कर्म में ला दिया तो हमने उसको क्रिमिनल टैग दे दिया। क्रिमिनल किसको हमने वो टैग दिया? हम में से ही कोई एक व्यक्ति, एक ह्यूमन बीइंग जो है अपने आप में एक बहुत शुद्ध पवित्र आत्मा, लेकिन अपने आप को भूला हुआ है, अपने आप को भूल चुका, लोगों के साथ व्यवहार करने के तरीके को भूल चुका, एंड हाउ दिस होल वर्ल्ड वर्क्स ही हैज फॉरगॉटन। सो ही इज लिविंग इन अ यू नो इग्नोरेंस, वो अज्ञानता की नींद में जिसको कहते हैं चल रहा है, और उस अज्ञानता के कारण से उससे कोई ऐसा कर्म हो गया है, चाहे वो क्रोधवश है, लोभवश है, लेकिन वो अज्ञानता से हुआ है और वो कोई ना कोई बात से अभिज्ञ है, उसे स्मृति नहीं है। अब वो स्मृति वापस लानी है। सो इट्स बेसिकली अ बिलीव सिस्टम which is a wrong belief system. He has forgotten the truth. सत्यता भूल चुका है और किसी wrong belief system पे उसका thought चल रहा है। और ये सिर्फ so-called criminal के साथ नहीं, ये हम सब के साथ होता है। हमारी इस पूरी series में ही हमने अपने कितने सारे wrong beliefs लिए हैं। तो criminal thinking ये हम सब की चलती है। And किसी की thinking behavior में आ जाती
0: है, convert हो जाती
1: है। There are so many beliefs which working in each one of us. Let's say for example, the belief is that the more I have, the more happy I will be. अब ये मेरी belief है कि मेरे पास जितना होगा या मेरे जो दूसरों के पास है
0: वो मेरे पास
1: अगर होगा तो मुझे खुशी मिलेगी। अब ये एक belief है। इस belief को हम में से कितने लोग नहीं सोचते हैं कि जो उसके पास है वो अगर मेरे पास होगा तो मुझे खुशी मिलेगी। सत्यता क्या है?
0: खुशी तो मुझे अपने आप से मिलती
1: है। अपने आप से मिलती है, लेकिन ये सत्यता न जानने के कारण हमसे कोई ना कोई अपराध हो जाता है, क्योंकि जितने भी क्राइम्स हम हैं वो कितने सारे इस बिहेवियर पर बेस्ड है। सो द बिलीफ इज कि जो औरों के पास है वो मेरे पास होना चाहिए, और सत्यता क्या है कि मैं अपने आप में ऑलरेडी खुश हूँ। बिलीफ है कि दूसरे मेरे दुख का कारण है, दूसरों ने मेरे साथ गलत किया, दूसरों ने मुझे धोखा दिया। इस बिलीफ को लेकर कितने अपराध आज होते हैं।
0: एक्चुअली जब ये बिलीफ इतना हावी हो जाता है सो देन वी
1: लेकिन है तो हम सबके साथ ना। है तो ये बिलीफ सबके साथ। और सत्यता क्या है कि कोई मुझे दुख नहीं दे सकता, कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता। सक्सेस क्या है? सक्सेस है कि हम जितना अक्यूमुलेट कर लें, जहाँ हमारे पास सब कुछ आ जाएगा वो सक्सेस है। इस एक को लेकर आज कितने अपराध हो रहे हैं, कितने सारे आज हम जो पढ़ते हैं न्यूज में या जितने इंसिडेंट्स आज हो रहे हैं दिल्ली शहर में कि जो डोमेस्टिक हेल्प है घर में वो अपने ही जिनके लिए वो काम कर रहे थे उनको मार देते हैं। फॉर व्हाट?
0: एक्युमुलेशन एंड एंगर, मेजर एंगर बहुत बार देखा गया है।
1: एब्सोल्युटली। तो अक्यूमुलेट करने के लिए वेल्थ अक्यूमुलेट, मेजोरिटी क्राइम्स वेल्थ अक्यूमुलेट करने के लिए हो रहे हैं। और सत्यता क्या है? दैट यू डोंट नीड एनी ऑफ दिस। सक्सेस इज क्या? हमारी इंटरनल सेटिस्फैक्शन। तो कितने सारे ये रॉन्ग बिलीफ्स ही हैं, और वो रॉन्ग बिलीफ जब इतने बड़े इस तरह से कर्म में आ जाता, वी विल कॉल देम अ क्रिमिनल। अब उनको जिसने इस तरह की कोई गलती की, उनको दुनिया से दूर कर देना, उनके घर के लोगों से दूर कर देना और एक कटघरे में बंद कर देना सिर्फ, उससे उनके बिलीफ में परिवर्तन नहीं आएगा। तो उनकी हीलिंग के लिए, बिकॉज आफ्टर ऑल वी वांट कि वो जो पर्सनालिटी वापस आएगी आफ्टर द सो कॉल्ड पनिशमेंट, एंड दैट शुड बी अ हील्ड पर्सनालिटी, रिफॉर्म्ड पर्सनालिटी। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम कुछ नहीं करते। तो वो आत्मा ऑलरेडी इग्नोरेंस में है, और हम भी एक और इग्नोरेंस का कर्म करते जब हम कहते पनिशमेंट से परिवर्तन हो जाएगा, तो ये भी तो एक इग्नोरेंस है। पनिशमेंट से कौन सा परिवर्तन आज दिन तक हुआ? तो ये सिर्फ सो कॉल्ड क्रिमिनल के लिए नहीं, लेकिन बचपन से लेकर जो आज हमारे बच्चों के साथ भी इस तरह से पनिशमेंट देकर सिर्फ परिवर्तन करने की कोशिश करते, कुछ उसके ऊपर थोड़ा सा हमें मंथन करना होगा।
0: बहुत से हमारे दर्शक हैं जिनके दिमाग में ये सवाल आएगा कि तो फिर जब अपराध हो रहा है तो अपराधी को क्षमा कैसे किया जाए? अपराधी को अपराध की सज़ा तो मिलेगी ही, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट करना ज़रूरी है। इतना अपराध

0: क्योंकि उसने कहीं ना कहीं वायलेट किया है दूसरे की इंडिपेंडेंस.
1: दैट इज ट्रू,
0: है ना. दूसरे की कहीं ना कहीं दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे कुछ हो, कहीं ना कहीं ही इज रिस्पॉन्सिबल.
1: We are not saying that, you know, the judiciary system doesn't work and all this should not be there. But the thing is ki ek bar you have got the person in your custody, ab aapne kya karna hai unke saath. उसमें आपके पास बहुत सारा पोटेंशियल है कि सिर्फ ये नहीं कि उनके अंदर जो एंगर है, रिजेंटमेंट है, उसको और बढ़ने दें, उनको हील करें. द सो कॉल्ड प्रिजन एरिया कैन बी मोर लाइक अ काउंसलिंग सेंटर, इट कैन बी मोर लाइक अ हीलिंग सेंटर, जहाँ क्योंकि पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ना, तो उसके लिए हम क्यों नहीं कुछ करते. बिकॉज दैट्स नॉट ओनली फॉर देम, इट्स फॉर ईच वन ऑफ अस. लेकिन उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि वो बिटरनेस से नहीं लेकिन हील्ड होकर बाहर.
0: एक्चुअली उनके साथ तो बहुत ही बुरा ना सिर्फ सलूक किया जाता है, एटीट्यूड में, हमारी पूरी सोच में ही, जहाँ अपराधी की बात आती है, जहाँ जेल की बात आती है, वहाँ हमें घृणा, एक घृणा से भर जाते हैं हम.
1: ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम, क्योंकि हमारा भाव क्या है, पनिशमेंट जब हम दे रहे हैं उसका भाव क्या है, सुधार लाना. पनिशमेंट हम इसलिए देते हैं ताकि व्यक्ति फिर से वो चीज ना करे, लेकिन उसके लिए हम कोई मेजर नहीं उठाते, सिर्फ उसको दुनिया से दूर एक यू नो पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपने रख दिया, उससे वो कर्म फिर से नहीं करेगा. देयर इज नो गारंटी, क्योंकि अंदर की हीलिंग तो हुई नहीं, उसने उसके परिवर्तन के लिए हमने कोई स्टेप उठाया नहीं. सो दैट इज समथिंग यू नो वी हैव टू टेक केयर ऑफ. एंड उसके लिए चाहिए कि जहाँ पे भी सब हैं वहाँ पे देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ एजुकेशन, अ लॉट ऑफ लर्निंग एंड अ लॉट ऑफ काउंसलिंग एंड अ लॉट ऑफ हीलिंग. एंड दिस सिस्टम इज नॉट फॉर क्रिमिनल्स बट फॉर चिल्ड्रन. And for each one of us, जो आज गलतियाँ अगर हमारे से होती हैं, तो जो हमारे साथ हैं उनकी ये एक sort of responsibility बन जाती है कि सिर्फ punish ना करें या सिर्फ revenge ना लें. वो wrong method क्यों हो जाता है? Because वो हमारे अंदर की bitterness को और बढ़ा देता है. हमें even offices में, आपने ये गलत काम किया, आपके अगेंस्ट ये action लिया जाएगा. It's always action लिया जाएगा आपके अगेंस्ट. उससे क्या result निकलेगी? बिटरनेस और बढ़ती जा रही है, दूरियां और बढ़ती जा रही है. तो कहीं ना कहीं जो मेथड वर्क नहीं कर रहा है, वी नीड टू वर्क ऑन दैट. कि मेथड ऐसा होना चाहिए जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो. अभी हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि गुस्से को और ये सारा जो अंदर बिटरनेस है इसको खत्म करना है. बट एक्चुअली हम जो कर रहे हैं उससे वो बढ़ रहा है. यू नो ऑफिस में भी कहेंगे डिसिप्लिनरी एक्शन. डिसिप्लिनरी एक्शन मीन्स यू वॉन्ट टू डिसिप्लिन द पर्सन. हैव यू रियली सक्सीडेड?
0: वही इसलिए मान लिया हमने कि भय से डिसिप्लिन हो जाता है. अगेन दिस इज अ मेजर मेजर बिलीव विद विच वी आर वर्किंग.
1: एब्सोल्युटली.
0: कि भय से ही डिसिप्लिन हो सकता है, भय जो है वो काम करवा सकता है, भय से आप कोई क्राइम भी नहीं करेंगे. एक और मुद्दा जो उठता है वो है कि एक बार माफी वाला फैक्टर जो है कि एक बार मिस्टेक को आप माफ कर सकते हैं. इवन ये भी कहते हैं कि कृष्ण भी जो है 99 टाइम्स माफ कर देते थे, 100वीं बार जो था ही सेड दैट इट हैज टू बी पनिश्ड. सो बार बार जब रिपीटेशन ऑफ द सेम मिस्टेक हैपेंस, देन
1: बार बार रिपीटेशन ऑफ द सेम मिस्टेक इज हैपनिंग बिकॉज नोबडी इज वर्किंग ऑन दैट पर्सन. आपको कहीं ना कहीं तो किसी को समय निकालना पड़ेगा ना उसके लिए. किसी को बैठकर चेक करना पड़ेगा कि व्हाई इज दैट मिस्टेक हैपनिंग, बिकॉज इट्स अ डीप रूटेड संस्कार. मिस्टेक वो जान पूछ के नहीं कर रहा है, वो उससे होती जा रही है. हो सकता है कई बार आप देखो, हम अपने आप से नहीं होता. हम कितनी बार डिसाइड करते हैं कि गुस्सा नहीं करना, फिर भी करते हैं. हम कितनी बार डिसाइड करते हैं कि हर्ट नहीं होना, फिर भी करते हैं. तो 99 बार करते हैं या उससे ज्यादा बार करते हैं? तो हो
0: लेकिन सिस्टर शिवानी, अगर बात यही आ जाती है कि हम ये कहते हैं कि हम अपने ऊपर तो काम कर नहीं पा रहे, अब उनके साथ काम, और उनके साथ मतलब कि हमने उन्हें बिल्कुल एक उस कैटेगरी में डाल दिया. खासकर क्रिमिनल्स की अगर हम बात करें, उनके रिफॉर्म्स की या उनके ट्रांसफॉर्मेशन की बात तो हम कभी सोच ही नहीं पाते. और इसी तरह से जुवेनाइल क्राइम जो है, वो बच्चे जो क्राइम करके रिफॉर्म हाउसेस में जा रहे हैं, दे आर आल्सो यू नो.
1: आप देखो रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ था शूट आउट का स्कूल में, जो गुड़गांव में हुआ, द होल स्कूल, मतलब जितने बच्चों ने उस इंसिडेंट को विटनेस किया उस टाइम पर, दे वेंट इनटू अ डिप्रेशन. अब उन बच्चों के लिए जिन्होंने वो शूट आउट को देखा, उनके लिए बहुत काउंसलिंग हुई, साइकाइट्रिस्ट आए, लेकिन उस बच्चे के लिए कुछ भी नहीं हुआ जिसने एक्चुअली वो मर्डर किया था, क्योंकि उस बच्चे को अब एक बच्चा ना देखकर
0: एक क्रिमिनल
1: कर दिया. बाकी सब बच्चों के लिए हुआ, और सबसे ज्यादा किसको जरूरत थी? सबसे ज्यादा उस बच्चे को जरूरत थी, उस बच्चे के लिए नहीं कुछ किया गया।
0: Why is it? Why do we have hatred?
1: हेट्रेड आ गई ना, कंपैशन खत्म हो गया, प्यार खत्म हो गया, क्योंकि हमने टैग कर दिया, दे आर बैड पीपल। जैसे ही हमने, क्योंकि हम गुड और बैड के लेबल्स लगा देते हैं बहुत जल्दी, तो वी डोंट अंडरस्टैंड कि द एक्शन इज डिफरेंट एंड द पर्सन इज डिफरेंट। एक्शन गलत किया है, एब्सोल्युटली कर्म गलत किया है, लेकिन हमने बैड पीपल की कैटेगरी में उनको डाल दिया, पर उनको काउंसलिंग या हीलिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो
0: है ही खराब,
1: तो खराब लोग हैं। अब जब बहुत सारे वो बच्चों से बात की गई, तो ये पता चला कि क्योंकि जैसे बुली सिस्टम या रैगिंग सिस्टम है इंस्टीट्यूट्स के अंदर, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हम लोग तो कितनी बार जैसे मन ही मन ये सोचते हैं कि मैं तो मार दूं इसको, या हम आपस में भी बात करते हैं, मेरा बस चले कि मैं तो मार दूं इसको। यू नो, हम लोग भी आपस में जब बात करते हैं, अगर किसी से हमें बहुत नफरत है या बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं मार दूं इसको,
0: किल हिम, आई वांट हिम डेड, यू नो, कितनी बार, सो दैट मींस
1: द थॉट इज देयर विद सो मेनी of us. तो इतने सारे बच्चों ने कहा कि हमारे अंदर ये thought आती है। अब किसी बच्चे ने वो thought को implement कर दिया, लेकिन वो भी उन्हीं की तरह है। और इस समय उससे शायद सबसे ज़्यादा, क्योंकि the pain that he will be going through, so punishment is not, you know, just that separating them from everybody and he'll reform.
0: Loneliness जो उसको,
1: what will be the future of that child? So that somewhere the entire education system, parents, judiciary system, everybody needs to start working on that little bit. कि counseling, healing, ये बहुत important है साथ में। आप action, जो judiciary action है, वो तो लेंगे, लेकिन एक बार वो आपके पास आ गए, फिर आपको उनके साथ क्या करना है, वो बहुत important हो जाए। Reform करने के लिए actually क्या चाहिए होता है? जैसे आपने कहा, एक तो motivation, कि हम अपने आप को ही नहीं आज reform कर पा रहे, या हम अपने आप को ही नहीं heal कर पा रहे, तो हम औरों के लिए कहाँ से करेंगे? और दूसरा time, time factor बहुत important होता है।
0: And then again mindsets हैं कि criminals कभी नहीं होते, आप कुछ भी कर लीजिए। इनफैक्ट एक और बहुत बड़ा माइंडसेट हमारे साथ चलता है कि जो सपोजिटली लोअर वर्कर्स हैं, दे नेवर चेंज, यू नो, दे विल ऑलवेज बी लाइक दिस,
1: लेबलिंग, अगेन लेबलिंग। तो वो जितना लेबल हम करते जाएंगे, तो वो जो स्टैम्पिंग है वो और ज्यादा होती जाती है। अगेन हम क्या कर रहे हैं, वही जो हमने कहा, उनको अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर फिट कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ भी ऐसा किया, कर्म थोड़ा सा, हम कहेंगे लेबर, वो तो सारे ही ऐसे होते हैं, यू नो, बिलीफ सिस्टम, वो बिलीफ सिस्टम में उनको फिट कर लेते हैं। तो रिफॉर्मेशन करने के लिए टाइम चाहिए, पेशेंस बहुत चाहिए, कंटिन्यूस दोनों तरफ से, जो जिसे रिफॉर्म होना है और जिसे वो करना है, दोनों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए।
0: आई थिंक, और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक बात है जो रिफॉर्म नहीं होने देती, वो समवेयर ये भी है, जो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है उसको कंटिन्यूस ये अवेयरनेस है कि मैं रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा
1: हूँ। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग। और वो पहली बात जो उसकी कॉन्शियसनेस है, वो ये है, अगर जो रिफॉर्म करने के निमित्त है, अगर उसके अंदर ये कॉन्शियसनेस होगी कि ये क्रिमिनल है, तो वो उसे रिफॉर्म नहीं कर सकता। उसका हर एक शब्द और हर एक एक्शन एक पनिशमेंट ही है, क्योंकि वो क्रिमिनल को कर रहा है। तो वो, और फिर एक रिफॉर्मर के अंदर एक नेचुरल संस्कार ये क्या बन जाता है, गलतियां निकालने का, कमजोरियां देखने का और जजमेंटल बनने का। दैट इज नॉट रिफॉर्मेशन, क्योंकि फिर तो आप एक सटल तरह से पनिशमेंट ही दे रहे हैं। नॉर्मली अगर आप एक सीन ऑफ क्राइम को देखते हैं, या एक गलती होते हुए देखते हैं, किसी ने किसी के साथ गलती की, एंड आई एम थर्ड पर्सन, लेकिन जब इन्होंने इनको दर्द दिया, सो कॉल्ड, जैसे हम सोचते, और मुझे भी वो दर्द महसूस होना शुरू हो गया, तो आई एम ऑल्सो अ विक्टिम, एंड अब आई एम इन द रोल ऑफ रिफॉर्मिंग, लेकिन बिकॉज आई एम अ विक्टिम, तो मुझे लगता है इन्होंने अत्याचार किया,
0: because I empathized with that victim.
1: Yeah, but I could feel the pain, ना? मैंने pain अपने साथ ले लिया, तो मुझे लगता है ये अपराधी है, ये criminal है, इन्होंने गलत किया, तो मैं कभी उनकी help नहीं कर सकती। जैसे ही मुझे ये realization आएगा कि ये जो pain मैंने अभी अभी create किया इस scene को देखकर, ये मेरा अपना creation था, उन्होंने जो करना था वो किया, लेकिन जो pain मैंने create किया, ये मैंने अभी अभी अपना create किया, let it go, let the pain go. जैसे ही pain चला जाएगा, I will be able to see that person as the person is, without judgment, without that good, bad, right, wrong. वो judgmental नहीं होना है। हम उसके साथ जिसने अटैक किया है या जिसने गलती की है उसके साथ एम्पथाइज करना अब शुरू कर सकते हैं, उनको समझना शुरू कर सकते हैं कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया। व्हेन आई अंडरस्टैंड कि मेरे अंदर क्लैरिटी आई है, कोई मुझे जो चीजें जैसी हैं वैसे समझ में आने लग गई है, नाउ आई ओनली हैव टू एम्पावर। रिफॉर्म नहीं करना है मुझे, मुझे उनको सशक्त करना है। वो भी मेरी तरह ही आत्मा है लेकिन वो कुछ बातों को भूल चुकी है, तो मुझे सिर्फ उन बातों की स्मृति को लाना है, लेकिन मैं वो तब ला पाऊंगी जब मैं उनको वो रिस्पेक्ट से देख सकती हूँ। क्योंकि जैसे क्रिमिनल देखा, देयर यू गो,
0: जैसे हमने वो आत्मा देखा, आत्मस्वरूप अपना वाला जैसे मैं हूँ वैसी देखा,
1: बट आई थिंक तब हम वो वाइब्रेशन भेज पाएंगे जो एम्पावरमेंट क्रिएट करेगी। और वो एम्पावरमेंट के लिए तभी हम कर पाएंगे जब हम उनको जज नहीं करेंगे कि ये क्रिमिनल है, वो भी मेरी तरह एक आत्मा है। जैसे वो थॉट क्रिएट कर लिया, यू सी व्हाट यू विल डू मैजिक विद देम। वो आप उनको रिफॉर्म नहीं करते हैं बिकॉज द वर्क इज ऑल डन बाय मी मायसेल्फ, लेकिन वो खुद जो करने की उनको शक्ति चाहिए बस वो हमें देनी है, वो स्मृति वापस लानी है। और उसके लिए हम ये टैग हटा दें कि क्रिमिनल है, और गुड बैड ये जो जजमेंटल हम बनने की कोशिश करते हैं ये हटा दें, और उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी, क्योंकि उस समय क्या हो गया है, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो हम सबको देते हैं, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी अगर हम उनको दें, अपने आप को वो एम्पावर कर देंगे, हमें नहीं करना। सोल कॉन्शियसनेस विल वर्क एवरीवेयर। ये हम जो ऑलरेडी थॉट क्रिएट कर देते हैं, वो ऐसा कहेंगे, वो ऐसा करेंगे, तो हम वो ऑलरेडी एनर्जी ट्रांसमिट कर देते हैं एंड देन वो ऐसा ही करेंगे।
0: तो हर नेगोशिएशन पे एक एम्पावर होके हम खुद जा सकते हैं।
1: अभी क्या होता है, या तो हम सुपीरियर फील करते हैं या इंफीरियर फील करते हैं, और सोल कॉन्शियसनेस में वी आर इक्वल। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम तो सोल कॉन्शियस हैं, सामने वाला तो नहीं है, वो अपने अहंकार में है, लेकिन जब हम उसे वो दृष्टि से देखेंगे तो है तो आत्मा, वो सिर्फ भूली हुई है। तो जब हम उसको उस दृष्टि से देखेंगे तो उसके अंदर भी वो स्मृति जागृत होगी, और आत्मा के जो गुण है वो ऑटोमेटिकली जागृत हो जाते हैं। ये सारे गुण कुछ बोलने से जागृत नहीं होंगे। आप कितना भी बोल दीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, इट वोंट वर्क। इट हैज टू कम फ्रॉम डीप विद इन, बट इट्स वेरी डीप रूटेड। ये लगता है कि नहीं तो बहुत इजी है, हम जाकर वहां सोचेंगे कि ये तो आत्मा है,
0: हम भूल जाते हैं ना उस वक्त तो, क्योंकि बाकी सारी चीजों ने फॉग किया होता है।
1: थॉट भी नहीं आना चाहिए कि सामने वाले ने गलती की है, सामने वाला एक अपराधी है, सामने वाला, ये थॉट ट्रेस में भी नहीं होगा। तब वो प्योरिटी ऑफ वाइब्रेशन, इसको हम कहेंगे प्योरिटी ऑफ थॉट, जहाँ एक इम्प्योरिटी का ट्रेस भी नहीं है, दैट विल रीच टू द अदर सोल। And that will bring about empowerment.
0: That's wonderful, actually. अगर हम पूरे aspect को देखें तो सारे crime जो scenes हैं और इस वक्त जिस हालात में पूरा समाज है, मुझे लगता है कि आज हम में से हर कोई criminal है। You know, thought में नहीं, मतलब action में नहीं तो कहीं ना कहीं thought में तो है ही, लेकिन action में भी हम में से हर तीसरा बंदा जो है, तीसरा व्यक्ति criminal नजर आ रहा है। यहाँ अगर हम क्राइम के सीन से हटके अपने घर पे भी आ जाते हैं तो यही फिलॉसफी शायद हम अपने रिफॉर्मिंग ऑफ किड्स, यू नो, रिफॉर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन, हमारे कि हमारा बच्चा बात नहीं मान रहा है, यही सही रास्ता है, ये ऐसे करना चाहिए उसे, लेकिन वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, रिबेल हो रहा है, तो यहाँ शायद वो पनिशमेंट की वजह।
1: जितना हम पनिशमेंट को यूज करते हैं तो मेजोरिटी केसेस में ये देखा जाता कि जो रिबेल होने की नेचर है वो संस्कार और भी ज़्यादा कड़क होता जाता है। जो हम यू नो कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे बहुत ज़िद्दी हो गए हैं या बहुत ढीठ हो गए हैं, कि अब कितना भी बोलो वो नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा जो शिक्षा देने का तरीका था वो कहीं ना कहीं, यू नो, वी यूज़ अ शॉर्टकट मेथड because again lack of time, lack of patience, and more than that I think lack of awareness myself.
0: I don't know. See, that's the biggest thing. क्योंकि कभी भी कोई पेरेंट जानते बूझते नहीं करना चाह रहा होगा, लेकिन शायद वो जान ही नहीं पाते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है इस पूरे एटीट्यूड से।
1: तो अपनी अवेकनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि जब हम जागृत अवस्था में रहेंगे तो हम औरों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे। और अभी भी आपने देखा होगा कि अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान जितना हम अपने आप को समझ लेते हैं और हमें अंदर का पूरा मैकेनिज्म समझ में आता है कि ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, हम औरों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यू नो, जब कोई सामने से गुस्सा करता है, नाउ फॉर एग्जाम्पल, हमें पता चलता है कि ये गुस्सा गुस्सा नहीं है एक्चुअली, ये अंदर कोई दर्द है, ये अंदर हर्ट है कोई, और ये दर्द एक गुस्से के रूप में बाहर आ रहा है। तो पहले हम कैसे रिएक्ट करते थे, गुस्सा कर दिया मुझे कैसे गुस्सा कर दिया, अब समझ में आता है ये गुस्सा थोड़ी है, ये तो अंदर कितना दर्द है। सो नाउ यू कैन नॉट हैव हेट्रेड, यू विल हैव कंपैशन। वो खुद इतने दर्द में है तो वो आपको भी सही पर्सपेक्टिव में नहीं देख पा रहे, तो उन्होंने वो कर्म किया, लेकिन उनको किस चीज की आवश्यकता है। अब वही बात होगी, एक दर्द में है, अब मैं उसकी बात को लेके मैं भी दर्द में चले जाऊं तो हम दोनों को हेल्प कौन करेगा, और फिर मैं उनको और दर्द दूं। बच्चे ने गलती की पेरेंट के साथ, तो पेरेंट भी दर्द में चला गया, बच्चे को और दर्द दिया। It's become a cycle. And then it is, how do we come out of this cycle? And then we say we're all in pain. So who will heal who? Everyone is a patient now. So that's why let me take up the responsibility. And इसीलिए जो हम कहते हैं meditation के लिए time नहीं है, या I don't have time for myself, what we don't realize is it's not just for myself, it's for my family also.
0: For my all loved ones, you know, जिनके लिए मैं जिंदगी देने को तैयार हूँ, सब कुछ करने को तैयार हूँ, unawareness में मैं कहाँ तक कितना नुकसान। रिश्तों की बात करें, मतलब हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको मैं ज़रूर थोड़ा सा छूना चाहूँगी कि आज जो रिश्तों में इतनी कड़वाहट, इतनी दूरियाँ, इतना कम्युनिकेशन गैप इधर इधर होते हुए नज़र आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की बात करें या किसी भी तरह का रिश्ता, तो वहाँ पे भी शायद एक भी अगर जागरूक अवस्था में,
1: ओनली वन, यू नीड ओनली वन। कई बार घरों में लोग कहते हैं, ओ जी मैंने अगर अपने ऊपर मेहनत की, लेकिन बाकी सब लोग तो वैसे ही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी सब वैसे ही रहेंगे। वन पर्सन हैज टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो एक करे, उससे औरों को तो बेनिफिट होगा, औरों को प्रेरणा भी मिलेगी करने की।
0: और उस एक को ये नहीं समझना पड़ेगा कि मैं एहसान कर रहा हूँ, यू नो समवेयर, ये इसके साथ भी कि मैं ही करता जा रहा हूँ, मैं ही कब तक करूँगा, मैं ही कर रहा हूँ।
1: जब अभी जब हम कुछ करते हैं इस तरह से, तो हमें लगता है कि मैं एहसान कर रहा हूँ, लेकिन जब अवेयरनेस से करेंगे तो हमें समझ में आएगा दिस इज द वे टू बी, इसके अलावा तो और कोई रास्ता ही,
0: और ये मेरे लिए जरूरी है,
1: दिस इज द नेचुरल वे ऑफ लिविंग। अभी तक जो हमारा वे ऑफ लिविंग था, बिटरनेस को पकड़ के, हर्ट को पकड़ के, दैट वॉज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग। और सफरिंग किसके लिए, बहुत प्राउडली हम कहते हैं उन्होंने ये कहा, मैंने अभी तक वो बात नहीं भूली, इतने साल से मैंने वो बात पकड़ के रखी हुई है, नुकसान किसका है, उनका, वो भूल चुके, अपना। तो सारा दिन अपनी सफरिंग सेल्फ क्रिएटेड है। इवन ये अगर हमें समझ में आ जाए, बॉटम लाइन, आई क्रिएट माई ओन सफरिंग, टिल व्हेन,
0: टिल आई अंडरस्टैंड, टिल आई अवेक,
1: लेट मी स्टॉप नाउ, नोबडी क्रिएट सफरिंग फॉर मी, नोबडी कैन कॉज मी पेन, only and only me. So how much more do I want to cause pain for myself? When will I stop? That's it. And then meko lagta hai 10 minutes apne liye nikalna
0: mushkil nahi hoga, bilkul nahi. In fact that's it. ye to hum understand kar hi chuke, aur ab har bar aur clarity se aata ja raha hai ki meditation is empowering my own self. you know, healing ki hum baat kar rahe the, na sirf healing apne liye, pure parivar ke liye, aur gradually pure samaj ke liye. jo ab baat ye karte hain ki hum samaj seva karna chahte hain, to ye, this is the way actually to go out and, you know, like first is understanding yourself. Sister Shivani, aaj ki is baatcheet ne kai paripeksh तोड़े हैं, एक नया अंदाज दिया है जिंदगी को देखने का, और किस तरह से क्राइम या क्रिमिनल्स को देखना है बड़े परिपेक्ष में देखें तो वो भी बदल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। बहुत कुछ हमारे आसपास हो जाता है, चाहे वो समाज में हो या फिर घर में, एक ही अंदाज से अभी तक हम देखते आ रहे थे। देखने का नजरिया अगर थोड़ा सा बदला जाए, जहां हम ये कहते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है या किसी और के साथ गलत हुआ, और ऐसे में जिसने गलत किया है उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, तो एक बार फिर खुद को टटोले और जिस परिपेक्ष में आज हमने देखा है क्राइम को, क्रिमिनल को और पनिशमेंट को, उसे कुछ देर बैठ के अपने साथ रखें और ये समझने की कोशिश करें कि क्या वो परिपेक्ष सही है। अगर अभी भी आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में अब वक्त है कि आपसे विदा लें, लेकिन इसी वादे के साथ कि ये सफर खुद को पहचानने का और पूरी जिंदगी को जो जिन रॉन्ग बिलीफ्स पे या जिस बिलीफ सिस्टम पर हम अभी तक जिंदगी जीते आ रहे हैं, जहां उसने हमें हील नहीं किया है, एक ऐसे प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें हीलिंग की तरफ लेकर जाएगा। फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। दोस्तों, हमारा हिंद भी फूले फलेगा एक दिन, लेकिन मिलेंगे खाक में लाखों हमारे गुल बदन पहले। हमें दुख भोगना, लेकिन हमारी नस्ल सुख पाए, ये दिल में ठान लो अपने ए हिंदी मर्दो जन पहले। भारत के ऐसे स्वर्णिम भविष्य के संकल्प को जीने वाले भाई परमानंद का जन्म 4 नवंबर 1876 को पंजाब के करियाला गांव में भाई ताराचंद के घर पर हुआ। पिता ताराचंद सेना में कार्य करते थे। लंबे चौड़े बलिष्ठ शरीर वाले पिता ताराचंद के सभी गुण भाई परमानंद को मिले। परमानंद बचपन से ही मेधावी थे और गणित उनका प्रिय विषय था। चकवाल में अंग्रेजी स्कूल स्थापित होने के साथ ही वहां के जीवन में भी बदलाव आने शुरू हो गए। भाई परमानंद भी इसे अंगीकार कर उसमें रम गए। उनकी प्रतिभा के कारण सभी अध्यापकों का ध्यान उन पर रहा करता था। उनके गांव से चकवाल लगभग 8 किलोमीटर पर था। ये सभी छात्र वहां छात्रावास में रहते तथा अध्ययन करते। ये वो समय था जब आर्य समाज का प्रचार स्वामी दयानंद ने शुरू किया था। अपनी मां की मृत्यु के पश्चात संतप्त भाई जी आर्य समाज की विचारधारा के साथ जुड़ गए। धार्मिक आडंबर और मिथ्या धारणाओं पर आधारित विचार उन्हें रास नहीं आते थे। स्वामी दयानंद ने देश में मजहबी मतभेदों को मिटाने का बहुत यत्न किया। भाई परमानंद ने इसी विचार को अपना जीवन सूत्र बना लिया। 1901 में भाई परमानंद ने लाहौर के दयानंद कॉलेज में अपना अध्ययन शुरू किया और कॉलेज में पढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। भाई परमानंद को दुनिया देखने का बहुत शौक था और वो पैदल जम्मू से श्रीनगर और अमरनाथ होते हुए वापस लौटे। 2 महीने के इस प्रवास में उन्होंने कुल 15 रुपए खर्च किए। यही सादगी उनके जीवन का आधार बनी। फिर बाद में हरिद्वार, दिल्ली और राजस्थान आदि कई जगह वे घूमकर देश की संस्कृति से अपने आप को परिचित कराते रहे। पंजाब विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद वे लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज में पढ़ाने लगे। उनके भीतर त्याग की भावना आरंभ से ही विद्यमान थी और समाज की सेवा उनके जीवन का आदर्श बना रहा। वे अपने छात्रों का नैतिक चरित्र सुधारने और उन्हें राष्ट्र प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए वीर पुरुषों, महापुरुषों और शहीदों की जीवन गाथाएं सुनाया करते थे।

दयानंद कॉलेज में कार्य करते हुए भाई परमानंद को 3 वर्ष हो गए। इन वर्षों में पंजाब के लगभग सभी कस्बों में उन्होंने भारतीय संस्कृति और देशभक्ति का प्रचार किया। 1905 में पूर्वी अफ्रीका के भारतीयों ने कॉलेज के प्रधान आचार्य हंसराज से प्रार्थना की कि कोई धर्मनिष्ठ विद्वान वहां प्रचार के लिए भेजा जाए। प्राचार्य जी ने आर्य समाज के पहले मिशनरी के रूप में भाई परमानंद को दक्षिण अफ्रीका भेजा। डर्बन उतरकर कई भाषण देने के पश्चात भाई जी नाटाल की राजधानी पीटर मैरिट्सबर्ग पहुंचे, जहां असंख्य लोग उनका भाषण सुनने आए। यहां तमिल भाषी भारतीयों के बच्चों के लिए उन्होंने स्कूल भी खोला और इसी प्रकार कई अन्य संस्थाएं भी उनके द्वारा खड़ी की गईं। यहां से वे यात्रा करते हुए जोहान्सबर्ग पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी भी उपस्थित थे। धर्म के विषय में परमानंद जी के विशुद्ध सात्विक और तपःपूत विचारों ने गांधी जी पर ऐसा प्रभाव डाला कि उन्होंने भाई जी को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। वो लगभग 1 महीने गांधी जी के साथ रहे। अफ्रीका में अपने 5 महीने के प्रवास के दौरान उन्होंने भारत के सांस्कृतिक दूत के रूप में सबके मन में अपना स्थान बना लिया। उन दिनों लाला लाजपत राय लंदन में थे। उन्होंने चिट्ठी लिखकर परमानंद जी को अफ्रीका से लंदन बुलवा लिया। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा भी लंदन में ही थे, जो ऑक्सफोर्ड में संस्कृत पढ़ाया करते थे। श्याम जी वर्मा भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले युवकों को एकत्रित करने और प्रेरित करने के प्रयास में जुटे हुए थे। 4 मई सन 1906 को होम रूल लीग की ओर से लंदन में श्याम जी की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें विट्ठल भाई पटेल और भाई परमानंद के साथ कई लोग शामिल हुए। ये लोग भारत में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, जिन्होंने बंगाल में एक जुलूस में राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया था। इसके बाद परमानंद जी ने अमेरिका, पेरिस, दक्षिण अमेरिका, फ्रांस आदि कई देशों का दौरा कर अपना प्रचार कार्य जारी रखा। गदर पार्टी से अपने संपर्कों के कारण उन्हें राजद्रोही मान लिया गया था। 1915 में गदर द्रोह में भाग लेने के कारण उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, जो बाद में आजीवन काला पानी की सजा में बदल दी गई और वे अंडमान की जेल में भेज दिए गए।

अंडमान की जेल में अपने अनुभवों के बारे में विचार करते हुए उन्होंने लिखा कि अंडमान में दंड का केवल एक उद्देश्य समझा जाता था, वो था कैदियों से काम लेना, और जेल के अधिकारियों की उन्नति इसी बात पर निर्भर करती थी। 1200-1300 कैदियों के श्रम से जो आय होती थी, उससे वहां अधिकारियों को वेतन मिलता था और वहां की स्वतंत्र आबादी का गुजारा होता था। अंडमान में कई महीने बीत जाने पर एक दिन एक कैदी मेरे पास आधा प्याज का टुकड़ा लेकर आया। उसका प्रेम देखते हुए मैंने उसे स्वीकार कर लिया। उस दिन मुझे लगा कि प्रकृति ने ये कितनी छोटी छोटी चीज हमारे लिए पैदा की है, इसका

दुनिया में हो रहे परिवर्तनों की उन्हें सूचना मिलने लगी। भारत में स्वाधीनता आंदोलन की गतिविधियां तेज हो गई थीं। 19 नवंबर 1919 को यंग इंडिया में गांधी जी ने संपादक के रूप में लिखा कि 1915 में भाई जी पर जो लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया, वो जिस गवाही पर आधारित था, वो अविश्वसनीय झूठी कहानी थी। भाई परमानंद ऐसे राष्ट्रभक्त हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत की राष्ट्रभक्ति के आदर्श को ऊंचा रखते हुए देश की सेवा की। किसी को भी उनके अपराध का विश्वास नहीं, और जो अभियोग उन पर लगाया है उस पर पुनर्विचार कर उन्हें मुक्त करने की आवश्यकता है। 20 अप्रैल सन 1920 को भाई परमानंद जेल से मुक्त होकर अपने घर लौटे तथा लाहौर में गांधी जी और लाला लाजपत राय के साथ मिलकर कौमी महाविद्यालय की स्थापना की। नवयुवकों को भारत की स्वतंत्रता के लिए वे आजीवन प्रेरित करते रहे। भाई परमानंद अक्सर कहा करते थे, जिंदगी अपनी फसाना है जमाने के लिए, गुम हुए हैं हम जहां में याद आने के लिए, मर गए लेकिन जमी पे नाम पैदा कर गए, जान जाने के लिए है मौत आने के लिए। ऐसे महान क्रांतिकारी भाई परमानंद जी को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्र ने, समन्वय किया संजय यादव ने, इसे प्रस्तुत किया सुनीता सिंह ने।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू सो मच
1: सिस्टर। आप माइंड के ऊपर बात कर रही थी, थॉट्स पे बात कर रही थी, और थॉट कितनी पावरफुल है, कैसे ट्रेवल करती है। तो एक साइंटिफिक रिसर्च किया कुछ साइंटिस्ट ने हार्वर्ड में। साइंटिस्ट्स रिसेंटली कंडक्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर मेडिएटेड ब्रेन टू ब्रेन टेलीपैथी एक्सपेरिमेंट इन विच अ पर्सन इन मुंबई बॉम्बे सेड होला एंड हेलो टू थ्री पीपल इन फ्रांस। द ग्रीटिंग्स वेर नॉट स्पोकन, नॉट टाइप्ड और टेक्स्टेड। द कम्युनिकेशन टुक प्लेस बिटवीन द ब्रेन्स ऑफ अ सेट ऑफ स्टडी सब्जेक्ट्स। द टीम हूज मेंबर्स बिलोंग टू हार्वर्ड मेडिकल स्कूल सीम ऑल सेट टू स्क्रिप्ट अ न्यू चैप्टर इन कम्युनिकेशन एंड दैट इज ऑल इन द माइंड।
2: हम तो अवेकनिंग में हर समय ये बात करते हैं, साइंटिफिक भी एविडेंस मिल गया आपको।
1: ऑल इन द माइंड इसका टाइटल है।
2: परमात्मा हमें बार बार एक एक थॉट का कितना महत्व समझाते हैं कि एक एक थॉट आपकी आप पर भी प्रभाव डालेगी और दूसरी आत्मा तक पहुंचेगी। अब हम ये बात कितनी बार सुनते हैं, मतलब जिस दिन से फर्स्ट डे पे सेंटर पे आते हैं तब से सुनते हैं। कहीं कोई कोटेशंस पढ़ते हैं उस पे पढ़ते हैं, कोई किताब आज उठा लो उस पे पता चलता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखा जाए तो सारा दिन में उस बात पर उतना ध्यान नहीं देते हैं।
1: हाँ, क्योंकि जब स्पिरिचुअलिटी में कोई बात कहता है, कोई सत्संग में कहता है, कोई मंदिर में कहता है, तो वो इतनी इफेक्ट नहीं करती जिसको साइंटिफिक।
2: उसके पीछे ये रीजन है कि साइंटिफिक क्यों हमें एविडेंस इमीडिएटली क्लिक करती है, क्योंकि साइंटिफिक चीज दिखती है, यू नो, इट्स अ फिजिकल प्रूफ। जैसे इसमें इन्होंने कहा दे प्रूव्ड इट। क्या प्रूफ किया कि मुंबई में एक व्यक्ति है, फ्रांस में दो लोग बैठे हैं, यहां से किसी ने एक थॉट क्रिएट की, ना लिखी ना बोली, और वहां उन लोगों ने फ्रांस में वो थॉट को कैच किया। अब ये साइंटिफिकली प्रूव हो जाता है, मतलब दिख जाता है ना प्रूफ के, यहाँ किसी ने थॉट क्रिएट की, वहां उन तीन लोगों ने कैच की वो थॉट और बता दिया कि ये
1: बोला हेलो होला।
2: हाँ,
1: तो उन्होंने बोला हेलो होला,
2: दैट्स इट। एंड इट वॉज नॉट रिटन, इट वॉज नॉट टेक्स्टेड, इट वॉज नॉट स्पोकन। तो जब हमें साइंटिफिक प्रूफ मिलता है, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण दिखता है ना उस चीज का। स्पिरिचुअलिटी में जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है वो होता है अनुभव का, और साइंस में जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है वो होता है फिजिकल कोई चीज। यही चीजें हम सब ने अनुभव भी की है, हम में से कोई नहीं होगा जिसने ये अनुभव नहीं किया होगा।
1: ये भी सही है,
2: किया है कि नहीं अनुभव।
1: 100%।
2: अब ये कोई
1: कितनी बार फोन बोलते टेलीपैथी देखो। हाँ। मैं तो याद ही कर रही थी तेरे को,
2: बस
1: तू तेरा फोन आ गया।
2: हमारे मन में कोई बात ही थी, सामने वाले ने कह दिया,
1: इकट्ठे भी बोलते,
2: इकट्ठे भी बोल दिया, जो एकदम से रैंडम दो लोग वही बात सोच रहे हैं। ये सारी चीजें किसने अनुभव नहीं की है, ये हम सब ने अनुभव की है। कोई थोड़ा कम अनुभव करते हैं, कोई ज्यादा अनुभव करते हैं, अनुभव तो हरेक कर रहा है ना। जब आपने कहा किसी ने फोन किया और हम उनको याद ही कर रहे थे, तो इसका मतलब उस क्षण क्या हुआ था,
1: वो फोन डायल कर रहा था।
2: हाँ।
1: तो उसकी थॉट मेरे पास आ गई कि आई वांट टू टॉक टू यू,
2: विच मींस उस क्षण क्या हुआ था, थॉट टू थॉट कम्युनिकेशन ही तो था
1: ना।
2: हाँ, तो ये कोई आज की चीज तो है नहीं, ये तो कोई नई बात है नहीं, ये तो हमने हमेशा अनुभव किया है। हर एक ने अनुभव किया है कि हमने थॉट क्रिएट किया, दूसरे ने कैच किया, दूसरे को भी वही थॉट आया। जो इसको हम हमेशा कहते थे टेलीपैथी मींस थॉट टू थॉट कम्युनिकेशन, अब सिर्फ ये क्या हुआ, साइंटिफिकली प्रूफ हो गया। लेकिन साइंस से भी बड़ी चीज अनुभव होती है।
1: कई बार स्टेज पे मैं कभी कुछ बोलते रहता हूँ ना, तो मेरी फैमिली सोचती आई होप ही सेज दिस, आई होप ही सेज दिस, ये वाली लाइन अगर यहाँ बोले ये अनुभव बड़ा अच्छा था।
2: yes.
1: और वो मेरे मन में कहीं से आ जाता और बोल देता
2: बस।
1: फिर जब बाद में बोलते हैं हाँ। अरे हम तो सोच ही रहे थे कि आप ये बताएं।
2: हम लोग हमेशा कम्युनिकेट कैसे करना चाहते हैं कि हम फटाफट इनको उठ के बता कर आए, चिट्ठी लिख कर दे दे। सी दिस इज द कम्युनिकेशन वी वॉन्ट टू यूज बिकॉज वी फील दिस ऑलवेज वर्क्स। अगर वो आपको चिट्ठी लिख कर भेज दे या धीरे से आके कान में बोल दे तो उनको 100% गारंटी है कि ये तो मेरा मैसेज कन्वे हो गया। लेकिन जिस समय हम वो नहीं कर सकते हैं तो उस समय आत्मा ज्यादा स्ट्रॉन्ग थॉट क्रिएट करती है, बता भी नहीं सकते कैसे मैसेज पहुंच जाए, लेकिन ये होना ही चाहिए। ये इतनी स्ट्रॉन्ग थॉट गई और आपने कहा बिना कहे बिना कोई चिट्ठी पढ़े आपने वो थॉट कैच कर ली और आपने वो बोला, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
1: बिना अपनी वाइफ की तरफ देखे आई टू आई कॉन्टेक्ट भी नहीं, इशारा भी नहीं।
2: व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट एंड दिस एक्सपेरिमेंट, क्या फर्क है? ये भी तो यही कह रहे हैं,
1: ये कंप्यूटराइज्ड प्रूव्ड है हाँ। वो एक्सपीरियंस अनुभव है।
2: अब जब आप साइंटिफिक एविडेंस भी हम पढ़ रहे हैं, वो तो किसी और ने एक्सपेरिमेंट किया और वहां उनको रिजल्ट मिली तो उसको एक साइंटिफिक स्टैंप लगी, लेकिन जो चीज हमने अनुभव कर ली है,
1: मेरा स्वयं स्टैंप लगा खुद का,
2: उसके ऊपर तो हमें साइंटिफिक एविडेंस भी नहीं चाहिए होती। अब जब इन्होंने आर्टिकल का टाइटल रखा कम्युनिकेशन इज ऑल इन द माइंड, क्यों? क्योंकि उनको प्रूव हो गया, यहाँ से सोचा वहां कैच। हम सारा दिन अनुभव कर रहे हैं कि हमने सोचा दूसरे ने कैच किया, दूसरे ने सोचा हमने कैच किया। जब हमने इतना कुछ अनुभव कर लिया तो हमारे लिए स्टैंप नहीं हो जाने चाहिए कि जो कुछ हम सोचते हैं वो दूसरे तक पहुंचता है?
1: ये तो डर लगने वाली बात
2: नहीं, पर ये स्टैंप हमारे लिए हो जानी चाहिए ना। क्यों हम अपने अनुभवों को ही ऐसे ही हल्के में छोड़ देते हैं? जब अच्छा वाला अनुभव होता है, जैसे आपने कहा आप स्टेज पे थे, सामने वाले को कोई बात आपसे बतानी थी, आपने वो कैच की, तो बाद में जब हम शेयर करते हैं एक दूसरे के, वी वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड द अदर पर्सन विल से आई वांटेड टू से इट टू यू एंड यू कॉट इट, सो बोथ द पीपल आर वेरी हैप्पी। बोथ द पीपल आर हैप्पी, जो मैसेज भेजना चाहते थे और जिसने मैसेज कैच किया, वो दोनों खुश हैं कि हमें वो रिजल्ट मिला जो हम चाहते थे। लेकिन जब हम नेगेटिव मैसेजेस दे रहे हैं, जब हम किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, जब हम किसी के लिए अच्छा नहीं सोच रहे, तब हम बैठ के एक दूसरे के साथ क्रॉस चेक नहीं करने वाले हैं कि मैंने आपको ये भेजा था आपने कैच किया।
1: यहाँ पर एक छोटा सा मुझे क्लारिफिकेशन चाहिए कि मैं अगर किसी के बारे में, फैमिली मेंबर के बारे में कुछ गलत सोच रहा हूँ या थॉट्स आ रही हैं, तो वहां से कितना आ रहा होगा, हो सकता है मेरा उसका, दैट इज आई एम रिसीविंग। How do I know कि I'm receiving or sending?
2: Very true. Both the things are happening.
1: उधर से आ रहा है कि मेरे मन में आ रही है, कैसे बताऊं?
2: उधर से आ रहा है या हम क्रिएट कर रहे हैं, हमें नहीं पता। आपने किसी को याद किया और वहां से फोन आया, अब हमें ये नहीं पता कि आपने याद किया तब फोन उन्होंने किया या उन्होंने फोन उठाया था करने के लिए तब आपको याद आई। We don't know.
1: Both are right.
2: Both are possible. No? इसका मतलब पहला तीर किसने फेंका? We don't know. हमें सिर्फ ये पता है कि तीर का रिटर्न तीर आता है, थॉट का रिटर्न थॉट आता है। हमें ये नहीं पता पहले किसने शुरू किया, और अब तो हम उस स्टेज पर आ गए हैं कि हम पहले तीर पर तो है नहीं।
1: मैं सोचू भी कि वहां से आया कि मैंने पहले किया हाँ, आया ना उसको निकालो।
2: लेकिन अगर पहले भी शुरू किया उन्होंने
1: तब भी वही करना है,
2: तो भी वही करना है, और अगर मैंने शुरू किया तब भी वही करना है।
1: इसको तो हटाना है ना, तो बेडरूम में जाऊं वहां पर कचरा पड़ा हो हाँ। तो मैं लेटू नहीं लेटू एक कचरा किसने रखा और मैं थका हुआ हूँ हाँ। तो मैं बोला यार,
2: अगर आप सपोज उस टाइम बोले जिसने रखा है वो ही आकर उठाए पहले, मैं क्यों उठाऊं?
1: किसने किया, कैसे किया?
2: पहले तो ढूंढो कि रखा किसने, फिर उसी को बुलाओ वो जहां भी है उसको पहले बुलाओ कि उसने रखा है वो उठाए। ये सब तो हम करते नहीं।
1: ना थक गया हूं मैं, इसको हटाऊं और लेटूं ना, आराम करूं,
2: दैट इज इट। तो वो थॉट उन्होंने भेजा या हमने भेजा, इट डजंट मैटर। प्रेजेंट मोमेंट में ट्रुथ क्या है, सत्य इस समय का क्या है? मेरे चित पर कुछ नेगेटिव किसी के लिए चल रहा है, आई जस्ट हैव टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। मेरे चित पर किसी के लिए नेगेटिव इस टाइम चल रहा है, मैं कुछ कुछ किसी के लिए सोच रहा हूं, आई जस्ट नीड टू आस्क माई सेल्फ वन सिंपल क्वेश्चन, अगर उनको ये सब कुछ पहुंच जाए जो मैं अभी उनके लिए सोच रहा हूँ, इज इट ओके फॉर मी?
1: नो.
2: इज इट कंफर्टेबल फॉर द रिलेशनशिप?
1: नो.
2: सो व्हाट विल आई हैव टू डू?
1: आई हैव टू स्टॉप सेंडिंग दैट.
2: बिकॉज सी, ये अगेन साइंटिफिक एविडेंस भी मिल गया, एक्सपीरियंशियल एविडेंस भी मिल गया.
1: अगर जो जो मैं सोच रहा हूँ उनके SMS बन के उनके फोन पे जाता रहे, अगर ये टेक्नोलॉजी निकल जाए.
2: ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है ना, वही तो उन्होंने.
1: अगर मेरे फोन में अगर वो ऐप आ जाए.
2: देखो अभी इन्होंने क्या बोला, उसने हेलो बोला, उसने होला बोला और उन्होंने होला ही कैच किया. मतलब क्या हुआ उसका फर्क, कि जो सोचा एग्जैक्टली वो ही कैच कर लिया उसने.
1: थॉट यहाँ प्रिंट हुई, वहां से प्रिंट कन्वर्ट होके
2: दूसरे तक पहुंच गई. अब हमें सिर्फ अपने आप को बार बार ये चेक करना है, जो हम सोच रहे हैं उनके लिए वो एज इट इज अगर पहुंच जाए, वर्ड टू वर्ड, वैसे का वैसे, एम आई ओके विद इट?
1: नो.
2: देन नाउ व्हाट टू डू?
1: देन स्टॉप.
2: अब आपका अनुभव देखो, पहले वाला स्टेज पर आप कुछ सुना रहे हैं, फैमिली ऑडियंस में बैठकर कहती है इनको ये ये ये वाली बात बोलनी चाहिए. स्पेसिफिक है ना, इट्स नॉट अ जनरल थॉट, इट्स अ स्पेसिफिक थॉट, राइट? और सपोज आपने वो ही की वो ही बात बोली, तो मतलब आपने मैसेज को एज इट इज कैच किया ना.
1: करेक्ट.
2: इसका मतलब मैसेजेस एज इट इज कैच होते हैं.
1: उस साल पहले का ये एक्सपीरियंस सुरेश रॉय को आज सुनाना चाहिए. ये वाला एक्सपीरियंस या ये शेर, ये पोएट्री. एग्जैक्टली वो थॉट कैच हो गई मेरी, और कई बार हुआ.
2: तो इजंट इट एज सेम एज जो आपने कहा, मैसेज भेजे SMS भेजे, एज इट इज ही जाने वाला है, एज इट इज जा रहा है.
1: बट वहां तो रिटर्न प्रूफ आता है ना.
2: किस चीज का?
1: कि मैंने ऐसा सोचा आपके बारे में. जब मिलके बात करते हैं, मेरी आपसे कोई नाराजगी हो सकती? कमाल है आप. तो हम तो भाई भाई हैं, कमाल.
2: अब हम ऐसा क्यों कहते हैं, नहीं जी मुझे तो आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो हमेशा आपको एक फैमिली मेंबर, एक फ्रेंड की तरह ही देखा. क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि उनको हमारे सारे मैसेजेस पहुंच चुके हैं.
1: मैं पूछ चुका हूँ लोगों से, क्या भाई कुछ नाराजगी है? हमने आपसे कभी कुछ बुरा बोला? कुछ होगी तो माफ कर दो. आपका कुछ वो व्यवहार उतना पहले जैसा नहीं लग रहा, क्या प्रॉब्लम है बताओ? कमाल है बाजी, तुम इस तरह कर रहे हो. आपके बारे में मैं बुरा सोच भी नहीं सकता. आप तो बड़े भाई हो मेरे.
2: बुरा सोचे बिना दूसरे को बुरा फील हो नहीं सकता.
1: अच्छा,
2: हो नहीं सकता ना. अभी देखो इस एविडेंस को फिर से ले लो.
1: इमेजिनेशन तो नहीं कर सकता ना बंदा.
2: फीलिंग की इमेजिनेशन नहीं होगी, यू विल फील इट. इसकी इमेजिनेशन नहीं हो सकती कुछ भी. ये है, यहाँ से हेलो बोला, फ्रांस में उसने हेलो कैच किया.
1: होला बोला,
2: होला कैच किया. ये यहाँ से बिना बोले वहां कैच नहीं कर सकता. और ये एक वर्ड बोले और वो दूसरा कैच करे, ये भी नहीं हो सकता. ये भी नहीं हो सकता. जो बोला वो कैच किया.
1: तो क्या करें, फंस गए यहाँ.
2: लेकिन अब फर्क ये है कि अगर इसने यहाँ से हेलो बोला, उसने फ्रांस में हेलो कैच किया, ठीक है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो फ्रांस वाला भी वापस हेलो बोले. दैट्स नॉट नेसेसरी.
1: ओके,
2: है ना, दैट्स नॉट नेसेसरी.
1: दिस इज अ गुड एंगल.
2: मुंबई में हेलो बोला साइंटिस्ट ने, फ्रांस में उसने हेलो कैच कर लिया, इज ओके, दिस इज गोइंग टू वर्क. हम इसको रोक ही नहीं सकते.
1: जरूरी नहीं है कि फ्रांस वाला जवाब दे.
2: जरूरी नहीं है कि वो हेलो बोले. वो नमस्ते भी बोल सकता है, वो गुड मॉर्निंग भी बोल सकता है, वो कुछ भी भेज सकता है वापस. अब अगर उसने वहां से गुड मॉर्निंग बोला, तो ये मुंबई वाला अभी क्या कैच करेगा?
1: गुड मॉर्निंग.
2: गुड मॉर्निंग कैच करेगा. फिर उस गुड मॉर्निंग को कैच करने के बाद ये मुंबई वाले ने क्या थॉट भेजनी है, वो चॉइस इसकी होगी. दिस इज क्लियर एविडेंस, राइट? विच मीन्स अगर कोई मेरे लिए नेगेटिव सोच भी रहा है, वो मेरे पास आने ही वाला है, फाइन. लेकिन उसको अपने चित पर कितनी देर मैंने रखना है, उसको कितना एनर्जाइज करना है, और ये सब सोच के मेरी तरफ से उनके पास क्या जाना है, वो कंप्लीटली मेरी चॉइस है. आज हर एक बैठकर अपने कुछ एक रिश्तों को चेक करे, जिनके लिए कारण चाहे कुछ भी हो, सामने वाले का व्यवहार चाहे कुछ भी हो, आज हम जो उनके बारे में सोच रहे हैं, हमें सिर्फ अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन आज पूछना है, अगर हमारी सोच एज इट इज वहां पहुंच जाए, इज इट ओके फॉर अस, एम आई कंफर्टेबल विद इट, बिकॉज इट इज हैपनिंग, ये हो रहा है। और फिर जब वो सोच मेरी वहां पहुंच जाती है, सामने वाला भी वैसा ही सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के मोड में तो कोई लगा नहीं हुआ, वी नॉट सो अवेयर कि हमें ट्रांसफॉर्म करना है, हमारे पास तो जो आ रहा है हम वैसा ही वापस भेज रहे हैं, फिर आ रहा है फिर भेज रहे हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एस्केलेट बहुत हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। अगर हम इसको आज ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना एस्केलेट हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
1: जैसे बलून में हम हवा भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए, फाइनली फिर फट ही जाता है।
2: यस, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितने समय अपने अंदर भरते गए उसको, जब फटेगा तब तो नुकसान होगा ही, लेकिन जितने समय भरते गए, कुछ दिन कुछ साल कई बार कुछ जन्म, वो नुकसान नहीं हो रहा है।
1: एक थॉट आई सिस्टर कि मैं एक से ऐसा करूं नेगेटिव भेज रहा हूं, उसके मतलब बैड हैबिट्स देख रहा हूं, ये ऐसा उठता है वैसा बैठता है, सुबह लेट उठता है, या खाता कैसे देखो, कपड़े कैसे पहनता है, एक को देखा, दो को देखा, तीन को देखा, तो एक रेगुलर एक पैटर्न और एक हैबिट इसकी जब बन जाए अगर, और हर एक में कुछ देखो हर एक में देखो, तो फिर उसका फूगा कि मेरा ही फट जाएगा,
2: अपना ही फटने वाला,
1: कितना भरूं।
2: यस, अपना ही फटने वाला है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप देखो आपको रिटर्न में भी कौन सी एनर्जी मिलेगी। सपोज आप मेरे लिए ये थॉट क्रिएट कीजिए, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते कैसे पीते कैसे बात करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, उस दिन भी गलत किया इस दिन, नाउ दिस इज ऑल कमिंग टू मी, नाउ जस्ट इमेजिन एक सेकेंड के लिए अगर हमें ये सच्ची में बैठ जाए ना आज अंदर बुद्धि के, तो हमारी सोच बदल जाएगी। आप जब ये मेरे लिए सब सोच रहे हैं, ये बोल तो नहीं रहे आप मेरे को, आप बोलते क्यों नहीं मुझे ये सारा कुछ, आप बोलो मुझे कैसा बैठ रहे।
1: मैं सोचता हूं कि बोलने से लड़ाई हो जाएगी,
2: ये लाइन कितनी इम्पोर्टेंट है, बोलने से
1: लड़ाई हो जाएगी।
2: मतलब ये लाइन बोली नहीं जा सकती उनको, लेकिन अभी हमें पता चल गया कि लाइन जो हम सोच रहे हैं वो उनको पता पड़ रही है,
1: फार स्ट्रॉन्गर ना,
2: पता चल रही है
1: स्ट्रॉन्गर।
2: अब लड़ाई होने का चांस, अब लड़ाई होने का चांस
1: डबल हो गया।
2: तो जो चीज को हम बचा रहे थे, लड़ाई मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, रिश्ता
1: रिलेशन
2: स्मूथ रहना चाहिए, उसमें वो जो फ्रिक्शन आती है वो नहीं आनी चाहिए, वी वॉन्ट कॉर्डियल रिलेशन।
1: खुलेगी ना, तूने ये बोला मैंने ये बोला,
2: इसीलिए हम नहीं बोल रहे ना। अब यही हमें यहाँ आज पक्का कर लेना अपने आप तक कि हम इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि हमारा रिश्ता बिगड़ जाएगा, लेकिन अब अनुभव ने और विज्ञान ने साइंस ने दोनों ने मुझे सिखा दिया कि जो मैं सोच रहा हूं वो सामने वाले तक एज इट इज पहुंच रहा है, फिर सामने वाला भी मेरे लिए ऐसा ही सोचेगा। व्हेन यू रिजेक्ट मी कि ऐसा खाते हैं, ऐसा उठते हैं, ऐसा बैठते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते हैं, वो जब थॉट्स और मैसेजेस अगर आप मुझे बोल दें सपोज ये बात, तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगी ऊपर से। आई विल ऑल्सो फाइंड 10 things इन यू ना, कि आपने अपने आप को देखा है, आप कैसे खाते हैं, आप ऐसे चलते हैं, आप मुझे बोल रहे हैं, अपना देखा आपने, आप कैसे चलते हैं, दिस इज हाउ कॉन्वर्सेशंस गो ना। अब ये जो कॉन्वर्सेशंस जब शब्दों में होती हैं तब ऐसे होती हैं, तो थॉट लेवल में ये कॉन्वर्सेशंस कैसी होती होंगी,
1: बहुत स्ट्रांग
2: ऐसे ही होती होंगी। कि आप मेरे अंदर गलतियां ढूंढे तो मैं आपके अंदर गलतियां ढूंढू, वो आप तक पहुंचे तो आप मेरे अंदर और गलतियां ढूंढे तो मैं आपके अंदर और गलतियां ढूंढू। अब हम ऊपर ऊपर से तो कुछ कह ही नहीं रहे एक दूसरे को, हम बहुत प्यार से बात
1: रिश्ता निभा रहे हैं,
2: हम रिश्ता निभा रहे हैं। यस, वेरी ब्यूटीफुल, कहते हम तो बहुत अच्छे से बात करते हैं उनसे, वो जब भी मिलते हैं जब भी आते हैं हम उनसे बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन नाउ सी द रिजल्ट, हम सारा दिन क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसलिए उसकी एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, कम्युनिकेशन इज ऑल इन द माइंड।
1: सिस्टर एक बार किसी ने मुझे आके बोला था कि मेरी सास अजीब सी है सुरेश, मैंने हुआ क्या, मैंने बोला वो टोन कॉपी करके, मैंने इतने प्यार से ये पूछा, ऐसे ही पूछा जैसे आपको सुना रही हूँ, लेकिन वो भड़क गई।
2: See, yes.
1: तो मतलब फिर चांसेस भड़कने का 1% भी नहीं होता अगर ये पहले उसके थॉट
2: बिल्कुल, दिस इज इट। जब हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमने कुछ बोला ही नहीं, सामने वाला इतना रिएक्ट कर गया सामने से, हमें लगता है सामने वाले का जो रिएक्शन है वो हमारी वो एक लाइन के रिस्पॉन्स में आया है। अभी सपोज यही वाला एग्जाम्पल वापस लेते हैं, आप मेरे लिए मेरी गलतियां सोच रहे हैं, ये ऐसे बैठते हैं, ये ऐसे करते हैं, बहुत समय से सोच रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स इन योर माइंड रीचिंग मी, मैं भी आपकी गलतियां ढूंढ रही हूँ, वो आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ। ये कम्युनिकेशन इन द माइंड हमारा बहुत समय से चल रहा है, ठीक है। अब मैं सुबह सुबह आई यहाँ बैठी और आपने बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्टफुली और कर्टसी से आपने कहा आप थोड़ा सा ऐसे होकर बैठ जाइए, मेरा फुगा बर्स्ट हो जाएगा। बोला आपको सुबह सुबह मेरे अंदर ही गलतियां दिखाई देती हैं, मैंने क्या किया, मैं ठीक से तो बैठी हूँ, कंफर्टेबल हूँ, कमाल है, आपको तो हर चीज में मेरी प्रॉब्लम
1: होने वाली थी, चेंज करने वाली थी, तुमको तो चेंज वो ही नहीं।
2: ये जो हाउ आई विल रिएक्ट,
1: और लोग क्या बोलेंगे सुनने वाले,
2: इसको क्या हुआ, इसको क्या हुआ, एक लाइन से इसने इतना रिएक्ट कर दिया वो। और एक्चुअली कई बार मुझे भी अजीब लगेगा बाद में कि मुझे हुआ क्या था, उन्होंने तो एक लाइन बड़े प्यार से नॉर्मल बोली थी, ये मैंने ऐसा क्यों बिहेव कर दिया सारा। वो इसलिए हुआ क्योंकि ये जो एक लाइन और इस एक लाइन का रिएक्शन आया, दिस वॉज इन फॉलो अप टू द लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग कम्युनिकेशन इन द माइंड दैट हैज बीन हैपनिंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये वो एक लाइन और एक रिएक्शन का कम्युनिकेशन था ही नहीं, ये बहुत समय से जो हमारा मन में कम्युनिकेशन चल रहा था, वो एनर्जी जो भरी हुई थी, ये उसका रिजल्ट था। अब आपने जैसे कहा कि वो लेडी ने आपको आकर कहा, मैंने अपनी सास को ऐसे एक लाइन कही, देखो मैंने ऐसे बोला, इतने प्यार से बोला, एंड सामने वाला जब आपने भी सुना होगा, आपने कहा होगा अजीब सास है, इसने इतने प्यार से ऐसी एक लाइन बोली, क्योंकि आप सिर्फ वो लाइन सुन रहे हैं, आपको वो कम्युनिकेशन पता ही नहीं है सारी जो वो बहू ने अपनी सास को भेजी होगी, पता नहीं कब कब कब कब से,
1: सुबह से भेज रही होगी घर आने तक,
2: सुबह से घर आने तक क्यों, सार रोज ही भेजती होगी, कितनी ओवरऑल कितने सालों से भेज रही होगी कम्युनिकेशन। ये रिएक्शंस ऐसे नहीं आते हैं, इसीलिए अगर हमें किसी सीन का पूरा पर्सपेक्टिव जानना है तो हमें वो जानना होगा कि ये दो लोग आपस में एक दूसरे के लिए सोचते कैसे हैं। कई लोग जब हमारे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए तो कहेंगे सिस्टर मैंने बस इतना बोला, फिर सामने वाले ने ऊपर से ऐसा बोल दिया, फिर उसने ऐसा बोला ना, फिर मैंने ऐसा बोला। अगर हम उनके सिर्फ ये वर्ड्स को देखें और उस पर सीन को इवैल्यूएट करने की कोशिश करें कि क्या हुआ होगा, द इवैल्यूएशन विल बी रॉन्ग। तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क देम इज, आप उनके बारे में सारा दिन सोचते कैसा है, आपके मन में क्या चलता है उनके बारे में, विच इज नॉट वेरी ईजी उनके लिए बताना, लेकिन जो वो बोलते हैं उसके बेसिस पे तो कभी भी चेकिंग नहीं हो सकती कि कौन सही था और कौन सही सोच रहा था, कौन गलत सोच रहा था। आप उनके बारे में सोचते कैसे हैं, इसकी चेकिंग है, और आज साइंस ने वो हमें प्रूफ करके दिखा दिया कि ऑल इन द माइंड।
1: हमारे घर में एक VIP ब्रेकफास्ट पे आने वाले थे, तो उनका स्टाफ और उनका छोटा भाई आके पहले बोला पैसा वो मीठा खा जाते हैं, वो बड़ी वो जो रसगुल्ले और गुलाब जामुन बड़े हैवी जो मिठाइयां होती है ना, प्लीज नाश्ते के टेबल पे मत रखना, रखेंगे तो वो खा लेंगे। अब इस थॉट में मैंने बोला वाइफ को कि भाई ये सब टेबल पे रखना, ये उन्होंने बोला खास नहीं रखना। तो व्हाट माय वाइफ डिड कि उन्होंने बहुत कम शक्कर डाल के हलवा बनाया, ताकि बाहर का जो हैवी स्टफ मिठाई नहीं,
2: राइट,
1: तो वो उनको मैंने दिया, तो इतने प्यार से खाए, ये भी खुश वो भी खुश, कैसे थॉट,
2: यस एब्सोल्युटली, एक थॉट ही तो चाहिए सिर्फ सब कुछ।
1: कोई मैं किसी के घर जाऊं और कोई खाना भूख लगी हुई हो सडनली मर जाती है, मैं सोचा तीन चार रोटी खा जाऊं, थोड़ा सा खा के मैं नहीं, थोड़ा आई एम नॉट फीलिंग,
2: क्योंकि सामने वाले ने किस थॉट से बनाया है, किस वाइब्रेशन से बनाया है, हमारे आने पर सामने वाले ने कितनी वेलकमिंग एनर्जी क्रिएट की है, कितनी मजबूरी की एनर्जी क्रिएट की है।
1: बाद में भी फोन करके बोला आपकी वाइफ ने जो हलवा बनाया था करेक्ट शुगर थी साहब के,
2: दे वर सो, बिकॉज इट वॉज नॉट अबाउट द मिठाई, उसके पीछे की वाइब्रेशन, थॉट्स जो क्रिएट हुई थी वो थॉट थॉट तक पहुंचती है कि आप आए, आपके लिए हमने इतने प्यार से ये बनाया,
1: अपने हाथ से इसलिए बनाया क्योंकि स्टाफ ज्यादा अच्छा
2: लगा। आपका आना हमें अच्छा लगा, आपके आने पर हमें अच्छा लगा आपके ये करना, और यही अगर हमने ये किया होता कि किसी को बोल दिया होता वो आ रहे हैं बना देना, कुछ ध्यान रखना कि ठीक बने, जो जो उन्होंने बोला है वैसा बने,
1: डालना इतने बोल दिया,
2: तो फिर वो चीज भी अच्छी बनेगी, टेस्ट उसका ठीक होगा, लेकिन उसमें वो थॉट्स एंड वो वाइब्रेशंस नहीं होंगे जो दूसरे तक पहुंच के दूसरे को भी अच्छा फील कराते हैं। ये तो सारा दिन के अनुभव है ना, अनुभव इतने होने के बाद भी अगर हम ध्यान नहीं रखें तो वो अज्ञानता हो जाएगी कि हमें मालूम है कि जो हम सोचते हैं वो सामने तक पहुंचता है। तो आज अपनी थॉट्स की थोड़ी चेकिंग करनी पड़ेगी,
1: बिल्कुल,
2: और अपने आप को बार बार याद दिलाना पड़ेगा, आई कैन नॉट अफोर्ड टू थिंक लाइक दिस।
1: आज दोनों बात डिस्कस हुई, वो लड़की ने अपनी सास को छोटी सी बात बोली, फट कर कितना बड़ा रिजल्ट हो गया। और यहाँ वाइफ ने किया क्या, हलवे को थोड़ा ऐसे
2: छोटा किया,
1: अपने हाथ से बना के दिया, तो उसका इतना बड़ा
2: रिजल्ट मिला,
1: इतनी खुशी में भी एक इतना ओवर था,
2: राइट,
1: और इनका एंगर भी ओवर था,
2: बिकॉज वो खुशी ना हलवे की थी और उस केस में ना वो एंगर एक छोटी सी लाइन का था, दोनों का बेसिस था पहले के क्रिएटेड थॉट्स सेंट एंड कम्युनिकेटेड टू द अदर माइंड, ऑलरेडी वो पहुंच चुके थे दूसरे के मन में, तो वहां तो भाव एंड भावना ऑलरेडी प्रेजेंट थी, जैसे ही सामने वो चीज आई वो भाव एंड भावना भी ऑटोमेटिकली बाहर रेडिएट होते हैं। तो आज पक्का करना है और अपने किसी रिश्ते को चेक करना है कि किसी के लिए भी कोई ऐसी थॉट क्रिएट कर रहे हैं जो हम नहीं चाहते कि उन तक पहुंचे। अगर ये नहीं चाहते कि वो बात उन तक पहुंचे तो उस थॉट को आज चेंज करना ही पड़ेगा, इट हैव टू बी डन राइट नाउ।
1: अब मैं एक आगे आप ही की लैंग्वेज में बात करूंगा, हम ये नहीं चाहते उन तक पहुंचे से ज्यादा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर ये गंदी थॉट मुझे डिस्टर्ब करे।
2: ब्यूटीफुल,
1: थैंक यू सो मच सिस्टर,
2: ओम शांति,
1: थैंक यू।
3: इन अगस्त 2014 साइंटिस्ट conducted the world's first computer-mediated brain-to-brain telepathy experiment, where a person in India said hola to three people in France. The greetings were not spoken or typed, but their brain received the message. The communication took place between the brains of the people involved, proving that it is all in the mind. Telepathy is thought-to-thought communication. We have all experienced telepathy when we are thinking of someone and we receive their call. When we have a question on our mind and the other person starts answering. When we speak the same things together. When we create thoughts, they are vibrations and they radiate to people. Telepathy, which we have experienced and proved scientifically. Can we afford to create thoughts which we do not wish other people to know? Let us take care of our thoughts like we take care of our words. The negative thoughts we send people keep reaching them, and then the slightest trigger, even a simple word, gets a powerful negative reaction from them. Whether we are receiving from them or creating them, let us not keep negative thoughts on our mind. Let us transform them and radiate pure energy.
4: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 55 9 660.

मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक। पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू। आप सच बोलेंगे, देयर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावनी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, लेट्स से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। This is the powerful being.
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। और आज मेरे साथ बहुत ढेर सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। प्रोग्राम है बच्चों की दुनिया, जहां हम बात करते हैं बच्चों से उनकी दुनिया के बारे में, उनकी ख्वाहिशों के बारे में, उनकी अपनी अलग सोच के बारे में। तो मिलते हैं सभी बच्चों से। सबसे पहले हमारे साथ है शिवम। शिवम, आप अपने बारे में बताओ।
1: मेरा नाम शिवम गुप्ता है, मैं एमपी बाजौर से आया हूँ।
0: और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो शिवम?
1: फिफ्थ।
0: और उसके बाद युग, आप बताओ।
2: मैं सूरत वराचा से आया हूँ, मैं चौथी क्लास में पढ़ता हूँ।
0: और हर्ष?
3: मेरा नाम हर्ष है, मैं गुजरात के सूरत वराचा से आया हूँ।
0: और कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप?
3: मैं 9 में पढ़ता हूँ।
0: ईश्वरी?
4: मेरा नाम ईश्वरी है, मैं पुणे से आई हूँ।
0: और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
4: सेकेंड।
5: मेरा नाम पायल सोलंकी है, मैं एमपी से आई हूँ, मैं फिफ्थ क्लास में पढ़ती हूँ।
6: मेरा नाम मुस्कान गुप्ता है, मैं एमपी मध्य प्रदेश से आई हूँ, मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ।
7: मेरा नाम है कशिश सोलंकी, मैं एमपी मध्य प्रदेश से आई हूँ, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ।
0: अरे वाह। तो अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोग सपने देखते हो?
8: हाँ दीदी।
0: तो रात को देखते हो कि दिन में देखते हो?
8: रात को
0: देखते हो। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे अपना कौन सा सपना कौन बताएगा, जिसको याद है, जो सबसे फेवरेट वाला सपना देखा हो, जो अभी तक याद है, कौन बताएगा? आपको याद है युग, आप बताओ।
9: मैं से एक सपने में संगीत का शौक आया ना, तो मैं संगीत के क्लास में जाने लगा, इसलिए मुझे बहुत शौक है संगीत का।
0: अच्छा, मतलब आपने सपना देखा कि आपको संगीत सीखना है, तो आप संगीत सीखने लगे?
9: हाँ दीदी।
0: क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छा सपना था जिसको आपने रियलिटी में बदल दिया, है ना? और किसी को अपना सपना याद है? और पायल, मुस्कान, आप लोगों को कोई सपना नहीं आया ऐसा जिसको देख के आप डर गए हो, या कोई ऐसी बात हुई हो जो आपको नहीं अच्छी लगी हो या अच्छी लगी हो? कोई भी नहीं, किसी को नहीं याद। अच्छा, आप लोगों ने कभी कोई हॉरर मूवी देखी है? देखी है नहीं ना, तभी तो अच्छी बात है, क्योंकि डरावने सपने आते हैं ना उसको देख के। फिर
9: मैंने देखी थी।
0: तो कोई सपना आया आपको?
9: हाँ।
0: उसको देखने के बाद
9: जग गए?
0: नींद से जग गए? इतना डर गए कि नींद से जग गए। अच्छा, ये तो हमारे सपने जो हम रात को देखते हैं, आपको पता है हम खुली आंखों से भी सपने देखते हैं? किसी को पता है? नहीं पता। वो सपने होते हैं जो हमारी ड्रीम्स होती है ना, जो हम पूरा करना चाहते हैं, हमें लगता है हम स्कूल में ये करेंगे, वो करेंगे, या हम बड़े होके ये बनेंगे, वो बनेंगे, ऐसा सब सोचते हैं ना। अच्छा, तो फिर ये बताओ पायल, आप क्या सोचते हो, आप क्या बनोगे बड़े होके?
5: मैं डॉक्टर बनूंगी।
0: डॉक्टर बनोगे? और डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो आप?
5: दीदी, मरीजों का इलाज।
0: मरीजों का इलाज करने के लिए? ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुस्कान, आप बड़े होके क्या बनोगे?
6: मैं भी डॉक्टर ही बनूंगी।
0: आप भी डॉक्टर बनोगे? आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो? क्या अच्छा लगता है आपको? पता है उसके लिए ढेर सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, करोगे?
8: हाँ।
0: और कशिश, आप क्या सपना देखते हो, क्या बनना चाहते हो बड़े होके?
10: टीचर।
0: और आप टीचर क्यों बनना चाहते हो?
10: सब बच्चों को पढ़ाने के लिए।
0: सब बच्चों को पढ़ाने के लिए, मतलब आपको अपने टीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा शिवम, आप बताओ, आप क्या सपना देखते हो, बड़े होके क्या बनोगे?
11: मैं बड़ा होके सोचूंगा।
0: बड़ा होके सोचोगे कि क्या बनना है? अभी कुछ मन नहीं करता आपको बनने का, किसी को देख के कुछ भी नहीं? ठीक है, चलो शिवम बड़ा होके डिसाइड करेगा, पर युग ने तो डिसाइड किया होगा क्या बनना है।
9: संगीत कलाकार।
0: संगीत कलाकार? अरे वाह, संगीत कलाकार क्यों बनना है आपको?
9: मुझे एक बार देखा था ना एक संगीतकार को, इसलिए मुझे ऐसा रस जग गया कि मुझे जाना ही है इसलिए।
0: अच्छा, मतलब इतना मन करता है आपको उनको देख के, कि कौन सा म्यूजिक बजाओगे पहले ये बताओ, क्या बजाओगे? कोई इंस्ट्रूमेंट सीखते हो आप?
9: आधा गिता था थोड़ा सा, दो कड़ी।
0: अच्छा चलो ठीक है, वो तो हम युग से बाद में सुनेंगे। फिर हर्ष, आप बताओ क्या बनना चाहते हो बड़े होके?
3: बड़ा होकर सीआईडी बनना
0: चाहते। सीआईडी बनना चाहते हो? सीआईडी क्या होता है मैं बताओ तो?
3: वह देश की रक्षा के लिए एक कानून होता है।
0: अच्छा, तो आप क्या करोगे सीआईडी बन के?
3: हम सभी देख रहे हैं कि अभी देश में कितना जुर्म बढ़ रहा है, और उसको मैं मिटाऊंगा।
0: देश में जुर्म बढ़ रहा है, उसको आप मिटाना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है। और जुर्म मिटाना चाहते हो तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, हर चीज में किसी ना किसी की सेवा होती है। और ईश्वरी, आप क्या बनना चाहते हो?
4: टीचर।
0: टीचर? टीचर क्यों बनना चाहते हो?
4: दीदी, बच्चों को पढ़ाने के लिए।
0: बच्चों को पढ़ाओगे आप? अच्छा, और पुलिस में कोई नहीं जाना चाहता यहाँ पे? नहीं ईश्वरी, आपको तो पुलिस में जाना था ना? नहीं अच्छा अच्छा ये बताओ, आप लोग के जो मम्मी पापा है वो आप लोगों को कभी कुछ कहते हैं कि हम लोग आपको क्या बनाना चाहते हैं या क्या बताते हैं? कुछ बोलते हैं आपको कभी? किसी के भी नहीं? अच्छा स्कूल जब जाते हो तो कुछ ऐसा मांगता है, काश मैं ये करती या मैं वो करता स्कूल में, ऐसा वैसा कुछ भी सोचते हो कभी?
12: हाँ।
0: क्या सोचते हो बता?
12: मुझे कभी टीचर बोर्ड पे लिखने का कहते हैं इसलिए।
0: अच्छा मतलब आपको बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है? हाँ भाई सही बात है, बोर्ड पे लिखते हैं तो टीचर्स हमें बहुत तारीफ करते हैं ना। और कौन क्या सोचता है ईश्वरी आप?
4: मुझे टीचर बताते हैं मैं स्कूल के बाहर जाऊंगी तो सब बच्चों का ध्यान रखना।
0: सब बच्चों का ध्यान रखना, और ये आपको अच्छा लगता है? अरे वाह। और पायल?
5: दीदी बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है।
0: बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है। और मुस्कान को क्या चाहिए?
6: बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है।
0: बोर्ड पे लिखना। आप बताओ पहले कशिश? कोई से भी कर लेते हो? तो क्या मन करता है सबसे ज्यादा आपका करने?
5: डांस।
0: डांस, अरे वाह। और आपका क्या मन करता है हर्ष?
3: मैं हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा और मैं अपनी मेहनत से उसमें
0: प्राइज प्राप्त करोगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, अगर प्राइज नहीं मिलता है तो क्या बुरा लगता है? किसी को भी नहीं?
3: किसी को लगता है पर हमसे नहीं लगता है।
0: आप में से किसी को भी नहीं लगता?
5: नहीं लगता।
0: क्यों बुरा नहीं लगता? अच्छा बताओ, बाकी लोगों को तो लगता है?
3: क्योंकि कभी कभी हमको भी प्राइज मिलता है तो औरों को भी बुरा लगता है।
0: इसलिए औरों को
3: जब भी औरों को प्राइज मिले तो हमें यह सोचना चाहिए कि मैंने भी मेहनत की, मैं उस स्टेज पर गया, यही सबसे बड़ा प्राइज है।
0: बात तो बिल्कुल सही है। और आप लोगों को क्या लगता है?
5: दी हमको भी यही लगता है
0: कि उन्होंने भी मेहनत की है ना? बात तो सही है। अच्छा ये बताओ, बड़े हो जाओगे जब सब कुछ करोगे तो मम्मी पापा के लिए क्या करोगे? अभी तो मम्मी पापा हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, है कि नहीं? तो जब बड़े हो जाओगे तो मम्मी पापा के लिए क्या करोगे बताओ?
5: उनका नाम रोशन करेंगे।
0: उनका नाम रोशन करोगे। और ईश्वरी आप क्या करोगे मम्मी पापा के लिए?
4: उनका नाम रोशन करेंगे।
0: मम्मी तो अभी आपके लिए कितना सब कुछ करती है ना, खाना भी बनाती है, आपको लेके घुमाने भी जाती है, तो आप नहीं घुमाओगे मम्मी को जब बड़े हो जाओगे तो?
4: घुमाऊंगी।
0: तो बड़े हो जाओगे तो ये सब चीजें ध्यान रखना है ना, अच्छे से मम्मी का बर्थडे मनाना। और पता है क्या, मम्मी से आप प्यार से हैप्पी बर्थडे बोलोगे ना तो मम्मी खुश हो जाएगी। और युग?
9: बड़ा सा घर बनाऊंगा उसमें वो आराम से रहेंगे। ऐसा
0: बड़ा सा घर बनाओगे जिसमें मम्मी आराम से रहेंगे, अरे वाह। और हर्ष?
3: हम इस समय देख रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े बड़े बड़े लड़के कैसे अपनी मम्मी पापा को घर से निकाल देते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, उसको अपने पास रखूंगा और वो जैसे कहेंगे वैसे ही करूंगा और उसका नाम रोशन करूंगा।
0: बात तो बिल्कुल सही है, मम्मी पापा को अपने साथ रखना चाहिए, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और उनको बहुत सारा प्यार देंगे जो वो हमें अभी देते हैं, है ना? तो पायल आप क्या करोगे जब बड़े हो जाओगे? और आप लोग मुस्कान? और
6: मैं मम्मी पापा की सेवा करूंगी और बड़े होके उनका नाम रोशन करूंगी।
0: मम्मी पापा की सेवा करोगे? आप क्या करोगे
5: दीदी? हम
0: आप भी सेवा करोगे? और ईश्वरी क्या करेगी? घुमाने लेके जाएगी मम्मी को। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके फैमिली में कौन कौन है आप बताओ? फैमिली में कौन कौन है घर पे?
5: मम्मी पापा दादी दादाजी चाची चाची।
0: अरे वाह आपकी फैमिली तो बहुत बड़ी है। तो इस फैमिली में आपका सबसे फेवरेट कौन?
5: दीदी मम्मी पापा।
0: मम्मी पापा? मम्मी पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए।
5: हाँ।
0: और हमारी जो भी वो पूरी करते हैं ना सारी इच्छाएं भी तो वही पूरी करते हैं, है ना? और आप बताओ ये?
9: वो जो हम कहते हैं वो सब ले देते हैं
0: इसलिए वो फेवरेट।
9: कैसी हो मांगा था तो उसने थोड़े दिन में ही मुझे ले दिया था बड़ा सा।
0: अच्छा पापा ने? और आपकी फैमिली में कौन कौन है?
9: दादी दादा और मैं और मम्मी पापा।
0: तो दादी दादा के साथ आप खेलते हो? अच्छा तो उनसे
9: वो,
0: बात
9: वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जब भी मैं जो कुछ मांगू वो मुझे देते हैं
0: दादी दादा। अरे वाह। और आप बताओ पायल आपकी फैमिली में कौन कौन है?
5: मम्मी पापा दादा दादी
0: और सबसे अच्छा?
5: दीदी मम्मी पापा।
0: और सबसे फेवरेट कौन है आपका? मम्मी के पापा?
5: मम्मी।
0: क्यों, मम्मी क्यों अच्छी लगती है? अच्छा, ईश्वरी की फैमिली में कौन कौन है?
4: दीदी, अग्रजा एंड मम्मी पापा।
0: और सबसे अच्छा कौन लगता है आपको?
4: मम्मी पापा।
0: मम्मी पापा अच्छे क्यों लगते हैं ईश्वरी को?
4: तो मुझे कल ही चप्पल मांगी थी और आज ले आई।
0: अच्छा, और मुस्कान?
6: मेरी फैमिली में मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची।
0: और आपका फेवरेट कौन है?
6: मम्मी और पापा दोनों।
0: दोनों मम्मी पापा हमारी विशेष पूरी करते हैं। और कोई भी स्पेशल क्वालिटी है उनमें जो आपको बहुत अच्छी लगती है?
6: वो हमें बहुत प्यार करते हैं।
0: प्यार तो करते हैं, अगर डांटते हैं तभी बहुत प्यार करते हैं, नहीं है कि नहीं?
2: तब भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं।
0: हाँ, और आप बताओ?
2: दीदी हमको भी वैसे कि हमको चित्र दौड़ना नहीं आता, बहुत मुश्किल होता है, तो हमको हमारी दीदी
0: मतलब जो मुश्किल लगती है वो दीदी सॉल्व कर देती है। अच्छा ये बताओ, घर में कभी लड़ाई होती है आप लोगों की? कभी गुस्सा होते हो क्या आप लोग?
2: कभी कभी होती है।
0: होते हो?
2: हाँ दीदी।
0: क्यों होते हो? क्या होता है जब आप गुस्सा होते हो?
2: एक क्वालिटी लाए होता उसमें से दो भाग करने पड़ते हैं, इसलिए भाई बहन में किसी का ज्यादा आता है किसी का कम आता है इसलिए।
0: अच्छा, जब दो भाग करने पड़ते हैं तब लड़ाई होती है, और इक्वल इक्वल हो जाए तो नहीं होती। हाँ, और शिवम तो कभी लड़ता नहीं होगा? नहीं। क्यों लड़ते हो आप? कान आपको मारती है? अच्छा, क्यों मारते हो? मुस्कान क्या करते हो आप, ऐसे शरारत करते हो? बताओ, ऐसे ही मारते हो? क्या शरारत करते हो मुस्कान, बताओ?
6: वो कभी भी मस्ती करता रहता है, मेरी चीजें हमेशा कहीं ना कहीं पे फेंक देता है।
0: आपकी चीजें फेंक देते हो ऐसा शिवम? कोई नहीं, तो दीदी की चीजें लेने का और फिर सही जगह पे रख देना, है ना? तो फिर दीदी नहीं डांटेगी, ठीक है? हाँ युग बोलो।
2: एक साइकिल होती है तो दोनों झगड़ते हैं, क्योंकि मुझे चलाना है इसलिए।
0: साइकिल एक होती है तो दोनों झगड़ते हो, और फिर जीतता कौन है
2: भाई?
0: आप नहीं जीतते हो।
2: टीवी में भी सब लोग लड़ते हैं, आधा घंटा मेरा आधा घंटा तुम्हारा।
0: अच्छा, टीवी के लिए लड़ाई होती है?
2: हमारे घर में तो है ही नहीं, और मैं एक ही हूँ।
0: अच्छा, तो फिर लड़ाई होती है तो उसके बाद क्या करते हो?
2: चुप हो जाते।
0: जो देख रहा होता है उसको देखने देते? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है। और ईश्वर, आप कभी गुस्सा होते?
4: नहीं।
0: लड़ाई करते? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, मम्मी से भी नहीं? मम्मी जब कहती है सब मानते हो?
4: हाँ।
2: मेरी फैमिली में भी कभी कभी झगड़ा होता है।
0: झगड़ा होता
2: है, पर मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ।
0: आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो? अच्छा, क्या होता है और फिर आप क्या करते हो उसमें?
2: टीवी के लिए मेरी दो बहनें हैं, वो झगड़ती है और मैं टीवी बंद कर देता हूँ।
0: टीवी के लिए झगड़ा होता है तो आप टीवी बंद कर देते हो? हाँ। और फिर जब दोबारा ऑन होता है फिर
2: रिमोट लेके भाग जाता हूँ।
0: अच्छा, और आप लोग बताओ, कशिश कभी झगड़ते हो?
4: हाँ दीदी।
0: क्यों झगड़ते हो?
4: दीदी मेरी छोटी बहन है, वो टीवी के लिए हमको रिमोट नहीं देती है, तो हम जगह तो दीदी फिर कुछ नहीं करते है, चुपचाप बैठ जाते।
0: फिर उनको टीवी देखने देते हो?
2: हाँ।
0: अरे वाह, ये तो सारे बहुत ही अच्छे बच्चे, झगड़ते नहीं और देखने देते हैं।
2: नहीं तो कोई प्लान बनाता है कि ऐसे करने का है, फिर ऐसे कर, फिर लेने का, जब वॉशरूम जाते हैं तब कोई ले लेता है ऐसे।
0: क्या प्लान बनाते हो?
2: मैं तो नहीं बनाता हूँ।
0: अच्छा अच्छा, क्या प्लान बनाते हैं बताओ सब लोग?
2: कोई बना रहा होगा, पर मैं तो कह रहा हूँ उसे।
0: अच्छा, और ईश्वरी आप तो झगड़ते नहीं हो ना?
2: और कोई टीवी देख रहा हो, पानी पीने के लिए जा रहा हो, तब भी कोई रिमोट ले लेता है, ऐसा भी बनाते हैं।

0: अच्छा, घर में तो सब लोग रिमोट के लिए लड़ते हैं।
1: हाँ,
0: और किसी बात पे लड़ाई होती है?
1: खिलौने से होती है।
0: खिलौने से? तो आप लोग भी तो छोटे बच्चे हो ना। अच्छा, जब स्कूल जाते हो और फ्रेंड्स के साथ रहते हो तब किसी की लड़ाई होती है क्या?
1: हाँ, कभी कभी होती है।
0: होती है?
2: हाँ दीदी,
0: सबकी होती है।
1: फिर हम सब दोस्त बन जाते हैं।
0: मतलब लड़ाई होती है फिर हम सब अपने दोस्त भी बन जाते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुस्कान?
3: दीदी, मेरी फ्रेंड्स हमेशा मेरा बैग नीचे फेंक देती है बेंच।
0: तो मतलब वो आपको ऐसी टीज करते हैं, है ना? तो फिर आप क्या करते हो?
3: मैं भी उनका बैग नीचे फेंक देती हूँ।
0: तो बाद में फिर लड़ाई नहीं होती?
3: फिर वो टीचर से बोल देती है, तो टीचर उसको अलग बिठा देती।
0: और वापस फ्रेंड्स कैसे बनते हो फिर?
3: बन जाते हैं
0: तुरंत तुरंत। अरे वाह, है ना? तो क्या हुआ, लड़ाई की उसके बाद तो फ्रेंड्स बन जाना चाहिए, है ना? और ईश्वरी, आप लड़ते हो क्या अपने फ्रेंड्स के साथ कभी?
2: मेरे फ्रेंड मुझे धक्का देते हैं, फिर मैं भी धक्का देती हूं, फिर हम फ्रेंड्स बन जाते हैं।
0: अच्छा, और धक्का दे दो तो लगती नहीं है?
2: थोड़ी
0: थोड़ी। अच्छा, मतलब खेल खेल में ऐसा होता है। लेकिन जोर से नहीं देना, नहीं तो लग जाएगी चोट, फिर तो मम्मी से डांट पड़ेगी, है ना? और आप बताओ?
1: कभी झगड़ा हो जाता है।
0: क्यों?
1: बातचीत करते हुए।
0: बातचीत करते हुए झगड़ा हो जाता है?
1: हाँ।
0: फिर क्या करते हो?
1: मैं उसको अपना सीक्रेट बात बताता हूँ और वो किसी और को बता देता है।
0: अच्छा, और किसी के साथ भी ऐसा होता है?
2: दीदी, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं किसी को, मेरी फ्रेंड को बताती हूँ तो वो दूसरे को बता देती है।
0: अच्छा, तो फिर क्या करते हो आप लोग? तो फिर क्या करते हो आप लोग?
1: कभी सीक्रेट हम किसी और को बता देते हैं।
0: अच्छा, दोनों लोग ऐसे करते हो?
1: हाँ।
0: और उसके बाद क्या होता है, फिर लड़ाई नहीं होती?
1: लड़ाई नहीं होती, ठंडा हो जाता है।
0: तो फिर अपने फ्रेंड से हमें बात करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि हमारी जो बात है वो सबको नहीं बतानी चाहिए। वैसे आप लोगों के सीक्रेट्स होते क्या है? क्या सीक्रेट होते हैं बताओ?
1: कहीं छुपने की जगह, जब खोपड़े खोपड़े खेलते हैं तो
0: छुपने की जगह सीक्रेट होती है, वो आपका फ्रेंड किसी और को बता देता है। हाँ, तो फिर आप उसको क्या सीक्रेट बताते हो?
1: उसकी भी जगह बता देते।
0: अच्छा, उसकी भी जगह बता देते हो?
1: वो तो पता कैसा चलता है कि उसकी जगह यहाँ है।
0: अच्छा, फ्रेंड ने जो जगह दिखाई होती है वो बता देते हैं। और आप क्या करते हो पायल?
2: दीदी, हमारी जो बात रहती है वो दूसरों को बताती है मेरी फ्रेंड, तो हम भी उसकी बात बता देते हैं।
0: क्या बात रहती है आपकी?
2: दीदी, ये तो भूल गए।
0: और उसकी क्या बात रहती है? अच्छा,
2: सब भूल गए।
0: सब भूल गए। कशिश?
4: दीदी, हमारे शांति
0: क्या होता है?
4: दीदी, कभी मेरी फ्रेंड कटर मांगती है तो हम नहीं देते तो लड़ने लग जाते।
0: कटर नहीं देते? अच्छा, तो शार्पनर जब आप नहीं देते हो और आपकी फ्रेंड लड़ती है, उसके बाद क्या करते हो?
4: कुछ भी नहीं करते, फिर से बोलने लग जाते।
0: फिर से बोलने लग जाते हो? अच्छा, अरे वाह। और यू?
5: हमारे स्कूल में एक लड़का बहुत ताकतवर है ना, मेरी ताकतवर सब उसकी टीम में ही जाते हैं। जब मेरी टीम मेरे साथ साथ ही आओ और फिर झगड़ा होता जाता है, फिर सब साथ हो जाते हैं।
0: आपकी टीम में कोई नहीं आता, सब उसकी टीम में चले जाते हैं?
5: मैं तो टीम रखते ही नहीं।
0: तो फिर आप भी उसी की टीम में चले जाया करो, है ना? अच्छा, ये बताओ मुझे, आप लोगों को अब तक सबसे ज्यादा मजा कब आया है या सबसे ज्यादा खुशी कब हुई है, जब आपने बहुत एंजॉय किया हो, आपको बहुत अच्छा लगा हो, बताओ?
5: मैं मेरे मामा के साथ जब छुपा छुप गया था ना, वहाँ बहुत मजा आया था।
0: मामा के साथ क्या किया था?
5: वहाँ बहुत बड़ी राइड्स होती है ना, वो पानी में गिरती है ना
0: लहरें,
5: वहाँ बहुत मजा आता है।
0: अच्छा, मतलब आपको पानी में खेलने में मजा आता है मामा के साथ?
5: मेरे मामा भी आए थे।
0: अच्छा,
5: पहले तो मुझे बताया नहीं था, फिर मेरे मामा कह रहे थे ले जाओ ले जाओ मेरी मम्मी को, पहले तो नहीं कह रहे थे, फिर मेरे फिर क्या चल चल ले चलते हैं, फिर मुझे पता चल गया ना, तो मैंने कहा मम्मी को, देखा मुझे पता चल गया ना, मेरे मामा से भी नहीं बोल रहे, ले जाते हैं।
0: मामा आपको लेके गए खेलने के लिए पानी में लहरों पे, तो आपको बहुत मजा आया। अरे वाह। और आप बताओ शिवा, आपको सबसे ज्यादा मजा कब आया?
6: जब मेरे पापा उज्जैन में सीएस में मेरे को डुबकी लगवाते हैं तब।
0: डुबकी लगवाता उज्जैन में? अच्छा, क्या करते हो वहाँ पे? और
6: मेरा वहाँ पे साथ साथ तैरते हैं, डुबकी लगाते हैं और फिर हम बाहर निकल जाते हैं।
0: अच्छा, डुबकी लगाने में बहुत मजा आता है, यानी सबको पानी में खेलने में मजा आता है?
6: हाँ दीदी।
2: हाँ
0: नहीं
2: दीदी।
0: हाँ, तो फिर बताओ हर्ष, आपको बताओ।
1: मेरा एडवेंचर्स बहुत ही फेमस है।
0: एडवेंचर में आपको बहुत अच्छा लगता है? हाँ। क्या करते हो?
1: पीछे मैं एडवेंचर्स सीखूंगा तो बड़ा होके भी बड़े बड़े एडवेंचर्स करूंगा।
0: अभी क्या किया है आपने?
1: तेज स्केट चलाना और पानी में स्विमिंग कर।
0: तो आप स्केटिंग करते हो और पानी में स्विमिंग करते हो? हाँ। तो स्केटिंग कैसे आप सीखते हो? स्केटिंग तो उसको चलाने में मजा आता है आपको?
1: हाँ।
0: कभी किसी कंपटीशन में पार्ट लिया है आपने?
1: हाँ।
0: क्या लिया है बताओ?
1: कंपटीशन में एक बार मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसमें मेरा सेकंड नंबर आया था।
0: अरे वाह, तो चलो सब लोग भैया के लिए ताली बजाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए। ईश्वरी, आपको कब मजा आता है सबसे ज्यादा?
2: डांस में।
0: डांस में? कौन से गाने पे डांस करते हो आप?
2: राधा के।
0: राधा के? अच्छा, तो स्कूल में डांस करते हो? और कौन सिखाता है आपको?
2: मैं, टीचर।
0: टीचर? और आपके बर्थडे पे मजा नहीं आता आपको? क्या करते हो बर्थडे पे?
2: सब लोग केक खिलाते हैं।
0: सब लोग आपको केक खिलाते हैं, इसलिए मजा आता है। और आप सबको केक नहीं खिलाते?
2: खिलाते।
0: खिलाते हो? अच्छा, पायल आप?
7: मुझे भी डांस में बहुत मजा आता
0: है। डांस में बहुत मजा आता है। आप किस गाने पे डांस करते हो?
7: दीदी सारे गाने पे करते हैं, बहुत सारे गाने आते हैं।
0: सारे? बहुत सारे? मतलब स्कूल में जब भी डांस कंपटीशन होता है आप पार्ट लेते हो?
7: हाँ दीदी।
0: अरे वाह। और मुस्कान?
3: दीदी मुझे भी डांस में।
0: आपको भी डांस में मजा आता है?
4: दीदी मुझे।
0: अच्छा, डांस करना तो हमारी हॉबी, हमें पसंद है। कोई ऐसा दिन या कोई ऐसी मेमोरी आपको याद है जिस दिन आपने बहुत इंजॉय किया हो? कुछ याद है आप लोगों को? कभी घर पे, स्कूल में कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन हुआ हो तो आपको बहुत मजा आया हो, या कहीं गए हो घूमने? नहीं।
1: हाँ
0: बताओ।
1: बार एक योगा में कॉम्पिटिशिपेट किया था और उसमें मेरा फर्स्ट नंबर आया था। वो दिन मेरे को बहुत
0: मजा आया था। वेरी गुड। तो कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हमें प्राइज मिलता तो मजा आता ही है।
1: और नहीं मिलता तब भी आता है।
0: नहीं मिलता तब भी आता है? नहीं मिलता तब क्यों आता है?
1: क्योंकि हमें जब प्राइज मिलता है तो औरों को भी बुरा लगता होगा ना। हम ऐसा सोचे कि वही हमको अगले साल मिलेगा, इसलिए हम दुगनी मेहनत से फर्स्ट प्राइज में मिलेंगे हमको।
0: ये बात तो बहुत अच्छी कही आपने, दुगनी मेहनत करेंगे। और वैसे भी जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमें मजा आता है ना, वो हॉबीज में, गाने में, सिंगिंग में, डांस में, तो उसको एंजॉय करके हमें मजा करना चाहिए, है ना? अच्छा, ये बताओ आप लोगों को मजा आता है, कभी बुरा लगता है किसी चीज का? घर पे या स्कूल में टीचर ने कुछ कहा, या फ्रेंड्स के साथ, या मम्मी पापा के साथ किसी चीज का बुरा लगता है कभी आप लोगों को?
2: नहीं।
0: नहीं?
2: नहीं,
0: किसी चीज का बुरा नहीं लगता कभी भी?
2: नहीं,
0: कभी नहीं लगा। युग?
5: कभी खाने में अच्छा नहीं होता इसलिए करेला का साग होता है ना।
0: क्या होता है?
5: कभी खाने में करेला का साग होता है ना इसलिए।
0: करेला? अच्छा, तो करेला होता है इसलिए बुरा लगता है आपको। और फिर क्या करते हो, खाते हो कि नहीं?
5: फिर खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा।
0: थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं।
5: रात में दूध पी के सो जाते हैं।
0: रात में दूध पी के सो जाते हैं। अच्छा, और आपको पायल?
2: दीदी किसी से नहीं किया जो।
0: कभी बुरा नहीं लगता? कभी कोई डांटता है या टीचर ने कुछ बोला तभी भी
3: नहीं लगता?
0: और आपको?
4: नहीं लगता।
0: ईश्वरी?
2: नहीं,
0: ईश्वरी को तो कुछ बुरा लगता ही नहीं कभी, है ना? बहुत समझदार है। तो हम बात कर रहे थे नन्हे मुन्ने बच्चों से, उनकी दुनिया के बारे में, उनकी बातों के बारे में, उनके सपनों के बारे में, उनकी आशाओं और उनके प्यार और उनके झगड़ों के बारे में। फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में, बात करेंगे और नई और बच्चों के साथ। तब तक के लिए रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय बच्चों।
8: बाय।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

बाबू, वो पैसा जरा लाना, वो पैसा जरा लाना, लाना लाना, वो पैसा जरा लाना। आज पहली तारीख है, खुश है जमाना।

बड़े ही शरीफ है, पुराने मेहरबान है, बड़े ही शरीफ है, पुराने मेहरबान है। अरे जेब को बचाना बचाना बचाना, जेब को बचाना।

0: नागा है, भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता बाली है, अशोक कुमार है, नरगिस राज कपूर है, दिलीप कुमार है। गीतों का तूफान है, नाच की बहार है, नाच की बहार है।
1: पाँच आने का दसाना।
0: अरे वापस नहीं जाना, जाना, जाना, वापस नहीं।

G-O-A-T, goat. Goat माने बकरी, L-I-O-N, lion. Lion माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?

परमिट के लिए मरमिट बिना इस

जमाने हुआ ये हम पे सितम, वहाँ जकड़े गए हम मांगा परमिट जो उद्यम। हाय हाय हमने कहा ना ना, परमिट परमिट परमिट परमिट के लिए मरमिट, परमिट बिना इस जहाँ में दो दिन बिना दिया जाए।

बोला वो सितम घर क्या क्या परमिट को दिखाना परमिट परमिट परमिट परमिट के लिए मरमिट परमिट बिना इस जहां में दो दिन बिना।

जा दूधे का हुक्का भरा बोला क्या कर है फिरा शादी से पहले जरा परमिट तो दिखाना परमिट के लिए मरमिट परमिट बिना इस जहां में भुदिन बिना दिया जाए परमिट परमिट के लिए मरमिट परमिट बिना इस जहां में भुदिन बिना दिया जाए परमिट परमिट परमिट

ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मेरे।

0: बर्बाद।
1: मेरा तो शादी का कोई इरादा नहीं था सर, मैं तो सोच रहा था कि मार्च में एमएससी का एग्जाम देकर किसी नौकरी पे लग जाऊंगा, कहीं एस्टैब्लिश हो जाऊंगा, कमाने लगूंगा, फिर शादी के बारे में सोचूंगा। लेकिन ये सब
0: इसका मतलब है कि फिलहाल तुम उससे शादी नहीं कर सकते और ना ये चाहते हो कि सावित्री की शादी सागर या किसी दूसरे के साथ हो।
1: मैं तो यही चाहता हूं सर, लेकिन उधर मां का दबाव, सागर के एहसान, मुझे तो डर लगता है सर। सर मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, आप मेरे गॉडफादर हैं, आप मेरे फादर बनकर उनसे बात कीजिए ना, आप हम दोनों को बचा सकते हैं।
0: डोंट वरी माय सन, सावित्री की शादी तुम्हारे साथ ही होगी, मैं उनसे जाकर रिश्ते की बात करूंगा।
1: थैंक यू सर।

0: का सबक उसे भी पढ़ा दिया होता।
1: माफ करो बाबा, हम वो प्रोफेसर हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अपनी किस्मत तो देखो, ऐसा कुड़ शागिर्द मिला है कि जिंदगी पढ़ाते पढ़ाते गुजर जाएगी, लेकिन तुम्हें प्यार करना नहीं आएगा।
0: नहीं आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा?